0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: आज का योगा टिप, हर दिन कुछ समय हमें धूप में बैठना चाहिए क्योंकि सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कहा जाता है ना कि बड़ी उम्र में हमारे घुटनों में हमारी जो जॉइंट पेन्स होते हैं उसमें दर्द होने लगता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से हल्की सी धूप लेंगे रोज तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है 30 दिवसीय योग शिविर में नित सवेरे आप आकर के आप योगशाला में हमारे साथ हम सभी मिलकर के योग करते हैं और नए नए प्राणायामों से हम इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सवेरे आते हैं और हमारे साथ योग प्राणायाम की प्रक्रिया में जुड़ते हैं। तो आइए आज हम सभी मिलकर के करने वाले हैं एक नया अभ्यास। एक नए अभ्यास की ओर हम सभी मिलकर चलते हैं। नया अभ्यास का मतलब है नए प्राणायाम की ओर, जो कि है नितांत अनुलोम विलोम। सबसे पहले तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि नितांत अनुलोम विलोम नितांत क्यों है। सबसे छोटी सी बात और सबसे साधारण सी बात यह है कि नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसका हिंदी में यथाभाव प्रवेश या प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह तत्सम शब्द है जो कि उपसर्ग उपर्व के रूप में लगाकर किया जाता है। नितांत से हम समझते हैं कि बिल्कुल, सर्वदा, एकदम और असाधारण। नितांत आवश्यक अर्थ क्या है ये हम आपको बता दें। नितांत शब्द का अर्थ है एकदम, यानी कि बिल्कुल मजबूरी से, यानी कि बिल्कुल शांत और जिसे हम कभी भी मिटा नहीं सकते हैं, जिसको अंग्रेजी की भाषा में हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सत्य हम कभी भी बिल्कुल भी मिटा नहीं सकते हैं। पूरी तरह बहुत ही अधिक अत्यधिक नितांत का अर्थ है कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है। नितांत सही उत्तर मायने में उसका सही जो कि भली भांति अर्थ होता है वो है सही तरीके से। तो आइए हम अब नितांत शब्द की ओर चलते हैं। कई बार में हम ये जान लेते हैं कि नितांत क्यों है, तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। नितांत का अर्थ जैसा कि अभी हमने बताया, एकदम, बिल्कुल सही, सत्य, असाधारण, यानी कि जो साधारण से भी बिल्कुल परे है। नितांत जब हम किसी एक महत्वपूर्ण शब्द के आगे एक महत्वपूर्ण शब्द को लगा देते हैं तो उसकी जो मान्यता होती है वह चार गुना बढ़ जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है, लेकिन उसके आगे यदि हमने नितांत शब्द लगा दिया तो यानी कि यह एकदम सत्य जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। एकदम सत्य, असाधारण, यानी अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम नितांत क्यों बना, आइए हम आपको बताते हैं। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया हम आपको अभी विधि, उसका योग, लाभ सब बताएंगे, लेकिन अनुलोम विलोम नितांत कैसे बना हम पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। नितांत अनुलोम विलोम इसलिए बना क्योंकि अनुलोम विलोम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे जो असाधारण है, बिल्कुल सत्य है, सबसे प्रिय जो कि आसन और प्राणायाम होता है वह है अनुलोम विलोम। कहा जाता है योग मुनियों के द्वारा यह सत्य साबित हुआ है कि अनुलोम विलोम एकमात्र करने से गंभीर बीमारियों का नाश होता है। पतंजलि महर्षि के हिसाब से यदि हम केवल और केवल नित सवेरे उठ करके अनुलोम विलोम करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान सकते हैं कि अनुलोम विलोम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अनुलोम विलोम के बारे में हम जितना भी बोलें उतना कम है, क्योंकि अनुलोम विलोम एकमात्र प्राणायाम आसन ऐसा है जिसे करने से कई प्रकार की तकलीफें दूर होती हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने लोग भी हैं सभी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण की बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम 50-55 के हो गए हैं और अब हम योग प्राणायाम करें, कैसे करें, हमसे होगा नहीं होगा, तो हम बता दें कि 50 और 55 की एज के बाद में योग प्राणायाम करना तो अति आवश्यक हो जाता है। नितांत अनुलोम विलोम नितांत कैसे बना, आइए हम उस पर बताते हैं। सत्य जो कि कभी मिट नहीं सकता है, ठीक वैसे ही अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि सत्य है। अनुलोम विलोम के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे कि अनुलोम विलोम हमें कैसे करना है। तो आइए
हम उसकी चर्चा करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाएं इस अभ्यास के लिए। नितांत अनुलोम विलोम रोजाना अभ्यास और शारीरिक मानसिक दोनों सेहत के लिए लाभप्रद है। किस तरीके से कारगर है, आइए हम आपको बताते हैं। योग शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और अगर नितांत अनुलोम विलोम अगर हो जाए तो बात ही क्या है। नियमित योगाभ्यास से छोटी से बड़ी बीमारियों से शरीर का बचाव किया जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के द्वारा योगासनों की नियमित अभ्यास की सलाह देते हैं। वैसे तो कई तरह के योगासन हैं, जो अलग अलग तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं में असरदार होते हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे हैं जो मानसिक तौर पर तो आपको स्वस्थ रखते हैं, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। उन्हीं योगासनों में शामिल है नितांत अनुलोम विलोम। नितांत अनुलोम विलोम का अभ्यास शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, साथ ही साथ कई बीमारियों के खतरे को भी कम करने में मदद करता है। नितांत अनुलोम विलोम श्वास से जुड़ा योगासन है, जिसका अभ्यास सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है। तो आइए हम सबसे पहले अनुलोम विलोम यानी नितांत अनुलोम विलोम क्या है हम जानते हैं। नितांत अनुलोम विलोम एक विशिष्ट प्रकार का योग है, जिसमें श्वास को नियंत्रित करके अभ्यास किया जाता है। इसे प्राणायाम भी कह सकते हैं। यह श्वास अभ्यास को रोजाना करने से तनाव कम होता है और बेहतर श्वास व रक्त परिसंचालन को बनाए रखने में मदद मिलती है। नितांत अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से कई फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि नितांत अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। साफ सुथरी किसी भी स्थान पर हम बैठ जाएंगे, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, योगा मैट बिछा लें। अगर योगा मैट आपके पास नहीं है तो साफ सुथरी कोई भी एक चद्दर हो। हम पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे। यदि पद्मासन की स्थिति में हम नहीं बैठ सकते हैं तो हम साधारणता पलथी मारने की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात तो यह है कि हम कोई भी आसन प्राणायाम करें उसके प्रति हमारे मन में सच्ची भावना और लगन होनी चाहिए। तो आइए हम अब अनुलोम विलोम यानी कि नितांत अनुलोम विलोम करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दाहिनी नौसिका को अंगूठे और तर्जनी से दबाते हुए बाई नौसिका से श्वास लेंगे, कुछ इस तरह। और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हुए पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में आएंगे, कुछ इस तरह। और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हुए पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में आएंगे, कुछ इस तरह।

0: यह अभ्यास हमें लगभग 2 से 2.5 मिनट तक करते रहना है। तो आइए अनुलोम विलोम की इस प्रक्रिया को हम फिर से दोहराते हैं। दाहिनी नासिका को दबाते हुए बाईं नासिका से सांस को छोड़ना है और फिर बाईं नासिका से सांस लेते हुए दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ना है। यह प्रक्रिया कम से कम 2 से 2.5 मिनट प्रारंभिक अवस्था में चलती रहेगी। तत्पश्चात प्राणायाम पूर्णता पर हाथों की हथेलियों में घर्षण करें, आंखों पे और चेहरे पे लगाते हुए प्राणायाम को पूर्ति करें। आइए अब हम नितांत अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताते हैं। कई प्रकार शोध करने से पता चला है कि नितांत अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, माइग्रेन का दर्द, गंभीर अवसाद आदि से राहत मिलती है। अगर सही तरीके से रोजाना अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाए तो शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ बना रहता है। शारीरिक समस्याओं के बचाव से अलावा मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। नितांत अनुलोम विलोम करने से अवसाद, तनाव, चिंता दूर होती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन समस्याओं वाली बीमारियां ठीक करने में नितांत अनुलोम विलोम काफी फायदेमंद है। नितांत अनुलोम विलोम का अभ्यास क्रोध, विस्मृति, बेचैनी, निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। इस योगाभ्यास से शरीर के वात, कफ और पित्त तीनों दोषों को नियंत्रित करता है और आपकी त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाता है। आइए हम एक बार फिर से अनुलोम विलोम योगाभ्यास यानी कि नितांत योगाभ्यास को स्टेप बाय स्टेप फिर से आपके साथ बताते हैं। इस योगाभ्यास को करने के लिए सबसे पहले एकदम सीधा होकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अब बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर दाएं हाथ के अंगूठे से दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास को लें, फिर बाई नासिका बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास छोड़ें। इस क्रिया को दोहराएं। ध्यान रखें कि इस योगाभ्यास को सही तरीके से ही करने पर लाभ समुचित रूप से मिलता है। आइए कुछ बातों का ध्यान भी रख लेते हैं नितांत अनुलोम विलोम करने के बाद। नितांत अनुलोम विलोम का अभ्यास वैसे तो सुरक्षित माना जाता है जिसका कोई भी जोखिम और नकारात्मक प्रभाव नहीं है, लेकिन योग को सही तरीके से करने के लिए प्रशिक्षित योग शिक्षक की सलाह में ही करना चाहिए। किसी गंभीर रोग के शिकार और इस योगाभ्यास से पहले डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आप जब भी कोई योग प्राणायाम करें तो यदि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके ही कोई भी योगाभ्यास करें। नितांत अनुलोम विलोम कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए आज हमने आपके साथ शेयर किया। तो आज नितांत अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को बताते हुए, उनके लाभ बताते हुए, हम सभी ने आज के इस योगाभ्यास में, आज के इस 30 दिवसीय योग शिविर में नितांत अनुलोम विलोम के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आप इस योगाभ्यास को हमेशा दोहराएंगे और साथ साथ में करेंगे। कल मिलेंगे एक नए योगाभ्यास के साथ में, एक नए शब्द के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। हेलो दोस्तों, मैं आपकी समता, योगा एक्सपर्ट, योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज दोस्तों हम बात करेंगे अर्ध हलासन के बारे में। यह वह प्राणायाम है जो कि हमारी भागम भागी लाइफ में आज के जो कि हमारी भागम भागी जो लाइफ है, समय में जो भागदौड़ की भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं हो रही हैं। भागदौड़ भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान ही डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन रही हैं। ऐसे में शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग का अभ्यास, संतुलित खान पान अपनाना बहुत ही जरूरी होता है। योगासनों का नियमित अभ्यास व सिर्फ आप अपने शरीर को फिट रखने का काम करता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी उपयोगी होता है। शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त और फिट बनाने के लिए कई तरह के योगासनों का अभ्यास किया जा सकता है। तो आज हम आपको अर्धहलासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अर्धहलासन के नियमित अभ्यास से आपके पेट और पीठ की समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है। पेट के भीतर मौजूद अंदरूनी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए अर्धहलासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद है। अर्धहलासन को जो कि हम साथ में करेंगे और उसके फायदे भी बताएंगे। इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियों में भी बहुत ज्यादा विस्तार और अच्छा सा फायदा होता है। मेन हम बताएंगे कि अर्धहलासन जो है वो पेट और पीठ की समस्याओं को दूर करने में अर्धहलासन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अर्धहलासन के फायदे जान लेते हैं, बेनिफिट्स होते हैं अर्धहलासन करने के। मोटापे की समस्या आजकल आम तौर की लाइफ में बहुत बढ़ती जा रही है। जो खान पान है वो नियमित रूप से ना होने पर और ऐसे कई जगह पर जो कि आज की न्यू जनरेशन है, एक जगह बैठकर जॉब करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी वजह से भी उनका शरीर बढ़ता जाता है। फिर वो शाम को अपना एक जिम अपनाते हैं, यानी जिम की तरफ भाग दौड़ करते हैं। तो आज हम इसी सारी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही नियमित रूप से और सरल रूप से इस प्राणायाम को, इस व्यायाम को करेंगे घर पर ही बैठ करके, तो हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मोटापे की समस्या से जो भी लोग आजकल के ग्रसित हैं, उनके लिए अर्धहलासन योग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से आपके पेट और पीठ से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं और साथ में आपको फिट रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी है यह प्राणायाम। पेट की समस्याओं से अर्धहलासन का अभ्यास बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसका अभ्यास शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी फायदेमंद होता है, यानी कि सिर्फ हम एक्सटर्नली नहीं हम अभ्यास के लिए जुड़ेंगे, हम इंटरनल भी जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता है कि वह स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ, तो उन सारी चीजों को भी फायदे दिलाने के लिए अर्धहलासन बहुत ही आवश्यक है। जान लेते हैं कि अगर हम अर्धहलासन करेंगे तो उससे हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे दूर होंगी। तो नंबर वन यानी सबसे पहला फायदा है इसका पेट और पाचन तंत्र के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम दिन भर में कई ऐसी चीजें खाते हैं जिसको खाने के बाद में ऐसा होता है कि कई बार हमारे पेट में दर्द होने लगता है, पेट की जो चर्बी है वो बढ़ने लगती है। तो इन्हीं सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए यह जो प्राणायाम है जिसका नाम है अर्धहलासन, तो आइए हम बताते हैं। अर्धहलासन को रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए अर्धहलासन योग बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसका अभ्यास करने से आपको पेट से संबंधित यानी कब्ज, अपच की समस्या, भूख न लगने की समस्या से आदि बहुत फायदा मिलता है। यह योगासन आपकी भूख को भी ठीक तरीके से काम करने में यानी सुचारू रूप से ठीक करता है। दूसरा आता है इसी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए बेहतर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना अर्ध हलासन का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। नियमित रूप से अर्ध हलासन योग का अभ्यास आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को बाहरी बीमारियां और संक्रमण से बचाने का भी काम करता है। तीसरा दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा पीठ के लिए फायदेमंद अर्ध हलासन। अर्ध हलासन का रोजाना अभ्यास करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत और हेल्दी होती हैं। कमर दर्द की समस्या और पीठ से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो अर्ध हलासन अभ्यास करने से बहुत ही उपयोगी होती हैं और वह जल्द ही ठीक होती हैं। अगर आपकी भी पीठ से जुड़ी समस्याओं हैं, आपकी समस्याएं हैं और उनकी आप शिकार हैं, तो रोजाना इस योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। चौथा है शरीर का रक्त प्रवाह सुधारने में उपयोगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन असंतुलित होने पर कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से आपको ब्लड का यानी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में काफी हद तक मदद मिलती है। पांचवा इसका जो कि हमारा मुख्य उपयोगी है वो है वजन कम करने में। आज के समय में असंतुलित खान पान, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापे की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए न जाने कितने लोग कई कई दवाइयां, कई कई ऐसे योग अभ्यासन को अपनाते हैं जिसको करने के बाद में उन्हें फायदा तो मिलता है लेकिन कुछ ही समय के लिए। अर्धहलासन ही एक मुख्य रूप से फायदेमंद प्राणायाम है जो आपको जल्दी से वजन कम करने के लिए सुचारू रूप से सहायक सिद्ध होता है और अच्छी डाइट के अलावा रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे कि आपको किस तरीके से आसन की जो विशेषताएं हैं, जो उपयोगिताएं थी वो हमने बताई। आइए अब हम बात करते हैं अर्धहलासन जो कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके पेट से संबंधित सभी जो कि छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कि अर्धहलासन हम कैसे करेंगे। विधि, अर्धहलासन करने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर एक मैट का उपयोग करें।

पास रखें। उसके बाद पैरों को उठाएं, यानी आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे हवा में। इसके सिर और गर्दन कमर जमीन पर रखें, यानी सिर आपका और गर्दन कमर जमीन पर रहेगा। यदि हम देखें अपने जो कि प्राणायाम हम ये करेंगे, तो यदि हम इसका अगर कभी फोटो देखें तो आपको अंग्रेजी का एल शेप आपको समझ में आएगा कि ये एल जो कि शेप होता है, एल शेप में आपकी बॉडी दिखेगी। और पैरों को नीचे से ले जाएं, यानी कि आपके दोनों पैर ऊपर रहेंगे और अपने को पैर के बगल में, यानी जहां पर हिप्स हैं वहां पे आप दोनों हाथों को रख दें। और यह आसन अब पूरा हुआ। हम फिर से बता दें आपको, दोनों जांघों को ऊपर रखें यानी हवा में, गर्दन पीठ और सर आपका जमीन पे, दोनों हाथ आपके हिप्स के पास से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और दोनों पैर हवा में यानी सीधे। श्वास मध्यम गति से लेनी है और छोड़नी है। यह अभ्यास पूर्ण तभी होगा जब हम श्वास से नियमित यानी श्वास आती जाती श्वास को महसूस करेंगे और टाइमर के हिसाब से स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट और धीरे धीरे हम अपने समय को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कोई भी तरह की समस्याएं हैं तो अर्धहलासन को अपने डेली रूटीन में शामिल करके सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अर्धहलासन अगर करने में आ रही है, तो आप हमें जरूर से जरूर चैट बॉक्स में आकर के, जब हमारा योगशाला प्रोग्राम सुबह आता है उसके बाद में जब आप साथ में हम योगासन कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की हलासन करने में या सूर्य नमस्कार करने में किसी प्रकार का अगर आपको कुछ ऐसी मन की वृत्तियां हैं या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो आप चैट रूम में आकर के हमसे प्रश्न कर सकते हैं और हम आप उसका आंसर भी करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हलासन यानी हलासन प्राणायाम, और आशा करती हूँ आप इसका नियमित रूप से रोज अगर आप इसको करेंगे तो आपसे आपके शरीर से संबंधित, आपसे आपके पेट से संबंधित सारी समस्याएं ठीक होंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आऊंगी अपने नेक्स्ट यानी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके साथ बनी रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ध्यान पहले से खूब ज्यादा रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के उन 5 नियमों के बारे में, और उन नियमों को हम विस्तार से भी जानेंगे ताकि हमें योग जब हम करते हैं तो योग से ही संबंधित ये 5 नियम भी हम

ओर भुवस्वहा। जीवन की नई ऊर्जा के संग स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो पहली किरण में, जहां सूरज की रोशनी नहीं ईश्वर की ऊर्जा जगती है। मैं हूं आपकी आध्यात्मिक संगिनी आकांक्षा, जो लेकर आ गई है आज का भक्तिमय कार्यक्रम आपके लिए। आज हम सब चलेंगे प्रकृति, ईश्वर और इंसान की उस यात्रा पर जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं अदृश्य लेकिन अमर संबंधों में।

तकलीफ में तेरे सिवा कोई खड़ा नहीं, इसलिए माँ से कोई बड़ा नहीं। घर कैसा भी हो, माँ के बिना अधूरा ही लगता है। माँ वो हस्ती है जिसके बिना हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। एकदम प्रकृति माँ की तरह। जी हाँ, प्रकृति केवल पेड़ पौधा या पहाड़ नहीं, ये माँ है जो हमारे हर श्वास में, हर कण में समाई है, जो सूरज की रोशनी से हमें शक्ति देती है, चांद की चांदनी से हमें शीतलता देती है। और कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या चा द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बिल्कुल, माँ और प्रकृति से बढ़ के कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ने तो हमें जन्म दिया और ये दुनिया दिखाने का अधिकार दिया। प्रकृति से कट जाना ईश्वर से कट जाना है। जो पेड़ बचाता है वो ईश्वर की पूजा करता है बिना मंदिर जाए। तो चलिए बिना मंदिर जाए एक भजन का श्रवण करते हैं और साथ ही साथ प्रकृति माँ की अनुभूति में भी लीन हो जाते हैं।

कभी आपने सोचा है ईश्वर ने हमें क्या दिया बिना मांगे? सूरज की रोशनी दी, जल की धाराएं दी, वायु की सांसें, सब बिना कोई कीमत लिए मिलते हैं। यही ईश्वर का प्रकृति रूप है। यत्र नार्यत्र पूज्यते रमयते तत्र देवता। जहाँ प्रकृति, नारी और धरती का सम्मान है, वहाँ ईश्वर का निवास है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे बीज में वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में ब्रह्म छिपा है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। तो चलिए केवल 5 मिनट खुले आसमान में बैठिए, अपनी सांसों को देखिए और प्रकृति के स्पर्श को महसूस करिए। साथ ही साथ सुनिए ये प्यारा सा भजन।

हम सभी को पता है कि माँ से बढ़के कोई नहीं, और सभी धर्मों में भी माँ की ममता एक शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य बताया गया है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माँ की ममता से बड़ा वाकई कुछ और नहीं। ये कहानी माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना को दर्शाता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में समान रूप से पूजनीय है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसके पास अपनी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गई। माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया, जिस तरह हर माँ करती है। खुद भूखी रही पर बेटी को भूखा नहीं सोने दिया। एक रात जब माँ अपनी बेटी के साथ सो रही थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। माँ घबरा गई, उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और रात भर उसे सहलाती रही। सुबह होने तक माँ की हालत भी खराब हो गई। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटी दोनों ही बेहोश पड़ी हैं। वे दोनों को उठाकर एक मंदिर में ले गए। गांव के पुजारी ने जब माँ और बेटी की हालत देखी तो वो समझ गया कि माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पुजारी ने कहा, ये माँ की ममता है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान है। ये निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। गांव के लोगों ने माँ और बेटी की देखभाल की। धीरे धीरे माँ और बेटी स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने माँ की ममता का सम्मान करना सीखा। उन्होंने समझा कि माँ की ममता ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये कहानी दिखाती है कि माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। ये प्यार सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान रूप से पाया जाता है। माँ की ममता ईश्वर के प्रेम का ही एक स्वरूप है।

हम प्रकृति के उपभोगकर्ता नहीं, हम इसके रक्षक हैं, और हर रक्षक को ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। एक बालक जो रोज एक पौधा लगाता था और बड़ा होकर एक गांव को जंगल बना गया, यही है इंसान का धर्म, सृष्टि को लौटाना। तो चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो प्रकृति को समझने और खुद को बदलने की।

चलिए अब मैं आप सभी को एक और कहानी के माध्यम से इंसानियत की ओर लेके चलूंगी। सभी धर्मों की आत्मा में बसी एक कहानी जिसको मैंने नाम दिया है ईश्वर का स्पर्श। एक छोटा बच्चा हर दिन अपनी माँ से पूछता, माँ ईश्वर क्या है और वो क्या करते हैं? माँ हंसकर कहती, ईश्वर सबकी सेवा करते हैं बेटा। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, बच्चा खुद रसोई में गया, खुद सफाई की, दादी की मदद की। शाम को माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा क्या किया आज? बच्चा बोला, आज मैंने वही किया जो ईश्वर करते हैं, सेवा। क्योंकि अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारे अंदर ही तो ईश्वर रहते हैं। माँ की आंखें आंसू से भर गई और वो जान गई कि ममता, सेवा और प्रेम ही ईश्वर है।

आइए अब आपको सभी धर्मों के अनुसार माँ और ईश्वर के संबंध की ओर ले चलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माँ वही है जहाँ परमात्मा छुपा होता है। गीता कहती है, अनन्य भक्त के हृदय में ही मैं निवास करता हूँ, और माँ का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये एक हदीस है, और प्रकृति अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। हवा, पानी, सूरज, ये सब अल्लाह का करम है। ईसाई धर्म के अनुसार जीजस ने कहा है, लव दाई नाइबर्स, और माँ का प्यार सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार माता की करुणा बुद्धत्व का बीज है। जो प्रकृति को पीड़ा देता है वो अपने भीतर के बोधिसत्व को मारता है। यहूदी धर्म के अनुसार अ मदर्स प्रेयर रीच्स गॉड बिफोर द एंजल्स डू, और प्रकृति परमेश्वर की ब्रीथ यानी श्वास है जो सृष्टि में बहती है। ईसाई धर्म में माँ मैडोना मैरी प्रभु यीशु की माँ को ईश्वर की माँ माना गया। ईसाई धर्म में माँ त्याग, बलिदान और पवित्रता का प्रतीक है। मदर मैरी के आंचल में पवित्रता की सबसे सुंदर छाया मिलती है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा था, माँ का प्रेम अनमोल है जो कभी किसी से बदला नहीं मांगता। बौद्ध दृष्टिकोण में माँ करुणा, दया और सह अस्तित्व का आधार है। यहूदी संस्कृति में माँ को परंपरा की रक्षक, संस्कारों की वाहक और आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है।

अब आपको ले चलते हैं आज की मंथन की ओर। माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, और आत्मा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जो अपने मन की ममता को बचा लेता है वो दुनिया में कहीं भी ईश्वर को पा सकता है। हर धर्म का मूल एक ही है, प्रेम दो, सेवा करो और प्रकृति की रक्षा करो। माँ, ममता और प्रकृति, ये तीनों ही ईश्वरीय सत्ता के अलग अलग रूप हैं, और हर धर्म हर संस्कृति ने माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। आइए माँ की इस अद्भुत महिमा को हम हर धर्म की रोशनी में समझें। हिंदू धर्म में माँ मातृ देवो भव, माँ ही भगवान है। वेदों और उपनिषदों में माँ को सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी स्त्री और माँ के ही स्वरूप हैं। माँ धरती है, माँ गंगा है, माँ शक्ति है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसकी सेवा, उसकी दुआ, उसके आंसू अल्लाह तक सीधे पहुंचते हैं। माँ की नाराजगी रब की नाराजगी मानी जाती है।

सिख धर्म में माँ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी माँ को संस्कारों का बीज, कर्तव्य की प्रेरणा और पवित्र आत्मा का माध्यम कहा गया है। माता खेमा बख्शीश दीखान, जिथे बच्चे पल दे सच दे। माँ वो खेमा है जिसमें बच्चा सच में पलता है। तो चलिए, माँ की इतनी सारी महिमा अब हमने जान ही ली है, तो चलिए अब उस माँ के चरणों में एक भेंट अर्पण करते हैं।

माँ प्रकृति और इंसानियत। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो धरती की तरह सहती है, जल की तरह बहती है, आकाश की तरह सब कुछ समेट लेती है। माँ रोती नहीं पर अंदर से टूट जाती है, फिर भी मुस्कुराती है। वो इंसान नहीं, इंसानियत की जड़ है। जब कोई धर्म, कोई किताब, कोई महापुरुष माँ को ईश्वर से भी ऊंचा माने, तो समझ लीजिए माँ खुद ही एक धर्म है, एक अध्यात्म है, एक पूजा है। और माँ सृष्टि की सबसे पवित्र पहचान है, हर धर्म हर आत्मा की सबसे मूल शक्ति वो है माँ।

आध्यात्म में माँ का स्थान ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था बताया गया है। जब कोई साधक आंखें बंद करता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले माँ की मूरत को देखती है। माँ का नाम जपने मात्र से शांति मिलती है। माँ हर पंथ हर विचारधारा में एकमात्र अटूट प्रेम है। जैन धर्म में माँ को जन्मदाता नहीं धर्मदाता कहा गया है। पारसी धर्म में माँ प्रकृति की शुद्धता और नैतिकता का स्रोत मानी जाती है। आदिवासी परंपराओं में माँ को भूमि अग्नि और जल की देवी कहा गया है। माँ की गोद में ईश्वर की गोद जैसा सुकून होता है। तो चलिए इस सुकून की अनुभूति करते हैं इस माँ की भेंट के माध्यम से।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: It's P on the track.

0: क्या बात है, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तो चलिए, इतना धड़क गया है कि मॉर्निंग वाले शो के मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आ चुके हैं आपकी गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। सो यस, आज है संडे और संडे का पूरा मूड बना दिया है कुदरत ने। कैसे? अरे मौसम की बात, ऑब्वियस सी बात है मौसम की बात, इसलिए क्योंकि अभी तक तो आपने उठ के देखा नहीं है। तो अगर उठ के नहीं देखा तो कुछ ही देर में मुझे लगता है आपको देखना ही चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है और आज आपके बाहर निकलने के बाद वापस से देखने का ज़रूर मन करेगा घूमते फिरते हुए कि भाई चलो आज मौसम को सच में निहार लिया जाए, किस तरह का मौसम है और कैसे आज घूमने का मन कर रहा है। थोड़ा सा राइडिंग, थोड़ी सी दूर जाना और ख़ुद को बहुत सारा सुकून, ये सब कुछ मिल जाता है ना। सो ये मिलता रहेगा और ये मिलना भी चाहिए क्योंकि भाई ये मौसम का खुमार होता है, जो चढ़ता है तो चढ़ ही जाता है। सो फिलहाल हमको भी ये खुमार होने लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसी मौसम के साथ जब हम बेहतरीन से सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमको बहुत पसंद आता है, सो लिटरली ऐसा लगता है कि भाई ये मौसम सच में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है आपके लिए मेरे लिए। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल चूंकि आज संडे है तो चलते हैं आज के संडे के थॉट ऑफ द डे की तरफ और जानते हैं कि भाई आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर आया है, आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और आज के थॉट के अपने क्या मायने हैं आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए और आज के टेक अवे के लिए हमारे पास क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

जाहिर है आज भी आप थॉट ऑफ द डे में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको कहे कि आए वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, मतलब इतना यूनिक और ऐसा एंगल, क्या बात है। तो चलिए आज एक ऐसे ही संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे की तरफ ले चलते हैं। सो आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि अपनी तरह बनो, अपनी तरह बनो, बाकी सब तरह के लोग पहले ही बन चुके हैं। देखा जाए तो बड़ी आम सी बात लगेगी कि हाँ मतलब किसी को कॉपी मत करो, लेकिन ज़रा गौर करिए, इस एंगल से देखिए, अपनी ही तरह बनो, बाकी सब तरह के लोग पहले ही बन चुके हैं, यानी जो जैसा था वो तो वैसा ही था। अब आप जैसे हो, जिस तरह की पर्सनैलिटी है, जैसे शख्स हैं, जैसी शख्सियत है आपकी, अगर वैसे ना बने और किसी को देख कर बने तो देखा हुआ यानी वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये जो अपने तरह का करना होता ना, ये थोड़ा सा सुनने में तो शायद आसान लग सकता है, कई बार करने में हम सोचते हैं कि यार अभी तक तो हम लोगों को देख कर ही चीज़ों को करते चले आए थे, अब खुद से कैसे। सो खुद से के लिए जैसे हम दूसरों को वक्त देते हैं, उनकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, उसी तरह अगर हम खुद को भी देखते हैं, खुद के लिए चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमको भी क्लैरिटी मिलती चली जाती है, यानी हम भी अपनी ही चीज़ों में क्लियर होते चले जाते हैं। सो ऐसी ही बात है जो आज का थॉट ऑफ द डे लेकर के आया है कि बनो तो अपनी तरह बनो। क्यों? क्योंकि बाकी सब तरह के लोग पहले ही बन चुके हैं, तो जो कुछ आप बनना चाह रहे हो ऐसा वैसा किसी के जैसा, वो बन चुके हैं, एकदम नई पर्सनैलिटी। सोचिए अशोक से पहले कोई अशोक नहीं आया था, राइट? द्रोणाचार्य से पहले कोई द्रोणाचार्य नहीं आया था, अर्जुन से पहले कोई अर्जुन नहीं आया, और जितने लोगों को जानते हैं, अगर बॉलीवुड के लिए तो बहुत सारे नाम हैं, अगर आप आर्टिस्ट मिले तो MF हुसैन जैसा कोई आर्टिस्ट इससे पहले नहीं आया था, जाकिर हुसैन जैसे तबला वादक कोई नहीं आया था, और न जाने किस किस फील्ड के अलग अलग जो महारथी हैं जिनको हम जानते हैं या जो भी है, ये आ चुके हैं ऑलरेडी। और अगर ये भी किसी के जैसे बनने की कोशिश करते तो वो आर्टिस्ट आज तक इस दुनिया को, इस जहां को मिल ही ना पाता। सो बस आप जैसे हैं, आपको अपने जैसा बनना है, आपकी अपनी डेफिनेशन होनी है, आपके अपने तौर तरीके होने हैं, इवन आपका अपना थॉट होना, आपके अपने खुद के विचार होने हैं, और उसके पीछे की वजह आपको ही तलाशनी है कि आप इस चीज़ को ऐसा क्यों मानते हैं, आखिर इसके पीछे आपका क्या रीज़न है, क्या कारण है। सो आप अपनी तरह से जिस दिन चलने लग गए, उस दिन मानिए कि हाँ सच में आप अपनी ही वाली लाइफ जी रहे हैं, ये तो एकदम फैक्ट है। सो आप किसी के जैसा नहीं बनना है, बल्कि खुद अपने जैसा रहना है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है, लेकिन हम इस थॉट को चूंकि कहीं ना कहीं समझते रहे हैं, तो इसलिए हम भी कह सकते हैं कि हाँ हम भी कह रहे हैं, बशर्ते आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर ये जो कुछ हमने कहा है या ये जो कुछ हो रहा है, ये आखिर ऐसा क्यों है, आखिर क्यों हम इस चीज़ को समझने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद की तरह बनना। हम सब कुछ कर लें, हमारी सारी चीज़ें बेहतर है, और एट द एंड हम खुद की अपनी पर्सनैलिटी ही ना बना पाए, हम खुद के जैसे ही ना हो, तो ज़रा सोचिए कि क्या आलम होगा, कैसा होगा सब कुछ, काफ़ी अजीब है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जानना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हम अगर अपनी तरह नहीं बनेंगे तो किस तरह बनेंगे। इसलिए प्लीज़ कोशिश करना है कि हमको खुद अपनी तरह ही बनना है और अपनी तरह ही करना है। सो भाई इतनी प्यारी बात, और ज़रा सोचिए जब आप अपनी तरह बन जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे, क्योंकि जो इंसान अपने आप में प्योर होगा वो बहुत ही प्योर दिखेगा, यानी अगर आप खुद से चीज़ों को डिसाइड करके खुद ही कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर वो चीज़ें साफ रिफ्लेक्ट होने वाली हैं, और उसके बाद तो हर कोई कहने वाला है कि भैया तुझमें दिखता है क्या, आइए जानते हैं।

अब समझे आप क्या दिखता है। यस ऑफ कोर्स, जब प्योरिटी होती है, जब आपकी अपनी चॉइस होती है, आप उस चीज को लेके खुद में ईमानदार होते हैं, तो डेफिनेटली रब दिखता है। रब कोई अलग से कोई शख्सियत नहीं, बल्कि वो फील है, वो कल्चर है, वो बिलीफ है, जिसको हम बहुत पाक साफ मानते हैं और मानते हैं कि हाँ ये हमारा अपना है।

0: कसम से बता रहे भाई, आपकी भी जोड़ी बन जाएगी अपने खुद के साथ, क्योंकि जो फिट नहीं होती है जोड़ी, जिस चीज के लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं यार कि मुझे अपना ही नहीं समझ में आता है, उस दिन के बाद से आपको अपना भी समझ में आएगा, आप अपने भी समझ में आने लग जाएंगे और आपको अपनाइत भी समझ में आ जाएगी। यानी बहुत सारे फायदे, बहुत कुछ है अगर आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, क्योंकि आप सुनते हैं हमको फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। और इसी एप्लीकेशन से जो लोग सुनते हैं उनको चैट का ऑप्शन मिलता है। आप जो कुछ चैट पर लिखते हैं वो हम गोंडा FM के RJs तक लाइव आपकी बात पहुंच जाती है। सो इसी लाइव शो में आपने क्या कुछ लिखा है चैट बॉक्स पर आ करके, आइए रुख करते हैं चैट की तरफ और देखते हैं क्या मैसेजेस है, कैसी मॉर्निंग आपकी रही है और आज का थॉट ऑफ द डे आपको कितना पसंद आया है।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आर्जी अकान।

हाँ जी, चैट बॉक्स की तरफ अगर रुख करते हैं तो नाजिया अंसारी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। पंडित आशीष शुक्ल हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। अरविंद फ्रॉम मनकापुर हैं, सभी को सुप्रभात आपको भी। एंड लिखा है आपने, इफ़ यू गेट अप वंस मोर टाइम देन यू फॉल, यू विल मेक इट थ्रू। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा थॉट अरविंद, थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद जो है, सविता दुबे जी लिखती हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, आपका स्वागत है। सनी पांडे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू सनी, आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और इसके अलावा बोलते हैं सविता दुबे जी, रिंकी के तरह कोई नहीं आया था आज, सुविचार बहुत प्यारा लगा है ना। आपकी लाइफ में रिंकी की तरह कोई नहीं आया था और रिंकी को आपने अपना लिया, वाह, दैट्स ब्यूटिफुल थिंग, बहुत प्यारी बात है सविता जी। एंड पूर्णिमा भी आ गई हैं, हालांकि पूर्णिमा ये दिन वाली हैं। ये 24 घंटे वाली है। ये लिखती हैं, संडे वाला गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप? संडे वाला गुड मॉर्निंग आपको भी, मैं मस्त हूँ, झकास हूँ, बढ़िया हूँ, और आज थोड़ा थोड़ा सा ब्लू ब्लू हूँ। एंड यस, इसके बाद जो है सविता जी लिखती हैं, सर तुझमें भी रब दिखता है, अरे थैंक यू सो मच। इसके बाद पूर्णिमा लिखती हैं, बहुत प्यारा थॉट है, थैंक यू सो मच। अरविंद जी का भी शुक्रिया आ गया है। सो मुझे लगता है कि रब या भगवान या खुदा, जिस भी शक्ल में हम मानते हैं, हम कहते तो हैं, लेकिन हम न जाने क्यों एक ऐसी तरह से, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, जैसे लगता है वो अलग, लेकिन जब हम बात करते हैं तो क्वालिटीज़ की करते हैं, यानी कैरेक्टर की करते हैं, कि कैसी क्वालिटीज़ है, कैसा कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है ये जो रब है, ये जो खुदा है, ये जो भगवान है, ये क्वालिटीज़ हैं, ये आदतें हैं जो अपने अंदर हम अपना लेते हैं। इसके बाद अगर कोई कहता है किसी के अंदर रब दिखता है, तो उसको दिखता होगा, डेफिनेटली वो महसूस होता होगा, वो सुकून, वो अपनाइत, वो शुद्धता, वो सब कुछ नज़र आता होगा। इसीलिए कहता है शख्स कि तुझ में रब दिखता है। तो रब तो हर किसी के अंदर का है मौजूद, क्योंकि रब की ही सारी चीज़ें हैं, तो रब क्यों नहीं मौजूद होगा, बशर्ते हम उनकी क्वालिटीज़ को कितना उभार करके अपने अंदर महसूस कर पाते हैं, और उसी की वजह से कितना दिख पाता है किसी के अंदर, रिफ्लेक्ट हो पाता है, ये समझने वाली बात होती है। सो मुझे भी आज का थॉट पर्सनली बहुत पसंद आया, कि किसी के जैसा हम क्यों बने, हम किसी के जैसे क्यों बने। हर कोई जैसा बनना हम चाह रहे हैं, जैसी कोशिश कर रहे हैं, वैसा इंसान शख्स आ चुका है पहले इस दुनिया में, तो किसी के जैसा नहीं बनना है। लेकिन मैं अगर अपने आप में यूनिक होने वाला हूँ, सो ना कोई इससे पहले अदनान आया था ऐसा, और ना कभी कोई आएगा, अगर मैंने अपने को फॉलो किया। अगर मैं फॉलो करने लग जाऊँ किसी बॉलीवुड के एक्टर को, अगर मैं फॉलो करने लग जाऊँ किसी दार्शनिक को, अगर मैं फॉलो करने लग जाऊँ किसी आर्टिस्ट को, तो शायद बस उसके जैसे ही कोशिश में आधा अधूरा सा थोड़ा सा पार्ट लेकर के एक सस्ती सी कॉपी बन जाऊंगा, राइट? और यही बात अगर मैं खुद पे अप्लाई करूं और हर वो चीज़ जोड़ने की कोशिश करूं जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में होनी चाहिए, सो एक पर्सनालिटी बनेगी। और सेम चीज़ मैं आपके लिए कह रहा हूं, कि अगर आपने अपने खुद में खुद के लिए हर उन चीज़ों को, हर उन एलिमेंट्स को जोड़ा है जो आपको लगता है, सो डेफिनेटली आपकी एक पर्सनैलिटी ही बनेगी और वो निकल करके आएगी। एंड मुझे लगता है इससे खूबसूरत क्या बात होगी कि यार आप अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही सजा रहे हैं, खुद ही संवार रहे हैं। ज़रा सोचिए ना, अपने आप में कितना प्यारा है। सो चलिए भाई, संडे का टाइम है और संडे वाली वाइब है, मॉर्निंग का टाइम है, और बदली भी छाई हुई है गोंडा पर, फिलहाल बादलों ने घेर रखा है, जिससे ये मौसम जो है वो लाजवाब बना हुआ है। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया तो भैया नाश्ता कर लीजिए, 9:09 हो गए, अब इससे ज़्यादा क्या ही लेट करेंगे। आपको ये तो नहीं लग रहा है कि अभी 7 बज रहे हैं? ना ना ना, टाइम देखिए, 9:10 हो गए इवन,

हाय, पंखों को जरा सा हवा तो लगने दो, एक बार उड़ने तो दो, क्या बात है। और आज के थॉट ऑफ द डे को सुनने के बाद गौरव जी लिखते हैं, आज का थॉट ऑफ द डे मेरी लाइफ और सोच के साथ बहुत मेल खाता है, क्योंकि मेरा भी मानना है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक दुनिया के पीछे चलने वाले, एक दुनिया को अपने पीछे चलाने वाले। इसलिए पीछे चलने वाला भीड़ नहीं, भीड़ से अलग हट चलो। गुड मॉर्निंग अदनान जी एंड सभी सुनने वाले दोस्तों को। गौरव जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। एंड फिलहाल चलने चलाने की बात तो खैर एक तरफ है ही है, लेकिन दरअसल इतनी सी बस बात आज के थॉट ने कही है कि यार किसी के जैसा मत बनना, क्योंकि दुनिया में जिस जैसा बनना चाहते हो वो हर तरह के शख्स आ चुके हैं, और एक ऐसा बड़ा चांस जो कुदरत ने आपको दिया है वो मिस हो जाएगा कि आप बिल्कुल अपनी तरह में यूनिक हैं। अब आपके जैसा ना कोई आया था इससे पहले, ना कभी कोई आएगा। सिर्फ और सिर्फ करोड़ों सालों में, शायद हजारों सालों में आप एक ऐसे हैं जो अपनी तरह के हैं, और इस चांस को मिस नहीं होने देना है, क्योंकि ये कुदरत के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अहम है और फिलहाल अपने लिए भी। तो चलिए, जब इतना ज़्यादा यूनिक है तो क्यों ना एक यूनिक सा सॉन्ग भी आपको सुना देते हैं मॉर्निंग वाले शो में। भाई मॉर्निंग वाली वाइब है तो कुछ अलग सा फील होना चाहिए। फिलहाल गुंडा अपडेट्स लेकर कुछ ही देर में हाजिर होने वाले हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, लेकिन आप बने रहिए गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। और हाँ, जागते रहिए चाय की चुस्कियों के साथ।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: ए चिंटू चिंटू,
1: बोलो ना चिंकी।
0: एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम पढ़ाई करते हुए सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का रखते हो?
1: यही के जब भी मैं पढ़ूं पापा मम्मी को पता चल जाए कि मैं पढ़ रहा हूँ।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: हाँ जी, जैसे कि वादा किया था भाई कि आने के बाद आपको बताने वाले हैं कि गोंडा की हलचल में इस वक्त क्या चल रहा है, यानी क्या हो रहा है गोंडा में अपडेट। सो चलिए भाई आप तक पहुंचा देते हैं, और कुछ अपडेट्स आपके काम की भी होने वाली है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि क्या कुछ चल रहा है अपने गोंडा में। ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो पहली जो अपडेट आ रही है दरअसल वो आ रही है आईटीआई से जुड़ी हुई। सो आईटीआई में एंट्रेंस की जो डेट है वो कल तक बढ़ गई है। जी हाँ, फिलहाल राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण

सो प्रिंसिपल ने बताया है कि जो चुने हुए कैंडिडेट्स हैं उनका मूल प्रमाण पत्र, उनकी मार्कशीट, उनकी एक एक प्रमाणित प्रति और पासपोर्ट साइज की दो फोटो लेकर के संबंधित संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यानी आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख तक के लिए निजी और जो राजकीय ITI है उसमें आप एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें 4,95,00,000 से होगा 12 सड़कों का चौड़ीकरण। जी हाँ, सो फिलहाल PWD ने गोंडा और बलरामपुर की 12 सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 4,95,00,000 रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी है और पहली किश्त में 2,59,00,000 रुपए 56,000 विभाग को मिले हैं। सो गोंडा में 3 सड़कों के लिए 1,18,15,000 रुपए जो है वो स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 55,71,71,000 रुपए की पहली किश्त मिली है। सो बलरामपुर में 9 सड़कों को चौड़ीकरण पर 3,77,61,000 रुपए खर्च होंगे। इसके लिए 2,03,85,000 रुपए की पहली किश्त मिली है। सो लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया है कि सड़कों के चौड़ीकरण से ग्रामीण क्षेत्र के 10,00,000 लोगों की राह जो है वो फिलहाल आसान होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको हम बता दें, क्योंकि अभी ठगी से जुड़ा मामला है गोंडा का है, काफी बड़ा है। सो 5,25,00,000 रुपए की ठगी में जो है वो लविश चौधरी और उनके साथियों पर FIR किया गया है। ऑनलाइन के जो निवेश है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर 5,25,00,000 रुपए की ठगी के आरोप में बोट ब्रो यानी बोट अल्फा कंपनी के मालिक लविश चौधरी समेत कई लोगों पर इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। SP के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। सो पूरे उदय फिरोजपुर निवासी वीरेंद्र प्रकाश मांडे और बहराइच के चिलौली बिरहिमपुर निवासी सच्चिदानंद पाठक ने दर्ज कराई FIR में कंपनी पर कई गुना मुनाफे का झांसा देकर रकम हड़पने का आरोप लगाया है। और गाजियाबाद के पसोंडा गांव के मूल निवासी लविश चौधरी उर्फ नवाब के साथ एजेंट सरयू प्रसाद मिश्र, रजत मौर्य, ब्रजेश सिंह और संजय जायसवाल सहित बाकी भी आरोपी हैं। सो ये ऑनलाइन ठगी से जुड़ा मामला था जो कि हमने बताया, और हम आपको लगातार सचेत करते रहते हैं कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर कोई कॉल आती है, कोई भी इस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है तो उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइएगा। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। सो अगली अपडेट में आपको बता दें, जन आरोग्य मेला लगाया जा रहा है। 10 बजे से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन करके जो पारिवारिक मामले होते हैं उनकी सुनवाई आज सुबह 10 बजे से पुलिस लाइन में की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मंडलीय सब जूनियर जो बालक कैटेगरी है इसकी फुटबॉल टीम चयनित हुई है। जी हाँ, आगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 7 सितंबर से होने वाली राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता में देवी पाटन मंडल की टीम शामिल होगी और सैटरडे को ट्रायल की टीम का चयन किया गया, यानी कल ही के दिन इसका चयन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मास्टर क्लास में फैकल्टी होंगे डॉक्टर DN सिंह। जी हाँ, सो मेडिकल कॉलेज के जो वरिष्ठ सर्जन है डॉक्टर DN सिंह रविवार को SGPGI लखनऊ में होने वाले पैराथॉइड सर्जरी मास्टर क्लास और एल्यूमिनाई मीट में आमंत्रित फैकल्टी सदस्य और पैनलिस्ट के रूप में शामिल होंगे। सो डॉक्टर सिंह जो है वरिष्ठ एंडोक्राइन और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है। इन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम SGPGI के संबंधित विभाग के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के प्रमुख एंडोक्राइन और पैराथॉइड सर्जन के साथ संस्थान के पूर्व छात्र भी शामिल होंगे। तो ये अपडेट आपको हमने दी गोंडा से। इसके अलावा अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो शिक्षक दिवस पर जो है वो शिक्षकों का सम्मान भी किया गया है और उनको उपहार भी बांटे गए हैं। सो यस, फिलहाल काफी ज्यादा बेहतरीन माहौल रहा ऐसे सम्मान समारोह में। उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मेला स्थल पर होनी है सफाई। जी हाँ, सो कजरी तीज मेला जो है उसकी तैयारियों को लेकर के कल यानी सैटरडे को नवागत जो ADO पंचायत हैं राकेश श्रीवास्तव ने सफाई कर्मियों की बैठक की है और उन्होंने मेला स्थल और आसपास

ने विशेष सफाई अभियान चलाने का जो आदेश है वो पारित किया हुआ है। आई होप कि आपको ये जानकारियां मिल गई होंगी जो कि गोंडा से ही अपडेट्स थी। सो चलिए भाई, अब वक्त है आपको अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ ले जाने का और जबरदस्त म्यूजिक सुना करके संडे की वाइब को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने का। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग चौक आरजे अदनान।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5, सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: क्या बात है भाई, सर्दे मूड तो बन चुका है इस गाने के साथ में, एंड आई फील गुड। मुझे लगता आई फील बेस्ट एंड बेस्ट, है ना। सुबह ही संडे का टाइम है, 9:49 हो चुके हैं आपके 9.6 FM के स्टूडियो में। और फिलहाल एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। हैरान इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद को बूढ़ा दिखा रहे हैं। हैं? बूढ़ा दिखा रहे हैं? वो आप सोचेंगे, नहीं यार, हम तो मतलब अपनी एज कम करके ही बताते हैं, ये बूढ़ा दिखाने वाली बात तो साबित हो ही सकती है। लेकिन यकीन मानिए, कहीं ना कहीं आप खुद को बूढ़ा ही दिखा रहे हैं, आप खुद को बूढ़ा बना रहे हैं। यकीन नहीं आता है ना, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना। चलिए मैं दिलाता हूं यकीन कि आखिर कैसे आप खुद को बूढ़ा बना रहे हैं।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो मैंने कहा भाई कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक आदत है ना, वो रोज आपको वक्त से पहले बूढ़ा बना रही है, लिटरली यकीन मानिए। कैसे? देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर उनकी माने तो जब हम दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहते हैं, खास करके प्रोसेस्ड और पैकेट बंद के जो स्नैक्स होते हैं, सो ये बॉडी को जो मेटाबॉलिक रेस्ट है वो नहीं मिल पाता। और मेटाबॉलिक रेस्ट बॉडी को मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बार खाने से इंसुलिन जो है वो रिलीज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी का फैट बर्न करने की बजाय फैट स्टोर करने लगता है। सो बॉडी जो है वो बर्न करने के बजाय, उसको ख़त्म करने के बजाय, जलाने के बजाय, उसको और ज़्यादा जमा करने लग जाती है। सो बार बार खाने के जो संभावित प्रभाव हैं उसके बारे में अगर हम आपको बताएं, सो इंसुलिन जो है वो इम्बैलेंस रहता है। सो यानी बहुत कम भी बार बार लेने से हार्मोनल जो रिएक्शंस है वो ट्रिगर होती है। अब इसमें होता क्या है कि पेट के जो आसपास की चर्बी है, बॉडी को फैट जलाने का वक्त मिलता ही नहीं है। एसिडिटी और ब्लोटिंग, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको आराम मिल ही नहीं पाता है। मेटाबॉलिक थकान होती है, लगातार जो डाइजेशन से बॉडी अंदर ही अंदर थकने लगती है। यानी जाहिर सी बात है कि जब हम उसको हर वक्त काम दिए रहेंगे, उसको रेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो अंदर ही अंदर थकने लगेगी। सो बात आती है कि ठीक है, आपकी ये जो आदत है कि आप पैकेट बंद कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी चॉकलेट ले रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। और यही चीज़ आपको वक्त से पहले क्या कर रही है, बूढ़ा बना रही है। सो फिर करना क्या है, आइए आते हैं सॉल्यूशन पे। कैसे बदलना है ये आदत, अगर ये आदत आपके अंदर है तो बदलना कैसे है? सो आप क्या कर सकते हैं, डाइट में अपने प्रोटीन, जो रिच प्रोटीन सोर्सेज हैं उनको आप शामिल करें, जिसमें है दाल, पनीर, अंडा और चिकन। और फाइबर के लिए सैलड है, फल है, साबुत अनाज है, इसको बढ़ाना होता है। यानी इसमें से आप जो कुछ भी खाना पसंद करते हो, जिसके ज़रिए भी आप प्रोटीन बढ़ाना चाहते हो, उसको ज़रूर डाइट में शामिल करें। इसके अलावा रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच कम से कम 12 से 14 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। यानी आपने जो डिनर किया है और फिर आपका ब्रेकफास्ट है, कम से कम 12 से 14 घंटे के आसपास का गैप होना चाहिए, ताकि बॉडी को प्रॉपर आराम मिल सके। जो आपके ऑर्गेन्स हैं, जो 2400 घंटा हम काम पे लगाए रहते हैं, इनको भी रेस्ट चाहिए होता है। और इसीलिए कहते हैं कि रात में जो हम डिनर करते हैं, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बीच का जो गैप है वो आवर्स की अगर हम बात करें तो 12 से 14 घंटे के बीच में होना चाहिए। सो इसलिए बहुत देर तक खाना और डिनर बहुत देर में करना ये भी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप जल्दी जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। इसके अलावा क्या है कि खाने से पहले आपको खुद से पूछना होगा, लिटरली ये सवाल करना होगा, क्या सच में भूख लगी है या एवं

0: जागते रहते हैं और दूसरों को इंकरेज करते हैं कि भैया जागो। सो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेस्ट जो है वो मिल जाता है एंड साथ ही साथ आप यंग नज़र आते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखिए जैसे इस वक्त आप नज़र आ रहे हैं। ये देखा स्माइल कर रहे हैं आप, लिटरली बता रहा हूँ यार, ये चीज़ होनी चाहिए। तो आई होप कि भैया ये आदत आप छोड़ेंगे और अपनी बॉडी को मेटाबॉलिक रेस्ट देंगे। और साथ ही साथ जिस तरह बताया कि भाई प्रोटीन को आप अपनी डाइट में बढ़ाने वाले हैं और इसके साथ ही साथ फाइबर की भी मात्रा आप बढ़ा देंगे ताकि आपकी बॉडी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग हो, वो होना चाहिए और वो यंग दिखे। यस कूल। सो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये छोटी सी आदत लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, इसलिए इस बात पे कहीं ना कहीं चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस बात को हम जानें कि भाई हम किस तरह से हमारी कुछ आदतें हमको जल्दी बूढ़ा बना रही है। और जल्दी बूढ़ा होना कौन चाहता है यार, कोई नहीं चाहता है लिटरली। तो चलिए इन आदतों को छोड़ते हैं, मेटाबॉलिक रेस्ट देते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा यंग दिख जाते हैं।
1: गलत कहते हैं।

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छूटी?

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सुबह 10 बज चुका है और आपको बताया कि संडे यानी 10 से 11 गागागुंडा विदार छे अंदर। यस, वक्त भी हो गया, कॉल भी आ चुकी है, तो चलिए इसी बीच में, चूंकि कल हमने सेलिब्रेट किया है टीचर्स डे, और इसी टीचर्स डे पर हम कहीं ना कहीं आपने कल विश किया अपने गुरुजनों को, अपने टीचर्स को, ट्रेनर्स को, जहां भी आपने पढ़ा है, जो भी कोर्स किया है, जो भी कुछ सीखा है उसको लेकर के आपने बोला। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गुजरते हुए साल और ये महीने भी हमको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। 2026 चल रहा है और 2026 ने आपको ऐसा क्या सिखाया जो वो लर्निंग अपने साथ में आप रखे हुए हैं? चलिए इस बात को जानते हैं अपने कॉलर की तरफ और बढ़ते हैं, कॉलर की तरफ देखते हैं कि भाई किसकी कॉल है और क्या कुछ है कहना। हाँ जी, हेलो,
1: संडे वाला गुड मॉर्निंग अर्जित सर।
0: संडे वाला गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी मेरे ख्याल से पूर्णिमा की आवाज है।
1: जी बिल्कुल। गेम शो
0: मोजा तो आज पहने नहीं। हाँ अच्छे हैं।
1: तो बारिश बहुत जम के हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि मोजा तो आपने बिल्कुल भी नहीं पहना होगा।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पहना। कहते हैं कि बरसात में मोजा पहनने से उसके अंदर सांप बैठ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आजकल हम जूते भी पहनते हैं तो झाड़ के पहनते हैं पहले। सच बताओ।
1: हाँ बिल्कुल से, वैसे एक हफ्ते पहले सर हमारे यहाँ सांप निकला था।
0: एक हफ्ते पहले?
1: तो हाँ, एक क्या बातें पहले था पिछले संडे।
0: क्या बातें की आपने?
1: नहीं कुछ नहीं, बस बाहर से मम्मी ने उसको ऐसे डंडे से ऐसे से किया तो वो बाहर चला गया, मतलब अंदर घर में नहीं आया।
0: छोटा सा था, बड़ा सा था, कैसा था?
1: एक हाथ का था, मुझे तो बहुत डर लगता
0: है। अच्छा, तो मिलने आपसे हाय कहने आया होगा?
1: नहीं, वो एक्चुअली अंदर आ रहा था ना, बाहर से कहीं आया था।
0: हाँ,
1: तो वो अंदर आ रहा था, सीढ़ियों पे था बरामदे के, तो बच्चों ने देखा तो तुरंत से मम्मी ने डंडे से झिटका, तो मतलब वो चला गया। क्योंकि मेरी मम्मी नहीं डरती है, लेकिन हम लोग डरते हैं, हम तो बहुत ज्यादा डरते हैं।
0: नहीं जरूरी है, क्योंकि आपको ये सुरक्षित
1: जी, तो हमारे यहाँ भी इस समय बहुत एहतियात जो है रखी जाती है, जैसे बच्चों के शूज हुए या सैंडल्स हुए तो उसको ना ऐसे झाड़ के फिर पहना ही जाता है।
0: ओके, हाँ ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात है।
1: हाँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है ना, तो बच्चे जल्दी में रहते हैं।
0: हाँ, करेक्ट।
1: तो उनको डैडी होना रहता है, तो इसकी वजह से ना कभी कभी जाने में ही गलतियाँ हो जाती हैं।
0: और सिर्फ सांप की बात नहीं कर रहे हैं, कई बार छोटे छोटे कीड़े ही होते हैं, वो भी अगर मान लीजिए काट लेते हैं, डंक मारते हैं, तो अच्छा खासा मतलब नुकसान हो जाता है, पेन हो जाता है।
1: वो तो होता है।
0: करेक्ट, तो ये तो है। लेकिन जैसे कल मैंने बताया, कल 5 सितंबर था टीचर्स डे, आप सबने एक दूसरे को विशेष भी भेजी होंगी, जो भी आप टीचर्स मानते हैं, जो आपके टीचर्स हैं। 2026 ने क्या आपको सिखाया है पूर्णिमा?
1: मुझे तो बहुत सारी सीख दे गया है
0: 2026।
1: हाँ, बहुत सारी सीख दे गया है, जिसमें से मैंने जो पर्सनली जो सबसे ज्यादा एंजॉय किया और सबसे ज्यादा सीखा, बुक्स पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था, तो उसको मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया। बहुत ज्यादा खुश हूँ जब से बुक पढ़ना स्टार्ट किया है।
0: कोई बुक की कोई छोटी सी शेयरिंग अगर हम लोगों के साथ आप साझा करना चाहें?
1: जैसे अगर मतलब किताबें तो हम पढ़ते थे, लेकिन जब से नॉवेल्स पढ़ना फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा पसंदीदा था नॉवेल्स पढ़ना, तो कहीं ना कहीं बंद हो गया था स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम के बाद। एक दो साल का गैप आ ही गया था, क्योंकि हम सब्जेक्ट की किताबें ही पढ़ते थे, अदर चीजें नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर जब इस बार मौका मिला, और कहीं ना कहीं मैंने आपसे भी सुना कि बुक्स पढ़ने से जो है अपना जो दिमाग होता है कहीं ना कहीं वो एक अलग ही लेवल पे जाता है। किताबें आपको पढ़नी चाहिए, खुद से आपको जोड़ती है किताबें।
0: करेक्ट,
1: लोगों की भीड़ से आपको अलग करती है, खुद को समझने का मौका देती है। कुछ ऐसी किताबें हैं जो लाइफ में आपको हमेशा काम आती है। तो मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा चेंज आया, बहुत अच्छा, एक पीसफुल माइंड बना रहता है, किसी चीजों को किसी बातों को ना सोचना, बस अपने आप में रहना, खुश रहना, अपने कामों को करना, आलतू फालतू की चीजों को ना ही सोचे तो बेहतर है।
0: ग्रेट।
1: तो जब भी मौका मिलता था, अगर रात में मौका मिलता था तो रात में पढ़ते थे, नहीं तो दोपहर के टाइम में अपना काम कर लिया तो बुक्स पढ़े, 1-2 घंटे 3 घंटे जितना टाइम उसको दे पाते थे उतना टाइम देते थे और आराम से बुक्स को पढ़ते थे। तो बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत बढ़िया। और 2026 ने आपको ये बुक का तोहफा दिया है, आई होप कि ये बुक का तोहफा काफी लंबे वक्त तक आपका चलता रहे। लेकिन सुन करके सच में दिल से खुशी हुई कि बहुत अच्छी आदत आपने अपने लिए लगाई।
1: सर फिलहाल मैंने 3 किताबें कंप्लीट कर ली है, 3 किताबें ऑलमोस्ट।
0: चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, काफी अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुनकर के, एंड थैंक यू सो मच पूर्णिमा कि आपने हमको कॉल किया, और एक बार वापस से आपको भी संडे बहुत बहुत मुबारक।
1: जी सर, आपको किसी से बात करवाएं सर?
0: ओके
1: ओके, ये लो बेटा बोलो बोलो, राधे राधे बोलो।
2: लादे लादे,
0: अरे लादे लादे क्या नाम है आपका? अरे निक्की, किन्ने पाले हो भाई आप, क्या कर रहे हो?
1: पूछो खाना खाया?
0: ताना ताया, हमने ताना नहीं ताया, हमने नाश्ता दिया। अभी ताना तो हम दाते था ना।
1: ठीक हो?
0: ठीक है तो, हम भी ठीक है तो। अरे छोटू उस्ताद, बड़े प्यारे हो आप, बहुत प्यारे हो, नजर न लगे, और बहुत अच्छी आप किस्मत लेके आओ, और बहुत हेल्दी रहो, बहुत खुश रहो, और गोलू गोलू से ऐसे हो करके मुस्कुराते रहो आप।
1: बाय बाय
2: बाय बाय
0: बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।
1: सर हम बात कर रहे थे ना, हमारे फिंगर्स पे ऐसे उंगली रख रही थी कि आप मत बोलो मैं बोलती हूँ।
0: अच्छा।
1: जैसे जब ज्यादा कोई चीखने लगता है, आसपास कहीं झगड़ा होने लगता है, तो कहती है शट अप शट अप
0: शट अप।
1: सर ये दीदी की बेटी है, अजबी नाम है।
0: ओके,
1: एक नाम इसका निकिता है सर, तो इसको हम लोग निक्की कहते हैं।
0: ओके
1: जी सर,
0: बहुत मजा आया इनसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच इनसे बात कराने के लिए।
1: थैंक यू सो मच, बाय
0: बाय सर, बाय बाय, टेक केयर। वाओ क्या बात है भाई, छोटी सी बच्ची निक्की से बात करके दिल बड़ा प्रसन्न हो गया, काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। और जैसा कि हमने कहा कि भाई कल हमने 5 सितंबर सेलिब्रेट किया टीचर्स डे के मौके पर, और आज वक्त है हम उस इनसाइट को, उस लर्निंग को बताएं जो 2026 जो अभी जा रहा है, ये गुजरता साल हमको देकर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
3: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम विद्या शर्मा है जी, मैं जम्मू संभाग से बोल रहा हूँ, नलोटा गुजरू मेरा गांव है, और मेरा जिला है कठुआ।
0: अरे वाह क्या बात,
3: मैं वयोवृद्ध नागरिक हूँ और सेवानिवृत्त हुआ अध्यापक की स्वामी से।
0: अरे वाह अध्यापक भी, सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे।
3: हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा था, खास से हमें बहुत शुभकामनाएं लोगों की तरफ से, अपने जो शिष्य रहे हैं उनकी तरफ से शुभकामनाएं आई है, सम्मान मिला है, प्यार मिला है।
0: क्या बात,
3: हमने एक 30 साल मतलब 30 साल अध्यापक के जिम्मेदारी निभाई है।
0: अरे वाह,
3: मुख्तलिफ स्कूलों में, हाई सेकेंडरी में भी रहा हूँ, हाई स्कूल में भी रहा हूँ और प्राइमरी स्कूल में भी रहा हूँ।
0: अरे वाह, आपके तो पढ़ाए गए स्टूडेंट्स न जाने आज कहाँ कहाँ और कौन कौन होंगे।
3: मैं यह नहीं कह सकता हूँ मैं देहाती स्कूलों में रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य था, बच्चों की भी मेहनत है कि कुछ कोई मजिस्ट्रेट की पोस्टें जाहिर हो रहे हैं, कुछ डीसी की पोस्टें जाहिर हुए हैं, कुछ डॉक्टर की पोस्टें जाहिर हुए हैं, फिर भी गांव के बच्चों ने इतनी मेहनत करके, अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचे, और मुझे उनसे बहुत सम्मान मिला। जब मुझे कभी मिलते हैं तो मेरे पांव छूते हैं, मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मुझे खुशी होती है। मैं इस वजह मैं 35 ईयर्स एज गुजार चुका हूँ, रिटायरमेंट एज।
0: अरे वाह,
3: आई वॉज रिटायर्ड इन 1991।
0: ओ माय गॉड, अच्छा। भाई आपसे अनएक्सपेक्टेडली तो बात हो गई, लेकिन बात करने के बाद ये जरूर समझ में आया कि एक जो अध्यापक होता है, एक टीचर होता है, शायद वो बस इतना ही चाहते हैं कि उनके जो पढ़ाए बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में बेहतर करें। मैं सही हूँ?
3: हाँ, हमें इस बात से तो प्रसन्नता अवश्य होती है
0: जी,
3: लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के किसी कर्म की कमी से, या अपनी मेहनत की कमी से, या माता पिता की मजबूरियों से पीछे रहना पड़ता है, तो कभी मिलते हैं तो पांव छूते हैं, तो वो अपना कमजोरी खुद महसूस करते हैं या हमें बताते हैं कुछ, तो कहते हैं हम वहां तक पढ़े, वहां तक पढ़े, वहां तक पढ़े, और जो बड़े मिलते हैं वो भी पाँव चूकते हैं। तो क्या जैसे मुझे रेलवे स्टेशन पर जा रहा था तो एस पी साहब आ गए, उनके साथ एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने मेरे पाँव छुए, कहने लगा मैं आजकल एस पी हूँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में।
0: वाओ क्या बात है, मतलब एक ये जैसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन है।
3: बिल्कुल आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही आपको लगूंगा। मैं एक लिखने का, मुझे रिटायरमेंट के बाद मुझे लिखने का शौक हुआ, तो मैंने कोई 18 किताबें छुवाई हैं जिनको मैंने प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के होम में भेजे हैं, राष्ट्रपति के दफ्तर में वो किताबें 18 किताबें मैंने अपनी प्रिंट करवाई है, कुछ इंग्लिश में, अपनी डोगरी भाषा में, कुछ हिंदी में।
0: अच्छा वाह, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ, एक बुक हम पढ़ नहीं पाते हैं, लिखने की बात तो छोड़िए, आपने कहा 18 मतलब बहुत बड़ी बात।
3: 18 लिख दी है, अभी कल ही मैंने एक रेडियो एंकर है दिल्ली रेडियो स्टेशन पर, कठुआ से है
0: जी,
3: उधर उनकी शादी हुई है।
0: अच्छा।
3: उनका नाम है नीरू बख्शी।
0: नीरू बख्शी, अच्छा
3: नीरू बख्शी वो दिल्ली में एंकर भी है और कठुआ में पहले एंकर थी, तो मेरे साथ उनका बहन भाई का रिश्ता बना हुआ है बोलने की वजह से ही। तो मैंने उनको एक छोटी सी, वो कह रहे थे आपने जो किताब लिखी है लेटेस्ट लिख के रखी है, वो छुआ नहीं पाया अभी, वो बड़ी है, कुछ 600 सवे की है, वो मुझे भेज दो, मैं उनको खर्चा नहीं डालना चाहता। मैंने रक्षा बंधन पर उनके एक छोटी सी कापी को 80 सवे की भेज के दे दिया लिख कर, जिसमें 300 बंद लिखा हुआ है।
0: वाह क्या बात है,
3: कुछ ईश्वर के प्रति है, भावना है कुछ है। तो मैं आपसे थोड़ी सी बात कहूंगा अपने लेखन कला की।
0: जी जरूर।
3: देखिए ये क्षण भंगुर है ये शरीर, भूल जाए जैसे पताशा है,
0: वाह
3: मानव का आना जाना इस जगत में ये तो कुदरत का तमाशा है।
0: क्या बात है,
3: तुझे याद करते हैं दुनिया वाले, तू दुनिया को बनाने वाला है, हर सांस चले तेरी चाबी से, हर कंठ पर तेरा ताला है।
0: क्या बात है, वाह बड़ी सच्चाई इसको मतलब आपने लिखी है। वाह,
3: मैंने मौत अभी अभी एक मौत पर कविता ली है कि मौत क्यों हंसता है दुश्मन की मौत पर, तू कभी दोस्त को भी आएगी, जो हंसाती है आज तुझको वो कल तुझे रुलाएगी।
0: वाह,
3: मौत का रिश्ता है सभी से, ये तोड़ती नहीं है, जिसको ले जाना चाहती है उसको छोड़ती नहीं है। ना रंग रूप का भेद है कोई, ना उम्र का कोई लिहाज, जिसको ले जाना चाहती है जानती यही है राज।
0: वाओ,
3: इसके लिए है सब बराबर, क्या निर्धन क्या धनवान, ले जाती है सभी को, क्या निर्बल क्या बलवान।
0: वाओ क्या बात है, मतलब बहुत सुपर।
3: इसका प्यार है सभी से है? ये सभी को बुलाती है मौत, सभी से प्यार करती है, सिर्फ समय का इसका निश्चित है, इसका इंतजार करती है।
0: वाओ बहुत,
3: तो इस तरह से मैंने कविताएं लिख लिख के कोई कोई 12-14 किताबें ऐसी लिख दी है मैंने।
0: नहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
3: तो इस वक्त मेरी जो है 93 कंप्लीट करूंगा 30 सितंबर को मैं।
0: ओके मतलब हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप 100 क्रॉस करिए और पूरी हेल्थ के साथ करिए।
3: आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। सो भाई ये थे हमारे साथ में विद्या रतन जी, और जम्मू से जैसा कि उन्होंने बताया, और देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ में जुड़े होते हैं जीवन में। मतलब 18 किताबें लिखा, इतने साल लंबा अध्यापन कार्य किया, इतनी ज़्यादा एज, लेकिन उत्साह देखिए, याददाश्त देखिए। सो मुझे लगता है जब करने पे आप आते हैं तो आप सब कुछ कर ले जाते हैं, आप बस शायद थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों को सोचने पर जो रह जाते हैं ना बहुत लंबे वक्त, बस वहीं अटके रह जाते हैं। बहरहाल चलेंगे अगले लिसनर की तरफ और देखते हैं भाई अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो,
4: नमस्कार, गुड इवनिंग सुप्रभात।
0: नमस्कार,
4: गुड मॉर्निंग सुप्रभात।
0: अच्छा गुड मॉर्निंग सुप्रभात आपको भी।
4: सर कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, हमारे ख्याल से ये देवी प्रसाद जी की आवाज है।
4: जी सर,
0: क्या बात है, देखिए आपको आपकी आवाज से पहचान लिया जाता है, अब आपकी आवाज ज्यादा पहचानी जाती है
4: जी।
0: वो कौन सा,
4: कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। वो कौन सा डायलॉग है कि जब दो दो कोस दूर बच्चे रोते हैं तो कहते हैं कि चुप हो जाओ देवी प्रसाद जी अभी कॉल पे हैं? मुझे डायलॉग है ना कि दो दो कुछ जब दो बच्चे रोते हैं तो कहते हैं कि चुप हो जाओ देवी प्रसाद जी कॉल पर हैं।
4: जी
0: तो ऑलराइट देवी प्रसाद जी, इस वक्त तो सितंबर आ गया है, यानी नौवां महीना चल रहा है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2026 ये जो गुजर रहा है, इसने कुछ आपको सिखाया, कुछ लर्निंग दी है?
4: थोड़ा बहुत तो सिखाया है।
0: अच्छा, तो क्या सीखा आपने?
4: जी
0: क्या सीखा आपने?
4: जी सर,
0: क्या सीखा आपने? 2026 ने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आप आगे भी ले जाना चाहेंगे इसे?
4: अब जो सीखा वो गया, अब फिर ये 26 जाएगा, 27 का तैयारी बनेगा।
0: अच्छा, 27 की तैयारी सीधे करेंगे आप, 26 वाला जो जा रहा है उसको जाने दो, छड़ो
4: उसको जाने दो,
0: की फर्क पहन
4: रहा है, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे आने वाला नई जिंदगी की शुरुआत करना है।
0: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया
4: जी।
0: तो आपने कल विश किया था अपने गुरुजन को, उनसे बोला था, शिक्षक दिवस की बधाइयां दी थी आपने?
4: हमारे जितने गुरु हैं यहाँ पर रहते ही नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं।
0: अच्छा, सब अलग अलग रहते हैं
4: जी, नंबर भी नहीं है।
0: कोई गुरु याद है जिनसे सबसे ज्यादा आपका जुड़ाव रहा हो?
4: जी
0: हाँ, कौन है वो?
4: सबसे ज्यादा जुड़ाव वाले रहे सर सुमित मिश्रा जी।
0: अच्छा, क्यों आपसे जुड़ाव इतना ज्यादा हुआ उनका?
4: वो अच्छे से पढ़ाते थे और यहाँ गिलौली में आते थे। जी
0: अच्छे से पढ़ाने का मतलब क्या था? मतलब ऐसा क्या था कि आप उनकी पढ़ाई को अच्छा कहते थे, कि जिस तरह से वो पढ़ाते थे?
4: समझाते थे अच्छे से। जी
0: अच्छा, तो आपको इसीलिए ये गुरुजी बहुत पसंद आए, क्योंकि इनके समझाने का तरीका आपको बड़ा अच्छा लगता था?
4: जी सर।
0: वाह क्या बात है भाई, आपके गुरुजन जितने भी हैं वो सही सलामत रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं।
4: हम भी कामना करते हैं सर, आपके साथ साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया देवी प्रसाद जी कॉल करने के लिए और बताने के लिए कि भाई आखिर कौन से गुरु से आप
4: कर रहा में मेरा कॉल लग गया है।
0: अरे वाह, चलिए मुबारक हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रसाद जी। बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये थे हमारे साथ में देवी प्रसाद जी, और देखिए कितनी अच्छी बात हमारी आपकी हुई है। सो लगातार बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है, और हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि 2026 जो है ये आखिर ऐसी कौन सी सीख देकर जा रहा है, कौन सी ऐसी शिक्षा देकर जा रहा है जो हम अपने अंदर संभाल लिए हैं। हाँ जी हेलो।
5: प्रकृति और पर्यावरण से ज्यादा शिक्षा हमारे लिए कुछ नहीं है, प्रकृति और पर्यावरण को हमें संभाल के रखना है, यही 2026 की पहली शिक्षा है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में प्रकृति का विकराल रूप हम सभी लोगों के सामने आने वाला है और आ भी रहा है।
0: बहुत सही बात कही आपने। आप प्लीज बता दें कि आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: जी सर, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह, उत्तर प्रदेश में कहाँ से?
5: आगरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी आपको किसने जुड़ा है, मतलब आप को FM के बारे में कैसे पता चला?
5: जी मेरे को बताया था विजय कुमार पांडे जी द्वारा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी
5: बात। अभी भी उन्होंने बताया कि फोन लगा लीजिए।
0: जी जी,
5: कार्यक्रम चल रहा है।
0: अरे वाह,
5: गुड मॉर्निंग गोंडा।
0: गुड मॉर्निंग गोंडा। आगरा में गुड मॉर्निंग हुई या नहीं हुई?
5: जी आगरा में सबकी गुड मॉर्निंग हो गई सर, अब तो 10:30 बजने वाले हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, तो आज तो संडे।
5: प्रकृति की बात चली है तो सर मुकेश की आवाज में एक गाना है, हरी हरी वसुंधरा।
0: हरी हरी वसुंधरा आप सुनाना चाहेंगे?
5: जी सर, मेरे को ये गाना याद नहीं है, पर मैंने इसके बोल सुन रखे हैं।
0: अच्छा, तो जितने आपको याद है अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो आप सुना सकते हैं।
5: अगले हफ्ते सर कोई दूसरा गाना सुना हाँ? रखेंगे तब सुनाएंगे आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी गाना आपको गाना होगा अगले हफ्ते आप खुद से आप सुना दीजिएगा।
5: जी सर, धन्यवाद सर।
0: लेकिन आप जुड़िएगा जरूर। जी धन्यवाद।
5: बिल्कुल।
0: सो भाई, ये थे हमारे साथ में राजू जी फ्रॉम आगरा, और देखिए कितने अच्छे से बात हुई और बहुत सही बात कही कि भाई जिस तरह हम नेपाल के हालात को देख रहे हैं मद्देनजर रखते हुए, हमको इन चीज़ों को लेकर सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भारी और भयंकर तबाही जो है वो हम इंसानों के लिए रखी हुई है, हमारे ही किए धराए पे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो।
6: हेलो सर, प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: जी प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा गुड मॉर्निंग आपको भी। आप कहाँ से बात कर रही हैं?
6: सर रिंकी पिंकी बात कर रहे हैं, रिंकी तो शिवगर सीवानों के तहत राय बरेली से।
0: राय बरेली से, हम वही सोच ही रहे थे, राय बरेली वाले अभी आए नहीं है।
6: जी सर आप याद ही नहीं कर रहे थे तो हम क्या करें सर।
0: नहीं नहीं, याद किया था, याद किया था, इसलिए हमने पूछा ना, राय बरेली वाले आए नहीं
6: तो हम आगे।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात,
6: याद किया और हम आगे।
0: दिल से तो नहीं याद किया था, जहन में था कहीं, मेमोरी में।
6: सर बादाम करो आप भूलने लगे हो।
0: बादाम खाया था, छिलके ही नहीं उतर पाते हो, सुनते छिलका उतार के खाने ज्यादा फायदा होता है।
6: जी सर आप तो बिल्कुल हमारे जैसे ही है, क्योंकि हमें भी सर भूलने की बीमारी हो जाती है कभी कभी, कुछ चीजें सर याद ही नहीं रहती, कितना भी कोशिश करो याद ही नहीं आता।
0: तो आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी आप किसी को जब अपना नाम बताती होंगी, मेरा नाम है रिंकी, और अगला नाम भूल जाती होंगी, क्या था रिंकी के साथ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
6: नाम अगर रेडियो पे अनाउंस करती हूँ तो लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते, जब दो नाम बताते तो डायरेक्ट ही तुरंत पहचान जाते, अच्छा रेडियो वाली रिंकी पिंकी, तो बोलते हाँ जी।
0: वाह, रेडियो वाली रिंकी पिंकी। जैसे कभी कोई भूलने का कोई एक आप इंसिडेंट शेयर करेंगी, कभी ऐसा हुआ हो तो बहुत बड़ी चीज आप भूल गई हो, लोगों ने हंस दिया हो, कह रहे ये भी कोई भूलने वाली चीज है?
6: नहीं सर, सर मतलब अभी हम हैं तो सर काफी बड़े, लेकिन सर हमारे अंदर ना अभी बच्चों वाली हरकतें ज्यादा हैं।
0: अच्छा है, आप काफी बड़ी, लगभग 150-250 साल मतलब हो गया होगा करीब?
6: 22 साल सर।
0: नहीं 150-200 साल हम बोले, आपने कहा जी।
6: नहीं सर, बोल रहे सर 22 साल।
0: तो 22 साल मतलब कुछ भी नहीं होता है
6: जी।
0: 22 साल में तो भी आधार कार्ड भी नहीं बनता है, क्या हाल है, क्या क्या क्या ख्याल है?
6: नहीं सर, बन जाता है।
0: अच्छा बन जाता है, इधर नहीं बनता गोंडा में।
6: नहीं सर अब तो 5 साल के बच्चों का भी बन जाता है।
0: 500 साल के बच्चों का? अच्छा, गुड गुड, बहुत बढ़िया।
6: बताइए कैसे हैं आप?
0: मस्त है, मस्त है जी। रिंकी पिंकी आप ये बताइए, 2026 चल रहा है, याद है ना कि ये भी भूल गई?
6: क्या सर?
0: 2026 चल रहा है, ये याद है कि ये भी भूल गई आप?
6: जी सर ये तो याद ही रहेगा, ये क्यों नहीं रहेगा सर।
0: अच्छा, तो 2026 जो गुजर रहा है इसने आपको क्या सिखाया इस साल? क्योंकि कल था शिक्षक दिवस, हम लोगों ने अपने गुरुजनों को विश किया था, जिन लोगों ने पढ़ाया है सिखाया है, लेकिन ये गुजरता साल भी कुछ ना कुछ तो सिखा ही रहा होगा ना, तो क्या सिखाया है?
6: बिल्कुल, क्योंकि सर हर साल कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, और सर सबसे अच्छी बात ये है कि सर हमारे देश में तरह तरह के त्योहार भी मनाए जाते हैं, हम लोग मनाते हैं, तो सर हर त्योहार से भी एक ना एक प्रेरणा मिलती है, तो सर हमें मतलब हमारे जीवन में तो सर जैसा कल था वैसा आज भी है, और उम्मीद करते हैं कि सर ऐसा ही है।
0: अरे क्या बात है, कल भी आप बहुत चंगा सी थी, आज भी चंगा सी हैं और चंगा सी रही, चलिए दुआएं हमारी भी
6: हैं। सर जीवन में सर हमें यही चाहिए सर, अपनों का प्यार और दोस्तों की दोस्ती, और हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें सर, कभी भी किसी के दिल में हमारे प्रति सर नफरत ना हो और ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन सर हमें भी दुख हो और उसको भी दुख हो।
0: चलिए एक चीज हम बता दें, वैसे कोशिश करना तो अच्छी बात है कि किसी के दिल में आपके लिए बुराई ना आए, लेकिन अगर कोई आती भी है तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया अपने हिसाब से ही चलने वाली है और आपको अपना देखना है, है ना? एंड थैंक यू सो मच रिंकी पिंकी कॉल करने के लिए, और बहुत सारे विशेष आपको, ताकि आप ऐसे ही खुश रहें जैसे 2026 में।
6: जी सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, सर आपको भी दिल से शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते बाय।
0: नमस्ते बाय, थैंक यू। दीवानों के शहर रायबरेली से भाई ये तो थी रिंकी पिंकी जिन्होंने हमसे बातचीत किया। अब लेंगे अगले कॉलर को और साथ ही साथ भाई काफ़ी सारी बातें हुई हैं और देखते हैं कि इस वक्त अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो,
7: अपना नाम बताइए पहले।
0: मेरा नाम
7: जी
0: आपने मतलब फिल्मी अंदाज में बताया कि बस ऐसे ही बता दें?
7: जी वैसे ही बता दीजिए। अच्छा।
0: मैं अदनान।
7: अदनान
0: जी जी जी जी मेरा
7: इतनी जल्दी
0: हाँ
7: कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है।
0: क्या बात है,
7: प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है।
0: आए है
7: अपनी यादों से कह दो हाँ। इस तरह न आया करे।
0: अच्छा
7: नींद नहीं आती और रात गुजर जाती है। काबिले सद एहतराम जनाब अदनान साहब को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार आदाब।
0: माय गॉड क्या अंदाज है आपका। पहले तो मैं लगा कि कोई सर्वे वे कर रहे हैं आपकी, पहले नाम अपना बताया। हमने वो सोचा कि SIR वाला फॉर्म तो हमने फिल कर दिया था, फिर आप क्यों नाम पूछ रहे हैं।
7: बहुत शिद्दत के बाद में मेरा कॉल लगा है, कोशिश कर रहा था 10 बजे से।
0: अरे सॉरी भाई बहुत लेट हो गया।
7: तो मैं बताना चाहूँगा, मैं विजय पांडे थाना पचपड़वा जनपद बलरामपुर से बात कर रहा हूँ। आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे कॉल को तस्लीम किया।
0: अरे तस्लीम तो हमने आपको ही दिल से कर लिया है, फिर ये कॉल क्या चीज है।
7: और मैं कुछ कहना चाहता हूँ यादों के बारे में।
0: जी प्लीज कहिए।
7: कहा गया है कि यादें एक सगुफ्ता फूल की तरह है, यादों के चराग रोशन होते हैं तो दिल में किसी की याद के दीप जल उठते हैं। यादें मायूसियों में उम्मीद का जलता हुआ चराग है, यादें खुददारी का खोल

0: एंड मुझे लगता जी
1: मैं अंतिम में दो लाइन कहना चाहूंगा।
0: बिल्कुल।
1: मुझे जब भी आपकी याद आती है मेरे ओठों पर यही फरियाद आती है, खुदा खुश रखे आपको क्योंकि हमारी खुशी आपके बाद आती है।
0: अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। कई बार अदा करना कम हो जाता है, बिल्कुल आपके केस में मेरे साथ वही हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे हैं आप हैं और बहुत अच्छी बातें आपने अपने इस अंदाज में बताई है। बहुत सारी खुशियां आपको, बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से आपको, और आप यूं ही खुश रहिए और यूं ही पूरे इंडिया में आप ऐसे ही फ़ोन करके बताते रहिए कि भैया पचपड़वा वाले हमारे विजय पांडे जी आ गए हैं।
1: इसी के मिलते जुलते कोई गीत अपने पसंद के सुना दीजिए।
0: अच्छा चलिए, कोशिश करेंगे हम पूरी जी।
1: हमारे हमारी छोटी बहन अनु पांडे के लिए समर्पित रहेगा।
0: अच्छा बिल्कुल,
1: जो गीत आप सुनाएंगे।
0: ठीक है ठीक है,
1: धन्यवाद आपको,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और भाई ये थे हमारे साथ में विजय पांडे जी फ्रॉम ऑफ कोर्स पचपड़वा और ज़िला बलरामपुर। फिलहाल हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो
2: जी, मैं नरेश बात कर रहा हूँ और आज पहली मेरा कॉल है आपके ज्ञान स्थली गोंडा में।
0: अरे वाह नरेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: जी मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से,
0: इंदौर।
2: जी जी जी जी बिल्कुल,
0: देखिए मेरा अंदाजा।
2: आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है सर।
0: अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू। जी जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहा होगा। अभी अभी आ रही है?
2: हेलो
0: जी, मैं कह रहा हूँ अभी आ रही है।
2: हेलो
0: ऑलराइट, सो मुझे लग रहा है नेटवर्क का ही इशू है आपके साथ में, एंड प्लीज़ दोबारा आप कॉल मिला लीजिए नरेश जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं है नेटवर्क ही है जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अच्छा एट द एंड मैं यही जानना चाहूँगा कि सब लोग फटाफट से प्लीज़ जब कॉल उठा रहे हैं तो 2026 के बारे में अपनी लर्निंग बता दिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछ सकें कि गुजरता साल 2026 आपको आखिर क्या देकर जा रहा है। हाँ जी हेलो हेलो, मुझे लगता है ये नेटवर्क का थोड़ा सा इशू का जो लोचा है ये हो रेला है अपने शो में, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हो सकता अगली कॉल पर आवाज आ जाए। हाँ जी हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग अनु पांडे, राइट?
3: यस सर।
0: पहचान गए?
3: ऐसा किस हो सकता है कि पहचान नहीं पाओगे?
0: नहीं नहीं बिल्कुल पहचान गए, एंड अभी आपको डेडिकेट करने को भी बोला है विजय जी ने, तो एक सॉन्ग भी प्ले होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं 2026 ऐसा क्या देकर आपको जा रहा है।
3: सर अभी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज विद्या रतन शर्मा जी ने कॉल किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पिछले शो से उनकी कॉल करवाना चाह रही थी पर पिछले शो में उनकी कॉल लगी थी तो कट गई थी किसी वजह से, आज बात हो गई तो मुझको बहुत अच्छा लगा। अभी तो 26 बहुत है, अभी तो कई महीने, अभी क्या बताऊँ, लास्ट में बताऊंगी।
0: इसका मतलब, इसका मतलब कुछ सीखा उखा नहीं है, आप खाली इधर घुमा रहे हो बात है। मुझे पता है ना, मैं ये सब कर चुका हूँ।
3: अरे अरे सर, मैंने ना बहुत सारी चीजें 26 में सीखी हुई है और बहुत सारी चीजें मुझे 26 में मिली, मुझे 26 में बहुत इतनी खुशियाँ दी कि मैं बता नहीं सकती।
0: बहुत सारी चीजों में बस एक चीज टॉप पे जो आपको लगती हो?
3: टॉप पे अभी नरेश भाई की कॉल आई थी ना, मुझे इतना अच्छा भाई मिला है, इतना अच्छा भाई मिला है कि मैं बता नहीं सकती।
0: चलिए अब जब बता ही नहीं सकती तो उस बात ही को नहीं पूछेंगे, ये बताइए कि कुछ सुनाना चाहिए।
3: और बहुत सारे दोस्त मिले सर 26 में, हमको इतने दोस्त मिले कि मैं क्या बताऊं
0: ना, बताइए।
3: और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे 26 में बहुत ढेर सारी खुशियां मिली, लेकिन बहुत सारी बातें ना मैं 26 के लास्ट में बताऊंगी, अभी क्यों बताऊं।
0: कुल मिला के आपने बहुत बहुत मिला है तो बहुत ही, खाली हम आज मान के चल रहे हैं कि एक शब्द में कहा जाए तो आपको बहुत मिला है बस।
3: कल मुझको रोशनी भी याद कर रही थी, तो कल मेरी सेहत थी।

0: थी पर ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैं किसी भी कंडीशन में रहूँ, मैं तो रेडियो सुनती रहती हूँ, खासकर अपना एफएम।
1: करेक्ट।
0: पर रिचार्ज भी नहीं था मेरे फोन में, तो मैंने कॉल नहीं कर पाई।
1: Alright.
0: और मैंने सोचा था कि मैं आज भी कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हर संडे को लगभग कॉल करती हूँ।
1: uh-huh.
0: तो लोग सोचते होंगे अरे अनु तो हर संडे को आती है, ये कभी नागा नहीं करती है।
1: नहीं करती तो है।
0: हमने सोचा इस बार रिचार्ज नहीं रहेगा तो कॉल नहीं करूंगी, फिर मन okay. नहीं करेगा, मान जाएगा आराम से। लेकिन दोस्तों ने रिचार्ज करा के फिर कॉल किया, सरप्राइज दिया।
1: अच्छा।
0: तो कहा अब रिचार्ज हो ही गया है, तो फिर अब आपसे बात भी कर ले, अब काहे का ना करें, बात भी लॉस हो जाएगा।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच अनु, सो स्वीट।
0: अच्छा सर, मेरी सिस्टर भी बात करेगी आपसे।
1: ओके।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग रिवांशी।
2: यस सर।
1: चलो पहचान लेते हैं, थैंक गॉड। कैसी हैं आप?
2: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आप बताइए आप कैसे हैं? और आपसे गुस्सा भी हूँ मैं।
1: पहली चीज तो देखिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरी बात मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे बादाम अब काम कर रहे हैं, आपको मैं पहचान गया, और तीसरी बात अब ये सवाल कि क्यों गुस्सा है आप?
2: सर पता है, मैं पिछले सैटरडे को ना कॉलेज नहीं गई थी, घर पे थी कि सर खेल दिवस है ना, तो सर कॉलिंग शो करेंगे, तो आपने कॉलिंग शो नहीं किया, और कल मैं कॉलेज चली गई, आज टीचर्स डे है, तो सर कल संडे आज भी नहीं करेंगे, सैटरडे है कॉलिंग, तो आपने कर दिया।
1: असल में खेल दिवस में हम खुद खेल रहे थे ना। और टीचर्स डे में हमारे कई गुरु सुन रहे थे, तो उन्होंने हमने कहा कि भाई करना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे वाह बेटा तुमको यही पढ़ाया है। तो कल कॉलिन था, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन था, ऑफ कोर्स शिक्षक दिवस तो बहुत बड़ी चीज है, एंड इत्तेफाक की बात है कि आज
2: सुबह से लेकर रात 8 बजे तक केवल टीचर्स को ही परेशान किया है बस।
1: जैसे
2: पहले तो कॉलेज गई, वहाँ सुबह से लेकर 3 बजे तक वहाँ पे टीचरों को खूब परेशान किया, उसके बाद जब घर आई तो पुराने वाले टीचरों को कॉल कर करके।
1: नए वाले पुराने वाले मतलब किसी भी फेज के जो टीचर गुजरे हैं उसको आपने छोड़ा नहीं है, सबको कल परेशान कर दिया है।
2: हाँ नहीं छोड़ा, वो टीचर सोच भी रहे थे जो पुराने वाले थे, तो शाम तक मेरी जब कॉल नहीं गई तो वो सोच भी रहे थे कि मेरी कॉल क्यों नहीं आई,
1: मतलब वो परेशान होना चाह रहे थे।
2: हाँ क्योंकि मुझे बहुत कह रहे थे, मैं बहुत याद कर रहा था।
1: चलिए ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सच में टीचर्स याद बहुत करते हैं।
2: मैं हम सारे सिस्टरों ने अपने गुरुओं को बहुत परेशान किया।
1: हाँ तो वो मतलब आप लोग का वो साझा प्लान होगा। वो आर्मी बना ली ना बहनों की आपने, इसलिए ऐसा है। एंड थैंक यू सो मच रेवांशी, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे कॉल करके और बात जरूर की। नमस्ते। सो भाई ये तो थी अनु पांडे और उनकी बहन रेवांशी। अब फिलहाल चलते हैं अगली कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
3: हेलो
1: जी, मेरी आवाज आ रही
3: है? नमस्कार जी, नमस्कार सर।
1: नमस्कार नरेश जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको?
3: हाँ बिल्कुल, आप बराबर आ रही है आपकी आवाज, पहले क्या नेटवर्क में इशू था।
1: कोई बात नहीं, लेकिन प्यार में कोई इशू नहीं हमारे आपके बीच में, देखिए कितने आराम से कॉल लग गई।
3: बिल्कुल, और सर आपका जो अंदाज है ना वो बड़ा लाजवाब और निराला अंदाज रहता है, श्रोता बिल्कुल खिसे चले आते हैं आपकी तरफ।
1: अच्छा ऐसा ऐसा क्या अलग लगता है आपको हमारे अंदाज में?
3: आपका जो बातचीत करने का स्वभाव है, और जो मतलब एक अट्रैक्टिव अंदाज है आपका, कि श्रोता मतलब अपने आप ही आ जाते हैं ज्ञान स्थली गोंडा में, और बड़ा अच्छा लगता है आपका ये ज्ञान स्थली गोंडा, और हमें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी अनु पांडे जी ने, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया है।
1: अरे वाह, बिल्कुल बेशक मेरी तरफ से भी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस जगह से बात कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं?
3: मैं हाँ इंदौर से बात कर रहा हूँ, ग्रीन सिटी के लिए।
1: अच्छा हाँ हाँ हाँ, इंदौर आपने बताया, राइट ओके।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सो इंदौर तो बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, मुझे लगता है एक और नाम बढ़ गया।
3: जी जी, और इंदौर तो वाकई में फेमस है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हर वर्ष स्वच्छता में नंबर वन रहता है, और उसके बाद फिर देखिए कई हस्तियां यहाँ से रही हैं, स्वर कोकिला लता जी की बात करें, या हम और पलक मुच्छाल की बात करें, किन किन की बात करें, यहाँ तो हर कोई फेमस है, और इंदौर का पोहा जलेबी पूरे भारत में प्रसिद्ध है।
1: वाह क्या बात है, आपने ऐसी बात छेड़ दी है कि अब मेरा शो छोड़ करके सीधे जलेबी खाने का मन होने लगा है।
3: और हमारे एक और मित्र है, उनको भी इस कार्यक्रम में मैं याद करूंगा
1: जी।
3: ये हमारे मित्र हैं इरफान साहा जी, और
1: जी जी।
3: इनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, एक बार ये इंदौर आए थे।
1: अच्छा,
3: और
1: अच्छा।
3: जी जी जी, ये गोंडा यूपी के ही हैं।
1: अच्छे से जानते हैं।
3: और हमारे भाई राहुल जी है झुंझुनू राजस्थान से।
1: अच्छा अच्छा,
3: वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो भी क्यू में है, बिल्कुल लगा रहे हैं कॉल।
1: हाँ,
3: उनका भी कॉल लगेगा।
1: ठीक है ठीक है, तो उनकी भी कॉल हम ले रहे हैं। थैंक यू सो मच नरेश जी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी। और एक मैं एक और इस कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम क्या है, एक मेरा एडवाइस, एक सुझाव है मेरा कि जैसे आप ना हर दिन जैसे आज ये प्रोग्राम आता है ना, उसी तरह से हर दिन फोन इन प्रोग्राम शुरू कीजिएगा एक घंटे का, या तो वो दिन में 12 बजे से हो दोपहर में, या फिर जैसे शाम के टाइम में हो।
1: दोपहर 3 से 4 कॉलर ट्यून गोंडा होता है, जिसमें कॉल करके रिक्वेस्टेड सॉन्ग भी सुनाए जाते हैं।
3: वो तो मुझे पता है और मैंने सुना भी है वो।
1: अच्छा,
3: और
1: अच्छा।
3: इसके अलावा मैं एक और इसी प्रोग्राम की बात कर रहा था
1: जी जी,
3: जो बड़ा हिट प्रोग्राम है ये, और आपके आने से तो और ज्यादा सुपर हिट हो जाता
1: है। दिल से शुक्रिया आपको नरेश जी, बहुत अच्छा लगा इंदौर से आपने कॉल किया और इतनी सारी दुआएं दी और इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर, ओके,
1: थैंक यू। सो भाई ये थे हमारे साथ में नरेश जी फ्रॉम इंदौर, राइट। अब मुझे लगता है अगले कॉलर पे देखते हैं भाई कौन है अगले कॉलर और किन से हमारी बात हो रही है। हाँ जी, हेलो
4: हेलो, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि आप राहुल मीना जी आप ही हैं।
4: यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आपको कैसे पता चला सर?
1: बस हमारे पास थर्ड आई है हमारी।
4: अच्छा,
1: तीसरी आंख। कैसे आप, अपना हाल चाल बता दें।
4: तो सर आपने तो सरप्राइज पैकेज रख दिया मेरे लिए आज।
1: मुझे
4: मैंने सोचा कि मैं किसी खास दोस्त को सरप्राइज दूंगा, मेरे को खुद को सरप्राइज मिल गया ऑलरेडी।
1: ये रेडियो ज्ञानस्थली जो है सरप्राइजेस की जगह है। मतलब कैपिटल कह सकते हैं आप इसको। एंड दूसरी बात ये कि जहां से आप बात कर रहे हैं झुंझुनू, वहां का मुझे एक हफ्ता मैंने गुजारा हुआ पहले ही।
4: सर कौन सी जगह आए थे आप झुंझुनू में, पर्टिकुलरली झुंझुनू आए थे या किसी अदर?
1: बगड़ बगड़ बगड़ आपके यहाँ?
4: अच्छा, बगड़ हमारे पास नहीं है सर ये तो।
1: जी जी, वहाँ पे पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप है, PSL।
4: हाँ हाँ है सर, पिरामल, पिरामल के नाम से तो पूरा बगड़ में पूरा ही है सर। पिरामल हॉस्पिटल है, पिरामल गर्ल्स कॉलेज है, पिरामल बॉयज है, पिरामल हॉस्टल है, सब कुछ पिरामल। जैसे हमारा बिरला पिलानी है वो बिरला का है जैसे, और बगड़ में सर आप बता रहे हो पिरामल के नाम
1: जी। तो 1 वीक की बाकायदा ट्रेनिंग थी, और आज भी मैं दोस्तों से या किसी से बात करता हूं तो मैं बताता हूं कि आपके राजस्थान में मोर जो है इतने आज़ादी के साथ टहलते हैं कि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। कभी वो गली में दिखते हैं, कभी वो छत पे जाते हैं, मतलब इतना स्वतंत्रता मैंने देखी वहां पे जानवरों के प्रति, मुझे बड़ा प्रभावित किया उसने, बहुत खूबसूरत।
4: सर वैसे आप कब आए थे लगभग?
1: 2019 में आए थे हम।
4: अच्छा, तब तो सर वो गोल्डन टाइम था वैसे भी।
1: जी जी जी जी, तो क्यों?
4: जी सर,
1: क्योंकि मुझे
4: और मैं सर आज पहली बार जुड़ा हूँ आपके यहाँ।
1: हाँ जी, फर्स्ट टाइम, राइट। सो राहुल जी, क्या करते हैं आप ऐसे?
4: सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वैसे तैयारी करता हूँ, मेरा बीएड एमए सब एजुकेशन मैंने कर रखा है।
1: अरे वाह, क्या बात है।
4: सेल्फ स्टडी करता हूँ और मैं जनरल साइंस कवर करता हूँ, स्पोर्ट्स भी फॉलो करता हूँ और मैं खेलता भी हूँ बचपन से।
1: अरे
4: स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट।
1: स्पोर्ट्स में क्या
4: मतलब, ये बताओ आपको, फिटनेस हो, व्यायाम हो, इन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, वर्कआउट।
1: अरे वाह, क्या बात है। सो गेम, गेम कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा?
4: परिश्रम सर, हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। आदमी के पास पैसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहले। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो वो कोई भी व्यक्ति के पास कोई भी धन दौलत हो किसी भी काम की नहीं है। सबसे पहले स्वास्थ्य सही होना चाहिए।
1: बिल्कुल, बेशक सही बात है। सो कौन सा गेम खेलते हैं आप?
4: मैं क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता हूँ सर।
1: चलिए या तो हम बगड़ आके खेलेंगे या तो आप गुंडा आके खेलिएगा।
4: अच्छा बगड़ में सर एक बगड़ के जस्ट आपने देखा होगा वहाँ एक नदी भी निकलती है, आपने सुना हो?
1: जी जी जी जी, नदी का सुना था, गए नहीं थे। कुछ थोड़ा सा जो पहाड़ी एरिया वहाँ पे गए थे जहाँ से पूरा बगड़ नजर आता है, उस पत्थर पे बैठ के बाकायदा फोटो वोटो भी क्लिक कराई थी हमने, काफी अच्छा
4: लगा। आपको पिलानी भी आना चाहिए था, बिट्स पिलानी, बिरला के नाम से रिसर्च सेंटर है, और इसके अलावा बिरला का म्यूजियम है, पंचवटी है, ये आपने सुना नहीं क्या? आपके कानों में किसी ने खबर नहीं रखी क्या वहाँ?
1: हाँ उस टाइम तो कानों में खबर नहीं रखी क्योंकि हमें काम पीएसएल में ही था, पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप में, तो वन वीक की ट्रेनिंग मेरी वहीं थी उसी कैंपस में आपके यहाँ, इसलिए मेरा जाना हुआ था। बट डेफिनेटली इस बार आएंगे तो बाकी सारी चीजें बाद में, सबसे पहले हम वहाँ राहुल मीना जी को ढूंढेंगे, उसके बाद मेरे लिए कुछ होगा वहाँ पे।
4: जी सर, हम तो सर जाने पहचाने से अजनबी आपको मिल जाएंगे कहीं
1: भी। कहीं बैडमिंटन खेलते हुए जो भी देखेंगे हम कहेंगे आप ही हैं क्या?
4: नहीं सर, हम आप जब आओगे ना, जब रैकेट की दुनिया से बाहर निकल आएंगे।
1: अरे वाह। वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके राहुल, एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप पूरी तरह सक्सेसफुल हो, ऐसी हमारी दिल से दुआ है।
4: देखो सर, आज का डिजिटल नवीन युग है, इसमें व्यक्ति को परिश्रम करना जरूरी है, पहली बात ये है,
1: बेशक,
4: क्योंकि मेहनत के अलावा कुछ है हासिल होने वाला है नहीं।
1: सही,
4: आदमी को परिश्रम करना जरूरी है, प्लस एजुकेशन भी आज के दिन जरूरी है सबसे ज्यादा। आज का जो डिजिटल युग है, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। जॉब तो कहीं मिले या ना मिले, प्राइवेट मिले, गवर्नमेंट मिले, जो भी मिले, लेकिन सबसे पहले एजुकेटेड होना जरूरी है।
1: बिल्कुल बेशक, एंड ये जो आलख आपने जलाई है वो हम चाहेंगे कि दूसरों तक भी ये पहुंचे, और जो इस वक्त हमको इस शो के जरिए सुन रहे हैं उन सभी से यही अपील है कि जितना पढ़ सकते हैं आप, जितना जान सकते हैं उतना जानिए।
4: जी सर, और सर आपके प्रोग्राम में कुछ खास क्या होता है, कुछ बताइए मुझे, तो आज पहली बार ही ट्यून किया मैंने तो।
1: हमारे प्रोग्राम में राहुल जी बहुत खास होते हैं, आपको नहीं पता?
4: जी सर नहीं, वैसे बातचीत के अलावा और
1: अच्छा,
4: मैं क्या मतलब ट्रायल पे क्या ऐसा कुछ।
1: आप हमको रोज सुन सकते हैं 8 से 11 गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, और संडे को हम 10 से 11 ये कॉल इन करते हैं एक घंटे के लिए, सिर्फ संडे को, बाकी डेज में हम सिर्फ शोज करते हैं अपने, और जिसमें जॉब वैकेंसीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के होते हैं, इसके अलावा क्या बेहतर काम किया जा रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, तो सारी चीजों का एक मिक्सअप, एक मैशअप करके ले आते
4: हैं। तो सर आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ, तो आप मेरे लिए गाना गा दो या फिर मैं आपके लिए गा दूँ?
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, तो आप ही सुना दीजिए, मैं तो यही चाहूंगा। प्लीज।
4: अच्छा, मैं सुनाऊँ?
1: हाँ जी, हाँ
4: सर, पहले आप थोड़ा सा सुना दीजिए।
1: ओके ठीक है, ट्राई करता हूँ।

0: तुम रहती हो। थैंक यू।
1: आपने बहुत अच्छा रेट्रो गोल्डन सॉन्ग सुना, एकदम सुना आपने, हमें सुनाया।
0: अब मुझे लगता है
1: ये गाना बहुत लोगों के दिल के करीब है। एक मैं भी अनुज जैन सर का एक गाना सुना देता हूँ आपके लिए पर्टिकुलरली।
0: प्लीज प्लीज प्लीज।
1: हैरान हूँ कि कुछ भी ना मांगू कभी मैं, जो तुम मेरे हो। ऐसा हो क्यों कि लगता है हासिल सभी मैं, जो तुम मेरे हो। जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, और तुम हो ही नहीं तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में। और नजरों में मेरे एक जहाँ है, और तू और मैं। और आओगे ऐसे आओगे, पूछे तू कि तुझमें मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने ही सारे नजारे हैं। जाने ना तू खुद को यूं ना जाने क्यों, नजरों से मेरी यहाँ। जी सर।
0: वाओ, क्या बात है। अनुज जैन का ये सॉन्ग बहुत प्यारा लगता है, और अभी जस्ट आपने सुनाया, आपकी वॉइस में मजा आ गया। एंड लिटरली मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक भी आप हमसे जुड़े, और एक गाने के साथ बेहतरीन उसके साथ मुझे जरूर सुनाइएगा। प्लीज पूरा सुनना चाहेंगे।
1: जी जी, थैंक यू सर। फिर कभी मिलते हैं, हम राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते।
0: बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: कुछ बोल रहे हो सर, अगर पार्टनर कुछ बोलता तो आपको भी बोलना चाहिए।
0: हाँ, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, राहुल मीना जी से बगड़ के अलावा गुंडा में मिलेंगे।
1: जी सर, थैंक यू सर, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: धन्यवाद। आपको भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में राहुल मीना जी ने जिक्र किया, जुड़े आप, एंड थैंक यू सो मच कि भैया इतनी सारी चीजें, इतना सारा काम, इतनी सारी स्टडी के बीच में एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनने को मिला जो कि काफी रिफ्रेशिंग रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, लगातार हम आपसे बातचीत करते जा रहे हैं, और इस शो को आपने इंडिया के अलग अलग कोनों से ट्यून कर लिया है 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, या फिर आपने रेडियो गार्डन से, और आप लोकल में सुनते हैं फ्रिक्वेंसी से। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारा जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल सा है कि 2026 ये जो गुजर रहा है, आखिर ये क्या देकर जा रहा है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग आशु जी, कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छे सर जी।
0: बहुत बढ़िया। सो इस सवाल का जवाब हम आपसे भी जानना चाहेंगे, 2026 आपको क्या देकर जा रहा है?
2: बहुत कुछ सिखा के जा रहा है सर।
0: जैसे?
2: बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, बहुत कुछ सबको लेके जा रहा है। इतनी इतनी देख रहे हैं सर जी, नेपाल में देखे सर जी कितनी वो हो गई।
0: बात तो सही
2: है। तबाही आ गई सर, कितने लोग फंस गए, कितने लोग, पूरा घर बर्बाद हो गया सर जी का।
0: राइट, बिल्कुल सही बात है। आपको आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्या समझने को मिला इस पूरे घटना से?
2: सर क्या है, हमारे भी जो सब रुके काम थे सब हो गए, बच्चे हमारे भी हैं जो सही राह पे हैं, सही अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, सीख रहे हैं, उन बच्चों से ही हम भी सीख रहे हैं सर जी।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ये लर्निंग आपकी यूं ही ताउम्र जारी रहेगी। और आपने जो नेपाल त्रासदी का एग्जांपल दिया, मुझे लगता है कि हाँ, प्रकृति के प्रति और प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई, जो प्रोजेक्ट्स के नाम पे, जो घर बनाने के नाम पे, जो सड़क के नाम पे हम लोग करते हैं, उससे बहुत बड़ा लॉस होता है, और वो इस तरह की तबाही के रूप में सामने आता है, और हम 100, 200, 300 साल पीछे चले जाते हैं।
2: हम लोग अब यहाँ है, अगर कुछ भी मदद कर सकें का तो वो भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि कुछ भी मदद किसी के थ्रू हो सके।
0: बिल्कुल,
2: वो करेंगे।
0: बहुत प्यारी बात कही, एंड थैंक यू सो मच इस बात को कहने के लिए, और मुझे लगता है कि ये हम सभी लोगों के लिए एक पैगाम है।
2: बिल्कुल,
0: एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए भी आशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। बाय, टेक केयर। ये थी हमारी आशु जी लखनऊ से, और चलिए हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं भाई अगली कॉल किसकी आ रही है, कौन है अगली कॉल पर, और बातचीत करते हैं। हाँ जी हेलो,
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, आपका नाम रोशनी जी है
3: जी? सर धन्यवाद पहचानने के लिए।
0: अजी आपको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही, हम कैसे नहीं पहचानेंगे
3: बिल्कुल सर ढूंढ रही
0: इधर
3: और हम आप ढूंढते ढूंढते आ गए।
0: अरे नहीं नहीं ऐसे में तो हम पकड़े जाएंगे
3: इसीलिए तो आ गए वहाँ
0: ये देखिए बचाने का तरीका अपने को और राइट अपना
3: ट्राई कर रहे थे सर, बड़ी मुश्किल से लगाए कॉल।
0: मुझे लगता है कई लोग बड़ी मुश्किल से बेचारे आ पाते हैं और कई लोगों का एक ही दूसरे कॉल में आ जाता है। खैर वो बात के ऊपर है, जैसी बात खत्म होती है दूसरी कॉल में जाती है।
3: अरे
0: देखिए ऐसे ही होता है, लास्ट मोमेंट पे जब हम हार मान रहे होते हैं तो उसी वक्त जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना
3: जी सर? हाँ जी।
0: ऑलराइट, 2026 गुजरता हुआ साल आपके लिए क्या देकर जा रहा है?
3: बहुत कुछ देकर जा रहा हूँ, मैं खुद ही बहुत लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: क्या बात है, जैसे फॉर एग्जांपल?
3: जैसे हमने मतलब लोगों को खुश रहना सिखाया है कि जीवन में जो भी है सब अभी है, आगे के लिए मत सोचो, प्रेजेंट टाइम देखिए, और जो पीछे गुजर गया छूट गया वो छूट गया, उसके पीछे जाके भी क्या करना वो भी खत्म, मतलब जो अभी है वो वही है
0: प्रेजेंट टाइम, मतलब जैसे 10:55 इसी की बात आप कर रहे हैं?
3: जी जी जी, अभी की बात करिए, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा उसका कोई लेना देना नहीं है।
0: आगे होगा कि हम आप लोगों से विदा लेंगे और एक जाते आते बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाएंगे
3: जी सर वो तो सुनाएंगे ही बिल्कुल
0: बहुत प्यारी बात कही आपने, जो आपने फलसफा बताया दरअसल वो सुनने में बड़ा ही आम सा है लेकिन इसको जी लेने में इंसान जिंदगी महसूस करने लग जाता है जब वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने लग जाता है। ये बहुत प्यारी बात कही आपने।
3: हाँ जी सर, खुश रहिए मस्त रहिए और बस सुनते रहिए 89.6।
0: आए क्या बात है, क्या बात है। चलिए अगली बार जब आरजे हंट होगा तो आपको भी हम इनवाइट करेंगे इंटरव्यू के लिए
3: जी बिल्कुल सर आएंगे और हमारी तो दिल इच्छा है
0: वाह क्या बात है। और ये जो गुजरते हुए साल की जो आपने शिक्षा बताई, मतलब ये जो लर्निंग थी आपकी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जब इतनी सारी तबाही देखते हैं, इतना कुछ देखते हैं कि चलता फिरता इंसान जवान इंसान जा रहा है, तो सच में ये ख्याल आता है कि हमें गुरूर किस बात का है और हम इंतजार किस चीज के इंतजार में बैठे हैं। सही बात है
3: जी सर बिल्कुल सर, जैसे कि हम कई बार मतलब देखते हैं लोग मतलब इतने ईर्ष्या और इतना जलन और हर चीज मतलब ये देखते हैं कि सब कुछ हमारा ये करने वाले जीवन एक पल का तो कुछ पता नहीं और वो आगे की नींद बैठे हैं।
0: एग्जैक्टली सही बात है।
3: और अभी तो अब 2026 तो भी बहुत दिन पड़े हुए हैं तो अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है।
0: नहीं मैं आपसे क्लासेस लेता रहूंगा, जो आप सीखते रहो आप फिर मुझे बताते रहना, आप नोट्स आप देते रहना।
3: क्लासेस तो आपसे ही लेते हैं सुबह से लेके शाम तक नहीं हम सुन रहे हैं।
0: अच्छा वो वाली क्लास हमें लगा 2:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे हम रहते हैं लगभग 8:30 से 11 के आसपास तक।
3: नहीं नहीं सुनती तो सबको हूँ लेकिन सुबह का जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो ज्यादा ही अच्छा रहता है।
0: बढ़िया रहता है ना?
3: हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल
0: मस्त, मतलब मलाई मार के चाय में
3: जी जी, और हमको तो चाय ही पसंद है सर
0: चलिए अच्छी बात है, हम भी कॉफी लवर नहीं चाय लवर हम भी है
3: हाँ जी हाँ जी सर, आइए सर चलिए घूम जाइए, कब आएंगे आप? आपने तो कहा था आने वाले हैं।
0: मैंने गाड़ी जो है खड़ी है बाहर गड्डी
3: सर मुझे पंजाबी नहीं आती, समझ आते हैं लेकिन बोल नहीं पाते।
0: मैं सिखा दूंगा, मतलब आप क्यों इतना शर्म खाते हैं, मतलब मुझसे आप पूछिए मैं बता दूंगा।
3: नहीं नहीं सर हमें बोलना नहीं आता लेकिन आपकी बात समझते हैं पूरी पूरी।
0: अच्छा मेरी बात आपको समझ में आती तो हम पंजाबी में तो बात करते हैं, तो हिंदी में करते हैं ना?
3: अभी तो हम हिंदी में कर रहे हैं, जैसे आप अगर बोलेंगे ना पंजाबी में तो मैं समझ जाती हूँ लेकिन बोलने में थोड़ा मुझे अटपट होता है। अच्छा, बोल नहीं पाती मैं।
0: तो जैसे अगर मान ली हम कहते हैं की फर्क पैंदा है तो इसका मतलब क्या है?
3: फिर से बोले
0: की फर्क पैंदा है?
3: नहीं सर ये कभी हमने नहीं सुना जाती हूँ।
0: क्या फर्क पड़ता है की फर्क पैंदा?
3: अच्छा मेरी जो यहाँ पे मतलब फ्रेंड सर्कल है जो भी है पंजाबी लोग तो मुझसे बातचीत होती लेकिन ऐसा शब्द हमने यूज ही नहीं किया उन्होंने हमसे तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी।
0: कोई बात नहीं, उनको भी कहिएगा हमसे ट्रेनिंग ले ले जो वहाँ के पंजाबी
3: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: अगले दिन
3: उनको भली भांति तरीके से आती है पंजाबी, बस मुझे ही नहीं आती है।
0: नहीं प्लीज सीखिए, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत मजा आता है इस लैंग्वेज में, बहुत इंटरेस्टिंग है।
3: इस लैंग्वेज में ना अपनापन ज्यादा है।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड ऐसे ही आप प्यार देते रहिए 89.6 FM को। बहुत अच्छा लगा रोशनी जी आज आपसे भी बात करके।
3: हाँ जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अनु जी की भी मुझे कॉल आई थी सुबह, कह रही थी लगाना जरूर कॉल, हमने कहा कोशिश कर ही लेते हैं एक बार, हो जाए बात।
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, एंड लिटरली अच्छा लगता है जब आप दिल से सुनते हैं और अपनी चीजों को जब बयां करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पे आप खुल करके अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सके।
3: जी सर जी बिल्कुल सर, और आपसे बात करके लगता है नहीं कि हम मतलब किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने फ्रेंड से ही सामने बैठे बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, हमको लगा कि आप ऐसे बोलने वाली, ऐसा लगता है हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, आपसे ऐसे बात करते हैं।
3: नहीं सर नहीं,
0: मैंने कहा लोग आपको कहेंगे बावड़ा बावड़ा हो गया क्या। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए रोशनी।
3: ओके सर, धन्यवाद
0: धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये थी हमारी रोशनी जी फ्रॉम चंडीगढ़, नहीं चंडीगढ़ की रहने वाली नहीं है, चंडीगढ़ जाके बसी हुई है, तभी तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी आ रही है नई नई लैंग्वेज अडॉप्ट करने में, हालांकि वो आ ही जाएगी, माहौल का असर तो होता ही होता है। फिलहाल अब आपसे ले रहे हैं हम विदा आज का ये मॉर्निंग वाला शो, इसके जस्ट बाद हाजिर होंगे हम्प्टी डम्प्टी में एक स्टोरी के साथ, और 1 बजे मिलेंगे आपको ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM वाले शो में। फिलहाल आज का संडे स्पेशल शो कैसा रहा हमको जरूर बताइएगा। फिलहाल ये लास्ट गाना, यस yes.

0: हरकतें ये सारी मुझ पे ना चल पाए, जत है तू पागल सरफिरा।
1: अच्छा,
2: मुक जाने नखरे तेरे, मेरा इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस जट दा।
0: ऐसा
2: लड़े न

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार।
3: ओहो, कौन सी कहानी है ये? खैर, ये जो कहानी होने वाली है इसको तो हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हम अपनी गीता दीदी का वेलकम कर लें, जो कि इसी प्रोग्राम की होस्ट हैं और ऑफ कोर्स जो प्रोग्राम लेकर के आती हैं हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। सो वेलकम है गीता दीदी आपका।
4: हेलो अदनान।
3: हाय।
4: और अपने सारे लिसनर्स को मैं सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, और क्या कहते हैं,
3: सुप्रभात।
4: सुप्रभात बोलती हूँ मैं।
3: तो आपने तो बोल दिया, अब हमारे लिसनर्स को भी मौका दीजिए भाई कि वो भी आपको वापस से विश कर सके मॉर्निंग की। और साथ ही साथ ये बताइए कि आज हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या लेकर आई हैं।
4: भाई बस जैसे हमेशा कहानियाँ लेके आती हूँ, वैसे ही एक प्यारी सी, एक नहीं आज दो कहानियाँ सुनाऊंगी मैं।
3: एक नहीं दो दो।
4: बिल्कुल, आज मन खुश करने वाली हूँ मैं।
3: क्या बात है, ये कहानी का टाइटल तो नहीं है ना?
4: बिल्कुल ऐसा ही समझिए।
3: बहुत अच्छी बात है। सो गीता दीदी आज एक नहीं दो दो कहानियां सुनाने वाली हैं। आप लोग जरा गौर से सुनिएगा और जब कहानी सुन लीजिएगा तो आपको क्या लगेगा, जैसा महसूस होगा वैसा आकर के आप चैट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा।
4: बिल्कुल, इसी से तो हमें हौसला मिलता है कि जब चैट बॉक्स पे आके कहते हैं कि दीदी आपकी कहानी बहुत प्यारी थी, तो मुझे बहुत बल मिलता है।
3: बिल्कुल, तो चलिए भाई ये बल तो आप उधर से देते रहिए और इधर से हम कहानी का सिम बल देखते हैं क्या है।
4: तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी हमारी हमारे दोस्तों के साथ, लेकिन समय हो गया है कहानी का, तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव में एक चतुरी नाम का गरीब आदमी रहता था। बहुत ही गरीब था बेचारा, वह बहुत चतुर और सूझबूझ वाला था। उसकी पत्नी के अलावा घर में कोई और नहीं था। दोनों बड़ी कठिनाई से अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर गरीबी दूर होना मुश्किल है, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसे करके वो अपनी गरीबी दूर कर सकता। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए बाहर शहर में जाकर कड़ी मेहनत मशक्कत की जाए। फिर उसने अपनी पत्नी से सलाह लिया और फिर सलाह लेकर वह शहर की ओर चल पड़ा। चतुरी बहुत मेहनती था, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। रुपए लेकर वह गांव लौटने लगा। रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता था, जहां चोर डाकुओं का भी बहुत डर था। चतुरी ने सोचा कि यदि रुपए जेब में रखे तो डाकू छीन लेंगे या फिर कोई चोरी भी कर सकता है। सो उसने एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांध दिए। अब वो चल पड़ा। जंगल में डाकुओं ने उसे घेर भी लिया। सरदार ने कहा रुपए निकालो। चतुरी बोला मेरे पास रुपए कहाँ हैं, लेकिन ये घोड़ी बड़ी कमाल की है, इसलिए पूंछ में डंडा मारो तो वह रोज रुपए देती है। उसने पूंछ पर डंडा मारा और पहले से बंधे रुपए नीचे गिर पड़े। डाकू हैरान रह गए। सरदार ने घोड़ी खरीदने के लिए 100 रुपए दिए। चतुर रुपए लेकर गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों समझ गए कि डाकू जल्दी बदला लेने के लिए वहां आएंगे। अगले दिन चतुरी दो एक जैसे खरगोश के बच्चे ले आया। उसने पत्नी से कहा कि जब डाकू आए तो इस खरगोश को बाहर छोड़ देना और कहना कि यह मुझे बुलाने गया है। पत्नी बोली, ठीक है। कुछ दिनों बाद वास्तव में डाकू वही खरगोड़ी लेकर और चतुरी के पास पहुंचे। उन्होंने पूंछ पे डंडे मारे लेकिन रुपए नहीं निकले। गुस्से में उसने घोड़ी को खूब मारा, खूब पीटा, पर वह कुछ नहीं कर सकी। अंत में घोड़ी मार खाते खाते खाते खाते बेचारी मर गई और डाकुओं को अपनी मूर्खता का पता चला। वे फिर चतुरी के घर पहुंचे। उसकी पत्नी ने खरगोश को बाहर छोड़कर कहा, जा चतुरी को बुला ला। थोड़ी देर बाद चतुरी खरगोश को लेकर आ गया। डाकुओं ने पूछा, ये इतनी जल्दी तुम्हें कैसे बुला लाया? चतुरी बोला, ये कितना भी दूर क्यों ना हो मुझे बुलाकर ले ही आता है। सरदार ने खरगोश के बदले 100 रुपए फिर दे दिए चतुरी को। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा कि जब भोजन तैयार हो जाए तो खरगोश को भेजकर उसे बुला लेना। पत्नी ने खरगोश भेजा लेकिन वह वापस नहीं आया। सरदार समझ गए कि उसके साथ फिर से चाल चली गई है, सो वो बहुत नाराज हुए। तीसरी बार डाकू चतुरी के घर फिर पहुंचे। इस बार चतुरी ने एक और चाल चली। उसने पत्नी के साथ मिलकर ऐसा नाटक किया कि वह गुस्से में पत्नी को मारकर बेहोश कर देता है और फिर एक विशेष सारंगी बजाकर उसको जीवित भी कर देता है। डाकू यह देखकर दंग रह गए, तो उन्होंने सारंगी के बदले में फिर चतुरी को 100 रुपए दे दिए। घर जाकर सरदार ने उसी तरह अपनी पत्नी पर वार कर दिया और सारंगी बजाने लगा, लेकिन पत्नी फिर कभी नहीं उठी। तब उसे समझ में आया कि चतुरी ने फिर उसे धोखा दे दिया है। क्रोध में डाकुओं ने चतुरी को बोरी में बंद करके नदी में फेंकने का निर्णय ले लिया। रास्ते में मंदिर के पास कुछ देर के लिए रुके। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाने लगा, मुझे राजकुमारी से विवाह नहीं करना, मुझे राजकुमारी से विवाह नहीं करना। एक ग्वाला वहां पहुंचा। चतुरी ने उसे विश्वास दिलाया कि राजा के लोग उसे जबरदस्ती राजकुमारी से विवाह कराने ले जा रहे हैं। ग्वाला स्वयं तैयार हो गया और बोरी में बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर के वहां से चला गया। डाकुओं ने ग्वाले को नदी में फेंक दिया और लौटते समय चतुरी को गाय भैंस के साथ देखकर हैरान रह गया। चतुरी ने कहा, नदी में उथले पानी के कारण मुझे केवल गाय भैंस मिली है, गहरे पानी में हीरे जवाहरात भी मिलते हैं। लालच में डाकू उसके साथ नदी पर पहुंचे। चतुरी ने उन्हें भारी पत्थर गले में बांधकर पानी में उतरने को कहा। लालच में डूबे डाकुओं ने उसकी बात मान ली। चतुरी ने उन्हें नदी में ढकेल दिया और हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। देखिए, इस तरह अपनी बुद्धि और सूझबूझ से चतुरी ने हर संकट को अवसर में बदल दिया। वह गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और पत्नी के साथ आराम से बाकी का जीवन बिताने लगा। तो कैसी लगी कहानी?
3: चतुराई की कहानी चतुराई वाली लगी।
4: तो ऐसे ही होना चाहिए इंसान को।
3: करेक्ट, सही बात है
4: ना? कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वही काम देता है।
3: बिल्कुल।
4: तो मैं पूछना चाहूंगी कि ये कहानी कैसी लगी, और जल्दी हम आपको दूसरी कहानी भी सुनाने वाले हैं। ये कहानी थोड़ी सी हटके है लेकिन बहुत ही
3: दिलचस्प है।
4: हाँ, मतलब इसमें जो मोरल है वो बहुत ही अच्छा है।
3: क्या बात है, चलिए भाई अब तो, दूसरी कहानी भी सुन लेते हैं।
4: तो अयोध्या नगरी में चूड़ामणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। जो स्वभाव के सरल और स्वभाव से सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके जीवन में धन का अभाव हमेशा रहा करता था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। कभी कभी तो उसे भूखा भी सोना पड़ता था। उसके मन में एक इच्छा थी कि किसी प्रकार उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए। धन प्राप्त करने की इच्छा से चूड़ामणि ने भगवान की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वह कई दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ और ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात धन के देवता कुबेर ने उसके स्वप्न में प्रकट होकर उससे कहा, चूड़ामणि, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सूर्योदय के समय हाथ में लाठी लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना। कुछ देर बाद एक भिक्षुक तुम्हारे पास भिक्षा मांगने के लिए आएगा। उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र होगा। जैसे ही तुम अपनी लाठी उस भिक्षा पात्र से स्पर्श करोगे, वह पात्र सोने का हो जाएगा। तुम उसे अपने पास रख लेना और इस प्रकार 10 दिनों तक ऐसा करने से तुम्हारे पास 10 स्वर्ण पात्र हो जाएंगे और तुम्हारी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सुबह चूड़ामणि की नींद खुली तो उसे अपना सपना याद आ गया। उसने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा और कुबेर के बताए अनुसार अपने घर के दरवाजे पर लाठी लेकर बेचारा खड़ा हो गया। कुछ समय बाद एक भिक्षुक वास्तव में वहां आया। उसने चूड़ामणि के सामने अपना भिक्षा पात्र कर दिया। चूड़ामणि ने अपनी लाठी उस पात्र को छुआ और देखते ही देखते वह चमकता हुआ सोने का पात्र बन गया। चूड़ामणि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान और कुबेर को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उसी समय उसका पड़ोसी भी वहां से गुजर रहा था। वह स्वभाव से बहुत ही ज्यादा लालची था। उसने अपनी आंखों से भिक्षा पात्र को सोने में बदलते देख लिया। उसके मन में विचार आया, यदि चूड़ामणि को रोज एक सोने का पात्र मिल सकता है तो मैं भी ये काम क्यों नहीं कर सकता। अब मेरी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगले दिन से वह भी हाथ में लाठी लेकर अपने घर के दरवाजे पर बैठने लगा, पर दिन भर किसी भिक्षुक की प्रतीक्षा करता, लेकिन कोई भिक्षुक नहीं आता। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कई दिन यूं ही बीतते चले गए। उसके मन में सोने की लालसा और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। बहुत दिनों बाद एक भिक्षुक उसके दरवाजे पर पहुंचा और बोला, महाराज, कुछ भिक्षा दीजिए। पड़ोसी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत अपना डंडा उठाया और भिक्षुक के भिक्षा पात्र से छुआ दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पात्र जैसा था वैसा ही रहा। उसने दोबारा डंडा लगाया, फिर भी पात्र सोने का नहीं बना। अब पड़ोसी को खूब क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया बहुत जोर से। उसने समझ लिया कि अब चूड़ामणि की लाठी के पात्र सोने का हो गया था तो उसकी लाठी से क्यों नहीं हुआ। लालच और क्रोध ने उसकी बुद्धि एकदम से हर ली थी। उसने आओ देखा न ताओ और भिक्षुक पर डंडे प्रहार करना शुरू कर दिया। मारते मारते उसको अधमरा कर दिया। भिक्षुक स्वयं को बचाने के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन पड़ोसी उसकी एक बात नहीं माना और बहुत देर तक उसको मारता रहा। कुछ देर में गंभीर चोटों के कारण वह भिक्षुक बेचारा मर गया, उसके प्राण निकल गए। अब घटना की सूचना राजा तक पहुंची। राज कर्मचारियों ने तुरंत पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और घटना के प्रमाणों से उसका अपराध सिद्ध हो चुका था। राजा ने उसके अपराध के अनुसार उसको कठोर दंड सुनाया। जिस सोने की लालसा में वह दिन रात लाठी लेकर बैठा था, उसी लालच ने उसे अपराधी बना दिया और अंततः मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अब समझ में आई बात कि दूसरों को देखकर बिना सत्य जाने उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। धन का लालच करना मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कहा भी क्या है कि संतोषम परम धनम, जबकि अंधा लालच विनाश का कारण बन ही जाता है।
3: बेशक सही कहा कि भाई संतोषम परम धनम, और बाकी आपने कहा कि लालच जो है वो आफत बन जाती है, जैसा कि इस घटना से हमने जाना। तो भाई आपको ये दोनों स्टोरीज कैसी लगी आप हमको कमेंट करके फिलहाल बता सकते हैं। और गीता दीदी फिलहाल चल रही हैं नन्हे मुन्नों की तरफ, तो चलिए भाई गीता दीदी को इजाजत देते हैं और हम सुनते हैं ये राइम्स।
5: Whoa, look at that. Let's count those tractors.

0: boiling rice.
1: No, Papa.
0: Sleep time now.
1: Okay, Papa.
0: Good night, Johnny.
1: Good night.
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: क्या क्या तैयार है?
1: लट्टू वट्टू कुछ न मिला, पीछे पड़ा टट्टू।
0: बाद हम आ गए हैं बच्चों के यानी कि हम्टी डम्टी के मंच पे, यानी कि हम्टी डम्टी विद गीता दीदी के मंच पे। और आज ढेर सारे बच्चे हमारे साथ।
2: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग?
3: हम लोग ठीक हैं दीदी।
0: ओहो, हमें तो लग रहा है कि जैसे जन्माष्टमी आज हो। इतने अच्छे अच्छे आप लोग ड्रेसअप होकर के आए हो, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए हो। तो वैसे तो अभी जन्माष्टमी चलेगी, अभी तो कम से कम 4 दिन और है ना?
2: जी जी।
0: हाँ, अभी जब छठी होगी भगवान की, तब जा करके फिर गणेश जी आ जाएंगे, है ना?
3: जी जी जी।
0: तो इसी को तो कहते हैं कि ये हमारा प्यारा देश जो है इंडिया, ये त्योहारों का देश है। यहाँ एक त्योहार खत्म नहीं होता, दूसरे त्योहार की धूम मच जाती है। अब थोड़े दिन के बाद ये हमारे प्यारे गणपति आने वाले हैं ना?
3: जी जी जी।
0: तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। लेकिन ये बताओ, पहले आज हम बात करेंगे, बाद में हम पोयम और आपकी कहानी सुनेंगे। ये बताइए कि जन्माष्टमी कैसी रही आप लोगों की बच्चों?
3: बहुत अच्छी रही दीदी।
0: क्या क्या किया आप लोगों ने जन्माष्टमी में?
3: हम
0: पहले हम बलराज से बात करते हैं, देशराज से बात करेंगे।
3: दीदी, हम लोगों ने बहुत मस्ती की। और हम लोगों के यहाँ जब कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है
0: जी,
3: तब मटकी फोड़ने की वो।
0: ओ, मटकी फोड़ने की।
3: हाँ।
0: तब तो बहुत मजा आया होगा।
3: हाँ हाँ।
0: अच्छा ये बताओ, मैंने तो ऐसे देखा है दूर से, टीवी पे देखा, मैंने लाइव तो देखा ही नहीं है ना, तो क्या होता है मटकी के अंदर?
3: मटकी के अंदर होते हैं माखन भर दिया जाता है, और कलर भर दिए जाते हैं, और टॉफी चॉकलेट भर दी जाती है।
0: अरे वाह।
3: और जब वो फूटता है तब बच्चे उसके लिए, मतलब कि मटकी रखने के लिए और टॉफी चॉकलेट के लिए इस तरह भागते हैं कि क्या बताएं।
0: बहुत मजा आता होगा ना?
3: जी दीदी, बहुत मजा आता है।
0: और आपने क्या किया?
2: हमारे घर पे तो दीदी वो होता है।
0: क्या होता है?
2: पूजा होती है।
0: हाँ।
2: आरती होती है और व्रत होता है।
0: अच्छा, हाँ व्रत तो होता है। व्रत में तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ये व्रत ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही, जैसे मम्मी लोग रहती है ना, बहुत कड़ा व्रत होता है कि पानी नहीं पीना, ये खाने पीने वाला व्रत होता है।
3: जी
0: तो
3: दी
0: कितना
3: दी
0: अच्छा लगता है ना, कितने पकवान बनते हैं।
3: जी दी
0: कभी
3: दी
0: आलू व्रत वाले बन रहे हैं, कभी फ्रूट चाट बन रही है, तो कभी पूड़ियाँ बन रही हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कितना खाने को मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये त्यौहार रोज के रोज आता रहे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ जन्माष्टमी वाले दिन। वैसे आप लोगों ने क्या क्या खाया?
3: हम लोगों ने दीदी, हम तो व्रत थे तो हमने पूड़ी खाई व्रत वाली, और
0: अच्छा अच्छा कुट्टू के आटे की
3: फलहार किया,
0: फलहार किया
3: खाए और बहुत मस्ती की।
0: आप लोग भी व्रत थे?
2: नहीं दीदी।
0: हाँ भाई, जो छोटे बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए ना, वैसे तो वो जो घर में बनता वो सब खाते हैं। व्रत तो उसका उनका वैसे भी हो जाता, जब मम्मी कुछ बनाती नहीं, कहती नहीं यही खा करके पेट भर लेना, और कुछ नहीं बनेगा, तो सब फलाहार ही बनेगा। तो क्या खाया था ऐसा? फिर मोमोज?
2: नहीं दीदी।
0: हाँ फिर क्या?
2: पूड़ी सब्जी।
0: पूड़ी सब्जी
2: जी दीदी।
0: और तुमने क्या खाया था? पूड़ी सब्जी। अरे ये अच्छा, चलो हमारा तो ध्यान ही हट गया था। पहले ये बताओ, इतने दिन कहाँ थी? घर पे। घर पे तो नहीं थी। अच्छा, कहाँ गई थी ये?
2: नानी के घर गई थी।
0: नानी के घर। हमें पता चल गया था कि कुछ बच्चे जो है नानी के घर मस्ती करने गए हुए हैं, तो नानी के घर। इसका क्या अपना नाम तो बताइए बेटे। अनन्या। अनन्या देखो कितनी छोटी सी है ना, और अनन्या बहुत प्यारी पोयम जो है भी सुनाने वाली है, सुनाएगी ना? कौन सी पोयम सुनाएगी आज? लेल वाली और पिंछल वाली। लेल वाली पहले सुने, है ना?
3: जी दीदी। जी
2: दीदी।
0: हाँ भाई, रेलगाड़ी तो वास्तव में इतनी लंबी होती है, चलते चलते जो उसका एंड ही नहीं पता चलता कितनी लंबी रेलगाड़ी है। ये तो बात सही की, और सही बात है कि वो हमको समय पर हमारे घर पहुंचा देती है।
3: जी दीदी।
0: और दूसरी वाली कौन सी? पेंशिल वाली।
2: पेंशिल
0: समझ में आ गया बच्चों, लंबी पेंसिल ले लेना, वो भी लाल रंग की
3: जी दीदी,
0: और जब उससे लिखोगे तो कुछ जरूर बन जाओगे, ऐसा अनन्या का कहना है ना
3: जी दीदी।
0: तो चलो चलते हैं हम छोटू की। अच्छा अक्कड़ पकड़ कर लें क्या आज?
2: जी दीदी।
0: चलो ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ करके देखते हैं कि किसके ऊपर बारी आती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा। तो चलो भाई अब आज देशराज क्या नाम है इनका?
2: विराट।
0: ओहो विराट। तो विराट आज क्या सुनाने वाले हो?
2: आज हम महान संत कबीरदास जी के दोहे सुनाएंगे।
0: क्या बात है, महान संत कबीरदास जी के दोहे। तो चलो हमारे बचपन की याद ताजा हो जाएगी और इनकी हम इनके दोहे, कबीर के दोहे भी सुन लेते हैं विराट के प्यारे से मुख से।
2: ऐसा बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो दिन खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। साय इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।
0: वाह भाई वाह।
2: गुरु गोविंद दुख

0: कब वाह भाई वाह, इतनी सारी पोयम तुमको याद है भाई। सारे बच्चे ताली तो बजा दो। तो चलो चलते हैं हम आराध्या की ओर, और आराध्या भी मेरे ख्याल से आज पोयम ही सुनाओगी ना?
1: जी दीदी।
0: हाँ आज वो पोयम ही सुनाने वाली है, तो चलो आप सुनते हैं हम आराध्या से एक प्यारी सी पोयम।
1: मैं हूँ पानी मुझको पीकर दुनिया जीती नन्हे गुड़िया, हो या नानी रात दिवस में बहते जाते, नहीं कहीं मैं भी रुक पाता इसलिए ताज़ा नवीन हूँ, कभी न डलती मेरी जवानी। मैं हूँ पानी झरनों से मैं कूद लगाता, नदियों के अंदर लहराता, जब आकाश में बादल छाए चमचम चमचम गीत सुनाते, मुझ में भी गए गुड्डू चुन्नू हंसती देखिया गुड़िया रानी, जब मैं अपना काम कर चुकूं धरती सब हो जाती दीनी।
0: वाह भाई।
1: मेरे बिन हर काम अटलता, चूल्हा चौका नहाना धोना, इसलिए मुझ में अंदर अंदर ही देती कहां दे भारत की जनता, सच है जो काम किसी के आत्म अपना जीवन सफल बनाता, उसको सबसे मिली दुआएं ऐसे ही जीवन बनाए सफल बनाए।
0: हाँ तो देखो पानी क्या कहता है, पानी तो खैर सबके लिए जरूरी है ना, बिना पानी के तो हम रह ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पानी के बिना तो किसी का जीवन चल ही नहीं सकता है, चाहे हम हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबको पानी की जरूरत होती है। और इस समय तो बरसात चल रही है, और बच्चों के तो सबसे प्यारा जो सीजन होता है बच्चों के लिए वो बरसात होता है। तो बरसात में तो मैंने भी इस बार खूब मस्ती करी, आप लोगों ने की?
2: जी दीदी।
0: है ना, कूदने में मजा आता है ना, जब पानी की छींटे उछल उछल के हम लोगों को भिगोती है तो कितना मजा आता है।
2: जी दीदी। जी अगर तो, सुबह के टाइम पे बारिश होने लगे तो स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है, तब तो बहुत मजा आता है।
0: ये बात सही की सबसे बढ़िया बात तो ये होती है कि एक मैसेज आ जाता है टेन से, क्यों? क्योंकि आज रेनी डे है इसलिए आप लोगों की छुट्टी, ऐसा होता है ना सानिध्या?
1: जी दीदी।
0: तब बड़ी खुशी मिलती है, सारा ड्रेस ड्रेस उठा के यूं फेंको, बैग उधर फेंको, और फिर मस्ती ही मस्ती पूरे दिन पानी में पकौड़े बनते हैं, कॉफी बनती है, और कितना मजा आता है ना बरसात के दिनों में। और इस समय तो बहुत प्यारा सीजन चल रहा है, मन करता है दिन भर मस्ती की जाए, खेल कूद होते रहे, है ना। तो पानी की बात हो रही है, पानी बचाना भी तो बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। और हम कितना दुरुपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा तो मुझे पानी की बर्बादी मुझे नहीं अच्छी लगती, आप लोग को अच्छी लगती है क्या?
2: नहीं नहीं दीदी।
0: मालूम है कभी कभी बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, टैप जो होता है ना खुला होता है और उसमें से पानी बह रहा होता है, किसी की नजर नहीं जाती है, ये पानी कितना वेस्ट जा रहा होता है।
2: जी दीदी।
0: ठीक है
2: जी
0: दीदी। और एक जरा सा प्रयास करने से उसकी टैप को घुमा सकते हैं हम लोग और उस पानी को बंद कर सकते हैं।
2: जी दीदी।
1: जी दीदी।
0: तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, अगर कहीं आपको रास्ते में कोई टैप खुला मिल जाता है तो क्या करना है, उसको
1: बंद कर देना है।
0: इससे पानी का दुरुपयोग बंद हो जाएगा और जल ही जीवन है।
2: जी दीदी।
0: है ना, तो बस पानी को सेव करना है, क्योंकि पानी हमारी पृथ्वी पे देखिए धीरे धीरे जो है, हमारे देश में तो अभी चलिए ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत से जो देश हैं दूसरे देशों में पानी की कितनी किल्लत होती है ना।
2: जी दीदी। वेस्टर्न
0: हाँ वेस्ट पूरे वहाँ पे पीने योग्य पानी नहीं मिल पाता है, समुद्र का पानी होता है उसको प्यूरिफाई कर करके जो है इस्तेमाल किया जाता है, पिया जाता है।
2: जी दीदी।
0: है ना, तो अभी तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे देश में पीने योग्य पानी है।
2: जी दीदी।
0: तो पानी को सेव करना जरूरी है, और थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी सीखनी चाहिए ना पानी की, बरसात का पानी इतना ज़्यादा बह बह के चला जाता है, उसकी भी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए ना, एक छत से जो पाइप लगा करके नीचे बड़ा सा हौज बना सकते हैं, उसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं, और उस पानी से बहुत सारा काम भी हो सकता है। बच्चों आप लोग को मालूम है सबसे शुद्ध पानी कौन होता है?
1: नहीं दीदी।
2: नहीं दीदी।
0: अरे वर्षा का ही जल।
2: जी दीदी।
0: देखो सानिध्या को मालूम है, लेकिन मालूम है कि काफी ऊंचाई तक तो ये पानी शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी धरती के करीब आता चला जाता है इस पानी में अशुद्धियां मिलती चली जाती हैं।
2: जी दीदी।
0: है ना, लेकिन सबसे शुद्ध वर्षा का ही जल होता है।
2: जी दीदी।
1: दीदी एक भजन गाएं।
0: भजन?
1: जी दीदी।
0: अरे वाह, तो सुना दो भजन का, तो सीजन चल रहा है।
1: लोग साथ में गाएंगे।
0: साथ में ही गाएंगे, आप गाइए, सब लोग साथ में गाएं।
1: हूं बाबा पर तुझ

0: तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है।
1: वाह भाई, ताली बजा दो।
0: सुना है
1: अच्छा अच्छा
0: भी और है। खड़े मिटा

0: बस दीदी इतना ही,
1: इतना ही है। चलिए ताली एक बार भाई श्याम बाबा के लिए ताली हो जानी चाहिए। चलिए भाई नंबर आ गया है अब हमारी सानिध्या का। और सानिध्या सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई, क्या क्या किया जन्माष्टमी में, बताइए, बोलिए बोलिए। कान्हा का बर्थडे मनाया
0: जी दीदी।
1: केक काटा
0: नहीं दीदी।
1: फिर क्या प्रसाद बना घर में
0: जी दीदी?
1: हाँ तो देखिए बहुत सारे लोगों के घर में प्रसाद बनता है और केक नहीं काटा जाता है
2: जी दीदी।
0: केक काट उनके सबके घर पे लड्डू गोपाल नहीं होते इसी के लिए।
1: हाँ आप, आपके घर है लड्डू गोपाल?
0: नहीं दीदी,
1: हमारे घर तो है दो दो लड्डू गोपाल हैं।
2: दीदी कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेन होता है प्रसाद, उसमें होता है धनिया प्रसाद जो होता
1: है। हाँ बहुत अच्छा लगता है खाने में। और दीदी, मेरे घर तो धनिया प्रसाद ही बना है भाई। और मैं लाना भूल गई आप लोगों के लिए तो कल तो शिक्षक दिवस था
2: जी दीदी,
1: इस पर भी बात कर लेते हैं
2: जी दीदी
1: कि शिक्षक दिवस आपने कैसे मनाया, क्या किया आपने अपने गुरु के लिए, अपनी टीचर्स के लिए?
2: दीदी हम लोग अपने टीचर्स को चॉकलेट और पेन देते हैं हर साल।
1: हाँ हाँ हाँ
2: जी दीदी।
1: देखो मैं भी एक टीचर ही हूँ ना, मुझे बहुत ढेर सारे कल पेन मिले थे। हर बच्चा जो है पेन ही दे रहा था, मैंने मना भी किया भाई बस मुझे एक पेन की जरूरत है, इतने सारे पेन क्यों दे रहा। लेकिन कोई बच्चा सुनता नहीं है ना, कहता नहीं नहीं मैं भी दूंगी मैं भी दूंगी मैं भी दूंगी। और मुझे ढेर सारे पेन और अभी तक मेरी बैग में चॉकलेट भी पड़े हुए हैं। तो कल तो बल्ले बल्ले थी मेरी, बहुत सारी चीज़ें हमको मिली थी। सानिध्या आप, आपने कैसे मनाया टीचर्स डे?
0: पेन देते,
1: पेन दे करके सानिध्या ने। तो आज कुछ टीचर्स डे पे बताने वाली हो
0: जी दीदी?
1: तो चलो आज हम देख लेते सानिध्या टीचर्स डे पे क्या हमको कौन सी जानकारी देने वाली है और क्या है उसके मन में।
0: हमारे भारत देश में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक आदर्श शिक्षक, महान दार्शनिक, लेखक तथा राजनीतिज्ञ थे। शिक्षक हमें अज्ञान रूपी अंधकार पर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमें सदैव अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे संतर हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, जन्म ते दाता मात पिता हैं, आप धर्म ते दाता हैं, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, हे दुर्ब्रह्मा हे दुर्विष्णु,

0: हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भाई चलते हैं हम देशराज की ओर। और देशराज आज क्या सुनाने वाले हो?
2: दीदी आज हम अपने जो वीर पूर्वज हैं
1: ओ
2: उनके लिए एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुना चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगर्जन, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वच स्थल पर, सागर निज छाती पर जिनके आगणित अरणव पोत उठाकर, पहुंचाया करता था प्रमुद भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। हे युवकों तुम उन्हीं पूर्वजों के वंशज उनके ही प्रतिनिधि, तुम ही मान रक्षक हो उनके कीर्ति तरंगिणियों के वरिधि, रवि शशि गगन दिशाएं हैं गिरी नदी मेदिनी, जब तक निज पैतृक धन स्वतंत्रता को क्या तुम तज सकते हो अब तक, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों के आकर, धरा श्रोमणी मातृभूमि में धन्य हो जीवन पाकर, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करके बड़े हुए हो लेकर, जिसका रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज।
1: वाह बहुत सुंदर, वेरी नाइस। भाई देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो हमारे दो पोल है ना, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है।
2: जी दीदी
1: ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में, एक में भयंकर भयंकर से भी भयंकर गर्मी होती है और एक में इतनी ठंड होती है कि आदमी जो है वहाँ पे उसका जीना कठिन हो जाता है। लेकिन है तो ये पार्ट हमारे ही देश के, वो लोग भी जिनको कोई वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं ना,
2: जी,
1: फिर
2: जी,
1: भी
2: जी,
1: वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं।
2: जी दीदी
1: चाहे तो वो उस ऐसे स्थान को छोड़ के जा सकते हैं, है ना?
2: जी दीदी।
1: लेकिन फिर भी वो वहीं रहते हैं, वहीं पर वो देश अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और वहीं पर वो सब कुछ सहन करके भी रहते हैं,
2: जी
1: जीवन बिताते हैं। तो ऐसे अनगिनत जो है हमारे देश से प्यार करने वाले, हमारे बलिदानी हैं, हमारे देश के हमारे जो पूर्वज हैं वो कहीं छोड़ करके नहीं गए कि हम थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो हम अपने देश को त्याग दें।
2: तो जी जी जी।
1: ऐसे लोग जो है अपने देश को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? जो लोग बस जाते हैं वहाँ जा कर के विदेशों में, हम तो उनसे भी यही कहेंगे कि सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा।
2: जी दीदी।
1: तो
2: दीदी आज 6 दिसंबर को भारतीय सेना ने लाहौर मोर्चा पे भी वो किया
1: हाँ,
2: था।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: जी दीदी
1: जी।
2: और आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान,
1: का
2: भी
1: नारा दिया था।
2: जी दीदी
1: जी। तो हमें उनको भी नमन करना चाहिए, है ना?
2: जी दीदी।
1: तो चलते हैं, छोटे से ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम ढेर सारी बातें आपसे करेंगे। तो चलो लेते हैं एक छोटा सा अर्धविराम और मिलते हैं आपसे बाद में, बात करते हैं। और इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम सुनते रहिए।

0: ये तो है हमारे। चलिए चलते हैं हम हमारे छोटे साइंटिस्ट यानी कि यशराज की ओर, और आज यशराज भी कुछ ऐसी ही ज्ञान भरी बातें या चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं उनका विषय क्या है।
1: देखिए, अभी का ये जो हमारा पिछला हफ्ता था और ये हफ्ता, मतलब कह सको ये हफ्ता एटम की दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था।
0: जी जी,
1: क्योंकि इससे मतलब इसी समय में, देखिए पिछले संडे पर जब हम आए थे उस समय मैं बोल तो नहीं पाया था, लेकिन मैं आपको बता दूँ पिछले संडे अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को लेकर ये एक मॉडल दिया था जो कि आज की हमारी मॉडर्न साइंस एनिमेशन पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, ठीक है। वैसे ही एक थे हमारे जॉन डाल्टन की ने ही सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपने कभी ना कभी सुना होगा, क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा। मैं भी करंटली क्लास नाइन्थ में ही हूँ, मैं उनके बारे में पढ़ ही रहा हूँ। और आज ही उनका जन्म हुआ था 6 सितंबर को, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष रेडियो प्रोग्राम जहाँ हम जानते हैं उन ब्रिलियंट साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी से साइंस की दुनिया को एक नई दिशा दी। आज का हमारा टॉपिक है जॉन डाल्टन। आज हम जानते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वह हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, आप हो या हम हो, कोई भी हो, ये सब चीज़ें माउंट जो है वो मैटर से ही बनी है। और मैटर को समझने के लिए हमें जाना पड़ता है उसके सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। ये नाम भी पहले ही जॉन डाल्टन ने ही दिया था। लेकिन क्या हमेशा से साइंटिस्ट को पता था कि मैटर्स एटम से बना है? नहीं। इस आइडिया को एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में से एक थे जॉन डाल्टन, और सबसे पहले भी थे। इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और उसके साथ में 10 प्रिंसिपल्स भी दिए थे, कुछ उसमें से गलत भी थे लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एडवांस थे। तो आइए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग साइंटिफिक जर्नी को। ये आखिर थे कौन? जॉन डाल्टन का जन्म आज ही के दिन यानी 6 सितंबर को 1766 में इंग्लैंड के ईगल्स फील्ड में हुआ था। वे एक इंग्लिश केमिस्ट, फिजिसिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट थे। डाल्टन की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बहुत वाइड रेंजिंग थी उस समय के हिसाब से। उन्होंने केवल केमिस्ट्री पर काम नहीं किया बल्कि मीटियोरोलॉजी, गैसेस और एटमॉस्फेरिक फेनोमेना का भी अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि मीटियोरोलॉजी जो है, जो मॉडर्न मीटियोरोलॉजी है, उसकी नींव भी जॉन डाल्टन ने ही रखी थी। लेकिन साइंस की दुनिया में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। उनके आइडियाज ने केमिस्ट्री को क्वांटिटेटिव और सिस्टमैटिक साइंस के रूप में बदल दिया था। डाल्टन से पहले एटम का आइडिया आया तो था, उसे हम कहेंगे कि जो हमारे ऋषि कनाद जो थे उन्होंने भी एटम का आइडिया दिया था। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि अंग्रेज जो थे उन्होंने हमारे भारत में आके यही गलती हमसे हो गई कि हम उन्हें भारत में आने से और यहाँ पे कब्जा जमाने से जो कि एक था
0: रोक नहीं पाए,
1: यही हमसे एक गलती हो गई। और
0: तो बस यही कि हमारे जितने भी हमारे देश के जो अपने वैज्ञानिक थे वो उनके आगे पीछे होकर छुपते चले गए, और वो जो है अपने को वो हमारी थ्योरी को लेकर के वो उस पर रिसर्च करते रहे
1: और आगे उसको बढ़ाते रहे। लेकिन हम देखिए वहीं पे दिक्कत आ जाती है। आज वो लोग कहते हैं कि इसकी नींव हमने रखी थी। हम ठीक है मानते हैं कि आपने बहुत चीज़ें की, लेकिन उसकी नींव को हम नहीं कह सकते। ऋषि कनाद ने लगभग 1000 साल 2000 साल पहले ही एटम को बता दिया था। और एटम की ये जो थ्योरी ऑफ मैटर थी, ये तो जॉन डाल्टन ने कई सारे अपने प्रिंसिपल्स के साथ दिया था, वो बात अलग है। लेकिन ऋषि कनाद ने इसका एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ही सही लेकिन बताया ज़रूर था, और उसे अणु कहा था या जिसे हम परमाणु कहते हैं वो कहा था उन्होंने।
0: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है, और चलते हैं हम अथर्व की ओर। और अथर्व, आप पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार जो है आपको बहुत कुछ जानकारी देनी है। पर पिछली बार हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव था,
2: हाँ, मतलब जानकारी पूरी नहीं हो पाई थी।
0: हम चाहेंगे,
2: लेकिन अब दीदी एक ही टॉपिक पे तो टिके रह नहीं सकते।
0: नहीं, बिल्कुल, आप टॉपिक चेंज करते रहिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं।
2: तो दीदी आज तो कोई इतना वैसे स्पेशल डे नहीं है, लेकिन अगले 3 दिन बाद हमारे इंडिया से रिलेटेड एक जो हमारा नेचुरल फैक्टर है हमारी धरती के लिए यानी कि हिमालय, उसका उसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड डे है, उसको मनाया जाता है। और आज हम लोग 9 सितंबर को जो मनाया जाने वाला है हिमालय डे, उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जैसे पहले बात कर लें तो उसके बारे में अच्छा ही रहेगा। तो देखिए, हिमालय डे जिसे हम लोग हिमालय दिवस के रूप में भी जानते हैं, ये स्पेशली उत्तराखंड में हर साल 9 सितंबर को ही मनाया जाता है। और इस दिन और इस दिन का जैसे हर दिन का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे इस दिन का भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हिमालय की जो कह सकते हो जो खतरे में पड़ रहा है वो, उसके कंजर्वेशन को बचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब सोचिए हिमालय आखिर इतना इम्पोर्टेंट,
0: हिमालय खतरे में पड़ा तो कितनी बड़ी त्रासदी घट गई,
2: जैसे कि अभी लेटेस्ट में इंसिडेंट जो हुआ था नेपाल के फ्लड के बारे में। तो देखिए हिमालय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिमालय सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, ये एक गाइगेंटिक नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी पूरी कह सकते साउथ एशिया को बचा के रखता है। और भारत की कई महान नदियां हैं जैसे कि गंगा हो गए, यमुना, ब्रह्मपुत्र हो गए, इन जैसे रिवर सिस्टम से करोड़ों लोगों की वाटर सिक्योरिटी और लाइवलीहुड्स भी जुड़ी हुई हैं, जो कि हिमालय जैसे हमारी क्लाइमेट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी को शेल्टर देता है, और भारत की संस्कृति जैसे जो हमारी संस्कृति स्पिरिचुअलिटी है और आइडेंटिटी को भी एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाता है। लेकिन लिसनर्स अब कहानी इस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट का आता है कि हिमालय हमें वार्निंग भी दे रहा है, और ये वार्निंग सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में हिमालयन रीजन में फ्लड्स आपको देखने को मिले थे,
0: लैंडस्लाइड्स तो हम काफी दिनों से रेगुलर सुनते चले आ रहे हैं,
2: और सिर्फ फ्लड्स से नहीं
0: तबाही के साथ
2: लैंडस्लाइड्स हो गए, ग्लेशियर रिलेटेड डिजास्टर्स हो गए, और एक्सट्रीम वेदर्स की भी कई कहानी हम लोगों ने सुनी थी, जैसे कि अभी केदारनाथ मतलब 2013 की जो ट्रेजेडी हुई थी, और 2021 की चमोली डिजास्टर हुआ था, और 2023 में सिक्किम की साउथ लोनक ग्लेशियल लेक डिजास्टर हुआ था, जिसमें ये सब बहुत ही मेन मतलब हिमालय का ही नाम आता है इसमें। और ये जो इंसिडेंट है ये हमें एक चीज़ रिमाइंड कराती है कि माउंटेन्स में होने वाले जो चेंजेस हैं वो कभी कभी नीचे रहने वाले लोगों को भी खतरे में
0: काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
2: और जैसे कि अब हिमालय का एक तरफ से हम लोगों के पास प्रॉब्लम है, लेकिन इसी का सॉल्यूशन हमारे इंडिया ने निकाला है। उन्होंने अभी हाल ही में बस दो दिन पहले 4 सितंबर 2026 को इसरो ने GSLV-F17 के हेल्प से EOS-5 नामक एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और ये सक्सेसफुली लॉन्च भी हो गया था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है बस उसको इम्प्रूव करना, सिंपल सा है कि अर्थ जो भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं बस उसको एक डेटा मिले सैटेलाइट को, और फिर वो डेटा हमारे पास पहुंचाए, जिससे हम लोगों को और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं सोच रहा है, इंडिया पूरे देश मतलब पूरे धरती के लिए सोच रहा है।
0: अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं।
2: जैसे हम लोग को कोई डेटा मिला, अब वो हमारी इंडिया के पास पहले पहुंचेगा, फिर हम लोग अलग अलग जरिए से हम लोग दुनिया की तरफ पहुंचाएंगे कि अब भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, हम लोग अपनी धरती को बचा सकते हैं। तो बस ये डेटा हम इंडियंस अपने पूरे कह सकते हैं धरतीवासियों की तरफ पहुंचाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी नेचुरल सोर्सेस हैं हमारे पास उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि बस अपने नेचुरल रिसोर्सेज की
0: तो ये एक संदेश है कि हमें जो है जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं
2: जी,
0: उनकी सुरक्षा के दायित्व तो हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हम ही इस धरती के नागरिक हैं, इस धरती पे के जीव हैं।
2: लेकिन यही है ना कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है, अगर हम लोग जैसे फॉरेस्ट्स को काटते रहेंगे, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन बनाते रहेंगे कि यहाँ पर घर बना लो, यहाँ पर बिल्डिंग बना लो बिना किसी प्लान के,
0: भाई तो ये सब बहुत इफेक्ट करता है। अपना लालच, अपना जो प्रॉफिट है वो जब तक हम वो जारी रखेंगे कि हमारा प्रॉफिट होता रहे, हम एकदम ग्रीडी बने चले जा रहे हैं, धन का लालच जो है लोभ है वो हमको कहीं का नहीं छोड़ रहा है।
1: अभी कल ही मैं एक रिसर्च चार्जशीट पढ़ रहा था, उसमें मतलब साइंटिस्ट ने ये देखा था, रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, वहाँ पे मैंने साइंटिस्ट को देखा था, वो साइंटिस्ट ने ये खोजा था कि मार्स के अगर देखिए वैसे जो है मार्स से ज़्यादा अगर कोई हैबिटेबल प्लैनेट है वो वीनस है। उसमें आप देखिए आप कह रहे हैं वीनस तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, वहाँ 470 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है, और वो साइंटिस्ट ने भी देखा था कि अगर वीनस के सरफेस के 50 किलोमीटर ऊपर हम जाएं बादलों में, वहाँ पर जो ग्रेविटी है अर्थ के 90% है और टेम्परेचर भी लगभग ठीक है। मेरे दिमाग में ये आया कि हम इन चीजों को ढूंढ ही रहे हैं जब हम अपनी धरती में रह सकते
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम अपनी धरती को और ज्यादा सुधारे ना, हमें जरूरत,
0: अरे अभी हमें जो है जहाँ हमारे रहने योग्य जो प्लानेट है वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत समय, जो हम जहाँ रह रहे हैं वर्तमान में पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए।
1: इससे बढ़िया क्योंकि अब हमें से उसकी हैबिट हो चुकी है, हम उसमें अडेप्ट हो चुके हैं, लेकिन अब फिर एक नई चीज एक साथ ले आना बहुत
3: वो लोग वहाँ रहने की नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं वहाँ कोई रहता तो नहीं था।
0: हो भी सकता है जीवन हो वहाँ, अगर जहाँ जीवन है वहाँ लोग रहते भी होंगे, लेकिन अभी तो इतनी जानकारी हमारे पास नहीं है। पर हम इतना तो जरूर कहना चाहेंगे अपने देश के लोगों से सबसे पहले कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पेड़ पौधे वन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम सभी पे है। और इस तरीके की ये हादसे जो हो रहे हैं, इनसे अगर बचना है तो थोड़ा सा अपना स्वार्थ जो है वो त्यागना होगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि देखिए क्या हुआ, कितने लोग अभी मिसिंग है जो मिल नहीं रहे हैं,
1: लगभग 500 से 600 और ज्यादा मेरे हिसाब से संख्या।
0: तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे विदा, और अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय इसी मंच पर आपसे फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए
2: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी उबे, वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने संडे स्पेशल शो ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। और संडे का दिन है, फिलहाल वक्त हो गया है आपसे बातचीत करने का, आपका टैलेंट देखने का। सुबह ये एक ऐसा शो है जिसमें आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। आज का संडे इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम आपको कॉल पर भी लेने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप भी अपने अंदर का हुनर दिखाना चाहते हैं, कोई सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, या कोई कविता लिखा है वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई जोक्स क्रैक करना अगर आपकी आदत है, तो फटाफट से नंबर घुमाइए 6393316429। जी हाँ, 6393316429 पर 6393316429 ये है स्टूडियो का नंबर, इस पे कॉल घुमाना है और आपको हमसे बातचीत करना है ओपन माइक वाले प्रोग्राम में। यानी आपकी कॉल आएगी और उसके बाद हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो है मुझे ऐसा लगता है कि भाई संडे का दिन है, मौसम सुहावना है और आपको कुछ ना कुछ करने का और कर दिखाने का मौका ढूंढने की आप जो तलाश कर रहे थे वो फिलहाल तलाश होती हुई नज़र आ रही है इस शो के ज़रिए। सो यस ऑफ कोर्स, आप भी पूरा कर सकते हैं, यानी आप कॉल कर सकते हैं, और आपको अगर सिंगिंग करने का मन है तो आप सिंगिंग कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्टोरी सुनाने का मन है इंटरेस्टिंग सी। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि हमारे रियल लाइफ की कोई कहानी होती है, हमारे आसपास की कोई ऐसी स्टोरी होती है जिसको शायद हम हमेशा एंजॉय करते हैं, जब भी उसको सोचते हैं, जब भी उसका ख्याल आता है हमारे लिए वो जहन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिएट कर लेता है। सो हो सकता है आपकी कोई लाइफ की ऐसी स्टोरी हो, या फिर आप कविताओं को लिखते हो, आप शब्दों को लिखते हो, भाई आपको लिखना बहुत पसंद होगा, और कभी भी बैठे बैठे अचानक से आपको ख्याल आता हो और आप लिखना जो है वो शुरू कर देते होंगे। तो चलिए भाई ये इस बात को ज़रा समझिए कि किस तरह से ऑफकोर्स ये लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू होता है। एंड यस यस यस यस यस यस, आप भी कॉल करके बता सकते हैं, आप भी कॉल करके गाना गा सकते हैं और साथ ही साथ इस ओपन माइक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे संडे का दिन होता बड़ा ख़ास है। कैसे? संडे का दिन इसलिए ख़ास होता है क्योंकि हमारे प्लान्स तो पहले बहुत होते हैं कि इस संडे आएगा तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती करने वाले हैं, ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, लेकिन जब आ जाता है फाइनली तो आँखें नहीं खुल पा रही होती है, काहली नहीं दूर हो पा रही होती है। सो फिर कुछ करने का अलग बच नहीं पाता है, जबकि करने को काफ़ी कुछ होता है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स करना भी चाहिए, ये तो ज़रूरी है करने के लिए। फिलहाल आइए अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं भाई कॉल पर कौन मौजूद हैं, उनको क्या है कहना और उनका क्या है टैलेंट जो वो शोकेस करने वाले हैं। हाँ जी हेलो,
1: गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम नाम है।
0: आप गुमनाम हैं?
1: अरे नहीं, गुमनाम नहीं हूँ, नाम तो नाम है।
0: या शाहरुख खान हैं?
1: नहीं गुमनाम हूँ, ना ही शाहरुख खान हूँ, मैं तो बस नाम हूँ।
0: मैं तो बस नाम हूँ। तो बस नाम जी कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: अच्छा, तो फाइनली आपने कॉल मिला दिया है 6393316429 पर, क्या टैलेंट शोकेस करने वाली हैं आप?
1: सर, मैं बहुत दिनों से कोंडा एफएम सुन रही हूँ, तो हमने सोचा कि आज हम भी जुड़ते हैं, आज ये मेरी पहली कॉल है।
0: अच्छा,
1: अभी सुनकर तो बहुत अच्छा लगा था, सारे लोग बात करते थे, कॉल करते थे, तो हमने सोचा आज हम भी कॉल करेंगे और आपसे बात करेंगे।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो कोई गाना आप सुनाने वाले थे?
1: गाना नहीं, मैंने बस कुछ लिखा है, बस नहीं चला रहा।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, कुछ लिखा है आपने खुद से?
1: हाँ, खुद से लिखा है।
0: चलिए सुनाइए जरा, क्या लिखा है देखें हम भी।
1: चमन में बहार ना होती तो ना खिलता, चमन में बहार ना होती ना खिलता फूल, ना होते नजारे, ना होते ये चांद तारे, ना होता ये मुखड़ा इतना प्यारा, ना होती बातें तमाम सारी, ना आज ओपन माइक में कॉल तो होता, ना आपसे बात होती, ना मिलती खुशियाँ इतनी ढेर सारी।

0: नहीं सर, मेरे यहाँ तो धूप निकली हुई है।
1: अरे आप किधर रहते हैं? किधर रहते हैं आप?
0: गोंडा के दक्षिणी छोर पे रहते हैं।
1: और गोंडा के केंद्र में तो फिलहाल छाव ही छाव है, अच्छी सी हवाएं चल रही है, बदली सी है।
0: सर मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी।
1: अरे वाह क्या बात है।

0: ओह वाओ, क्या बात है, ये किसी मूवी का गाना है क्या?
1: यस सर, मैंने ये सॉन्ग ना खुद लिखा है।
0: अरे आपने खुद लिखा है?
1: हाँ, मैंने खुद लिखा आपको सुनाने के लिए।
0: ओह वाओ, सच में?
1: हाँ।
0: तो आप गाने भी लिखते हैं ना? इससे पहले भी हालांकि सुनाया हुआ आपने गाने।
1: कभी कभी जब मन करता है तो लिख लेती हूँ।
0: तो जब आप गाना लिखते हैं तो मन में सबसे पहली चीज क्या आती है?
1: ये इसको लिखूंगी और आपको सुनाऊंगी।
0: अच्छा, नहीं, गाना बनाते वक्त क्या आता है?
1: गाना बनाते वक्त मन में क्या आता है,
0: मतलब जैसे अचानक से
1: सुनाने के लिए ना, इसलिए तो बनाती हूँ।
0: नहीं नहीं, आइडिया क्या आता है कि किस चीज पर गाना बनाया जाए, फिर उसको कैसे आप पूरा करते हैं?
1: ऐसे कोई बात अगर होती रहती है तो फिर मिल जाता है कोई टॉपिक, तो फिर उसी पे बना लेती हूँ। फिर मैं एक और लिख रही हूँ पोएम, और उसको मतलब कम्प्लीट हो चुकी है, बस उसे आपको सुनाना है।
0: वो पोएम है?
1: हाँ, उसको आपको बहुत जल्दी सुनाऊंगी।
0: वाओ, क्या बात है, मतलब
1: और इसको ना मैं बहुत दिन पहले ही लिख के रखा था कि सर को सुनाने के लिए, फिर टाइम ही नहीं मिलता था आपको सुनाने के लिए, और मैंने कहा फाइनली सुना ही देती हूँ आपको।
0: आज फाइनली मौका मिल गया और हमने कहा कि भाई चलो, आज जो लोग फोन से जुड़ते हैं वो अपने घर से ही अपना टैलेंट दिखा दे, राइट?
1: जी सर।
0: लेट्स
1: वेट। आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद पूरा भर के।
0: अच्छा, वही हम पूछने वाले थे, लगभग कितना? तो आपने कहा झोला भर करके। सही बात है। वैसे अब कुछ सवालों का अगर दौर कहिए तो शुरू करें।
1: हाँ सर, पूछिए। मैं सोच रही थी कि सर के सवाल आज क्यों नहीं आए।
0: चलिए, तो अभी के जो मेरा माहौल है उससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है?
1: बिना पंखों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है।
0: बड़ा ही पेचीदा है सवाल।
1: बादल।
0: अरे क्या बात है, दैट्स ग्रेट, गुड आंसर।
1: क्योंकि सर बादल बिना उसके पंख नहीं होता, फिर भी उड़ता रहता है, और उसकी आंख नहीं फिर भी तो बरसता है।
0: अच्छा
1: हाँ?
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी जिंदगी का वो कौन सा गाना है जिसे सुनते ही आपको किसी खास चीज की याद आ जाती है, जैसे कोई गाना आप सुनते हैं तो किसी

0: खास उम्र की अपनी।
1: पता है मेरे टीचर ने एक गाना गाया था, वो गाना जब भी मैं रेडियो पे सुनती हूँ तो वो खाली और टीचर ने उस मतलब मेरे गुरु ने मेरे लिए गाया था स्पेशली वो गाना।
0: अरे वाह।
1: और जब भी मैं रेडियो पे वो गाना सुनती हूँ तो मुझे उनकी याद तुरंत आ जाती है, तुरंत मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं।
0: आंखों में आंसू?
1: हाँ, क्योंकि सर वो हम लोग के विदाई पार्टी में वो गाना गाए थे, और जब से उन्होंने गाया तब से रोज रेडियो पे वो गाना बजता जरूर है।
0: ऐसा कौन सा गाना है?
1: सर वो गाना है कहीं ना किसी चैनल पे वो बज ही जाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ। जब सुनते हो ना तो मुझे उन... और ये वाला है ना जन जन का साथ है।
0: हाँ।
1: ये वाला गाना मैं जो सुनती
0: हूँ
1: उनकी मुझे याद बहुत आती।
0: वाओ, सच में गाने बहुत मेमोरीज क्रिएट करते हैं।
1: और कल तो शिक्षक दिवस था और मुझे खूब अच्छा लगा। मेरे टीचर ना, मैं सब टीचर को मिठाई खिला रही थी और मेरे टीचर मुझे मिठाई खिला रहे थे। वो मुझे बोल रहे थे हैप्पी टीचर्स डे।
0: आपको क्यों बोल रहे थे?
1: हाँ, वो मुझे बोल रहे थे। मैं बोली सर आप गुरु हैं यहाँ। कह रहे नहीं नहीं तुम एक दिन बन जाओगी।
0: अच्छा, वो एडवांस वाली मुबारकबाद थी?
1: हाँ, वो एडवांस में मुझे दे रहे थे और मेरी मिठाई मुझे खिला के।
0: वाह, टीचर्स की कोई खास डिमांड रहती कि मिठाई में ये गरी वाला लड्डू ही चाहिए या काला जाम चाहिए?
1: नहीं सर, मेरे टीचर तो डिमांड, उनकी डिमांड क्या रहती कि मैं उनसे बातें करूं, क्योंकि वो बातें करके मुझसे बहुत खुश हो जाते हैं।
0: एक तो इतनी...
1: और मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ उनसे बातें करके। जब मैं उनसे कल तब कल अपने टीचरों से जब बात कर रही थी तो बहुत खुश थे और मुझसे पूछ रही थी देर ठीक कहाँ थी, मेरे पास सवाल नहीं किया।
0: वाह, सो कितना अच्छा कनेक्शन होता है जब आप इस तरह से ऑफ कोर्स कितनी सारी बातें कर लेते हैं और वो बातें पसंद भी आती है ना?
1: जी सर। सर हम जब नहीं जाते हैं तो टीचर सारे मुझको ढूंढते रहते हैं क्लास में कि कहाँ है वो।
0: मतलब क्या?
1: जब पढ़ाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हूँ कि टीचर भी हंसने लगते हैं, बच्चे भी हंसने लगते हैं, तो दो मिनट तक तो टॉपिक पे बात होती ही।
0: जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि ऐसा कुछ बोला टीचर ने तो आपने उस पे ऐसा रिप्लाई किया तो सब हंस दिए?
1: सर बहुत सारी चीजें वो जब बोलते हैं कुछ ना कुछ तो मैं भी बोल देती हूँ।
0: अच्छा, तो आप?
1: और एक सर है हमारे, वो पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं छुटकवा बच्चा।
0: छुटकवा बच्चा? नन्ना मुन्ना?
1: हाँ, वो मुझको यही बोलते हैं, कहते हैं छुटकवा बच्चा है।
0: वाह, चंचलता के कारण। अरे वाह, ये चंचलता आपकी ऐसी बरकरार रहे। और बहुत प्यारा गाना आपने लिखा था, लिटरली बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। एंड प्लीज आगे जो भी गाने लिखती रही है वो हमको जरूर सुनाते रहिए 89.6 FM।
1: सर आप ही सुनाने के लिए तो लिखते हैं?
0: बस बस पक्का डन।
1: और आप ऐसे कॉलिंग करते रहिए तो मैं लिखती रहूंगी और आपको सुनाती भी रहूंगी।
0: डन डन पक्का। थैंक यू सो मच,
1: बाय
0: बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थे, देखिए इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। और आप भी अगर गाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। नंबर वही है 6393316429। यानी 6393316429। आइए देखते हैं भाई अगला कौन टैलेंट दिखाने वाला है अपना। हाँ जी हेलो, हेलो। मुझे लगता है ये नंबर जो है वो मिल नहीं पा रहा है। और क्योंकि आज ओपन इनविटेशन है ओपन माइक में कि आप घर से जहां से भी आप सुन रहे हैं आप हमको कॉल कर सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपने अंदर का हुनर आप शोकेस कर सकते हैं। एंड यस, बिल्कुल आपको पूरा मौका है, आज आप दिखाइए अपना हुनर और शोकेस करिए। फिलहाल हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आपके अंदर देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप कहना चाह रहे हैं, गाना चाह रहे हैं, पहुँचाना चाह रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, फिलहाल कॉल वापस से आ गई है और कॉल उठा रहे हैं। सो आइए देखते हैं कौन है। हाँ जी हेलो, मुझे लगता है स्पीकर से थोड़ा सा दूर हो जाइए आप। ओके ओके ओके जी, तो आज आप क्या सुनाना चाह रही, बताना चाह रही हैं?
2: मुझे तो लगता है अभी 10 बज रहा है।
0: आपको लगता है अभी 10 बज रहा है, लेकिन बज नहीं रहा है, दिक्कत ये है। अब क्या किया था?
1: ओए तो सुबह में फोन नहीं लगा तो मैं सोची कि चलो दोपहर में ही फोन कर लूँ। हाँ। क्या अभी मैं वो काम कर रही थी, कुछ झाड़ पूछ कर रही थी, वो क्या बोलते इधर हम लोग तो बंगाल में बोलता है बॉक्स बेड, इधर क्या बोलते हैं डिमांड की क्या बोलता है इधर,
0: क्या बोलते हैं उधर कोलकाता में,
1: बॉक्स बेड।
0: हाँ। ये साफ सफाई को बोलते हैं?
1: नहीं, जो पलंग जो होता है ना, जो सोने वाली पलंग।
0: अच्छा, दीवान जिसमें नीचे वो रखने के लिए होता है।
1: हाँ, सामान रहता है, वो सब रहता है। वही सब आज मैं निकाल के सब कुछ झाड़ पोछ कर रही थी। आज मैं गई नहीं और मैं 2 घंटे के बाद मैं स्टूडियो भी आ रही हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: तो वही सब साफ सफाई कर रही थी, तो इधर क्या बोलते थे मुझे, क्या बोलते थे,
0: दीवान।
1: अच्छा दीवान, वही उसको ही साफ सफाई कर रही थी आज। अब सुन रही थी आपका भी शो, तो चलो कि चलो अच्छा ही हुआ सुबह में फोन नहीं लगाता, अभी लग जाए तो सही है।
0: अरे वाह,
1: फोन लगा दी।
0: बिल्कुल, तो वैसे तो ये टैलेंट दिखाने का शो है, तो क्या कुछ आप शोकेस करने वाले हैं?
1: गाना ही सुना दो।
0: हाँ, गाना तो आप अच्छा गा लेते हैं।
1: वैसे ही टूटी फूटी गाऊंगी, अभी याद भी नहीं है। कौन सा गाना गाऊं आप ही बोल दीजिए।
0: गाना कुछ ऐसा होना चाहिए जो सुनने के बाद मजा आ जाएगा कि वाह क्या बात है।
1: मैं हूँ ना पिक्चर का गाना कर रही।
0: आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है।
1: मैं हूँ ना पिक्चर का गाना गा रही हूँ, पर भूल भाल हो सकता है, पर गाने में अच्छा लगता है, मेरे सुनने में अच्छा लगता है, तो ये गाना गा रही हूँ। ठीक है आवाज?
0: ओके, अभी ठीक है।
1: चल जैसी हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, मैं भी घूमूं ऐसी मगन मगन, चाहे तितली जैसी चमन चमन,
0: मुस्कुरा रहे हैं।
1: हाँ, तो मुस्कुराना तो चाहिए जीवन में, तो मुस्कुराने के सिवा और क्या, मुस्कुराना तो जरूरी है।
0: वो मुस्कुरा रहे हैं।
1: अच्छा, कौन मुस्कुरा रहे हैं?
0: शाहरुख खान।
1: अच्छा, शाहरुख खान,
0: उन्हीं की फिल्म का गाना।
1: अच्छा
0: है ना
1: दे?
0: उन्हीं की फिल्म का गाना है ना
1: जी।
0: तो वो कह रहे हैं सविता जी बहुत अच्छा था ये।
1: अच्छा।
0: वाह क्या बात है।
1: और जो और एक जो आपको
0: फिर आवाज कट रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में रहिए। हाँ, गा दीजिए।
1: आए हसीने आए आए अपनी अदाएं हमको दिखाने, मैं भी कुछ कम नहीं, ओ सोरा लो चैन चुरा लो दिल में बसा लो एक बार मुझसे मिला, चले जैसे हवाए सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, मैं भी घूमूं वैसी मगन मगन, चाहे भबरे जैसे चमन चमन, बस उसके बाद मुझे याद नहीं, भूल गई।
0: अब आप अपना दीवान साफ करे घमन घमन, और आराम करे आप खटक खटक, उसके बाद आए आप पैर पटक पटक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: शुक्रिया।
0: सो भाई चलिए चलते हैं फिलहाल अगले कॉलर की तरफ, और देखते हैं कि अगली कॉल पर कौन है, क्योंकि आज हमने आपको ओपन इनविटेशन दिया है बातचीत करने के लिए ओपन माइक में, यानी आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अब आप या तो कुछ लिखते हो तो आप उसको सुना सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई गाना गाना चाहें तो गाना आप सुना सकते हैं, या तो फिर आपके पास कोई ऐसा जोक हो जिसको आप सुना दे तो हम कहें वाह वाह वाह वाह। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: बादल गोयल।
0: अरे ये लीजिए भाई, बादल की बात ही हो रही।

0: थी। सवाल सुना था आपने पहला?
1: हाँ सुना था।
0: क्या था सवाल?
1: बिना पंखों के उड़ता है।
0: हाँ।
1: बिना आँखों के धोता है।
0: ये आपके साथ भी है क्या?
1: हमने तो थोड़ा सा अलग सोच लिया था लेकिन बाद में पता लगा दूसरा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे कुछ आप भी हैं क्या?
1: नहीं ऐसे कुछ नहीं, वैसे हमने सोचा था धुआं।
0: धुआं? रोता कैसे?
1: जब इंसान होता है तो इसीलिए तुम तो फिर बाद में मिस्टेक हो गया ना,
0: गलती से मिस्टेक हो गया ना आपसे तो।
1: गलती से मिस्टेक हो गया।
0: आए, आए, आए, अभी अभी ठीक कर लिया।
1: अभी फिर बाद में पता लगा हाँ ये तो मेरा ही नाम है।
0: वाह ओके ठीक है। तो आज क्या आप शोकेस करने वाले हैं?
1: शोकेस कुछ नहीं, हम पुरानी यादों के हिसाब से चल रहे थे तो हम अरे एग्जीबिशन लगता था साइंस का।
0: अच्छा।
1: उसमें तरह तरह के लोग जो है अपना अपना टैलेंट दिखाते थे।
0: तो
1: दो चार चीज याद है तो हमने कहा था ये बता दें।
0: दो चार यानी छह चीज? हाँ बताइए।
1: नहीं छह तो पता नहीं, तो बताने पे पता लगेगा।
0: अच्छा ठीक है सुन।
1: एक हमने लगाया था जो है कि पानी गिलास में जब अगर उल्टा रख दिया जाए, गिलास किसी प्लेट में पानी भर के रख दिया जाए, गिलास उस पर उल्टा कर दिया जाए तो पानी गिलास में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है।
0: अरे वाह।
1: लेकिन उसके लिए वो था कि ऑक्सीजन को गिलास में से कम करना है।
0: और वो कैसे होगा?
1: और उसके लिए एक मोमबत्ती बीच में रखा जाता था, उसको जला दिया जाता था, उसके ऊपर से गिलास उल्ट दिया जाता था।
0: वाह।
1: तो जब उसका ऑक्सीजन जितनी देर रहता था उतनी देर मोमबत्ती जलती थी, और जैसे मोमबत्ती बुझती थी प्लेट का पानी गिलास में ऊपर चढ़ जाता था।
0: वाह।
1: और उतना ही चढ़ता था जितना ऑक्सीजन है, यानी प्रकृति में 20-21% ऑक्सीजन है तो उतना ही पानी उसमें चढ़ेगा उस गिलास में।
0: ये बड़ी अनोखी बात सच में हुई।
1: जी
0: क्या बात है, बहुत बहुत शानदार।
1: एक और था जो प्याज का रस निकाल लिया जाए और उसको किसी पेपर पे उससे कुछ भी लिख दिया जाए और सूखने के बाद उस पे कुछ नहीं दिखेगा।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को दिखाना है तो उसको नीचे से आग दिखाई जाए तो वो वापस ऊपर दिखने लगेगा।
0: वाह मतलब कोड वर्ड हो सकता है उसमें लिखा हुआ।
1: जी।
0: तो ऐसे कुछ कोड वर्ड का इस्तेमाल तो कभी नहीं किया ना आपने?
1: नहीं हमने फिलहाल अभी तक नहीं किया है,
0: क्योंकि जो जानते हैं लोग वो उसका मिसयूज जल्दी करते हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद आपने कोई,
1: हो सकता बताने के बाद लोग कर जाएं।
0: कर जाएं हाँ मुझे लग रहा है। जो जिसने
1: नीचे से हम लोग वहाँ पर मोमबत्ती ही रखते थे, वही था उस समय के जमाने में। तो मोमबत्ती नीचे रखते पेपर को धीरे धीरे उसके ऊपर से ऐसे जो है घुमाया जाता था पेपर, ताकि जले भी नहीं और जो लिखा है वो जो है दिखने भी लगे डिस्पल हो।
0: तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एक्सपेरिमेंट होता था। वाओ क्या बात है।
1: तीसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि एक लोहे की पाइप ली जाती थी, उसको कुछ पीछे से एक सिक्के टाइप का लगा के उसमें एक छेद कर दिया जाता था तोप नुमा बनाने के लिए।
0: ओके।
1: फिर उसमें थोड़ा सा कार्बाइड और पानी डाल दिया जाता था, ऊपर से एक बॉल लगा दी जाती ताकि वो उसका जो भाप बने वो निकले नहीं, क्योंकि कार्बाइड पे जब पानी डालते हैं तो वो धुआं उठता है। और फिर जिधर से छेद रहता था उधर से फिर माचिस लगाते थे तो वो आग पकड़ लेता था, उससे जो है वो तुरंत ब्लास्ट जैसा होता था और वो बॉल बहुत दूर तक टोप के जैसे बढ़ती थी।
0: वाओ।
1: ये सब एक्सपेरिमेंट हुआ करता था वहां पर।
0: बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट्स बताए आपने, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये हम भी सुन रहे हैं और इनमें से अगर कुछ भी हमारे काम का होगा तो इसको हमको करके देखना चाहिए।
1: आज सबसे आसान है आपके लिए प्याज का रस वाला, मोमबत्ती माचिस वाला, वो पानी वाला।
0: वो आसान नहीं, वो काम का है।
1: नहीं आसान मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट को आप ऑन द वे मतलब कभी भी एनी टाइम ऑन द टाइम कर सकते हैं।
0: बस प्याज होनी चाहिए।
1: प्याज 60 रुपए किलो है।
0: हाँ हाँ मतलब थोड़ा सा कम रस निकाल लेंगे, थोड़ा कम लिख लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे और क्या।
1: और वैसे हमने जो क्लास 8 में एक बनाया था प्रोजेक्ट, उसके लिए मैं सेलेक्ट होके जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट बहराइच भी गया था गोंडा से।
0: अरे वाह।
1: वो था मेरा पर्यावरण प्रदूषण।
0: अरे वाह।
1: उसमें हमने चीनी मिल बनाई थी, घर बनाया था, रेलगाड़ी जो उसमें खिलौने में आती है जो इंजन चलता है उसको लिया था और दो तीन चीजें और उसमें बनाया था, तो वो सेलेक्ट होके हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट बहराइच भी गए थे हम स्कूल की तरफ।
0: क्या बात है, बहुत शानदार।
1: उसमें हमने पर्यावरण के वायु प्रदूषण को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था,
0: तो
1: वायु प्रदूषण करने के लिए हमने धूप बत्ती का यूज किया था।
0: अच्छा,
1: नीचे गत्तों को जो पहले अगर बत्ती आती थी जिसमें पाइप नुमा अगर वो रहती थी तफ्ती, उसको ऊपर से नीचे चिमनी के हिसाब से ऐसा शिफ्ट किया गया था बना के कि हल्का सा जो है प्रोजेक्ट को ऊपर करके नीचे धूप बत्ती लगा दिया जाए तो ऊपर धुआं निकलता रहे।
0: वाह, क्या बात है।
1: उस प्रोजेक्ट को हमने बनाया था जिसमें चीनी मिल और फैक्ट्री और घर और रेल का इंजन काफी चीज मतलब जो था उसमें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आई होप कि भाई ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप करते रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच।
0: सो भाई ये तो थे हमारे बादल गोयल जी फ्रॉम गोंडा, और जैसा कि उन्होंने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बताए, मुझे याद है कि फिफ्थ सिक्स क्लास में इस तरह के अक्सर एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहते थे और आगे लिखा होता था कि आओ सीखें, और उसमें जब एक्सपेरिमेंट्स बताते थे तो कसम से बता रहे, पढ़ करके तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था, आखिर टीचर को एक्सप्लेन करना पड़ता था। फिलहाल नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है। हाँ जी हेलो।
2: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार अविनाश जी, कैसे हैं आप?
2: जी बहुत बढ़िया है, और आज सुबह बहुत ट्राई किया लेकिन कॉल मिला ही नहीं। अभी भी बहुत लाइन बिजी है, लेकिन चलिए चलते चलते आखिर में कॉल लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल बेशक। ऑलराइट, सो क्या सुनाने वाले हैं आज आप?
2: आज तो बस कुछ सुना देंगे, और अब अभी अभी जो टीचर के ऊपर बात कर रहे थे ना थोड़ा सा। हाँ, तो टीचर के ये क्या बताए, मतलब कि बचपन में तो हम लोग मतलब जो टीचर हम लोगों को ज्यादा मतलब कि अनुशासन दिखाते थे, मारते थे जब आप पढ़ाई रहे, मतलब कि छोटे बड़े मतलब जो कड़क थे, तो उन लोगों के लिए हम सब के मन में मतलब कि बहुत जहर मतलब घोला हुआ था। हम सभी मतलब सोचते थे यार ये टीचर किसी तरह से रिटायर्ड हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो ये ना क्लास ना ले जाए तो सही होगा। बाद में देखिए जब जैसे जैसे हम लोग उम्र बढ़ती गई तो हम लोग कोई भी टीचर गलत नहीं है, क्योंकि वो हम सबके जीवन को सुधारने के लिए और अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने के लिए हम सबको ऐसा अनुशासन दिखाते हैं।
0: बिल्कुल।
2: और आज जी और देखिए आप जब जैसे जैसे हम लोग हम सबके जीवन में जो अनुभव बढ़ता जाता है तो हम उन सब उन लोगों की जो याद है तो हम सोचते हैं कि अरे हम लोग कितने बुरे मतलब सोचते थे टीचर के लिए। तो टीचर देखिए सब सबके लिए एक ही प्रकार से ज्ञान बांटते हैं, लेकिन अब लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब कैसे लेंगे वो ज्ञान को।
0: बेशक सही बात है। वैसे ये टैलेंट शोकेस करने के लिए था, तो आप कुछ सुनाना भी चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, तो एक गीत सुना देते हैं। ज्यादा तो नहीं सुनाएंगे, थोड़ी सी सुना देंगे,
0: थोड़ा सा ही सुनाएंगे।
2: मितवा मेरे मित्रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीतरे, ओ मेरे मितवा मेरे मित्रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीतरे, ओ मेरे मित्रवा। हम ही मिले थे कभी यमुना किनारे राधा किशन थे कभी नाम हमारे फिर वो मुरलिया फिर वो आयलिया फिर वही संगीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मित्रवा मेरे मीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मित्रवा।
0: वाह क्या बात है, आपके मितवा मुझे लगता है कहीं भी होंगे दौड़ते हुए चले जाएंगे, जिस मोहब्बत से आपने बुलाया है कोई भी रोक नहीं पाएगा।
2: जी बिल्कुल, तूने पुकारा और हम चले आए जान हथेली पे ले आए।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं, रिस्क के साथ ही सेफ्टी के साथ आई है।
2: जी सेफ्टी के साथ ही, मतलब वो तो गाने का लाइन है बस।
0: अच्छा, अरे तो हमें तो सीरियस ले लिए थे। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आपने स्पेशली कॉल भी किया और अपने गाना भी सुनाया और साथ ही टीचर के बारे में भी कुछ बातें बताई। वाह दैट्स ग्रेट।
2: जी बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम सुनने में, जो 10 बजे आता है खासकर, तो उसमें जुड़ने की कोशिश आज बहुत थी, लेकिन चलिए आज टेरेंट्स को फिर भी मौका मिल गया तो बहुत अच्छा लगा। मतलब कि हम अपने कार्यक्रम में जब जुड़ जाते तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए कम से कम आज के लिए तो हमारा दिन फ्रेश हो गया, पूरी तरह से माइंड फ्रेश हो गई।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी, थैंक यू सो मच।
2: जी
0: थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो भाई ये थे हमारे अविनाश जी, और बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, बड़े ही जिंदा दिल है, और अच्छी बात ये है कि हम लोग अब जिस तरह से आप लोगों को सुनते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हम कितना हमारे अंदर उत्साह है, कितना हमारे अंदर जील है, और इस शो के ज़रिए बातचीत के ज़रिए सब साफ नज़र आने लगता है। सो ऐसा जील हमेशा अपनी लाइफ में बरकरार रखिएगा, क्योंकि कुदरत ने भी मौसम बना रखा है, तो आप भी पेशेंस को बना रखिएगा। एंड यस, हर पल जिंदगी के जीने हैं, फिलहाल जीने से याद आया। अब चलिए आप भी अगला शो टॉप 20 एंजॉय करिए, और हम भी फिलहाल आपसे लेते हैं विदा आपके अपने ओपन माइक वाले प्रोग्राम में। फिलहाल आप सुन रहे थे रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोडा शहर की धड़का।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हंसजीत भैया हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त तो चला है 2:03 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आशुनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ लेकर के सने का स्पेशल वाला प्रोग्राम जिसका नाम है इंडिया टॉप 20, यानी कि बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड की गपशप और बहुत सारा म्यूजिक एंड फन। तो भैया हम आज के दिन स्पेशल मिलते हैं आपके दिन को स्पेशल बनाने के लिए, आपके माहौल को स्पेशल बनाने के लिए, आपके मूड को स्पेशल बनाने के लिए। और आज के इसी स्पेशल वाले डे में हमने सोचा क्यों ना ठंड आने से पहले थोड़ी चिल कर लिया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और संडे का दिन है, तो संडे तो भैया चिल पिल के लिए होता है, यानी कि पिल नहीं लेना है, सिर्फ चिल चिल करना है। तो आज की प्लेलिस्ट थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा स्पेशल, और ऑफकोर्स चिल आउट संडे होने वाला है आज, और हम इन्जॉय करेंगे अपने सॉन्ग नंबर 20 से लेकर सॉन्ग नंबर 1 तक बैक टू बैक बहुत सारे बॉलीवुड के हिट। लेकिन आज बॉलीवुड के हिट में थोड़ा सा है ट्विस्ट, ये होने वाले हैं शफल सॉन्ग, यानी कि अगला गाना आपकी सोच से, आपकी गेस से थोड़ा सा बाहर, आउट ऑफ लीग होगा, लेकिन यकीन मानिए आपको आएगा फुल मजा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं अगले 2 घंटे के लिए। तो अपनी अपनी हाजिरी चैट बॉक्स में लगा दीजिए और आइए ट्यून कर लेते हैं अपना पहला सॉन्ग टाइगर जिंदा है से स्वैग से स्वागत, क्योंकि वेलकम है आप सभी का इंडिया टॉप 20 के प्लेलिस्ट के अंदर। स्टे ट्यून्ड
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 20.

JJ.

0: हाँ जी, तो भैया मैंने तो कर लिया आपका फुल स्वैग से स्वागत आपके इंडिया टॉप 20 वाले शो में, यानी कि बॉलीवुड वाले प्रोग्राम के अंदर। तो फिलहाल आप बताइए, आप कैसे हैं? आपने अपना स्वैग से स्वागत एंजॉय किया क्या? नहीं, विशाल ददलानी और नेहा की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे। विशाल शेखर का संगीत था, इरशाद कामिल के लिखे बोल थे, एंड टाइगर जिंदा है यानी कि हमारे सल्लू मियां का गाना था। फिलहाल बहुत ही जबरदस्त गाना, बहुत ही जबरदस्त स्टाइल में उन्होंने आपका स्वागत किया है। तो अभी तक आपके दिलों में क्यों ये बात है कि आप चैट बॉक्स में मैसेज नहीं कर पा रहे? फिलहाल कीजिए हाजिरी लगाइए, अटेंडेंस लगाइए, बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद है अगले 2 घंटे के लिए। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले गाने को ट्यून करने के लिए, जो कि हमारा सॉन्ग नंबर 19 है। जी हाँ, लेकिन सॉन्ग नंबर 19 को ट्यून करने से पहले आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, आपके अपने गोना शहर की धड़कन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त अर्जुनति मौजूद है और हम एंजॉय करेंगे बैक टू बैक बॉलीवुड के वो बैंगर्स जिनको सुन के आपको बहुत मजा आता है। आता है, मुझे गारंटी से पता आपको मजा आता है, बस आप बताते नहीं है, वो अलग बात है। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 19। और इस गाने को सुनने के बाद अगर आप अपनी सीट से नहीं उठे तो फिर क्या कर रहे हैं आप? आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि गाना है हाउसफुल से और नाम है अनारकली डिस्को। चलिए, अब डिस्को तो भैया आपके घर तक हम भेज दे रहे हैं, अब आपको उठना है या सिर्फ बेड पे पड़े पड़े ही डिस्को करना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 19.

0: अनारकली का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको घर बैठे बैठे डिस्को वाली फीलिंग आ गई हो तो हम आपको बता दें कि आवाज थी इसमें ममता शर्मा और सुखविंदर सिंह की। सुखविंदर सिंह की मुझे लगता है जहां भी गाने बज जाते वहां एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही बीट आ जाती है। अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो सुखविंदर सिंह के गाने सुन सकते हैं, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो सुखविंदर सिंह के गाने सुन सकते हैं, आप सैड है तो सुखविंदर सिंह के गाने सुन सकते हैं, क्योंकि हर माहौल में एक अलग ही जान डाल देते हैं सुखविंदर सिंह। और जब भी आते हैं ना बॉलीवुड में छा जाते, आग लगा देते हैं, स्टेज पर फायर होता है, डांस में एनर्जी होती है, बीट होती है, म्यूजिक होता है। ओ माय गुडनेस, मतलब कितनी तारीफ कर सकती हूँ मैं, मेरे पास तारीफों के शब्द कम पड़ जाएंगे। फिलहाल सुखविंदर सिंह की आवाज़ में आपने एंजॉय किया, अनारकली डिस्को चली है। हम आपको बता दें भाई, समीर अनजान जी ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने, इस गाने के बोल, और बहुत ही प्यारा गाना दिया साजिद वाजिद ने दिया है अपना म्यूजिक, यानी कि साजिद खान ने दिया है अपना इसमें म्यूजिक, आपने एंजॉय किया। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं, अगला सॉन्ग थोड़ा हटकर, थोड़ा सा छटके वाला, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए हनी सिंह की आवाज़ में लुंगी डांस। तो अन्ना की ज़्यादा चश्मा लगाइए, कोकोनट में लस्सी मिलाइए और आइए पीजिए, एंजॉय कीजिए आपका अपना ये तो टॉप 20 विद राज नीतीश सोनी का स्पेशल वाला बॉलीवुड प्रोग्राम। स्टे ट्यून्ड
1: Radio Gala 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 18.
2: Eid Yunge King Khan, Yo Yo Honey Singer.

0: तो भैया हनी सिंह की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे लुंगी डांस, आई होप आपने कर भी लिया होगा। एंड मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं टॉप 20 में। एंड इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले गाने को लेकर के, यानी कि हमारा सॉन्ग नंबर 17, मन को अति भावे कौन भावे, आइए हम बताते हैं। लेकिन इस गाने के जरिए आप एंजॉय करते रहिए टॉप 20, मिलते हैं बॉलीवुड न्यूज के साथ, तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM संडे का स्पेशल वाला प्रोग्राम विद योर आरजे उन्नति।
1: Radio Gala 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 17.

और भैया आप डूब चुके हैं किसी की आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में आप एंजॉय कर रहे थे भरत फिल्म से नक्श की आवाज में। आ जाओ डूब जाओ तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, हल्ले हल्ले धीमे धीमे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले बॉलीवुड न्यूज की तरफ, क्योंकि ये आपके बॉलीवुड वाला शो इंडिया टॉप 20। और सुनने में आया है कि भैया कहा जा रहा है कल की 2 को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं। नाग अश्विन ने अपना बयान देते हुए कहा है कि हमने केवल लगभग 10 दिनों की शूटिंग की है।

0: टाइम का बहुत ही ज़बरदस्त प्लस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाना, और कहा जाए तो उस साल का टॉप वन सॉन्ग था, ये चार्ट बस्टर सॉन्ग था, इसको प्रायोरिटी पे सबसे टॉप पर रखा गया था। तो एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंडिया टॉप 20 विद राजनीति, और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: रेडियो 11.89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 15.

0: हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे हैं बादशाह की आवाज में लड़की ब्यूटीफुल कर गई। चलो और हम बढ़ेंगे अपने अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग लेकर आए हैं लव यात्री से दर्शन रावल की आवाज में, और क्योंकि आने वाली है नवरात्रि और ये गाना प्ले ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर गरबा डांस के अंदर प्ले होने वाला गाना छोगाड़ा तारा, तो आइए एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और मिल।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 14।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? क्या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
5: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: और क्योंकि आप हैप्पी हो चुके हैं, दिल डांस करने लगा है, तो सोच रही थोड़ा सा और हैप्पी कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पास है एक ऐसी न्यूज़ जो आपको सुनने के बाद आपका भी दिल हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। सुनने में आया भैया प्रोड्यूसर जो हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि हे बेबी टू बहुत जल्द आने वाली है। प्रोड्यूसर का नाम है साजिद नारियावाल, आप भी जानते होंगे उन्हें, और उनका कहना है कि हे बेबी टू, यानी कि हे बेबी आपने देखा होगा ऑफकोर्स, अक्षय कुमार उसमें नजर आए थे, बहुत ज़बरदस्त फिल्म आई थी, बहुत हंसाया भी था उसने आपको, और इसका एक सिक्वल बनने वाला है, यानी कि नंबर टू बनने वाली है। तो और इसकी शूटिंग जो होगी वो होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो क्या ख्याल है, दोबारा हंसने के लिए तैयार हैं आप? वैसे मैं आपको बता दें कि बॉलीवुड की कुछ अपनी बड़े खूबसूरत अंदाज में जो फिल्में बनी हुई हैं, जो हमारी थोड़ी 90s की तरफ से आती हैं, 2010 2014 की तरफ से आती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा फ़नी हुआ करती थी। बच्चों को लेकर कई सारी फिल्में बनाई गई हैं, हंसाने लायक बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, डराने वाली भी बनाई गई थी। हालांकि अभी जो फिल्में आती हैं हमारे पास हॉरर के नाम पर, वो आती हैं थोड़ी सी कॉमिक, थोड़ी सी कॉमेडी वाली, यानी कि डर कम लगता है, हंसते हम ज़्यादा हैं, मुस्कुराते हम ज़्यादा हैं, चाहे वो भैया भूत पुलिस आपने देखी हो या देखी हो स्त्री, डर उस लेवल का नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि ऑडियंस की उम्मीद है भैया बॉलीवुड से कि काश एक बार, प्लीज एक बार तो वापस ले आओ। क्या वापस ले आओ? सिर्फ एक चीज़ वापस लेकर आनी है, आपका अपना नया जो टशन था, वो जो एक ऑरा था, जो वाइब थी, जो तरीका था, जो स्क्रिप्टिंग हुआ करती थी एक रियल हॉरर फिल्म की, वो वापस आ जाए। अच्छा एक बात पूछनी थी आप सभी से, क्या आप लोगों ने कभी बंद दरवाज़ा फिल्म देखी है या फिर पुरानी हवेली टाइप फिल्म? अगर आपने देखी तो चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी थी, मुझे भरी दोपहरी के अंदर झींगरों की आवाज़ में डर लग रहा था, मैं सोच रही थी पता नहीं कब कौन सा दरवाज़ा खुल जाए, किसके अंदर से किसका बालक निकला है, और पता चले वो बालक भी ऐसा ही हो, है क्या पता। तो भैया वो रास्ता जहां पर कोई नहीं आ रहा था, दोपहर का टाइम था, जून की छुट्टी चल रही थी, बस झिंगुर की आवाज आ रही थी, मुझे उस रास्ते पर जाते हुए भी डर लग रहा था, बिकॉज मैंने देखी थी उस वक्त तुरंत जस्ट बंद दरवाजा फिल्म, और मेरी मम्मी ने कहा था जाओ सामान लेकर आओ। है मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा ही चांस चलता रहता है। फिलहाल अगर आपने इनमें से कोई एक फिल्म देखी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा डराया है, अब ऐसी कुछ फिल्में हैं जो मैंने देख देखकर खुद को बहुत डराया, इतना डराया कि डर का ख़त्म हो चुका है, अब उम्मीद रहती है कि काश बॉलीवुड वो फिल्में वापस लेकर आ जाए जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अलग ही लेवल का म्यूज़िक होता है, रोमांटिक म्यूज़िक होता है, थोड़ा सा प्यारा म्यूज़िक होता है, क्योंकि हमारे भूत प्रेत जो होते हैं ना उनको गाना गाना बहुत पसंद है, स्पेशली रोमांटिक गाने गाया करते हैं। अब चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो हमारी वीराना फिल्म की हीरोइन हो जो कहीं ना कहीं ओ साथी गाकर बुलाया करती है या फिर कोई और, तो चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपकी पसंदीदा हॉरर फिल्म कौन सी है, और ये वाली फिल्म यानी कि साजिद की जो फिल्म आएगी हे बेबी टू, क्या उसे देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं या नहीं? अगर हैं तो बताइएगा जरूर। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं हमारा सॉन्ग नंबर 12। सॉन्ग नंबर 12 हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉन फिल्म से, खई के पान बनारस वाला। थोड़ा सा दिमाग का ताला खोलना है, क्योंकि अभी तक संडे में आपके दिमाग की चाबी खो चुकी है, पूरे हफ्ते का टेंशन लेकर के आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा मीठा पान खा के आते हैं, असल में नहीं खाते, गाने में इंजॉय करते हैं, और आप सुनते रहिए इधर टॉप 20। मिलते हैं इस गाने के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 12।
2: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है,
3: बताए दे।
2: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे खई के पान बनारस वाला, और अगर खुल गया हो आपके बंद अकल का ताला तो आइए बात कर लेते हैं इसी गाने की। ये जो ओरिजिनली गाना आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन में देखने को मिला था, हम आपको बता दें कि ये गाना कभी अमिताभ बच्चन के लिए बना ही नहीं था। ये गाना तो बनाया गया था बनारसी बाबू के लिए। जी हाँ, अब आप ही देखिए, इसमें जिक्र भी बनारस के पान का हो रहा है, इसमें बातें भी बनारस से जुड़ी हुई हो रही है, और इसीलिए इस फिल्म के लिए तैयार किया गया था, यानी कि बनारसी बाबू के लिए, जो कि 1973 में 1973 में रिलीज हुई है, उसके लिए इस गाने को लिखा गया था। ये गाना कभी भी अमिताभ बच्चन के लिए था नहीं, शाहरुख खान के लिए था नहीं, ये गाना था हमारे भैया देवानंद साहब के लिए, उनके लिए इस गाने को बनाया गया था। लेकिन जैसे ही ये गाना डायरेक्टर के पास पहुंचा, प्रोड्यूसर के पास पहुंचा, और प्रोड्यूसर ने गाने की लाइंस देखी, गाने की लाइंस देखने के बाद देवानंद की शक्ल देखी और कहा ना बिल्कुल नहीं, ये हमारे कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि देवानंद का जो इमेज है, जो कैरेक्टर है, वो ऑडियंस की नज़र में ऐसी बिल्कुल है ही नहीं, वो पान चबाते हुए आ ही नहीं सकते, हम ये दिखा ही नहीं सकते, उनके ऊपर ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं सूट नहीं करेगा, लिरिक्स फिट नहीं बैठ रही हैं, और इसीलिए इस गाने को कर दिया गया कैंसिल। अब ये गाना वहाँ तो कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके बाद जब डॉन फिल्म आई, जब इसमें अमिताभ बच्चन नज़र आने वाले थे और अमिताभ बच्चन को कहीं ना कहीं पान खाते हुए नज़र आना था, तो उन्होंने इस गाने को उठाकर इस डॉन फिल्म के लिए पेश कर दिया। अब ये गाना यहाँ पर आकर हिट हो गया, सिलेक्ट भी कर लिया गया। तो जो गाना लिखा गया था हमारे देवानंद साहब के लिए, जो उनके कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रहा था, उनकी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं हो रहा था, वो जाकर मैच हुआ सीधे अमिताभ बच्चन साहब से, और उनकी फिल्म डॉन में इस गाने को कर दिया गया रिलीज़। गाना इतना हिट गया कि फिल्म से ज़्यादा लोगों ने इस गाने को पसंद किया, हर किसी की ज़ुबान पर उस वक्त ये गाना चल रहा था, और जो भी बनारस का पान खाने जा रहा था उसको ये गाना याद आ रहा था। स्पेशली कई लोगों ने बनारस का पान भी इसी गाने को सुनने के बाद खाना शुरू कर दिया। एंड इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, फैन बेस को देखते हुए, जब दोबारा से डॉन फिल्म बनाई गई शाहरुख खान के लिए, तो रीमेक वर्जन उठा करके दोबारा से इसमें डाल दिया। ना गैन, ये गाना अपने आप में हिट साबित हुआ था। तो गाने की शुरुआत हुई तो थी 1972 से 1973 की फिल्म के लिए, लेकिन लेकिन लेकिन वो चलते चलते चलते चलते आकर रुकी हमारे शाहरुख खान साहब के पास। अब आप देखिए, गाने और कहानियाँ, गाने और कहानियाँ शुरू कहीं और होते हैं, ख़त्म कहीं और होते हैं। तो अगर एक बार कभी आपकी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि कुछ डिले हो, कोई किसी के लिए कुछ मना कर दे, तो यकीन मानिए आगे जाकर हो सकता है प्लान ज़्यादा ज़बरदस्त हिट होने वाला है। हो सकता है बनारसी बाबू में ये गाना नहीं चलता, लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म में ये गाना चल भी गया था, और अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म में इतने ज़्यादा पान खाए थे कि उनका मुँह अंदर से कट चुका था बिकॉज ऑफ चूना। भैया चूना तो उनको लग चुका था, लेकिन ये फिल्म उतनी ही ज़्यादा पसंद की गई, उनके अवतार को पसंद किया गया, उनके कैरेक्टर को पसंद किया गया, उनकी पर्सनालिटी के साथ ये गाना फिट बैठा, और इसीलिए गाना आज भी आपके दिलों पर राज कर रहा है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगले सॉन्ग की तरफ, जो हम लेकर आए हैं ऑफ कोर्स ओरिजिनल फिल्म का ओरिजिनल गाना, यानी गदर फिल्म से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मैं निकला गड्डी लेकर। अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हैं या फिर कहीं रोड पर हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, और ये गाना आपने प्ले नहीं किया, तो आपने क्या किया? भैया हम जब भी निकलते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, पापा ड्राइव कर रहे हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, और ये गाना मैं ज़रूर प्ले करती हूँ, क्योंकि उस वक्त हम तो गाड़ी लेके निकल चुके हैं ना। तो आइए आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ, और थोड़ा सा मूड बनाते हैं घूमने के लिए। अगर नहीं भी घूम रहे तो घर पे बैठे बैठे घूम लेते हैं, इमेजिनेशन के पैसे थोड़ी चाहते हैं। आइए इमेजिन करते हैं खुद को, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते रहिए सनी का स्पेशल, आपका अपना इंटर टॉप 20 विद राज रति, सॉन्ग नंबर 11, सुनते रहिए।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 11.

0: और तुरुरू तुरुरू करते हुए हम वापस से आ चुके हैं, क्योंकि आप सुन रहे थे ये काली काली आंखें तुरुरू। एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेश त्रिपाठी, जो लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और इसके बाद है हमारे महेंद्र दीपन जी का मैसेज, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्कार अर्जुनदी मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। एंड इसके बाद लिखा है, मैंने देखी है हॉरर फिल्म अक्षय कुमार की, नाम पता नहीं 10-11 साल पहले, लेकिन अब नहीं देखता हूँ। काहे, अब आपकी हॉरर फिल्मों से काहे दुश्मनी हो गई है, इतनी तो अच्छी होती हैं। हालांकि अब आपको डर आती कम हज आती जाता है वो अलग बात है, लेकिन मज़ा तो आती है ना। एंड इसके बाद जुड़े हमारे साथ नाजिया अंसारी जी, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून, ओ हो हो हो हो, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। उन्होंने मैम का बताई, तुमका वही बताई जो आपको पता हुई, फिलहाल अवधि मुझे नहीं आती लेकिन कोशिश कर लेती हूँ। और आपका स्वागत करते हैं हमारे टॉप 20 में। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, थोड़ा सा धूम धड़ाना कर लेते हैं, बिकॉज ओम शांति हमसे पेश करने जा रहे हैं हम आपके लिए अभिजीत की आवाज़ में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पे फिल्म आया गया धूम ताना सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए इंटर टॉप 20, मिलते हैं इस गाने के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, एंजॉय करते रहिए।
1: रेडियो 11.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9।

अरे भैया पानी खा के हम वापस आ गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप पानी पीते होंगे, हम पानी खाते हैं। फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 एंड महेंद्र जी लिख रहे हैं, मैं इसीलिए हॉरर फिल्म नहीं देखता हूँ क्योंकि डर लगता है मुझको। आपको सच में डर लगता है? मुझे तो लगता है आप डराने वाले लोगों में से। हाँ, आप डरने वाले लोगों में से ही आज ही मुझे पता चला है। फिलहाल के लिए इसके बाद हमारे साथ जुड़ गई हैं सविता जी और लिख रही हैं, हाय मैं आ रही हूँ धूम ताना नाना करने, आपका स्वागत है और आइए मिलकर करेंगे, एंजॉय करेंगे। महेंद्र जी का नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे इमोजीज भेज दिए हैं एंड फिर से इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया गया है कि नतीजे आपने मेरी प्लेलिस्ट चुरा ली। अजी, हमने नहीं चुराई है, हमारा दिल से दिल तक का रिश्ता है, पता नहीं कैसे लेकिन आपके गाने मेरे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मैं कुछ नहीं करती, मैंने किसी की प्लेलिस्ट नहीं चुराई है। इसके बाद आया है कि हमका बहुत घूमनी आ रही है। ओके, तो आपको अगर घूमनी आ रही तो राहुल सर को भी घुमा कर लेकर आते हैं, यहाँ बैठाते हैं और आपसे पूछते हैं कि भैया क्यों आ रही है आपको घूमनी इतनी, क्या आपने पानी पिया था? अगर नहीं तो जाके पानी खाकर आइए थोड़ा सा। एंड इसके बाद आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, थोड़ा सा गाना और एंजॉय करते हैं क्योंकि अभी तो हमारे पास है 40 मिनट और हम एंजॉय करेंगे। हंगामा हो गया। जी सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद आरजे नती और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM।

और जिसको पानी से नशे होकर हंगामा कर दे वो इंसान है हम, ना हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद जी फ्रॉम मनकापुर लिख रहे हैं, पत्नी दर्द से कराते हुए, सुनो मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ओ माय गॉड, शायद हार्ट अटैक आया है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ ना। पति, जल्दी जल्दी मैं ठीक है फोन करता हूँ, जरा अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। चलो रहने दो, अभी रुक जाओ, ठीक लग रहा है, कल जाके क्लिनिक पे दिखा लूंगा, हा हा हा हा हा हा हा हा। फिलहाल के लिए बहुत ही जबरदस्त जोक था, लेकिन वो अलग बात है कि मेरी हंसी थोड़ी ज्यादा ही जबरदस्त हो गई थी। एंड इसके बाद लिखा है महेंद्र जी ने, बहुत डर लगता है मैम जी, क्योंकि रात में फिर डरता हूँ, सपने में वही देखता हूँ, नींद नहीं, जब नींद नहीं आती तो सपने में आप देख कैसे रहे हैं, या तो आप सपना देख रहे हैं या तो आपको नींद नहीं आ रही, आप एक सिलेक्ट कर लो, क्योंकि दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ में। एंड लो मैम आज थोड़ा हंस लो, अजी हम हंस तो बहुत ज्यादा रहे, हम इतना हंस रहे हैं कि हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत हंस लिया है, और इतना हंस चुके हैं कि मेरी मम्मी कहने लगी है चुप बैठा करो तुम बहुत हंसती हो। एंड इसके बाद हमारे इम्तियाज जी जुड़े हैं, चल रहे, गुड आफ्टरनून टू यू। ओके उन्नति मैम, हंगामा नहीं पूरा ड्रामा क्वीन है, ओके ये टाइटल मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एंड हमारे नाजिया जी लिख रही है, आपसे ज़्यादा हंगामा कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैं अपने शो में आपके लिए बचा रही थी हंगामा। एंड आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। जी हाँ, वो मैंने लिखा बस था कि पॉइंट टू बी नोटेड, एंड बोलने वाले तो हम पूरा हैं कि पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एंड आइए इन्जॉय करते हैं, थोड़ा सा मिक्स गाने की तरफ चलेंगे, थोड़ा रीमेक गाने की तरफ चलेंगे, और आप इन्जॉय करने जा रहे हैं दम मारो दम, लेकिन लेकिन लेकिन फुल ऑन डीजे स्टाइल, क्योंकि आज आपकी आर्जुनती आर्जिंग कम डीजिंग थोड़ा ज्यादा करने वाली है, तो एंजॉय करते हैं, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और आप इंजॉय कर रहे थे दम मारो दम। और इसमें एक लाइन तो बहुत सही है भैया कि दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, तो दुनिया की परवाह करे क्यों। इसीलिए चार लोगों की बातें ना सुना करो जनाब। आइए बढ़ते अगले गाने की तरफ और इंजॉय करते हैं। अगला गाना आपके लिए काटा लगा, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप बताइए क्या ख्याल है आप, ये संडे को स्पेशल बनाना, जैसा मेरा आपसे वादा रहता है कि आपका संडे यानी कि मेरी जिम्मेदारी उसको कैसे भी करके बहुत स्पेशल बनाना है। और आई होप मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही हूँ। फिलहाल के लिए हमारी नाजिया जी लिख रही होती, मैम आपके प्रोग्राम में हमारे दुख परेशानी सब भाग जाते हैं, एकदम सच्ची बोल रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी कॉम्प्लीमेंट के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, फिलहाल हम चाहते हैं कि आपका संडे टेंशन फ्री हो, और आज तुम्हारा वैसे भी चिल आउट वाला शो था। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है दम दम फ्रॉम बैंड बाजा बाराती। एंड इसके बाद हम चलेंगे थोड़े से पुराने यानी कि आपके 90s वाले सॉन्ग को लेकर के, तुझे देखा तो ये जाना जान क्या देखा है बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 5 इन द टॉप 20 का सुपर डुपर हिट वाला प्लेलिस्ट अपनी आशुति के साथ। 89.6 FM
1: presents India Top 20 songs. Song number 5.

0: हाँ भैया, बैंड बाजा बराती से बैंड बजा चुके हैं और हम बढ़ेंगे अगले गाने की तरफ। अगला गाना थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं आपको, रोमांटिक गाने को प्ले कर देते हैं आपके लिए। आप सुनने जा रहे हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, बहुत ही प्यारा सा गाना है। इसके बाद हम वापस से आपको लेकर जाएंगे एक हाई बीट सॉन्ग की तरफ। और जाने से पहले आज का जो इकलौता गाना होगा वो आपके बेहद दिल के करीब होने वाला है। कौन सा है ये आपको बता दें, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए टॉप 20 विद राज युनिति।
1: Radio Gala 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 4.

0: All right, तो आपने enjoy किया 90s का एक romantic गाना, और हमारे महेंद्र जी का कहना है कि ऐसे ही 90 के गाने बजाते रहिए, काहे नहीं, जरूर बजाएंगे। एंड इसी के साथ हम बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की ओर। और वाह वाह वाह, आगे भूल गई है, वाह वाह वाह, क्या आगे आप भूल गई, कोई बात नहीं, वाह वाह वाह, क्या बात है, आगे हमने पूरा कर दिया। एंड इसके बाद लिखा है ओके, तो आप ही के लगातार मैसेज आ रहे हैं। अरविंद जी लिख रहे हैं, उन्होंने मैम मुझे पकड़ लो नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। तो पकड़ लो नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, नहीं लड़ना नहीं, देखो अच्छे बच्चे कभी लड़ा नहीं करते हैं। एंड उन्नति मैम आपकी बहुत याद आ रही है क्योंकि आज आपसे बात नहीं हुई। नाजिया जी ऐसा लिख रही हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डियर हमारी बात हो रही है और हम भी आपको थोड़ी देर पहले तक मिस कर रहे थे, लेकिन अब आप आ चुकी हैं इसलिए हम बल्ले बल्ले कर रहे हैं। और उन्नति जी, उन्नति मैम जी, हमारी चैट सार्वजनिक मत करो, हा हा हा, आपकी चैट हमने सार्वजनिक नहीं की थी, वो तो हमने नाजिया जी की थी क्योंकि हमें वो चैट बहुत पसंद आई थी। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। सरजीत की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं रंग रारा री री रारा, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने में, तो तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गैरासरी 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 3।

0: और आप एंजॉय कर रहे हैं सरबजीत की आवाज में तेरे लख दा हुलारा रंग रारा रीनी रारा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग साथ खून माफ से, एक दो खून तो माफ होना ही चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए यार, ऐसे होता तो अभी तक न जाने कहां पर क्या कुछ हो जाएगा होता, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है और इसमें जो आवाज है वो हमारी उषा जी की है। तो आइए एंजॉय करते हैं डार्लिंग। जी हाँ, एंड आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सॉन्ग नंबर वन लेकर आऊंगी मैं आपके लिए 90s का आपका बेहद ही स्पेशल गाना। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने रेडियो रेडियो 89.6 एफएम पर।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 2।

पब्लिक में सनसनी कोई और नहीं, इस गाने की सिंगर और इस गाने की हीरोइन दोनों ने मिलकर मचा रखी थी। यानी कि एक का नाम था प्रियंका चोपड़ा जो आपको नजर आई थी साथ खून माँ फिल्म के अंदर, और दूसरी थी हमारी उषा जी जिन्होंने बड़ी सी बिंदी पहन के साड़ी गाया था क्लब्स में गाना। लोगों को लगा था कि यार क्लब में गाना गाने वाली लड़की कैसी होती होगी, और उन्होंने दिखाया था कि क्लब में गाना गाने वाली लड़की ऐसी होती है, बॉलीवुड में अपना नाम बनाती है, अपनी जगह बनाती है। कहा जाता है उनसे कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, इसके बाद भी वो कहती है ऐसे कैसे अच्छी नहीं है, लेट मी मेक माई ओन वॉइस। जी हाँ, जहाँ हर आवाज को हर सुर को एक जगह मिलती है। कहा जाता है कि लड़कियों की आवाज बहुत महीन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन सारे कैटेगरीज को, इन सारी बाउंड्रीज को तोड़ते हुए उषा जी ने अपनी एक अलग अंदाज में, अपनी एक अलग आवाज में एक जगह बनाई थी बॉलीवुड के अंदर, और शुरुआत ऑफकोर्स उन्होंने क्लब में गाना गाने से किया था। तो सनसनी उन्होंने मचा रखी थी पब्लिक में जब उनका पहला गाना रिलीज होता है, और इसी के साथ जब रिलीज हुई थी प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म तो पूरे बरेली से लेकर पूरे भारत में सनसनी फैली हुई थी कि आई हमारी बरेली की बिटिया ऑन टीवी, चलो देखते हैं हुआ क्या। देखने के बाद भले ही लोगों ने कहा कि ओ माय गॉड दिस इज टू मच, वो अलग बात थी, लेकिन सनसनी तो दूसरों ने फैलाई हुई थी। और यही कमाल की बात है कि अगर आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो आप भी सनसनी फैला सकते हैं, फिर आप भी यही गाना अपनी फोटो के नीचे लगा भी सकते हैं। एंड आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिलहाल खड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा गाना आपके लिए जरूर पेश करेंगे जो आपके दिल के बेहद करीब होने वाला है, और वो गाना है एक मुलाकात जरूरी है सनम। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही रोमांटिक गाना है, स्पेशली जो पुराना वाला सॉन्ग है मुझे बहुत पसंद है। एंड जाने से पहले आपके कुछ मैसेजेस को और ले लेते हैं। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। गाना गर्दा उड़ा दिया, धूल की धरती कहां थी धूल, अभी बताते हैं, रुकिए साफ सफाई करके आते हैं। इसके बाद लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया बाय द वे। एंड इसके बाद लिखा है उन्नति मैम जी, प्रोग्राम प्रस्तुति की अलग ही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड रोको ना मुझे सिंगर करने दो। जी हाँ, आप गाना गाइए, बेशक गाइए, और आप गाते ही रहिए मुझे लगता है। बस इसी गाने के बाद हम आपसे मिलेंगे लेकर के अगला प्रोग्राम क्लिनिक ज्ञान असली, जिसमें बात करेंगे आपके साथ आपके सेहत की, तो सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल आज का प्लेलिस्ट, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अब चाहूंगी आपसे इजाजत, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बस कुछ ही पलों में, स्टे ट्यून्ड।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: अंजी और वादे को पूरा करते हुए हम भी वापस आ चुके हैं आपके अपने वाले कार्यक्रम यानी कि क्लिनिक ज्ञान असली में, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरुषि, और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी। आपका स्वागत करते हैं सर।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और जो हमारे लिसनर्स हैं हमको सुनने वाले हैं वो भी अच्छे ही होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और हमें कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल करके आप अपनी समस्याओं को पूछिए और आप भी अच्छे हो जाइए।
0: जी हाँ, हम आपको बता दें ये है आपके सेहत का कार्यक्रम क्लिनिक ज्ञान असली, जिसमें बात होती है आपके अपने सेहत की। तो भैया अगर आपका कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में भेज सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 6393316429। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। फिलहाल आपसे बहुत सारे सवाल हम वापस से लेकर आ चुके हैं, एज यूजुअल मैं हर संडे कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ।
1: जी आप हर संडे बहुत कुछ लेकर के आती हैं।
0: जी तो आज एनी गेस क्या हो सकता है?
1: मुझे वैसे तो ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, बट कुछ नया ही होगा, कुछ हमें लग रहा है ऐसा ट्रेंडिंग सा होगा जो आजकल ट्रेंड में रहता है, ऐसा ही कुछ हो सकता
0: नहीं,
1: है।
0: ट्रेंड में तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बिकॉज एक नॉर्मल इंसान के नज़रिए से जब हम इन लोगों को देखते हैं तो लगते हैं सबके सब सेम है और हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कई लोग उनका मजाक बनाने लग जाते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ थोड़ा सिंपैथी दिखाते हैं।
1: जी
0: और इसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम।
1: जी जी, और कहीं ना कहीं बिल्कुल आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे वीडियोस भी देख रहा हूँ जिसपे ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो डाउन सिंड्रोम्स के शिकार हैं और उनके साथ तमाम तरह के क्रिटिसाइज, तमाम सारे अवेयरनेस वीडियोस, तमाम सारे सोशल एक्सपेरिमेंट और तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है और क्या वो कारण होते हैं, क्या वो वजह होती हैं जिसके वजह से ये बीमारी होती है। तो चलिए देखते हैं उन्नति मैम आज क्या पूछने वाली हैं, क्या बताने वाली हैं और क्या चर्चा करने वाली हैं।
0: जी हाँ, जैसे कि हर एक बार बेसिक से ही हम शुरू करते हैं और डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी क्या चीज़ होती है और क्यों ये एक नॉर्मल इंसान से इतना डिफरेंट दिखता है वो बच्चा जो डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है, एंड ये मेडिकल कंडीशन है, ये कोई बीमारी है या फिर ये बस कुछ ना कुछ जेनेटिक फॉल्ट है।
1: बिल्कुल, अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और चूंकि एक बहुत ही अच्छा गहरा और विस्तृत टॉपिक है चर्चा करने के लिए। देखिए आपने पूछा कि क्या ये जेनेटिक कंडीशन है, बीमारी है या क्या है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। देखिए एक विशेष प्रकार की विकृति, विकृति मतलब डिफॉर्मिटी आप कह सकते हैं, हमारे शरीर के डेवलपमेंट में। जैसे आप नॉर्मली एक बच्चे को देखेंगे वो पैदा होता है, फिर धीरे धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा होता है, शरीर विकसित होता है, और शरीर विकसित होने के साथ साथ उसकी मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं, जो उसके मानसिक शक्ति कह सकते हैं या IQ लेवल कह सकते हैं, जिन भी चीज़ों को आप समझ सकें, वो भी धीरे धीरे डेवलप होती है। 5 साल के बच्चे की समझने की सीखने की समझ और 10 साल के 15 साल के ये आप मतलब अमूमन डिफरेंट पाएंगे ज़्यादातर परसेंट में। बट कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो शारीरिक रूप से बड़े तो हो रहे हैं बट बड़े होने के साथ साथ उनका जो हाथ पैर मुंह आँख कान नाक ये कुछ विकृति के साथ डेवलप हो रहे हैं। मतलब जैसे हाथ सीधे होते हैं, उंगलियाँ सारी चलती हैं, ये सारी चीज़ें ना करके कोई ना कोई उसमें डिफर्मिटी होती है बॉडी के किसी न किसी पार्ट में। कई बार क्या होता है कि पार्ट सारे अच्छे ग्रो हो जाते हैं बट उसके बावजूद जो है केवल मेंटल प्रॉब्लम रह जाती है, कई बार आंखों का मिस अलाइनमेंट होता है। तो मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको ओवरऑल जब आप समझते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप में जो विकास होते हैं हमारे शरीर में उनमें बाधा आती है और वो पूर्णतया विकसित ना हो पा करके उसमें विकृति रह जाती है।
0: अच्छा सर, इसमें क्रोमोसोम का क्या खेल है?
1: सबसे पहले तो मुझे लगता है कि क्रोमोसोम को एक छोटा सा ग्लिम्प्स हमें बता देना चाहिए कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं
0: और एक नॉर्मल इंसान में कितने होते हैं, मैं ये भी चाहूंगी।
1: जी जी, 23 और 46 के पेयर्स हम लोगों ने बहुत इसके पढ़े हैं, 23 पेयर और 46 यूनिट्स। तो देखिए, क्रोमोसोम्स को आप यूं समझिए जैसे मतलब बुक्स की लैंग्वेज तो बहुत हमने पढ़ी है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसको हम एक साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्रोमोसोम्स जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे बॉडी होती है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग तरह के टिश्यूज़ से बने होते हैं। टिश्यूज़ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया और तमाम चीज़ें। जब आप उससे भी सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तब आप पाते हैं डीएनए, मतलब जो आपके बॉडी की बॉडी टाइप की संरचना है वो कैसी होती है, और जो डीएनए होते हैं उन डीएनए के अंदर गुणसूत्र होते हैं। अब आप इसको समझ सकते हैं कि कितनी माइक्रो लेवल की चीजें होती हैं ये।
0: यस सर, और बिल्कुल कहा भी जाता है कि मतलब इंडिया का जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा बीमारियों से भरा जा रहा है।
1: हाँ, बीमारियों से भरा जा रहा है और इसके विभिन्न कारण हैं, इसके विभिन्न कारण हैं।
0: आपसे माफी चाहूंगी, एक कॉल है हमारे पास।
1: ठीक है,
0: हेलो।
2: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका नाम?
2: हम श्री देवी प्रसाद।
0: देवी प्रसाद जी, आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञान असली में।
2: नमस्कार, गुड इवनिंग
1: जी। बहुत बहुत नमस्कार देवी प्रसाद जी, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा वाले शो में। बताइए, आज क्या जानना चाहते हैं आप?
2: सर जी, जैसे मच्छर अच्छर काटते हैं कभी कदार
1: जी,
2: तो जहाँ तक पॉइंट रहता है वहाँ तक कोई बात नहीं
1: जी,
2: और जैसे नीचे पैर में काट लेते हैं
1: जी
2: तो खजवाने लगता है और उसके बाद में छोटा छोटा दाना निकल कर फोड़ा बन जा रहा है सर
1: जी,
2: समस्या है।
1: ठीक है, देखिए कुछ विभिन्न तरह के मच्छर होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, कभी वो दाने हो जाते हैं, कई बार संक्रमित मच्छर होते हैं, और बारिश के मौसम में मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां जो है वो पनपती हैं जिनके वजह से ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए, इसका सबसे बेहतर उपाय तो मच्छरों से बचाव है, रोकथाम है। मच्छरों से बचें, और अगर पैरों में लगते हैं, ऐसे जगह पर आप रहते हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जैसे ओडोमॉस वगैरह क्रीम का उपयोग करें, और ऐसी चीजों से बचाव करके आप इनसे बच सकते हैं
2: जी। सर, तो जैसे फोड़ा हो गया है तो वो कैसे अब करें, खजवा रहा है सर?
1: ठीक है, देखिए अगर फोड़ा हो गया है और वो सूख नहीं रहा है तो इसके लिए आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। एक बार बेहतर होगा कि आप ये बताएं कि फोड़े में क्या आपके पस भी आ रहा है, मवाद जैसा दिख रहा है कुछ?
2: वैसे हल्का रहता है सर जी, मवाद वाद कुछ नहीं दिख रहा है।
1: ठीक है, तो आप एल्थ्रोसिन 500 नाम की दवा ले लीजिए, इसके साथ में आप सोफ्रामाइसिन नाम की क्रीम इस पर लगा सकते हैं, और इससे संभवतः आपका जो फोड़ा है वो सूख जाएगा
2: जी। सर
1: जी, इसके अलावा और कोई जानकारी आप चाहते हैं?
2: और सर कोई जानकारी नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, और हमारे एक प्यारे से लिसनर जुड़े थे देवी प्रसाद जी, और मच्छरों से संबंधित इनका सवाल था। आशा करते हैं कि हमारा जवाब इनको सहायता करेगा।
0: चलिए, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, डाउन सिंड्रोम की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा डाउन सिंड्रोम में जो भी बच्चे होते हैं वो स्पेशली सबके सब एक जैसे दिखते हैं
1: जी।
0: इसीलिए कई लोग उनका मजाक भी बना देते हैं कि ये तो सभी सेम लग रहे हैं, सबका राउंड फेस है, वही वैसी ही आंखें, वैसी ही नाक है।
1: जी जी, ऐसा भी देखने को मिलता है, और ज्यादातर केसेस में मतलब आप अपीयरेंस से इन चीजों को जज कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा बीमारी से
0: सर ऐसा है। क्यों होता है कि उन सबकी अपीयरेंस ऑलमोस्ट सेम लगती है?
1: देखिए, चूंकि जो डाउन सिंड्रोम होता है, अब हमने पहले इसके बारे में ये जाना कि ये क्या होती है बीमारी, बीमारी के बारे में जाना कि शारीरिक मानसिक विकास जो है ठीक से नहीं हो पाता है, विकृति हो जाती है, चेहरा गोल सा, मुंह फूला हुआ, होंठ सूजे हुए टाइप के, ऐसे कॉमनली आपको ऐसी संरचना देखने को मिलती होगी। देखिए, डाउन सिंड्रोम ये विकृति तो है ही है, और किस माइक्रो लेवल पे है, मतलब जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें थोड़ी गड़बड़ी होने के वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है, और इस बीमारी में हमारे शरीर के कुछ जो स्पेशलाइज्ड अंग होते हैं, जैसे जो हमारे बॉडी का ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। दूसरे जो रेगुलेटरी हार्मोन्स, जो हमारे मेटाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायराइड फंक्शनिंग, ये प्रभावित होती है, जिसके वजह से बॉडी में सूजन, भवरन, ऐसा कई सारी चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा और भी मतलब जो हमारे बोन के, जैसे जो ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर होने पे जो हड्डियों में मतलब खिंचाव होता है, बढ़ता है, वो मतलब रेगुलर ना हो करके कोई हाथ पैर बड़ा हो जाएगा तो कोई हाथ छोटा रह जाएगा, ऐसी समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्रोथ हार्मोन होता है, वो एक सेम वे में डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको कंप्रेस करती है बॉडी या उसको फुल्ली बॉडी में रिलीज नहीं होने देता है। इस कारणवश जो शारीरिक संरचना है, जैसे चेहरे का गोल होना, मुंह का सूजा हुआ जैसा लगना, होठों का सूजा हुआ लगना, फूला हुआ लगना, ये आपको लक्षण कॉमनली देखने को मिलते हैं।
0: ऑल राइट, और इसीलिए ऑलमोस्ट ये बच्चे सेम दिखाई पड़ते हैं, बट क्योंकि नॉर्मल लोग इसको बहुत जज कर लेते हैं ये कह करके कि जिनको डाउन सिंड्रोम है या फिर जो भी इस तरह की जेनेटिक चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं
1: जी,
0: उनको कहा जाता है कि अरे ये तो इनका तो भविष्य ही नहीं है कुछ, ये कुछ कभी सीख नहीं पाएंगे। क्या ये सच में है कि मतलब ये बच्चे कभी कुछ सीख नहीं पाते हैं?
1: हाँ देखिए, अब ये प्रश्न सिर्फ मुझे लगता है बायोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक मुझे लगता है कि एक सामाजिक, एक सोशल क्वेश्चन भी है, एक रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन भी है, और कहीं ना कहीं इंसान के नज़रिए को बदलने की क्षमता रखता है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न को मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गंभीरता से हमारे लिसनर सुने। देखिए, बेशक समाज में ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड एबल्ड पर्सन, जिसको पहले आप डिसेबल्ड लोग कहते थे, और भी तरह तरह के इनके लिए नाम हुए और फिर उनमें संशोधन हुआ। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड, ये भी एक वर्ड यूज़ किया जाता था किसी समय में, तो वो जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, जिनका हाथ पैर, शारीरिक या मानसिक विकास पूर्णतया नहीं हो पाया है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और हमारे समाज में सम्मान रखने का हक और अधिकार रखते हैं। यदि देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रश्न था कि क्या वास्तव में मानसिक विकास इनका नहीं हो पाता है या कुछ भी नहीं कर पाते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, और सारे जो डाउन सिंड्रोम के हमारे पेशेंट्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। उनमें भी कई सारे कैटेगरीज होती हैं, कुछ होते हैं जिनकी मेंटल एबिलिटी एकदम पूरी तरह अच्छे से फंक्शन कर रही होती है, सिर्फ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी फिज़िकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी होती हैं, विकसित होती हैं, बट मेंटल एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो इसके शिकार हैं, इस बीमारी के, लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो अच्छी सूझबूझ और समझ रखते हैं और उन्होंने उस चीज़ों को साबित भी किया है। तो ये हर व्यक्ति के लिए सामान्य और एक बराबर नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
0: ऑल राइट भैया, ये बात होती है। अच्छा सर, ये बताइए
1: जी,
0: अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या इस सिंड्रोम को, और इसको हम ठीक कर सकते हैं?
1: कुछ ऐसे जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिनको डिटेक्ट इसका किया जा सकता है, वो जेनेटिक टेस्ट भेज करके उनका जो DNA स्ट्रक्चर है वो रीड करके, एनालिसिस करके ये टेस्ट हो जाता है। बट इसमें क्या है कि ये टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन और प्रचलित नहीं है, और मतलब मुझे लगता है रेयरली कहीं 1000 में एक लोगों को ये कराया जाता होगा, या वो विलिंग भी करते होंगे उसको कराने के लिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये इतना पॉपुलर नहीं है, लोगों को इतना पता भी नहीं है, तो इसके टेस्ट लोग कराते भी नहीं है
1: जी,
0: दिस इज द रियल रीजन। बट अगर कोई कराना चाहे तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस मंथ में वो इसके टेस्ट करा सकते हैं?
1: देखिए, इसके लिए ऑप्टिमम मंथ लगभग 2 से 3 महीने का। वैसे ज्यादातर जो ऐसे टेस्ट होते हैं जो DNA और ये सारी चीजों को चेक करने के लिए होते हैं, तो ये बेसिकली 3 मंथ पे होते हैं, तो 3 मंथ के आसपास इसका, लेकिन इसका निर्धारण एक उपयुक्त जो चिकित्सा सलाहकार होगा, जो आपका डॉक्टर होगा, वो वही कर सकता है। फिर भी मैं आपको एक नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि 3 महीने पर इसके लिए स्पेशलाइज टेस्ट भेजा जा सकता है, और इसे भेज कर को ये चीज़ें कन्फर्म किया जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम होने की संभावनाएँ कितनी अधिक प्रबल या कितनी अधिक सामान्य है।
0: अच्छा, आप चलिए एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि मिथ पर हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी का पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है तो क्या उसका सेकंड चाइल्ड भी डाउन सिंड्रोम से सफर करेगा?
1: देखिए, ये चूंकि एक जेनेटिक बीमारी है
0: जी,
1: जेनेटिक बीमारी बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि हाँ ये दूसरे बच्चों में या फिर जितनी भी संतानें हैं उनमें कुछ ना कुछ उसका मिलता जुलता सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है.
0: बिल्कुल.
1: बट ये 100% मतलब श्योर नहीं है कि आपका दूसरा बच्चा भी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित ही होगा. ये कई बार होता है कि जो बर्थ में डेवलपमेंट होती है फीटस की, फीटल डेवलपमेंट में, उसमें कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं. कई बार जो ट्रांसफ़र ही होता है डीएनए, वो उस ट्रांसफ़र डीएनए में ही ग्लिचेस आ जाते हैं. तो ये चांसेस मतलब 50-50 हैं, बट कुछ चांसेस ज़्यादा लिए जाते हैं क्योंकि जेनेटिक बीमारियाँ ज़्यादातर कॉमनली सभी सिबलिंग्स में देखने को मिलती है.
0: ऑल राइट. मतलब ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है.
1: अगर परसेंट की बात किया जाए तो ना होने की संभावनाएं कम है, होने की संभावनाएं ज्यादा हैं.
0: ओके. क्योंकि ये जेनेटिक है, आपके डीएनए से ट्रांसफर हो रही है, तो ये हो सकती है
1: जी. और इसी देखिए इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए

0: परीक्षण चाइना में किया गया है, बट अभी ये इतना कॉमन और इतना सरल नहीं हुआ है जितना कि IVF आज के ज़माने में आपको देखने को मिलता है, बट आने वाले समय में विज्ञान जल्दी ही इसको भी अचीव कर लेगा।
1: अच्छा सर, एक और बात है, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को नोटिस किया है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी बोलना चलना सीख लेते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2-3 साल तक अपने पैरों पर सही से खड़े नहीं होते, बैलेंस नहीं बना पाते, उनके मम्मी पापा काफ़ी इस चीज़ को लेकर टेंशन में कि क्या मेरा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसकी लाइफ आगे जाकर कैसी होने वाली है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बच्चे जिनका ग्रोथ थोड़ा स्लो चल रहा है या वो एक अपनी सर्टेन एज तक नहीं चल पा रहे हैं, इनको कोई इशू हो सकती है क्या, इनके लिए कोई टेस्ट कराना चाहिए, कोई थेरेपी की नीड होती है?
0: देखिए, सामान्यतः यदि आप देखेंगे तो लगभग 12-13 महीने 14 महीने के बच्चे जो होते हैं वो अपने पैरों पे खड़े होने लगते हैं, थोड़े थोड़े
1: क्रॉल करने लग जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे तो
0: ये करने लग जाते हैं। कभी कभी ये अवधि 2-3 महीने 6 महीने लेट हो जाती है। अगर 2 वर्ष के ऊपर भी यदि आपका बच्चा ठीक से नहीं चल पा रहा है तो बिल्कुल आपको चिकित्सा सलाह लेने की आवश्यकता है। कई बार कुछ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के या कई बार न्यूरो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स इसको देखते हैं और वो इसको चेक करते हैं। कुछ विशेष टेस्ट होते हैं जैसे जिनसे EEG करके ब्रेन का स्टेटस चेक करना या फिर ऑर्थोपेडिक्स के थ्रू हाथों पैरों में आने वाली मूवमेंट और सिग्नल्स को चेक करना, इसे चेक करके वो अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इस बच्चे को आगे आने वाली ऐसी समस्याएं होने वाली हैं या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया से होकर के गुजर रहा है। तो यदि 1.5-2 वर्ष तक भी आपका बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो थोड़े कदम नहीं बढ़ा रहा है, तो आपको बिल्कुल चिकित्सा सलाह लेने की आवश्यकता है।
1: ऑलराइट, और अब मेरा है एक और सवाल कि क्या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं उन्हें स्पीच थेरेपी देनी चाहिए?
0: हाँ, अब ये भी अच्छा सवाल है हमारे आज के विषय से संबंधित कि क्या उन्हें स्पीच थेरेपी देनी चाहिए। देखिए, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में हमारे बॉडी में मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हम मेडिसिन दे करके या फिर सर्जरी करके ठीक कर सकें।
1: जी,
0: मतलब जैसे कोई ट्यूमर है किसी जगह पे, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कई बार कोई हिस्सा नहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए सर्जरीज होती हैं, उसके लिए दवाइयाँ होती हैं जो उसको स्टिमुलेट करती हैं। बट डाउन सिंड्रोम में क्या है, ऐसी कोई दवा नहीं। अच्छा, इसमें समस्या क्या होती है कि जो बॉडी का डेवलपमेंट है, जैसे आप समझिए कि अगर आपके बॉडी में आपकी किडनियाँ डेवलप नहीं हो पाई हैं, जैसे एक भारत के ही एक डॉक्टर ने 5 दिन की बच्ची का लिवर ट्रांसप्लांट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
1: दिन का बच्चा और उसका भी ट्रांस,
0: हाँ, तो अब आप समझिए जैसे उस बच्चे का लीवर काम नहीं कर रहा था, वो लीवर खराब था, वो बाकी फंक्शनिंग नहीं था, सारी चीजें सही थी, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि डॉक्टर्स के पास ये ऑप्शन था कि उनके पेरेंट्स में से किसी का लीवर लेकर के उस बच्चे को ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो बच्चा सर्वाइव कर जाएगा। और वो बच्चा फीमेल चाइल्ड थी, बच्ची थी, और वो अभी बड़ी है, यंग है, लगभग 20-25 साल उसकी एज भी है।
1: जी,
0: डाउन सिंड्रोम में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आपका कोई एक ऑर्गन, क्योंकि विकृति सिर्फ दिमाग में नहीं, ब्रेन में नहीं। अच्छा, ब्रेन में क्या है कि जैसे आप ब्रेन ट्रांसप्लांट तो अभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ ट्रांसप्लांट करके, सर्जरी करके या स्पेशली टारगेट मेडिसिन दे करके जो उसको टारगेट करे बीमारी को, हम उसको ठीक कर सकें। उस बीमारी को ठीक करना या उसको और इम्प्रूव करना, आप जो भी वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहें, उस समस्या को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे बच्चों में कई बार स्पीच थेरेपीज, कई बार और भी दूसरी थेरेपीज जैसे कि जो मसल मूवमेंट्स हाथों पैरों में हैं, इसके लिए भी कई बार कुछ थेरेपीज देनी पड़ती हैं, तो स्पीच थेरेपी देना चाहिए इनको। और भी कई सारे इनके लिए स्पेशलाइज्ड क्लासेस होते हैं, इनके लिए विशेष कई सारे ऐसे बड़े स्कूलों में अलग क्लासेस बनाई जा रही हैं जो इनके अकॉर्डिंग रिसर्च करके और कैसे इनको पढ़ाया जाए, कैसे इनको सिखाया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। तो इनको स्पीच थेरेपी देनी चाहिए और इनको कहीं ना कहीं आवश्यकता है एक अच्छी काउंसलिंग की, जो कि स्पीच थेरेपी जैसी जो पद्धतियां हैं उनके माध्यम से ही पॉसिबल है। तो ये देना चाहिए, ये अच्छी हैं और कई बार इसमें कारगर सिद्ध होती हैं और इम्प्रूवमेंट करती हैं।
1: अच्छा सर, हमने एक बार नोटिस की है, जब भी किसी पेरेंट से स्पेशली कहा जाए कि आपने बच्चे को थेरेपी देने लगो
0: जी,
1: तो उन्हें लगता है कि थेरेपी का मतलब तो सिर्फ एक ही होता है कि आपका बच्चा पागल हो गया।
0: हाँ,
1: फिर चाहे हम उसको फिजिकल थेरेपी की बात कर रहे हो, स्पीच थेरेपी की बात कर रहे हो, मेंटल थेरेपी की बात कर रहे हो, मतलब थेरेपी का नाम सुनते ही माँ बाप अपने

0: कदम पीछे खींच लेते हैं कि नहीं, थेरेपी का नाम कोई सुनेगा तो मेरे बच्चे को वो जज करेगा और वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है
1: जी।
0: बट वहीं पर कुछ माँ बाप सामने निकल कर आते हैं जिनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब थेरेपी के लिए, तो वो जाते भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक थेरेपी का शब्द जो इतना डरावना सा लोगों ने बना रखा है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे, सिंपल कर दे, ताकि लोग समझ सके कि थेरेपी कोई बीमारी के लिए नहीं, उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है समटाइम्स।
1: बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को सुनते ही मेरे मन में कई सारे विचार और कई सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। हमारे मस्तिष्क में एक जो ये 90s और 2000s के जो डिकेड की कुछ फिल्में हैं जिसमें एक दिखाया जाता है कि मतलब जो मेंटल समस्याएं जितनी भी हैं, डिसेबिलिटीज़, वो सारी पागलपन के कैटेगरी में आती हैं
0: जी।
1: मतलब ऑल दोज मेंटल प्रॉब्लम्स, ऑल दोज प्रॉब्लम्स।
0: ऑलराइट, हमारे पास एक कॉल है, आप इंतजार कीजिएगा
1: जी।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो, मैं सविता दुबे बोल रही
0: हूँ जी। सविता दुबे जी, कैसी हैं आप?
1: जी सविता जी, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बताएं क्या आज जानना चाहती हैं आप?
2: जाना नहीं चाहती मैं, बोलूँ मुझे बहुत चक्कर सी आ रही है, नींद की कमी हो रही है।
1: अच्छा, आपको चक्कर सा आ रहा है तो ठीक है, ये इस समस्या पे मेरे ख्याल से आपसे पहले भी चर्चा हुई थी और
2: जी।
1: तो आशा करते हैं कि आपसे मुलाकात हो पाएगी।
2: जी मैं आ चुकी हूँ, मैं स्टूडियो में बैठी हूँ।
1: जी जरूर, हमारा शो खत्म होने के बाद हम अपने प्यारे से लिसनर सविता दुबे जी की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में कॉल भी करने के लिए जी। हमारी एक प्यारी सी लिसनर हमारे साथ जुड़ी थी और वो, उनको चक्कर जैसी कुछ समस्या है, उस समस्या का भी समाधान करेंगे। और समाधान करने से पहले हम वापस आते हैं अपने शो पर, लेकिन शो पे वापस आने से पहले हमें एक और कॉल प्राप्त हो चुकी है और हम कॉल को पहले उठाएंगे। हेलो जी, अपना नाम बताइए प्लीज़।
3: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका नाम बताएंगे प्लीज़। सृष्टि बात कर रहे हैं। सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा वाले शो क्लिनिक ज्ञानस्थली में। बताइए आज आप क्या जानना चाहती हैं?
3: मम्मी से बात करेंगे।
1: अच्छा, मम्मी से आप अपने बात कराएंगी, ठीक है।
3: हेलो
1: हेलो।
3: हाँ सर, सुना रहा हूँ
1: जी। कैसी हैं आप आंटी?
3: अरे हमारी तो दवाई तो चल नहीं रहा है
1: जी,
3: हमेशा ये चलेगा।
1: हाँ, दवा आपको खाते रहना है।
3: अभी जब बोले हैं थेरेपी
1: जी,
3: जो है डॉक्टर लिखे हैं, अभी इस जो है 9 तारीख के डेट है
1: जी,
3: पिछले महीने में गए थे तो टाइम ज्यादा हो गया, मान लो जब से आपसे बात हुआ है तब से जांचे चल रहा था।
1: अच्छा,
3: वो है तो हम भी यही जो आप बोले हैं अभी जो शब्द, उसी के चिंते में रात दिन पड़े रहते थे
1: जी।
3: तो आप जो, जो हम बहुत खुश हो गए कि अब आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन हमारे काम के बाद अब मतलब कुछ अच्छा हो जाएगा इसके लिए कि नहीं हो पाएगा।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी थेरेपीज कारगर होती हैं, जरूर हमें कराना चाहिए। और हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार ये थेरेपीज एक दो बार में काम नहीं करती हैं, इनका एक उचित कोर्स होता है कि एक 10 बार या 15 बार जो कि आपको विशेषज्ञ उसके डॉक्टर एडवाइस करेंगे, तो ज़रूर आप कम से कम 3-4 बार तो ज़रूर कराएं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके।
3: मतलब जैसे आपसे जब हम मिले हैं
1: जी,
3: का मतलब जाँच जो दवा वो बताया नहीं कि फाड़ फोड़ बहा दी है
1: जी,
3: तो पास उसके बाद रिफर करके दूसरे डॉक्टर, तो हम के डॉक्टर बोले कम से कम 5 बार आपको लगातार दूसरे तीसरे हम गए थे
1: जी,
3: जाँच करें
1: जी,
3: और उसके बाद थोड़ा दवा चलाए तो नॉर्मल एकदम सही हो गई।
1: पर
3: फिर एक बार में मतलब डॉक्टर बोले कि बिल्कुल दवा बंद कर दो, 1 महीने के गैप देते हैं, उसी में आना, फिर जांच चलेगा लंबा।
1: बिल्कुल, और मैं आपको ये भी सलाह देना चाहूँगा कि एक बार आप थोड़ा समय निकाल कर अपने सभी दस्तावेजों के साथ, सभी कागज़ों के साथ एक बार हमसे मिलें, ताकि हम देख सकें कि आपकी वर्तमान की जो स्थिति है और रिपोर्ट्स की जो स्थिति है उस पर हम अंदाज़ा लगा सकें।
3: लेकिन सर हम क्या करें, हम खुद बहुत उलझे हैं। हम मिलने की बहुत कोशिश करते हैं।
1: ठीक है, आप हमारे पर्सनल नंबर पर हमें कॉल करें और ज़रूर हम आपको उचित समय बताएंगे और उस समय पर आप आकर के मिलिए और हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।
3: वही सर, ठीक है, 9 तारीख के बुलाएं।
1: ठीक है, आप वहाँ से विजिट करके आइए, उसके बाद हमसे संपर्क करिए और हम आपसे मुलाकात करते हैं।
3: पर जितना जांच वहाँ हुआ हमको कुछ नहीं मिला है, सब वही जमा है। तो मैडम बोली कि एक महीने पहले तो दो दो दिन चार चार दिन पर बुलाई है
1: जी,
3: मतलब हाथ से एक हफ्ते के अंदर अंदर गए थे तब हम आपके पास खबर करेंगे तो आप तुरंत लेके आना। तो हम सर फिर जब फोन करी तब हम तुरंत लेके गए। उस दिन हाँ मतलब इसका मतलब डॉक्टर जो है दे दिए थे कि थेरेपी होगा।
1: ठीक है आंटी, आप आपका प्रश्न थोड़ा जल्दी पूछिए, दूसरे भी लिसनर समय कॉल कर रहे हैं। क्या आप इसके अलावा कोई जानकारी भी जानना चाहती हैं?
3: बस हम यही सर जानना चाहते हैं कि हमारा डर लगता है कि हम थेरेपी के बाद कुछ बाद में लग
1: बिल्कुल बिल्कुल इसका जवाब हम ऑन एयर देते हैं, आप रेडियो पर सुनिए और बहुत ही अच्छा आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा।
3: ठीक है सर।
1: हमारी एक प्यारी सी लिसनर, बहुत ही भोली भाली आंटी जी जिन्होंने हमको कॉल किया था, किसी प्रकार की थेरेपी ये कराने जा रही हैं। अभी मैं इनकी समस्याओं को पूरी तरह से समझ तो नहीं पाया था, लेकिन डॉक्टर्स ने इनको किसी प्रकार की थेरेपी के लिए एडवाइस किया है और इनके मन में भी जो है वही डर बैठा हुआ है।
0: मुझे पता ही था थेरेपी शब्द ऐसा है जिसको अगर पता चल जाए ना थेरेपी के लिए बोला गया है, ऑलमोस्ट वो थोड़ा सा डाउन में चले जाते हैं कि थेरेपी में क्या होने वाला है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लगा, इनकी समस्याओं को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए और सुन भी नहीं पाए, बट फिर भी मैम बताते हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, हमारे जो माइंड में एक जो 90s और 20s के दशक की फिल्मों का जो एक छाप बनी हुई है कि दिमाग से संबंधित हर व्यक्ति जो थोड़ा मानसिक समस्या से परेशान है या कुछ ऐसी अप्रोप्रिएट हरकत कर रहा है, अनयूजुअल हरकतें कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है, पागलपन। और उसका जो इलाज है, चूंकि वो देखा भी गया है एक विशेष कुर्सी पे बैठा करके हाथों पैरों में वो हाँ जी वो मतलब मेटल का क्लिप लगा करके कि वो मूव ना कर पाए, और हाई वोल्टेज का करंट बॉडी में दौड़ाना जिससे वो पेशेंट, तो कहीं ना कहीं जो ये एक छवि बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में छाप छोड़ी है। देखिए, ये ऐसी थेरेपीज बिल्कुल नहीं होती हैं और लिटरली ऐसी कोई थेरेपी अभी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। हो सकता है 50-70 वर्ष पहले कुछ ऐसी थेरेपीज रही हों जो मेडिकल साइंस में दी जाती हों। हाँ, कुछ तरह की थेरेपीज जिनको आप समझिए, जैसे फिजियोथेरेपी भी एक थेरेपी है, शरीर पर कुछ विशेष उपकरण लगा करके और बहुत ही धीमे मध्यम विद्युत करंट छोड़ के हमारी मसल्स का एक्सरसाइज कराना और ऐसी चीज़ें करना, ये एक थेरेपी है। स्पीच थेरेपी एक थेरेपी है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, मशीन से सिकाई करना ये भी एक थेरेपी है, मशीन से दिमाग का इलाज करना, वो भी ऐसी कई सारी थेरेपीज जो हैं अवेलेबल हैं जिनसे हमें किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा नहीं होती है। मैं अपनी इस बात को रिपीट करता हूँ, ये जिन भी थेरेपीज की मैंने बात की है, आधुनिक मेडिकल साइंस में जो थेरेपीज यूज़ कर की जा रही हैं, वो विशेष करके इस प्रकार से डेवलप की गई हैं, इस प्रकार से मशीनों को बनाया गया है, उन थेरेपीज को बनाया गया है कि उससे पेशेंट को किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, कष्ट ना हो। ऐसी देखिए तमाम सर्जरीज भी इनोवेट की जा रही हैं, रोबोटिक सर्जरी इनोवेट की जा रही है ताकि बॉडी में छोटे छोटे पंच होल करके बड़ी बड़ी सर्जरीज की जा सके, एक ही जगह बैठ के दूर दूर तक सर्जरीज की जा सके। तो ये जो थेरेपी है, ये वर्ड डरावना नहीं है, ये वर्ड बहुत ही आशा की एक किरण है कि आपको वो थेरेपी से कुछ लाभ मिलेगा।
0: इवन फिजिकल थेरेपी भी इसीलिए कराई जाती है ताकि आपके मसल्स की मूवमेंट डेवलपमेंट अच्छी हो सके।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आप योगा कर रहे हैं, आप जो जिमिंग कर रहे हैं, ये भी एक थेरेपी है आपकी मसल्स को मजबूत बनाने का, पावरफुल बनाने का, स्ट्रेंथन करने का, ये एक थेरेपी है। और ये सारी थेरेपीज जो हैं ये पीड़ादायक, कष्टदायक नहीं होती हैं। इनसे समस्याएं नहीं होती हैं, ये हमारे शरीर में हमारे शारीरिक मानसिक समस्याओं को और इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई हैं, ना कि उन समस्याओं को और ज़्यादा बद से बदतर करने के लिए।
0: बट हमारे दिमाग में बस एक ख्याल होता है कि ये थेरेपी मतलब कोई चीज़ ख़राब है।
1: जी वही, वो करंट लगाएंगे हाथ में बैठा कर।
0: इवन बच्चों को जब कहा जाता है कि आप स्पीच थेरेपी के लिए बोल दीजिए, कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप स्पीच थेरेपी के लिए जाओ, तो घर में ही कई बार सवाल उठ जाते हैं कि बच्चे अब स्पीच थेरेपी लेंगे, हमारे बच्चे तो ऐसे ही बोलने लग गए थे, हमने तुमको ऐसे ही बोलना सिखा दिया था, अब तुम्हें बोलने के पैसे भी देने पड़ेंगे और बस वो जाके क्या ही करेंगे, आ ई ऊ सिखाएंगे और क्या ही बोल देंगे। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में सच में आते हैं, मैंने सुने
1: जी।
0: एंड क्योंकि इसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरा खुद का कजिन वो जाता है स्पीच थेरेपी लेने बिकॉज सम इन्फेक्शन की वजह से उसका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं घर पे ये बहुत सारे सवाल उठते हैं, आप उन्हीं के इन लॉज बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि स्पीच थेरेपी लो, फिजिकल थेरेपी लो, ये थेरेपी वो थेरेपी, सब सारे पैसे थेरेपी में जा रहे हैं, इसका कोई असर भी नहीं हो रहा है। कितने ही सवाल मैं आए दिन सुना करती हूँ बैठ
1: जी,
0: और इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि थेरेपी ले लीजिए तो वो आपके भले के लिए बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और ये कोई डरावना नहीं होता है। मैं एक बात आपकी जो आपने कहा कि थेरेपी ले रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है, देखिए आप समझिए जैसे ये डिसेबिलिटीज जो होती हैं मेंटल डिसेबिलिटीज और बिहेवियर
0: लॉन्ग टर्म जाती हैं।
1: बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म की होती हैं और उसके बावजूद भी देखिए हम हमारे शो का जो ये एक पैमाना है कि हम क्लैरिटी को एकदम क्रिस्टल रखते हैं, तो देखिए उसके बाद भी वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे के जैसा फुल्ली और कम्प्लीटली कंपेरेटिव मैच नहीं कर सकता है
0: जी।
1: थोड़ा ना थोड़ा वो स्पेशलाइज्ड एबल ही रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: बट आपका जो मतलब स्थितियां है वो 70-80% चीज़ों को समझेगा, लोगों से कम्युनिकेशन करना उसको आ जाएगा, और जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी डेली लाइफ में हमें नीड होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो हमें बेसिक स्किल्स होती हैं ड्राइविंग और भी दूसरी जो स्किल्स होती हैं वो सिखाई जा सकती हैं और वो उसको मतलब पूरा करेंगे। एक अभी हाल ही के एक जो ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स जो भी होता है मुझे उसका ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसमें एक कोई रेसलर था या बॉक्सर था वो आया था, वो भी मुझे लगता है किसी ऐसी ही बीमारी से, डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी से, वो ऐसे उसका सर लगातार मूव कर रहा था, देखने में वो बहुत ऐसा थोड़ा अनयूजुअल हैबिटेट का लग रहा था, बट उसके बाद भी वो जीता, उसने आई थिंक सेकेंड वो स्थान प्राप्त किया है जो भी। तो कहीं ना कहीं देखिए उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो दैनिक जीवन की चीज़ें होती हैं वो सिखाई जा सकती हैं, दैनिक जीवन के जो स्किल्स होते हैं जो ड्राइविंग होता है या फिर तैरना होता है, गाड़ियाँ चलाना होता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं और इससे जीवन और बेहतर बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आपने दो सेशन लिए हैं अब आप एकदम फुली ठीक हो चुके हैं, उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म लगता है, धीरे धीरे काम होता है, धीरे धीरे असर दिखता है।
1: जी बिल्कुल, धीरे धीरे असर दिखता है, और चूंकि आप इसको क्या होता है कि वो असर स्लो होता है इसलिए वो हमें चेंजेस हमारे माइंड रीड नहीं कर पाता
0: जी।
1: तो ये बेहतर होगा कि जैसे आप अगर थेरेपी ले रहे हैं तो उस बच्चे का एक पहले वीडियो बनाइए, एक नॉर्मल एक
0: आपको समझ में आएगा उस वीडियो को
1: जी, एक 5-10 मिनट का वीडियोस बनाइए कुछ करते हुए, खेलते हुए, वो पजल सॉल्व करते हुए जैसे जो छोटे बच्चे करते हैं, और उसके बाद थेरेपी स्टार्ट करने के 6 महीने बाद का आप वीडियो बनाइए, आपको डेफिनेटली चाहे 10% ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बट दिखेगा, स्लो होता है बट होता है।
0: और इसके लिए मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जहां पर मेरा भाई जाता है वहीं पर एक ऐसी भी बच्ची आती है जो बचपन से बहुत गुस्सा करती थी, एंड बहुत छोटी सी बच्ची है, हर एक चीज को तोड़ देती है, किसी से बात नहीं करना, बात बात पे चिढ़ जाना, उसकी थेरेपी सेशन भी चल रहा है, काफी एक साल से चल रहा है। नाउ शी इज इन कंट्रोल, उसको कंट्रोल किया जा सकता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: जहां वो अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं समझ रही थी, बहुत छोटी गोद में है फिर भी रो रही है, जमीन पर लौट रही, अपना दीवार में सर तक मार लेती थी
1: जी।
0: वो अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है, लेकिन पूरा एक प्रोसेस गया है, एक लंबा वक्त गया है।
1: अच्छा, ये जो उन्नति मैडम ने एक बात कही कि एक बच्ची थी वो गुस्सा करती थी, मतलब प्रोबेबली वो आई डोंट नो कि डाउन सिंड्रोम उसको था या नहीं था, ये मुझे नहीं मालूम है। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कई बार कुछ ऐसे बच्चे ऐसे घरों में, मतलब कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को मेरी बात सुन के बुरा लगे, बट कहीं ना कहीं परवरिश का मिसमैनेजमेंट भी इसमें होता है, और मैं अपने आस पड़ोस में ऐसे कुछ एक दो उदाहरण देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके घरों में बराबर जाता हूँ ट्रीटमेंट के, उनका सारा फैमिली मुझसे ट्रीटमेंट लेता है और मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूँ। तो मैं उनके घर के बच्चों को देखता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े खाना नहीं खाते हैं, वो बच्चे ऐसे अपने गालों के बीच में खाना रखे रहते हैं, मोबाइल उनके हाथ में रहती है, कॉन्टिन्यूस रील देखा करते हैं, उसके लिए कई बार उनको मारा जाता है, पीटा जाता है उन बच्चों को एकदम मतलब भूसे भरे बोरे के जैसे, बट उसके बावजूद भी वो उनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो परवरिश का मिसमैनेजमेंट, और कहीं ना कहीं वो जो मोबाइल फ़ोन, इसमें क्या होता है मैं देख रहा हूँ, जैसे पहले के समय में बच्चों जो रोते थे चिल्लाने लगते थे तो उसके लिए किसी एक इंसान को इंगेज होना पड़ता था जो उसको लेकर के घुमा रहा है टहला रहा है, फिर बच्चे चुप हो रहे हैं। आज के समय में क्या है कि वो मोबाइल चला करके दे दीजिए तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आता है कि वो बच्चे उसमें थोड़ा सा इंगेज हो जाते हैं और रोना बंद कर देते हैं।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही गलत आदत है, आप एक डोपामाइन लूप में आपने बच्चे को फंसाने।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं देखता हूँ एक किसी ऐसे ही चर्चा में, पॉडकास्ट में मैंने सुना भी था, एक स्पेशलिस्ट थे वो इस बारे में बता रहे थे कि बच्चे इससे क्या है कि जो उनकी एलेबोरेट करने की क्षमता है, ये जानवर है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, यहाँ जाके देखते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, जो बच्चे एक यूजुअली दिखता है शैतानी करते हुए दिखते हैं, ये एबिलिटी बच्चों की कम हो रही है, वो एलेबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, पर ये समस्याएं जो हैं, जो बचपन के 2-3 वर्षों तक आपके बच्चों को पकड़ लेती हैं ये बीमारी, ये कहीं ना कहीं डाउन सिंड्रोम जैसी स्थिति और परिस्थिति पैदा करने में सक्षम है और ऐसी समस्या पैदा करती है कि उस बच्चे के लिए फिर वो स्पीच थेरेपी और तरह तरह की थेरेपीज देना पड़ता है जिससे बच्चे का एंगर कंट्रोल हो पाता है, जो आपने अभी बोला।
0: बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए खतरनाक है। अगर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हो या आप उसके सामने स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक डोपामिन की लत लग जाती है, और बचपन से अगर डोपामिन लूप इस तरह से स्टार्ट हो जाता है तो फिर बाहरी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। और ये एक, अगर इसको साधारण भाषा में कहें तो ये एक ऐसे बच्चे को जिसको जेनेटिकली डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बट ये क्रिएट करके डाउन सिंड्रोम जो है उसको दे देंगे,
0: यानी कि वो नॉर्मल था, उसको नॉर्मल चीजें सिखाई जाती तो शायद वो बहुत कामयाब भी होता है, लेकिन हम उसको एक ऐसे लूप में फंसा देते हैं जहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके शुरुआती 2-3 वर्ष 4 वर्ष होते हैं बच्चों के, इस पीरियड तक तो आप उनको विशेष करके दूर रखें, और बल्कि आप जो दूसरे डोमेस्टिक जो चीज़ें होती हैं बच्चों के, खेलने की खिलौने और बनाने के वो जो तरह तरह की क्लेज हैं, इन सारी चीज़ों से दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें एक हद तक तो भी ठीक थी बच्चों के विकास में, ब्रेन डेवलपमेंट में योगदान दे रही थी, बट अभी क्या है कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को कंप्रेस कर रहा है, जो ये फ़ोन रील्स और ये यूट्यूब और जो भी चीज़ें हैं ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को कंप्रेस कर रहा है।
0: एंड ये चीजें मैंने बहुत अक्सर देखी, इवन लोग बहुत फनी वे में दिखाते हैं कि अब तो देखो मैं अपने बच्चे के चक्कर में दिन भर ये बच्चों वाला ही पोयम देखता रहता हूँ। आप क्यों देखते हैं? आप मत देखिए, आप उसको भी बंद कीजिए, खुद को भी रहने दीजिए।
1: जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है, बट चूंकि अभी क्या है कि ये मोबाइल फोन और ये डेली डेटा और ये सारी चीजें, रील्स शॉर्ट्स, ये इंट्रोड्यूस हुए महज अभी 5-7 साल हुए हैं, 10 साल जो भी, ये आने वाले 20 साल बाद, मतलब 20 साल 25 साल बाद एक रिसर्च होगी कई सारी, और रिसर्चर्स में ऐसा आएगा कि ये जो जनरेशन जो मोबाइल फ़ोन के एरा में पली बढ़ी है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
0: बिल्कुल। फिलहाल आपने बच्चों की बात की और आपने मोबाइल की बात की है, तो क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, बट फॉर श्योर मैं ऐसी टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें आपके बच्चों की हेल्थ, क्योंकि आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे एडल्ट रील्स बना रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उनके माइंड पर एक अलग लेवल का जाता है, ये आप माने या ना माने।
1: बहुत ही अच्छा ये विषय हो सकता है, मुझे लगता है कि इस विषय को हम और प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने कि ये जो फ़ोन है, ये जो रील्स, ये शॉर्ट्स बच्चे देख रहे हैं,
0: इससे जो वो रिएक्शंस दे रहे हैं, एक एडल्ट इंसान की तरह, 18+ ह्यूमन की तरह वो एक रिएक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर देम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और एक छोटा सा मैं ग्लिम्प्स दे भी देता हूं आपको, जैसे आप समझिए कि जो बच्चे हैं जो एक एडल्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं वो बाकी चीज़ों में नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस अगर आप कहिए तो पढ़ाई लिखाई में, अचीवमेंट में, कोई टेक्निकल स्किल्स में, इसमें वो नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। वो रिएक्ट किस में कर रहे हैं? एक्टिंग में, ड्रामा में, न्यूडिटी में, एक्सप्रेशंस में, न्यूडिटी में, ठीक है, और जो वेस्टर्न कल्चर है, जो डांस वगैरह करने का उस कल्चर में। तो ये एडल्ट्री, ये जो मेंटल ग्रोथ, इसको बहुत से लोग इस दृष्टि से कहते हैं, तो मेंटल ग्रोथ केवल एडल्ट्री में ही क्यों है? ये स्किल डेवलपमेंट में, ये थिंकिंग एबिलिटी में, डिसीजन मेकिंग में, मेमोराइजिंग पावर में, कुछ अचीव करने में, पढ़ाई करने में, उसमें क्यों नहीं दिख रहा है? ये केवल और केवल एडल्ट्री में ही क्यों दिख रहा है? ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसकी क्या छाप है, क्या इम्पैक्ट है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय हो सकता है चर्चा करने के लिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि मैं आए दिन देख रही हूँ, और ऑफकोर्स क्यूट लगता है देखने में कि छोटे छोटे बच्चे बड़ों की तरह दिख रहे हैं, मेकअप करके आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट क्यूट।
1: जी, दिस इज नॉट क्यूट। और आजकल इस बात को, यदि जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी से आप अपने आसपास देखिए, आप पाएंगे कि 90% घरों में बच्चे जो है वो मोबाइल फोन अपने मम्मी का, पापा का, या किसी का भी लेकर के उसमें रील्स देखने में भिड़ जाते हैं, और वो इस तलाश में रहते हैं कि कब हमें मोबाइल फोन मिले और कब हम रील्स वगैरह में जुटें।
0: फिलहाल क्योंकि आज वक्त नहीं है, तो आइए चलते हैं चैट बॉक्स में। और हमारे साथ चैट बॉक्स में अरविंद जी जुड़े थे फ्रॉम मनकापुर, आपका स्वागत करते हैं। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने लिखा था शुभ दोपहरिया सभी सुनने और सुनाने वालों को, शुभ दोपहरिया आपको भी। एंड सनी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने लिखा है डॉक्टर राहुल सर नमस्कार, उन्नति मैम नमस्कार, नमस्कार आपको भी। एंड अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं जय हिंद सर एंड मैम, सर क्या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने से भी जेनेटिक डिसीज हो सकता है?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हर शो में कुछ ना कुछ ऐसा एक जानकारी वाला प्रश्न जरूर लेकर के आते हैं। इससे पहले जो हमारे सनी पांडे जी हैं, इनको भी हम नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा शो में। और अविनाश शुक्ला जी का प्रश्न जो कि अच्छा है, और इस माध्यम से, इनके प्रश्न के माध्यम से हम और भी लिसनर्स को बताना चाहते हैं कि देखिए, जो चेन स्मोकर्स हैं या जो मतलब रेगुलर ड्रिंकर्स हैं, मतलब जो प्रतिदिन शराब पीते हैं और प्रतिदिन मतलब भारी मात्रा में स्मोकिंग या गुटखा, खैनी, तंबाकू, ऐसे किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, बिल्कुल उनकी बॉडी में ऐसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, और उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी जेनेटिक विकृति उत्पन्न हो सकती है, और इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती है, काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं जो मतलब लगातार शराब का सेवन करते हैं या खैनी, तंबाकू, स्मोकिंग वगैरह का सेवन करते हैं, उनको इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उत्पन्न हो जाएगी। मतलब वो कई पीढ़ियों से तो नहीं आ रही है, बट इस पीढ़ी से नई स्टार्ट हो जाएगी।
0: एंड जाते जाते हमारे साथ नागेश्वर धाकर जी जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम नमस्कार, नमस्कार आपको भी, एंड आपको भी नमस्कार बोला गया।
1: जी जी बिल्कुल, मुझे जो विशेष नमस्कार बोला गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार और स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में।
0: फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, और स्पेशली अपनों के साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल रखिए, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिए,
1: और मोबाइल से उनको बचाइए।
0: एंड इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए आपका अपना एफएम रेडियो कैनस 89.6 एफएम कोंडा शहर की धड़कन।
4: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
5: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
4: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
5: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
4: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा, और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
7: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
6: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप है कौन?
7: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
6: जी,
7: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
6: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीबी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
7: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
6: जी,
7: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
6: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
7: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
6: जी,
7: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
6: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
7: जी आज दीदी,
6: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
7: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
6: जी।
7: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
6: जी,
7: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
6: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
7: जी दीदी
6: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
7: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
6: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
8: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
9: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: ये चटपटाओ।
1: अरे दादा
0: चटपटाओ।
1: ये है दादा काम है।
0: चटपटाओ।
1: अब देखो रुकी है, हमें लागत ही बुला
0: रही। खोल दे तू चटपटाओ।
1: अरे देखो जैसे मरी जा रही हूँ।
0: पता नहीं कहाँ ही दादा चटपटिया।
1: अरे भाई खोल दिया दरवाजा।
0: दादा खोलो।
1: अरे खुला है, आ जाओ।
0: अपन कुकुर बांधो।
1: हमार कुकुर हम तो अपन बांधे, दूसर कुकुर घुसा ये ऐसे दरवाजा दरवाजा बंद करके बैठी है।
0: राम राम
1: राम राम। अब ना करो, हमको बहुत गुस्सा देसी लाग रहे करे ऊपर।
0: हमें भी बहुत गुस्सा लागे। तू ठंडा चलाए लेटी हो और हम कर रहे हैं पसीना मां। देखो
1: अरे मोरी माई, कल जन्माष्टमी हो, हम लेटी हैं।
0: अरे नहीं लेटी हो, तू अपन ठंडा चलाए, अपन काम करे और हम मरी जाए थे गर्मिया में।
1: भाई ठंडा एक ही कमरवा में लगा है, बाकी हमें घूम घूम ऊपर नीचे।
0: ना सुना तो हाँ।
1: नहीं सुनी हो?
0: ना सुना।
1: हम तो सोचे रहा जब आज बहुत कुछ तुम सुनाई बताई, अब हम मोना बता जाओ।
0: ना बता जाओ, कुछ आए हैं मेहमान तोरे घर में। देखो
1: है मेहमान आए हैं। अरे हाँ इस बाहर कहे कहे खड़ी करी आई हो?
0: तब तू पल्लवा जब मुंदे रहा वो तब पल्लवा टूट गई।
1: तब तू कहे घुसी आई?
0: हम घुसी आए ना इसे कि हम जाने थे कि हम थोड़ा पल्ला।
1: ए बहने इनकी बकबक चला गई। तू सब आओ आओ बच्ची, आ जाओ आ जा, तू आ जा, तू आ जा।
2: नमस्ते
1: नमस्ते बच्चा नमस्ते। ये है दुलारी, एक नंबर की पक्की। हम कहे हमार सहेली तो है लेकिन हमार सबसे बड़ी दुश्मन यहाँ है। अब देखो तू का सब बाहर खड़े कर आई। सेम तू कहा जात है, सेम हूर हूर कहा तू है।
0: अब हमरे अतने अंग्रेजी आवत है, जो नहीं होते तो बोल पाए।
1: तू कौन कही से कि तू डॉक्टर कैसे अंग्रेजी बोलो?
0: नहीं हम बोला आज, तुम्हें पता है आज का है?
1: आज तो हम जानित है कि आज तीज हो, कल जन्माष्टमी। अरे आज पंचमी है, आज सप्तमी हो, कल अष्टमी हो। हम तो सब तू का देके बुलाए जाए। अच्छा तो तू बहुत काम काजी हो भाई।
0: हाँ
1: तोहरे बराबर तो ही पूरे गाँव में कोई नहीं हो।
0: ना होए चटपटा ना होए।
1: हाँ तो हमहू सजाई रहे तो आ फट पड़ी वाई के। ए बहनी तू लोग बुरा न मानो, हमार इनकी ऐसे चला करी। अच्छा ये बताओ पहले तो परिचय कराओ, परिचय इंट्रोडक्शन कराए दो।
0: इंडक्शन देखो इनका इंडक्शन है। पहली तो नवा का बिसरी गई, बताओ।
2: हमारे नवा चाची संज्ञा पांडे है।
0: इनका नाम है संज्ञा पांडे।
1: नहीं हम जान गए संध्या पांडे कहा थी।
0: संज्ञा
1: पांडे पूर्णी उर्मी सुमनिया
2: सुमनिया
1: का तो हम जानी थे, बहुत जानी
2: कोमल
1: हम जानी थे। हम
0: हाँ तो
1: जानी थे।
0: ए चटपटाओ
1: संध्या हो ना
0: संध्या।
1: संडा ना हो
0: संडा का जाओ चटपटाओ जाओ।
1: संडा कहे कोनो नाम होता है? भाई तू कही थी कि का
0: पैजामा
1: जे बनवाए
0: वो बन मोबाइल में जा रही तो देखो हम हूं सी आई ली जिया।
1: अरे मोरी माई
0: सब
1: तो हम हूं अपने पेटीकोट में बनवाए ले जे।
0: हां बनवाए ले। और सुनो वही मुझे चुराए घरे में।
1: ये तो तू पूरे बतायो हो। हाँ तो हमहू सियाई ले वैसे पेटीकोटवा में या लंबी जेब सियाई और खूब जेब काटा।
0: हां कभी देखी है? देख लो बहनी या देख। हां
1: लोटन के हमहू जेब काटा
0: कर। ओए मन समनो चलाए हन धरे हन।
1: हमहू लोटन की जेब काटब अपने पेटीकोट में जोन जेब बनवई बे वह
0: चुरा चुरा धरा जाए। और हमहू पाड़े के जेबवा काट काट और अपने जेबवा में धैलीन करब।
1: हाँ यह ठीक है, ये बर्थडे देत नहीं है।
0: नहीं दिया तो
1: बताई दे। हम कहा कि देखो जन्माष्टमी आवत है।
0: हाँ।
1: और हमका बहुत सामान अमान लावे है।
0: हाँ।
1: कहा से तोहरे तो तीसों दिन हरियाली छाई रहा था, हर दिन तोहरे त्योहार।
0: कौन बात हुए?
1: अब बताओ साल भर का त्योहार आवत
0: है,
1: वो कृष्ण कान्हा जन्म हुई
0: जी के जन्मदिन।
1: खर्चा वर्चा लागी की ना लागी? लेकिन बहनी का बताए वहाँ वहाँ मलिच्छपन वहाँ कंजूसपन
3: कहा है हमरे तू है हम मैं तू है यह कमवा सही रही तू एक ठो पैजामा सी आए लो मर्दन वाला पैजामा मोटका मोटका
1: नाही हो हम हाँ। गौ हम पैजामा तो न पहन पाइबे
3: काय कुकुर नोच ले का
1: नाही हो हम से हमें नाही नीक लागत तो ऐसे पातर पातर रहा थे एक एक अधर इधर पातर पातर एक उधर ऐसे पातर पातर
3: जा का जनिका पातर पातर
1: नाही नीक लागत हो
3: माने दुनिया जमाना पहिरे के देखो हम आज पहिर के आ रहे नाही नीक है बनी नाही नीक लागत है नीक है बनी
2: बहुत नीक
3: तब देखो मैं चोर पकड़ो बनवाएं भैया देख लो
1: चलो हम हिम्मत जुटाए लेकिन हम पहन ना पाए
3: हाँ।
1: अच्छा ये बताओ भाई तू लोग तैयारी वैयारी कर आए हो
2: हाँ।
1: देखो देखो चार चार दिन
3: पहले तू संगा
2: हम हूँ कयान है लेकिन अभी कुछ बाकी रहेगा
1: अब बता दे तू का
2: सुनो
1: सुनो तू इतने दिन में सब निपटाए दियो ना ऐसे करे चाहे जैसे पुरनी करत है कि चार दिन धीरे धीरे करियो थकान ना आई यहाँ करना चाहिए हम लोगों
3: का हमारे इतना टीएम नहीं है कि हम चार दिन चली लुसूर लुसूर करी हम एक दिन हम करी थे जोन करे कोई तो
1: कहे तब है तो परी रहती हो आए दिन बीमारियां
3: बीमारियां हम बीमारियां हैं
1: हाँ तो उनका
3: हाँ पूरे कहे तू पूरे क्यों हम बीमारियां हैं
1: हाँ
3: जानिए हम बहुत नीक सजाए हम तो अपन भैंसिया वहीं छाड़ कर हमसे नीक तो नहीं सजाए सके
2: तो चाची
3: का नहीं चटपटो
2: कहाँ चाची भैंसियों के साथ जन्माष्टमी मनाने का प्लान
3: भैंसिया गएवा तो चरावत रहे अपने किसान
1: जान गई बहनी जान गई इनके दिमागवा का हाल है
2: अबे भैंस का ये घर लीपे के बजाय भैंसिये खड़िया
3: तो हमसे नीक सजाए हम जियत जागत परमार दे हम हो हिल जाए थे कोई आवत है तो का
2: भैंसिया बहिरे कहीं के पना चली
3: ना ही भैंसिया ऊपर बैठ जाए थे तू वो जान बतुआ
1: अरे बहनी सब चलो चलो छोड़ो ये हंसी मजाक की बातें चिठोली होए ये तो हुआ करी ये बताओ कि परसदवा सदवा कौनो सोचे हो बढ़िया नीक बनावे के लिए
3: अरे वो मंगाए लो कौन का खाया थे आमदाना
1: अनारदाना
2: अनारदाना
3: रामदाना मंगाए के भूजी डालो भूजो तो मिले थे बहनी चीनी मिलाओ तनिया धनिया भूज के डाल
1: जाओ
2: जन्मदिनों में रहा
1: तब और का देखो छप्पन भोग का प्रसाद बना
2: तो
1: हम लोगों ने ना ही छप्पन भोग तो ना ही है लेकिन देखो तोहरे दूध होए पानी मिले मिले पैसा इकट्ठा करी हो और प्रसाद के ताई तो उन कहियो कि हमरे हैये नहीं पेड़ा बनाई लियो नीखुन दूध लेके

0: हुई है, ठीक है।
1: हाँ।
0: चलो बादम निपट लेते हैं।
1: हाँ
0: पंचामृत बनी।
1: हाँ।
0: और हम तो वो बनेबे का कहते मेवक प्रसाद पाग के चिनिया मा गरीबा लियो ताल मखाना और का तनी भूंज डालो। अब भूंज के चीनी पाग बना के बढ़िया सुंदर बना धई लियो। ऊपर साथ सबसे नीक रहा तो तनी तनी दे हो पानी पिए काम आ जाए। हाँ ये प्रसाद सबसे नीक रहा था।
1: फूल माला मंगा ली हो सबसे।
0: फूल माला कहाँ
1: चली आई बो?
2: चलिए
0: अरे गाँव नहीं हो जाये बहनी, गाँव
1: नहीं हो जाये बहनी, नीक लागी देखे मई। हाँ ये तू अपन ठंडा बंद करो, हमारे जाड़ लागत है।
0: ए दादा ये देखो तो कैसे ठंडा ना चलाओ तो उस दिन कहिए कि ठंडा चलाओ तू, अपन हम यहाँ से आए तोहरे घरे और जब ठंडा चलाए दो तो कहिए ठंडा बंद करो, हमरे जोड़ी लागत है।
1: तो लागत है तो कही है
0: तू कहमो राजी हो ये बता दो।
1: एक कम नहीं
2: मौसम का देख
0: कर कब्बो तोरे जोड़ी धरत है कब्बो।
1: अच्छा बताओ और क्या करबो?
0: अब गौ नहीं जो बहनी आई है तो सब गौ नहीं तो हुई बेकरी और झूम के गौ नहीं हुई।
1: ढोलिया बांट दी को ही के है, ढोलिया कहाँ गए तुम्हारे?
0: ढोलिया घरी है, ढोलिया
1: देख लो
0: गाय ही धाई दिया
1: के गौ नहीं करिए झूम के, ढोल है ये नहीं
0: नहीं ढोल चुराए धरे हैं ना, बांट डरी है तोरे लोटन
1: आई तो
0: तोरे जीजू जौन हो।
1: अरे हमरे जीजू ढोलिया मंगाई लो तो अब गाय लेन जाई हो
0: तो मंगाई बहने जाओ कमर
1: घर में जाओ डहरिया भरा।
0: हाँ जाओ खोल के जाओ जल्दी आयो तनी। हाँ जल्दी
1: पढ़ के घर में जाए बहनी।
0: तो ये बताओ बहनी और
1: का पल्ला ही तो हर न खोल पई है, पल्ला लगवाई हो कि मारी में बिल्कुल हाथी ठाड़ के दी हुआ है। पल्ला खोला बहनी ताकत लगाओ तो और जोर से और जोर से। हाँ अब ठीक है,
0: यही से तू नहीं खोल पावती।
1: हम खोल लेते चटपटाओ
0: तो हम तो कहते आई जाओ आई जाओ तो तू कहा खोल लो तो खोल लो
1: तो ये दूसर के घर पल्लवा हो, ये तो तू खोलते नहीं अमन कुंडा लगाए रहा तू दूसर के घर।
0: कुंडा यह से लगाए रही थे कि वहाँ सब सर सामान रखा तो यहाँ से बंद रखी।
1: अच्छा बताओ परसदिया फिर कैसे बनाई?
0: अब
1: रामदाना भूना रही, फिर
0: रामदाना भूना रही तो इतने तू पंखा चलाई वो उड़ जाई
1: तो रामदाना भून के पंखा चलाई दे। अब यही कहा थी रामदाना भून के धरबो तो पंखा से उड़ जाये तो रामदाना चलाई बाए।
2: वे भाई नींद माँ है
1: ये भाई नहीं ढोलिया कहाँ से लाए? अरे परे भवानी दादा ढोल है कि नगाड़ा मंगाया।
0: तो देखो हम तो ये करी थे ना कि रामदाना मंगाई बे और हाँ। उनका जो है भून भान के उनका मिक्सिया तो है ना हमरे।
1: हाँ हाँ
0: वो हम पीस डाले, वो हम तनी चीनी पीस दे, वो मैं तनी इलायची डाल दे, बहुत बहुत बढ़िया प्रसाद बन
1: जाए। वहाँ जड़ा आती देख ले तू वहाँ कर जार लाग लागे लाग
0: बनी लागा था जार।
1: हाँ तो हाँ सबके दहिया बड़ी मजबूत बाय तेल मालिश खूब भाई
2: जान पर थे कांठे के।
1: हाँ तेल मालिश खूब भाई घोड़े से काढ़ी गई हुई है खूब ठकाने तब बाय मजबूत।
2: अरे एक दिन हामे में चला कही दो अब मजा निकली आवे जो।
1: हाँ तब बताओ फिर क्या करबो?
0: तो अरे अब हम
1: बहनी
0: बहनी से बतवाई कि हम तो से बतवाई
1: हमसे बतवाओ इन्हू सबसे बतवाओ सबसे बतवाओ।
0: अब देखिए हम वो कहाँ कहाँ जाकर इम्तहान ले ली उनके कि जानत ही है कि नहीं अपने जो किशन जी का जन्म हो वाला है
1: हाँ।
0: के बारे में जानत ही कि नहीं
1: जानत? हाँ, हाँ, पूछ पूछ
0: पूछे चाहिए इनकी जो नई पीढ़ी है कुछ जानत नहीं है तो ये बताओ बहनी कि किशन जी का जन्म कहाँ भार
1: है? बहनी तुम्हारे सबके फोन है कहाँ बड़का वाला अंडरराइड अंडरराइड वही खैर घनघना के तनी देखो तो वही घनघनाए है।
0: हाँ ये अरे आजकल ना आज लड़का बच्चा तनी तनी
1: ना जानू आजकल के बिटीवन के बाय फ्रेंड होत है
0: बाय फ्रेंड।
1: हाँ बाय फ्रेंड वही
0: सही कहो तू दुलारी एकदम तू सही कहो।
1: हाँ
0: अपने गौवा जो हिसाब किताब बिगड़ा जात है।
1: हाँ
0: हम तो देखी था
1: बहनी कह रहा तुम्हारे बाय फ्रेंड।
0: अरे
1: ये बहनी मोबाइल ली हुई कि टीवी खरीदी
2: लैपटॉप हुआ चाची
1: लैपटॉप।
2: हाँ
0: दादा
2: ये बस्तम है लेके चला जा
1: अब किताब नहीं पढ़ा तू यहाँ पढ़ा
2: यही से पढ़ी था
1: देखा
2: महान सब आवत है गौनई बजनई नाच गाना पढ़े लिखे वाला हर एक चीज
1: चटपटाओ ये चटपटाओ मीटी का किताब ना

0: जाओ तू लोग कौन मेरे पढ़ाई पढ़े थी है?
1: बताओ टीवी लेकर पढ़ा
0: और ना पेंसिल ना तोरे लगे किताब ना तोरे लगे कॉपी कहाँ पढ़ा
1: छटपटाओ कहाँ थी लिया टाप
2: लिया से लिख जात है
1: अंगूरी से लिखा तू अंगूरिया से खून निकाल के लिखा थी
2: अंगूरिया से छुई कर लिखी
0: तू ना जान पियो ना हम जान पेबे बस वह जमाना बदल गया दादा जमाने बलिहारी हो
1: ये बहनी वो दूसरे घर में देखो उनके उनके दूसरे घर में जाओ और एक बटन ले दाई दाई हमारे बहुत जाड़ लग रहे ये रुक जाओ वही घर में कोनो मनाही है ये तनी बटन दे दो बटन दा बहनी जाओ ले आओ जाओ तोरे घरे कोई आवा है का दूसरे कमरों में
0: अरे लोटन के जो फ्रेंड आए हैं फ्रेंड
1: लोटन के गर्ल फ्रेंड हुए
0: गर्ल फ्रेंड
1: हाँ
0: फ्रेंड हुए गर्ल फ्रेंड का होता सुन ले है तो हर घटाई दबाए दे हैं
1: ये
0: लोटन और के तो कहा तो उनके
1: हरारू ना हो दुपट्टा ओढ़े ही मर्द हुए
0: उनके साथ जो मर्द बैठे हैं ना उनकी वो मेहरारू हो
1: अरे मोरी मैया मर्द गायब है मेहरारू बैठी के फ्रेंड है
0: भाई देखो इन सब देखो अब लड़की है का पढ़ती जान लो ऐसे वही है कि गए हुई है कहूँ सुनाने वाले गए हुई
1: परे
0: तो बैठी है भाई बैठी रहा है तो अपने
1: तो सुनो
0: क्या कहती हूँ
1: अरे गवनैया कुछ कही
0: हाँ हाँ तो बिटिया लोग आई हैं ये सब गई हैं बढ़िया बढ़िया अपन
1: मानी किशन भगवान के कोनो गम नहीं जाने है आवत है
2: तुहिन सब है आगे आगे गाँव हमसे पीछे पीछे पुरवाए ले कढ़ाई के तू सब गाँव पुरवाए ले भाई हम सब
0: आ, देखो कितने नीक बिटिया
1: हाँ नीक बतवा
0: वहाँ
1: बताओ आगे आगे हम गाँव
0: फूल जब फूल झरत ऐसे जो लड़का बच्चा बतवा था ऐसे लगा था फूल झरत हमका ऐसे बिटिया तू बहुत नीक हो बच्ची तू जियो
2: हम जी चाची खा लियो ये सब है
0: नहीं हो सब जी सबका आशीर्वाद दे
2: अच्छा अच्छा
0: हाँ ना ही सब फूलो फलो और बढ़िया बढ़िया ससुराल पाई जाओ बढ़िया बढ़िया
1: ससुराल सुनो हम कही थे सब पहले नौकरी करो बाद में ससुर जाए जब रुपया कमाइबो तब ससुइयो
2: वहाँ
1: झुकाए खड़ी रही जान लो
0: ये तो कहे
1: रुपया बड़ी चीज है आजकल के बहनी समझ लो
0: तो हम तो ये कहते है ना कि ये हो सब आवे चाहिए गौ नहीं आवे चाहिए
1: हाँ, आवे चाहिए
0: नाच गाना कुलर आवे चाहिए बिटिया हाँ, का
1: है बनी ऊ रहा का कहा जाते है हो चटपटाओ का कहा जाते हो का कि आल आल
0: आल आल बाल का कहा थी आल बाल है
1: आल फाउंडर रहा कुछ ऐसे कहा
2: आल राउंडर
1: हाँ वह काहे के ना बोली बहनी
2: अंग्रेजिया के तू तो सत्यानाशी कही दे थी
1: चाहे जोन हो मुला हम अंग्रेजी बोल कह चाहे उल्टा बोला चाहे सीधा बोला
0: ए बहनी हम बहुत नीक अंग्रेजी बोलित रहा हाँ बहुत नीक
1: हम अरे ये दिल्ली का
2: चाची हमार वहाँ से टॉप की नहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर
1: आई जाओ इंग्लिश मीडियम
0: भैया ना आर्मी का माँ
1: इनके बढ़ के भैया रहा
2: अरमिका ना अमेरिका रहा
1: वो है
0: अमेरिका अरमिका अमेरिका ऐसे कह जाना है तो हमरे भैया आवत हैं तो हमका सिखावत हैं दो चार जो है सिखा देते हैं कि ऐसे बोले दीदी कौनो सामने फीकी ना पड़ो तो हम तो सीख लिया रहा है लेकिन जानो हमार सहेली ऐसी पाई गन ना
2: ये नकर करी लेकिन
0: कहीं ना ही पाई ना हम को बुला बिलवाई दिन
1: अब यहाँ कहा वो जिंदगी भर हमारे संगे रही वो अब कहा तू बिलवाए दिए जो था ढोल हम ना बजाए
0: बजा बजा हम गाए
1: नहीं तू हम कहा तू बिलवाए तो हम ना बजाए जब तू ही बजा
2: चाची ढोलिया बजाओ तू तनी भर बजाओ इनके तो आदत है बोले
1: हाँ देखो मैंने कहा कि हम बिलवाए दिए
2: अरे दू जनी साथ है रहा तो तेरा चला कर
1: चलो चलो चटपटो तू शुरू कर
0: देखो
1: हम तो पहनी हाथी का ढोल मंगाए हुए ना अपना
0: अब ना आई कर
1: ढोल मंगाई ना हाथी
0: अभी तक कोई तूर ना पाई पहली वाली जो
1: तूर ना पाई तो हम बजाए ना पाए उठाई के
0: मैं बजाए तो तू ले हो
1: अतना बता हमारे गोड़ हाथ अब टूट गई। चलो चलो गा।
0: देखो हम तबका गाए थे, हम इनका इम्तहान लेते रहा है कि इनका कुछ आवत है कि नहीं आवत है। अबे क्या कान्हा जन्म नाई ली है, हम वह गाना गाए कि कान्हा जन्म ले वाले हैं। अब यह देखो सुन लो का गाई थे
1: गाओ
0: पूर गाई की तनी थोर
1: नहीं पूर गाओ थोर नहीं गाओ।
0: अच्छा अच्छा तो चलो

0: दुलारी बहुत मस्ती भो एकदम ढोलक एकदम
1: गाना सुनी के
2: हाँ तो लंबी तान मारू चटपटा
0: है ऐसे सुना था रेडुआ जो है ना 89.6 एफएम एफएम पर ये गाना बजत रहा है एफएम अच्छा हम एफएम कहते रहा है
1: एफएम
0: यह तो कही था कि भाई
1: एफएम
0: तो चलो ऐसे चले रहे दो और ये बताओ कि तू लोग कौन सुनावे वाली हो गाना सीखी हो कि नहीं सीखी कहूँ
3: नहीं सीखा गा चाची
0: अब सीख लियो बहनी जाए के तू का दूसरे घर है और दूसरे घर जो ना गाय पे हो तो कहिए कि ओ चाची के लगे बैठी थे तू लोग का सीखियो
2: मारी
0: मारी तो ना लग यहाँ हम लोग बदनाम हुई
2: और का बहनी की ही
0: चाची चौपाल में बैठत रही तू लोग का सीखियो है
3: अब कालीन सीख लिया चाची
0: हाँ कालो
3: जान गाय हो चाची एक घर आ जाए बदी हम रटा बस सीख लिया
0: हाँ तो तोरे लगे का है अब टाप
3: बस वही
0: लपटप माँ सीखियो तू अपन हाँ तो ये बता भैया देखो ऐसा है कि कल जो है टाइम से आए थे तुम लोगों का ठीक
2: एक तो बहनी और गाय देती हूँ
0: एक और गाय दी
2: हाँ गाओ एक कहूँ गावा जा है
3: एक सुध ना ही हुआ था चाची
0: तू बिसर गई हूँ
2: हम बिसर ना ही गए हम ना गाए जो काहे
0: काहे
2: या तो हम ढोल तोहार मजाई भाई हाथी या हम गाए
0: देखो
4: भाई चाची तोहार मुंह तेज चल रहा बहुत तेज चल रहा
2: नहीं हमारे गोड़ हाथ कुल पिराए लाग
4: हम सार दे बस चाची तो
0: हां
2: आई आई ढोलिया जन पीछे थे तोन
4: दो हाथ तो सार दे
0: हम गला दबोट दे दे
2: ये हमारे गला दबोट दे देखियो
0: नहीं तू गई हो ना थक जाई गला तो हम दबोट दे और हाथ पाई
2: हम गाई उसे पहले दबोट जब कहा से मत थक गया गला
0: नहीं तो हर हाथ गोड़ हम हूं दबाई दे ठीक
2: अरे बनी हमरे याद नहीं कोनो हमें
4: अतरा चाची हमरे जाना थी गाय दो एक तो कोनो
0: हम तो भाई अफम सुना करी थे जब से और हमें बहुत गाना याद हो तू ना ही सुनती हो का अफम
2: हम लखनऊ चली गए ना
0: लखनऊ
1: चाची लखनऊ
2: लखनऊ कही तो कहते
0: हम लोग तो पैदा भाई लखनऊ कहत कहत
2: हाँ
1: लखनऊ है चाची
4: बताओ नहीं रहा कि लखनऊ कहत लखनऊ
1: अरे लड़कियन बिटियन से
2: लखनऊ बहनी
0: लखनऊ कहत है लखनऊ
4: कहा जात है चाची
0: हमरी वो जिज्जी होती है कहती लखनऊ से आए हैं
1: लखनऊ कहत है समझ न पावत हो चाची
0: कब फोन करो तो कहती लखनऊ माओ तो पानी बरसत तोरे या नहीं बरसत
2: यही हमें सिखाई नहीं लखनऊ
1: लखनऊ बोलते ये इनके इंग्लिश ये अरमिकस पढ़ी गए आई अमेरिका
2: अरमिका पढ़ी नहीं हमें लखनऊ यही सिखाई नहीं चटपटाओ
1: जब ये अमेरिका पढ़ती तो ये लखनऊ जा नहीं पाती लेकिन ये अरमिकस पढ़ी गए आई
2: ये अंग्रेजी हमें यही तो सिखावती हमार अंग्रेजी के मास्टर चटपटाओ
1: अच्छा तो दोनों चाची एक के मेरी
2: हाँ
1: दोनों पड़ोसी
2: नहीं
1: ये चाची से आपका अंग्रेजी ठीक ठाक है
0: बहनी हमारा तो आज खराब हो
2: क्या वो चटपटू बिलाए गई तू भाई
4: भक्त चाची कहते तुम्हें दुनपा बना है
1: कि गुरु गुरु ही रहिए चला चक्कर होई
0: बताओ ये लोग जो है देखो कहा थी हमें नहीं निक लागत है
2: तू अरमिकस पढ़ के आए हुए ना बड़ी गुनी है
0: हम नहीं पढ़ के आन हम तो तू हमको तोहरे साथे पढ़ित रहन आए वो छपरा बैठ के
2: लेकिन तब तब तू छोटा बड़ा पढ़ी रहा ई एसी बीटी पढ़ के आए हुए अरमिका से
0: एक के साथ पढ़न छपरा बैठ के पढ़ित रहा हमारे भैया जो है अरमिका से पढ़ के
2: बहनी ये का करत रही हम एक तो कपड़ा में है रोटी घी लगा के लाओ थे एक ठो अचार धेली नॉन धेली भैया हमारे पुटकी खोल सब रोटी खा लेते
1: हैं चाची खाली खाही खाते तब जात
2: हाँ ये कछु ना लाओ है अपने घर से और हमार रोटियां बैठ बहुत प्रेम से खाए और जब बहनी वो हो खाए टाइमिया बेला बाजे जब तो देखिए हमारे पुटकिया धरा रहा है एको रोटी है ना
1: भूखन मारे पेट पिरा
2: ये हमारे दोनों रोटी खाए जाए बहनी
0: ये देख लो एकदम सदा से झुठिन हो तू झुठिन हो
2: ये देखो हाँ। जे खा थे तेज तू चिल्लाते हम तो नहीं चिल्लाए थे चिल्लाते यही तो क्या झूठा बता
1: चाची अब तो बेचनी जाना चाची का नवा गाय दो बस हम से चली जाए दियर बहुत है
2: एक कछु याद दवा चटपटाओ सुनो है चटपटो एक काम करो हमरे लाज प्यास हमका तू पिया दो गिलास पानी।
0: तो बरेक ले ले,
2: बरेक ले लो, पानी पिया दो। और सुनो जो इन पट्टिया बनाए रहा,
0: हाँ
2: हाँ खवाई दो बिटिवन खाए ले।
0: सुनो वे बहुत हमको बना के रखा है, वे खवाई था।
2: हाँ
0: एक तो ब्रेक ले
2: लेते हैं, ब्रेक ले
0: लेते हैं। और देखो कितना चटपटा बनाए हैं। तो आप लोग सुनते रहिए, इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम जल्दी हाजिर होते हैं, लेते हैं एक छोटा सा अर्ध विराम।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: ये पनिया पीओ बिटिए तू लोग
1: पी बहन चाची सब पी
0: ऐसी कहा था मतना नीक बनाए
1: बहुत नीक रहा चाची काका डाक बनाए
2: पट्टिया पट्टिया खाओ पट्टिया
1: खाएं खाएं बहुत नीक पट्टी बनाएं के दतवा है उजरा जा
2: करियर होएगा ना करियर
1: हम चपक ही जा।
0: देखो ये जब कुर कुर ना बोले दतवा के नीचे तब तक ही मजा ना ही आवत है ना बहनी।
1: हाँ
2: हाँ, तब कुर कुर ना ही बोला उदा तो हम चपदी गाँव निकाय
0: तो गुड़ तो हो। अब चीनी ना ही बनाई बहनी नुकसान करत है कि नहीं?
1: हाँ नुकसान नुकसान
0: बहुत नुकसान करत है। तो डॉक्टर कही ने कि गुड़ खावा करो,
2: चीनी खाए पेटवा नुकसान करी बहनी।
1: नुकसान होत है चाची कि नुकसान होत है?
0: नुकसान भाई, आज जो दोनों जने पूर्णिमा पूर्णिमा आई है और एक आना
2: पूर्णिमा के मुँह देख लो कस बना था।
1: बोलते वैसे कोई नुकसान कहा हिंदी खाली हमसे चुप बैठी है का करी। अब जो वहाँ वाली है अदरक के स्वाद के बिच्छम खा बिच्छम पूरी करी चाहिए।
2: ये हमारे सबके भसवा ही नहीं समझ।
0: हाँ, देख लो जैसे ये लागत है दिल्ली दिल्ली में रहती का दिल्ली में तो नहीं रहती बहनी।
2: चाची ही समझ
1: तभी नुकसान नुकसान कहा तो जा नहीं पाई कई दिन करो चिनिया खराब करते शरीर
0: अलीगढ़ रहा है
1: तब गाँव भाषा जल्दी
0: समझ गए बहनी मैटर। हाँ, समझ गई
1: मैटर समझ
2: नहीं मैटर मैटर
0: मैटर। अब अंग्रेजी बोले तो तू नहीं समझ पाए।
2: हाँ,
0: तो अब यहाँ से कही था
2: इतना बड़ा अंग्रेजी ना बोलो
0: मैटर मैटर नहीं हुई जाते जैसे हमने तुमने बीच में कब्बो कब्बो मैटर हुई जाते कि नहीं।
1: अरे चाची अब इनका हिंदी होना था मामला कहा जाए
0: लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा हुई जाता कि नहीं।
2: हम बहनी आता ना क्या तुम्हें अंग्रेजी भूख कहा
1: कहा करें अंग्रेजी
0: मैटर हुई जाए तो मैटर है कहा कि मैटर हुई जाता है कब्बो।
2: वाह देखो बहनी समता आई है इतना दिन बाद। ये बहनी कहाँ रही कमता?
1: राम राम चाची।
2: राम राम, राम कहाँ रही बहनी?
1: हम बस अपने घर से महल महल से घर
2: महल। या कब बनायू बहनी तू?
1: बन गवा महल
2: कब बनायू बहनी
1: ये नहीं पता लेकिन बन गया बस।
2: तो ये हमारे बटनवा का ही लिया जाती
7: हूं। कौन बटन?
2: ये जो दाबे खड़ी हो,
7: ये एसी का रिमोट है।
2: रिमोट का होते चटपटा?
7: रिमोट नहीं, रिमोट।
2: और ये एसी?
0: हम लोग तो बटनिया दाबे वाला कहे थे कि बटनिया दाबे वाला।
7: एसी माने जैसे कूलर होते हैं वैसे। ये
0: एसी तो हमारे लगा है ना, ही देखा तू, देखा ऊपर देखा।
2: हम तो रोजे कहते कि एसिया हमारे लगा।
7: चाची नहीं जान पा रही है ना हमारी।
2: हाँ, ये एसी ना ही कहा जाते, कहा जाते ठंडा
7: ठंडा ठंडा पिया जा रहा चाची।
2: ये का ठंडा कहा जाता, घर ठंड हो जाता है ना।
7: अच्छा चाची, हम चल रहे हैं।
2: कहूँ जाती बहनी?
7: हाँ चाची, हाँ थोड़ा
0: कपड़वा बहुत नीक पहने हो बहनी।
7: धन्यवाद, बहुत बहुत।
2: आज वो है ना,
0: कहा है
2: शिक्षक,
0: शिक्षक नहीं
7: शिक्षक दिवस।
0: अब शिक्षक
7: नहीं शिक्षक दिवस। चाची हमारे एक चाची का डांट रही है, बोली
2: शिक्षक
0: शिक्षक शिक्षक दिवस शिक्षक
7: शिक्षक। अच्छा आप दोनों को भी, आप
8: दिवस
7: हाँ, आप दोनों को भी शिक्षक दिवस की बधाई बहुत बहुत।
0: चलो आपको बहनी बधाई।
2: बहनी ने कहा तो बधाई है, मास्टर हुए हम मैं कौन बधाई हमरे तो अंगूठा टेक कुछ जनवा नहीं खरीद है।
7: काहे से नहीं चाची, आप नहीं मास्टर तो आप लोग सबसे पहली मास्टर, क्योंकि गुरु जो होती है वो सबसे पहली माँ होती है शिक्षक।
0: हाँ देखो कितनी बढ़िया बात कही ना, हमारे लोग तो सिखावा ना उनका।
2: तो ये अमेरिका से नहीं पढ़ी है?
7: नहीं हम अमेरिका से नहीं, हम यहीं से पढ़े।
0: ये कौनो
7: मेरा भारत महान,
0: तो हम भारत
2: हमारो बहनी हमारो
8: हम टीचर बनी।
2: ये त्योहार भारत महान तो हमारो गुआ महान।
7: चाची नमस्कार।
2: नमस्ते बहनी, खुश रहो, जियो नीके रहो।
0: बहुत नीक बिटिया होई।
2: हाँ और सुनो, ये हमका एक गवनैया याद आएगा वहाँ
0: तो गाय दो भाई, जब आद आवे तो तुरंत गाय दिया।
2: हमरे आद आवा है गाय लो, हम बिसर जाओ तब गाय दो।
7: हाँ हाँ चाची जल्दी करो, हमारे घर से बलौआ आवत है, मारी जाए लग पे घर।
0: हम प्रैक्टिस तुम लोगों का कराई रहा है, प्रैक्टिस कर लियो कहीं चल रहा
2: है किसका भाड़ी माँ बहनी। अगर वो मारी जी घर गिर रहा है
0: तो नहीं किकरी हिम्मत है जो इनका हाथ लगाए जाए हमरे रहत।
7: अरे बप्पा हमरे घर गुहरावत
0: बप्पा से कह दियो कि चाची के लगे बैठी रहन बप्पा एक चो खजा चुप हो जाई।
7: हाँ चाची तब भाई तो बप्पा हमारे घर थे ना जावा करो बहु हूँ मैं।
2: हाँ तो कहो हम चाची के लगे रहन और
7: मतलब ठीक है बताए दे।
0: हाँ बता दियो बहनी,
2: बता दियो की चाची लगे बैठी थे हम लोग नीक नीक गौने सीखी थे ससुईया का सिखली सुनाई बजा में तब सास पहले जैसे देखो जैसे घर पहुँचबो ससुर लिया ऐसे सास कुछ है कुछ गावे जान तू दुलहीन का
7: से अपने पहले
0: बहनी जो तू दहेज वहेज दई के हुआ गई तो बहुत जौन दुर्गति करी है कि तू याद करी।
7: अरे चाची बिना दहेजवा ना ले जा तो घर में ना रह जे मारी मारी खिया दी दिया है आज के सास।
0: तू पढ़त काहे के लिए हो, यह के लिए तो पढ़ा तो पढ़ाई काहे के लिए करत
7: है। नौकरीओ चाहि दहेजवा चाहि
0: गलत है सरकार। देखो हम रेडुआ सुनीत है और रेडुआ
2: रेडुआ तू लोग सुना करो 89.8 एफएम
0: रेडियो हाँ रेडियो कहा था।
2: वाह वाह वाह वाह
0: सुना करो,
7: सुना करो
0: इतनी बहुत नीक नीक बात होते है कि तू न तू दहेज लियो और न तू दहेज दियो ये कहा जाता है। हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं है।
2: और अगर सुनो अगर कोई दहेज मांगे तो पुलिस का फोन कर दो।
7: पुलिस का?
2: हाँ नहीं बहनी केस होता है कि दहेज मांगत है पुलिस
0: आवती है।
7: चाची
2: पुलिस
7: तू चाची अब सुध
0: जान लो पुलिसिया बस यहाँ जा है। हाँ वह है बस तुरंत कौन सा नंबर एक जनी आई रहा है अपने गौआ माँ।
2: हाँ मेहरू
0: हाँ 1090
7: 1090 महिला हेल्पलाइन पर।
0: हाँ
2: एक
0: एक
2: जीरो जीरो
0: एक जीरो नौ जीरो
2: नौ जीरो। हाँ हाँ यह है
7: एक जीरो नौ जीरो है लेकर जब कोई दहेज मांगी तो
0: एक एक और दुई वो मिला लियो।
2: एक दुई काहे मिला ले
0: कहीं ना है कि एक
2: यार एक दुई मिले ही तो भूत पर रहता है जी नहीं जानती एक दुई में भूत पर रहता है।
7: चाची हमारे भूत पर रहते हैं बहुत गल लागे
0: तो हमरे
2: गौवा ये गिनती गिने शुरू करिए 3 और 4 मिलाई दियो और 5 और 6 मिलाई दियो
0: चलो गाओ
3: चाची गाओ।

0: बहुत बढ़िया।
1: ये अपन ढोल अब न गाइब हम।
0: ये वाला गनवा जो रहा है बहिनी, हम और दुलारी दोनों जनी बचपने में खूब गाइत रहे।
2: खूब गाई
0: हाँ,
1: पढ़लुआ झूली और खूब गाई
2: से रहनिया चलत रहा चाची।
0: हम लोग जो ये गाए वह हम गाय थे।
2: अच्छा
0: हाँ,
2: तो यक्का दोनों जन का यक्का मेर ताल मेल खात रहा।
1: और सुनो पहनी सखी जो रहे हैं।
2: अच्छा
1: बचपने
2: तब तो की रेटिंग रेटिंग दिया तो रही
0: हूँ। कंधा तो बहुत बढ़िया गाओ।
2: अच्छा
0: तुहार रहन बढ़िया हो
2: तो बढ़िया चाची। हम सिखब गाउन रही हूँ।
1: हाँ सीए के ससुर जाए थे
0: पुर्णियों बढ़िया गावत थी।
2: हाँ
0: सुना हम
2: तुम भाई नहीं सिखा कर
3: लता मंगेशकर जी घर बगली के रहा तरह
2: उनके उनके कंठवा इन्हीं के कंठम समाई गा रहा।
1: वाह दिए भैया, मतलब वो जात जात तू है अपन कंठवा दे गई
2: रहा कहीं ना लियो धाई लियो
1: तो ये चटपटो।
0: हाँ
1: अब चलो घर का वो था दियर।
2: अभी चौपाल काल फिर लगायो।
1: हाँ कहे से कि हमका जाए का बाजारे तू मटका सनकी ना करो। चलो हमें बाजारे जाए का
0: बाजार तो हम जाए
2: चाची का तो भाई घर तैयारी है।
0: कहा था वो लाए के गुब्बारा
1: खीरवा लावे के खीरवा
0: महू का ले खीरवा
1: तब पाता लग रहा है खीरा लाई
0: तो चलो पहन लो कपड़ा है कैसे चलियो यहाँ पैजामा पहन
1: ये पैजामा पहन पर जब
0: जाओ
1: जब जब लाग है
2: बिलौजोम धरिए तुम दिखाई पहले
1: और का भी सरिया पहनिए तो बिलौजोम धरिए फूल नहीं आगे कौन फायदा है। हम चोरा के धरे धरो तो जी अभी हम धरो हुआ काहे के धरो
0: नहीं हम पेटी
2: कोटे में अपने जेब लगवाए ले तब रुपया चोरा।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। इस प्यारी सी शाम में जहाँ पर बारिश हो रही हो, हल्की फुल्की बूंदें अगर आप महसूस कर पा रहे हो तो सुहावना मौसम लगता है। हाँ, बहुत तेज़ ना हो बारिश तो, और बारिश का तो अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग मज़ा है। और खुशी की बात यह है मित्रों कि आज हमारे साथ हमारी को होस्ट भी आपके साथ कुछ पलों में जुड़ने वाली हैं, तो उनका महफिल में आना हुआ और बरसात भी हो गई। तो चलिए भाई, गीतों की बरसात लेकर मैं हाजिर हूँ और पानी की बरसात लेकर हमारे साथ वो हाजिर हैं जिनकी चाहत सभी को होती है। जी हाँ, अगर किसी से पूछा जाए कि क्या चाहिए तो लोग कहते हैं खजाना चाहिए। हमारे पास जीता जागता हुआ खजाना है। जी हाँ, उनका नाम बहुत प्यारा सा नाम है, निधि हमारी को होस्ट है और आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो निधि जी, आपका स्वागत है आपके अपने शो में।
1: थैंक यू सर मेरा स्वागत करने के लिए।
0: कैसा महसूस कर रही हैं आप?
1: बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, ये जो बारिश है, अभी भीगता हुआ मैं आया, आपने तो खैर आपके कपड़े सूखे हुए हैं, बरसात का आनंद नहीं लिया, लेकिन क्या ऐसा होता है कभी कि हाँ बारिश का, अगर बारिश हो रही हो तो फिर उसका आनंद लेने का मन करता हो कि थोड़ा सा भीग कर देखते हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल, बारिश को देखते ही मन में जो खुशियाँ होती हैं, बच्चे उछलने लगते हैं, कुछ लोग भागने लगते हैं और कुछ बारिश का आनंद लेते हैं, कुछ पकौड़ियाँ तलने लगते हैं, कुछ कुछ करने लगते हैं, पर बारिश को देख के जो सुकून मिलता है वो अलग ही मन को शांति प्रदान करता है।
0: अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि हाँ बारिश में भीगी हो, बहुत मज़ा आया हो और अगले दिन बीमार पड़ गई हो?
1: हाँ बहुत बार हुआ है, बचपन में कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है।
0: तो मतलब तब भीगने से डर लगता था या आज भी भीगने से डर लगता है?
1: नहीं, भीगने से तो कभी किसी को डर नहीं लगता है सर। आपको अच्छा, कभी भीगने से डर लगा है?
0: हाँ मतलब भीगने से तो डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप भीग रहे हैं और इसके पश्चात जो जुकाम या बुखार हो सकता है वो आपको परेशान कर सकता है या नहीं?
1: सर कर सकता है, मौसम की पहली बरसात से बच के रहना चाहिए, ऐसा आपने सुना ही होगा बचपन से।
0: जी, तो मतलब इस चीज़ को सुना है आपने या इसको महसूस भी किया है?
1: महसूस भी किया है।
0: तो कभी बरसात का मौसम आपको अच्छा लगता है?
1: जी बिल्कुल।
0: और सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है आपको?
1: सर सबसे अच्छा मौसम लगता है सर्दी का।
0: सर्दी का, वही मतलब पिंक विंटर?
1: यस सर।
0: क्या बात है। अच्छा, पिंक विंटर ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद है, ऐसा क्यों?
1: सर उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं।
0: मतलब हमको लग रहा है कि आप कुछ फूडी टाइप की हैं।
1: यस
0: सर। यस सर, तो मतलब क्या खाती हैं आप पिंक विंटर्स में ज़्यादा?
1: सर आप कुछ भी खा सकते हैं, आपको खाने से पहले सोचना है, और आप कहीं भी बैठ के खा सकते हैं। और गर्मी में शादी में गए, कहीं भी गए, आप पहले ढूंढते हैं बैठे कहाँ, पंखा कहाँ चल रहा है, एसी लगा है कि नहीं लगा है।
0: हाँ?
1: और गर्मी में बहुत दिक्कत होती है।
0: हाँ मतलब मेकअप भी खराब हो जाता होगा।
1: जी सर बिल्कुल, मेकअप करना आना भी चाहिए।
0: हाँ मतलब ये मेकअप अगर खराब हो जाए तो फिर लगता है कि हाँ आधा मजा किरकिरा हो गया।
1: बिल्कुल सर।
0: तो पिंक विंटर इसलिए पसंद है ताकि खाया बहुत अच्छा जा सके और मतलब मेकअप खराब ना हो शादियों में,
1: ऐसा आप कह सकते हैं। पर सबकी अलग अलग पसंद होती है, हो सकता है कुछ लोग को बरसात पसंद हो, कुछ हाँ, लोग को पतझड़ पसंद हो, कुछ लोग को गर्मी पसंद हो,
0: लेकिन आपको पिंक विंटर पसंद है।
1: यस सर।
0: क्या बात है। और आज का दिन आपको कैसा लग रहा है कि पहली बार आप स्टूडियो में बैठी हैं, बातचीत हो रही है, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है, पर स्टूडियो में मैं पहली बार नहीं हूँ।
0: जी
1: मैं कई बार स्टूडियो में बैठ चुकी हूँ, ऐसे
0: बैठ चुकी
1: बस ये आपके साथ।
0: हाँ हमारे साथ मतलब ये पहली आपकी मुलाकात है। तो क्या लगता है आपको कि जो हमारे श्रोता हैं इस मौसम में उनको कौन सा गीत है जो बहुत पसंद आ सकता है?
1: सर वही जो सब सुनते रहते हैं बरसात के मौसम में।
0: हाँ क्या बात है, मतलब दो गायक कलाकार हैं इसमें, रूप कुमार राठौर और दूसरे का नाम है कुमार सानू। इन दोनों की आवाज को अगर आप कंपेयर करें तो आपको किसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है?
1: सर दोनों की आवाज अपनी जगह बहुत अच्छी है।
0: अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सबसे प्रिय गायक कलाकार या गायिका कौन है तो आपके जुबान पर सबसे पहला नाम किसका होगा?
1: सर कुमार सानू।
0: क्या बात है, मतलब पहली ही पसंद आपकी कुमार सानू है।
1: जी सर।
0: और आप जानते हैं कुमार सानू जब फिल्म इंडस्ट्री में गए थे तो शायद आपको पता हो, तो शादी के बाद जब वो गए तो उनके पास होटल में उन्होंने खाना खा लिया और पैसा कम पड़ गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में कुमार सानू जो है वो किशोर कुमार के गीत गाया करते थे, तो जब पैसे नहीं बचे तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो वहाँ के जो मालिक ने कहा, उन्होंने मालिक से कहा कि मैं आपको गीत सुना सकता हूँ। और उन्होंने जो पहला गीत मुंबई के उस होटल में गाया था वो गीत था मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा।
1: ओ सावन तो चला गया सर।
0: हाँ, मतलब लेकिन भादो है।
1: जी बिल्कुल।
0: जी हाँ, सावन चला गया लेकिन भादो का मौसम है। तो उसके पश्चात उस होटल के मालिक ने उनको अपने यहाँ रख लिया कि तुम हमारे यहाँ एज एन आर्टिस्ट वर्क करोगे। और कुमार सानू वहीं पर उसी होटल में गाने लगे। जिंदगी है आपको किस हसीन मोड़ पर कब कहाँ ले जाए, ये तो विधाता जानता है कि जिंदगी कब किस करवट बैठेगी। लेकिन वही कुमार सानू जो

0: वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। तो जो लिख दिया जाता है वो तो शायरी होता ही होता है, लेकिन जो अनदिखा होता है शायरी, कविता का दर्द, कवि का दर्द, शायद हमको लगता है कि जो नहीं कह पाए वो बहुत अच्छा है।
1: सर, ऐसा है कि जो लेखक होता है वो किसी दर्द में होता है तभी वो लेखक होता है।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। प्रश्न देखिए ऐसा है कि मेरा अपना मानना ये है कि मैं सुन रहा था जावेद अख्तर साहब को, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ज़िंदगी में अगर हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आपका नहीं हुआ तो आपने ज़िंदगी का एक अहम सा पहलू खो दिया।
1: ये मतलब ज़रूरी होता है।
0: मतलब मैंने कभी खुद लिखा था कि जिसकी न लुटी दुनिया और जिसका दिल न जला, वो प्रीत करेगा क्या, वो गीत लिखेगा क्या। तो कहीं ना कहीं गीत लिखने के लिए अंदर से कुछ टूटा हुआ होना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। परिस्थितियों की मार हो, जिंदगी के उठा पटक हो, जिंदगी के उतार चढ़ाव हो, हमको लगता है कि ये सब कुछ देख करके जब थोड़ा सा दिल टूटता है तो अंदर से कुछ आह से निकलती है।
1: आप कहना चाहते हैं जिंदगी जीने के लिए हंसना, रोना, टूटना, बिखरना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हंसना। हर समय हंस ही नहीं सकते हैं, टूटना भी जरूरी है।
0: मतलब परिस्थितियां ऐसी होती हैं भाई, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। तो कोई ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा जहाँ से केवल डोलियाँ ही उठी हों। जहाँ से डोलियाँ उठती हैं वहाँ से रथियाँ भी तो उठती हैं।
1: जी सर, बिल्कुल उठती हैं।
0: जिंदगी के इन सारे चीज़ों का कम्बिनेशन ही तो लाइफ है। क्या लगता है आपको?
1: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: जी हाँ, तो आइए भाई, बहुत अच्छे है। हमारे साथ हम बरसात लेकर आए, गीतों की बरसात, और हमारे साथ हमारी को होस्ट निधि जी हैं और जो गीतों की बरसात लेकर आई हैं, और हमारे साथ भाई अरविंद जी हैं। हेलो मनुष्य जी, कैसे हो आप? जी अच्छा हूँ। और आशु मिश्रा जी हैं, लखनऊ से प्रणाम करते हैं आपको। धर्मेंद्र मोहन जी हैं, नमस्कार। जी हाँ, और कल तक सिर्फ एक अजनबी थे तुम, आज दिल की धड़कन पर हुकूमत है तुम्हारी। क्या बात है भाई, देखिए पंक्तियाँ अरविंद जी भी बहुत अच्छी लिखते हैं। और चलिए चलते हैं भाई उस गीत की तरफ, थोड़ा सा बारिश भी हो रही है और जैसा झूम के आते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गान असली 89.6 FM। ये क्या है?
1: गोंडा शहर की धड़कन।
0: जी हाँ, मतलब ये गोंडा शहर की ही नहीं, कई सारे शहरों की और हम सभी के दिलों की धड़कन बन चुका है। तो आइए अपनी धड़कन को थोड़ा सा आराम दिलाते हैं। जी हाँ, एक प्यारा सा संगीत में अंतराल लेते हैं और अंतराल के पश्चात फिर हम मिलते हैं, हम और निधि जी आपके साथ पुनः रूबरू होते हैं इस प्यारे से गीत के बाद। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM। ये गोंडा ही है नहीं, बल्कि बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन।

0: जी हाँ, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। वास्तव में जब आप बारिश में भीग करके आते हैं तो कुछ लगता है कि दिमाग में कुछ संगीत चल रहा है। भाई हमारी कोहोश से पूछते हैं कि उनको क्या महसूस होता है। तो क्या लगता है निधि जी आपको कि बारिश का संगीत से कोई संबंध है?
1: जी सर, बिल्कुल। बारिश का और संगीत का तो मुझे बहुत गहरा संबंध लगता है। शायद इसलिए बारिश में कोई भी गाना थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत महसूस होता है। आपने देखा होगा, बारिश होते ही गाने के साथ बारिश को देखना कुछ ज़्यादा ही आनंद दे जाता है। इन दोनों का जो रिश्ता है, म्यूजिक का और बारिश का, वो एक बहुत गहरा रिश्ता है।
0: क्या बात है। और कहीं कोई फिल्म मैंने देखी थी टाइगर श्रॉफ की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन
1: छम छम छम की बात नहीं?
0: नहीं नहीं, मतलब वो कहते थे कि जब वो एक्ट्रेस से मिलेंगे तो
1: हाँ,
0: कहते
1: तो
0: हैं कि
1: बारिश
0: होगी,
1: जब मैं तुमसे पहली बार मिलूंगा तो बारिश होगी।
0: हाँ मतलब, और फिर जब वो उसको विलन उठा लेकर जाते हैं और बारिश होने लगती है तो वो जान जाती है कि आ रहा है मेरा सुपर वाला हीरो।
1: वही सुपर वाला हीरो फिर आ जाता है, बचा लेता है।
0: मतलब वो कौन सी फिल्म थी, क्या हीरोपंथी बागी या ऐसी कोई?
1: जी सर, ऐसी कोई बागी करके ही थी, बागी ही थी
0: ना
1: जी।
0: अच्छा, वास्तव में अगर आपको बरसात के मौसम में जो संगीत का आपने रिश्ता बताया, तो मतलब आपको क्या महसूस होता है कि जब सामने हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो दिल में कैसे ख्याल आते हैं?
1: सर बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, कभी कभी तो आप बारिश को देखते ही गुनगुनाने लग जाते हैं, आपका मन बहुत अच्छा हो जाता है। शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, पर बारिश को देखते ही जो मन में एक गुनगुनाहट चलती, वो ही शायद संगीत है।
0: अच्छा, और अगर आपने बारिश को देखा और जो आपने कहा कि गुनगुनाहट चल जाती है
1: जी,
0: तो अगर आपको गुनगुनाना हो तो कौन सा गीत आप गुनगुनाएं?
1: थम के बरस एक गाना है सर।
0: अच्छा, थम के बरस। अच्छा, एक गाना है थम के बरस और एक गीत है जम के बरस।
1: जी सर।
0: तो ये थम के बरस और जम के बरस में क्या मतलब, क्या लगता है आपको क्या है?
1: शायद है कि थम के बरस हो सकता है उसको कहीं जाना है, और हो सकता है जब वो वहाँ पहुँच जाए तो शायद उसका आने का मन ना हो, इसलिए जम के बरस।
0: अच्छा, जम के बरस, यानी थम के तब बरस जब हमको जाना हो।
1: जी
0: हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जब हम पहुंच जाएं और हमको आने का मन ना हो तो हम कहते हैं
1: जम के बरस।
0: जम के बरस, क्या बात है, बहुत प्यारा सा उत्तर दिया और बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया।
1: ये हुआ भी है मेरे साथ, मैं घर से निकल रही थी तो मौसम थोड़ा ऐसा था, मेरे ख्याल अभी थोड़ा रुक जाओ, जैसे मैं कॉलेज पहुंची इतना तगड़ा बरसा है।
0: हाँ,
1: तो ये होता है ज्यादातर,
0: मतलब जब तब बारिश
1: जाना है थम के बरस, भगवान हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए अभी।
0: हाँ, और वहां से आने का मन ना हो तो
1: जम के बरस।
0: जम के बरस, जी हाँ। तो श्रोताओं भाई, आप भी बताइए कि ये जम के बरस वाला अच्छा होता है आपके लिए या थम के बरस वाला? कभी ऐसी स्थिति आई है कि जम के बरसा हो और आप चाहते हो कि थम के बरसे, या कभी थम के बरसा हो और आपने सोचा हो नहीं नहीं आज तो जम के बरसना चाहिए? हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं भाई, और उसके साथ जुगल किशोर वर्मा जी ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। शुभ संध्या आपको भी, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और जी, हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता है, गाने की गहराई बहुत दिल को छू रही है। सुपर गांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसने उसके एक एक लम्हे की हिफाजत करना है खुदा, मासूम सा चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, क्या बात है। और बागी थी सर मूवी का नाम, देखिए हमने राहुल जी ने बता दिया है कि जी बागी थी, मतलब फिल्में कहीं ना कहीं, मतलब जब आप देखते हैं तो उसकी कोई ना कोई चीज़ एक बनी रह जाती है
1: और आपको रिलेट कर लेती है।
0: रिलेट कर लेती है, मतलब बारिश हुई और हम फिल्म तक पहुंच गए।
1: जी सर,
0: मतलब। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो उनको याद है
1: जी
0: कि वो मूवी बागी ही है। तो मतलब कभी कभी बारिश होने में देर हो जाती है।
1: जी सर, ऐसा हो होता
0: है ना,
1: होता है
0: कि मतलब थोड़ा और पहले हो जाती तो काम आसान होता है। लेकिन मुनीर नियाजी ने कहा था कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ जाके उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अच्छा, जो इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं निधि जी, कैसा लगती है आपको कि ये कैसी घड़ी है?
1: सर, इंतज़ार वैसे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं। इंतज़ार करना, वो चाहे जो इंतज़ार हो, कहीं जाना हो, किसी को आना हो, कुछ मंगाना हो, कुछ भी हो।
0: हाँ,
1: आज मैंने वैसे इंतज़ार किया आपका थोड़ी देर बैठ के, तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा।
0: हाँ, मतलब वही होता है कि इंतज़ार की जो घड़ियाँ होती हैं वो काटे नहीं कटती
1: जी
0: हैं।
1: ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर पे रहिए और 10 बजे से 5 कब बज जाता है आपको पता नहीं चलता। हाँ। वहीं आप कहीं बाहर चले जाइए, टाइम ही नहीं बीतता है, ऐसा लगता है कितना बड़ा दिन है।
0: अच्छा, कभी ऐसा भी होगा कि कोई क्लास ऐसी रही होगी जिसको आप पढ़ते होंगे तो लगता होगा कि ये 1 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला?
1: जी सर, ऐसा कई बार होता है।
0: और कोई क्लास ऐसी होगी कि
1: 45
0: पता ही नहीं चला
1: ही जा रहा।
0: हाँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार 1 घंटा हो गया पता नहीं चला। तो मतलब आपको ऐसी क्लास आपकी कौन सी रही कि 1 घंटा जल्दी बीतता नहीं था, वो कौन सी क्लास थी?
1: सर, आपकी कई क्लासेस ऐसी रहती हैं और उन्नति मैम की कई क्लासेस ऐसी रहती हैं कि कब 1 घंटा बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। आप जिस तरह इंग्लिश समझाते हैं, बताते हैं, शायद ज़्यादा बेहतर समझ आने लगता है इसलिए।
0: क्या बात है। और कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें लगता है कि यहाँ 1 घंटा बीत नहीं पा रहा है?
1: सर, मैं ओ लेवल कर रही थी, कंप्यूटर की क्लास।
0: अच्छा।
1: मेरे सर ना सुन ले कहीं।
0: नहीं नहीं, आपके सर सुनेंगे नहीं। मतलब तो हमको लगता है कि जब हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना लेते हैं तो
1: जी सर,
0: शायद वक्त का पता नहीं चलता। मतलब अगर अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाएं तो शायद वक्त का पता नहीं चलता कि हाँ उनसे 1 घंटे बातचीत हो गई, लगता है कि अभी कुछ ही देर हुआ
1: जी।
0: और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लेवल आपने बताया जैसे, तो वो लेवल आपका जो होता होगा इस समय कि हाँ अरे 1 घंटा कितनी बार घड़ी देखी हमने, तो ऐसा भी होता है
1: जी सर।
0: इसका मतलब वास्तव में समय महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण ये होता है कि आप किसके साथ बैठे हैं, आपका साथ क्या है। और वक्त जो है वो व्यक्ति पर आधारित होता है कि आप कैसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, ऐसा होता है ना?
1: जी ऐसा होता है, और आपके काम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके मन का काम है तो आप उसे बहुत इंटरेस्ट से 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आपको कोई वो नहीं है।
0: हाँ?
1: नहीं तो आपको वो काम करने में आपका मन ही नहीं लगता है, जैसे 1 घंटा किस तरह बीते और मैं यहाँ से जाऊँ।
0: ओहो, तो मतलब अब हम आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा काम है जिसको आप करती जाएं और आपका मन न भरे?
1: मैं वैसे अपने दोस्तों से बात करती जाऊं, या मुझे कुकिंग में बहुत वो है, मुझे दिन भर में बनाती जाऊं, कुछ भी बनाती जाऊं, मेरा मन नहीं भरता।
0: अच्छा, ये बात आपने पहले बताई होती तो मैं आपके घर आकर कई बार खा चुके होते।
1: अरे कोई बात नहीं सर, अब आ जाइएगा आप।
0: जी हाँ भाई, तो चलिए हम जो है वो निधि जी के हाथ का बना हुआ कुछ बेहतर सा खाते हैं, लेकिन तब तक आपको सुनाते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। हमारे साथ तो जुगल किशोर वर्मा जी हैं, शुभ संध्या आपको भी, नवीन जी राजपूत हैं, राधे राधे जी हैं आपको भी, राधे राधे, और दादा हैं अनिल शास्त्री जी, हमको सुनते हैं गोरखपुर से, चरण स्पर्श आपको। और जी आइए फिर ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में, और मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 9.6 FM, ये गोंडा की ही नहीं बल्कि बन चुकी है अब कई दिलों की
1: धड़कन
0: धड़कन।

0: जी हाँ, बारिश का ये प्यारा सा मौसम, और हमारे साथ नाजिया अंसारी भी जुड़ चुकी हैं। भाई शुभ संध्या, आपको भी आदाब करते हैं आपको, और चलते हैं अपनी को होस्ट, जी हाँ, जिसकी आवश्यकता इस दुनिया को है, खजाना यानी निधि जी। तो बरसात बीती और बारिश जो हो रही थी, आप तो यहाँ बैठी हुई थी लेकिन हम भीग कर पहुँचे, तो आपको मुझको देखकर थोड़ी सी जलन हुई कि मतलब हम भीगने का मज़ा पा गए, आप नहीं पाई?
1: नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मुझे जलन बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं इससे पहले भीग चुकी हूँ।
0: अच्छा, इसके पहले भीग चुकी हैं?
1: जी सर।
0: तो मतलब भीगने का आनंद है?
1: जी सर, और आपको वर्क का एक्सपीरियंस है, आप आते जाते रहते हैं, एक कपड़ा भी साथ में रखते होंगे, अभी हम लोग नए नए बच्चे हैं, इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं।
0: अच्छा, ये बात है। अच्छा, त्योहारों का मौसम सा चला, जैसे हमने शुरुआत की जो है वो प्यार सा त्यौहार मनाया गया, रक्षाबंधन आया, 12 रबीउल अव्वल आया, जन्माष्टमी आई, तो मतलब अब तो लगता है त्योहारों का समय चल रहा है।
1: जी सर, 6 महीना बिल्कुल हमारे त्योहार में ही जाने वाले हैं।
0: त्योहार में ही जाने वाले हैं।
1: तो आपका सबसे पसंदीदा त्योहार कौन सा है?
0: मेरा
1: जी,
0: अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रक्षाबंधन।
1: क्यों, आप अपनी बहनों से ज़्यादा प्यार करते हैं?
0: बहुत ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो जो कलाई में राखी बांध कर जाती हैं, वो 1 साल बाद आती हैं, वही खोलती हैं, और पुनः जो है वो नया रक्षाबंधन बनता है।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हर भाई को करना चाहिए अपने बहन के प्रति, वो स्नेह दिखाने के लिए कि मैं अपनी बहन से इतना स्नेह करता हूँ। पर कई लोग होते हैं जो खोल के रख देते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो अपने बहन से प्यार नहीं करते हैं, हो सकता कुछ लोग नहीं बांध पाते हैं, कभी कभी वो भीग भी जाता है, लिखने उखने में थोड़ा वो होता है,
0: हाँ,
1: पर वो आपका शायद ज़्यादा स्नेह है जो बांध के रखवाता है साल भर।
0: हाँ, मतलब बॉन्डिंग टचवुड, मतलब
1: जी,
0: मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी सिस्टर ही है,
1: बहन सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है। और एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि जिनका बहन के साथ ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है वो कुछ साल ज़्यादा जीते हैं।
0: ओह क्या बात है, मतलब ये हमको नहीं पता था, लेकिन ये नई जानकारी आपने हमको दी
1: जी।
0: तो मतलब हमारी उसकी बॉन्डिंग मतलब बड़ी प्यारी सी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी है कि हम लोग एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते हैं, और रक्षाबंधन में वो वहाँ से यहाँ आती है, और जो भाई दूज का त्यौहार होता है तो मैं यहाँ से उनके घर जाता हूँ, उनके ससुराल जाता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब वो जो 2-3 दिन वहाँ पर दीपावली के बाद दुखने वाला समय होता है
1: जी,
0: बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ देख दूसरी दुनिया ने, तो यहाँ पर तो फिर हर दिन सुबह से और शाम तक फिर काम काम काम काम काम, वहाँ पर पहुँचे तो लगता है कितना सुकून मिल गया एकदम। मुझे कहना हो कि धरती पर जन्नत कहाँ है तो मैं कहूँगा मेरी बहन के ससुराल में।
1: बहन के ससुराल में आपने इतना अच्छा ससुराल ही ढूंढा होगा।
0: हाँ नहीं, मतलब कहा जाता है कि किसी अच्छे इंसान की आप प्रतीक्षा मत कीजिए, खुद को अच्छा बनाइए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना निधि जी, कि अच्छे इंसान की तलाश करते रहते हैं।
1: जी सर।
0: अच्छा, अगर हम खुद को अच्छा बना लें तो हो सकता है किसी की तलाश हम तक आकर रुक जाए।
1: ये बात आपने बहुत सही कही, हम क्यों सोच रहे हैं कोई अच्छा हो, अच्छा मिले, हम खुद को इतना अच्छा मिला लें कि बना लें कि कोई आके हम तक रुक जाए।
0: हाँ।
1: और आपका अच्छा इंसान खोजना और उसके अच्छे इंसान के मिलने की प्रतिक्रिया ख़त्म हो जाए वहीं।
0: हाँ, मतलब हम जब हर इंसान अच्छा आदमी ढूंढेगा ही तो फिर अच्छा बनेगा कौन,
1: वही
0: तो मुझे लगता है कि स्वयं को अच्छा बना लेना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छा ढूंढने से बेहतर है कि हम खुद को अच्छा बना लें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक अच्छे इंसान की में क्या क्या बात होनी चाहिए?
1: अच्छे इंसान बस अच्छे होते हैं, उनमें कोई बात नहीं होती है सर।
0: मतलब उनमें कोई बात होती है तभी तो वो अच्छे होते हैं।
1: मेरे हिसाब से अच्छा इंसान वो होता है जिसके अंदर थोड़े मैनर्स हो, वो आप उसके पास चाहे जो हो, पर वो इंसान को ऐसे ना ट्रीट करे कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है गरीब है। अच्छे इंसान की मेरे अंदर से ये है कि वो कितना भी अमीर है या गरीब है, पर जो एक इंसान उसके साथ बैठे उसको ऐसा महसूस हो कि मैं इंसान के साथ बैठा हूँ।
0: क्या बात है, मतलब आपने बहुत सही बात कही, और मुझको याद आता है कि बहुत प्यारी सी गज़ल है, उसकी एक लाइन है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना।
1: जी सर,
0: तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत
1: नहीं है।
0: तो ये ऐसा आपने तब एक्सपीरियंस किया होगा जब किसी के पास नया नया आया होगा, नहीं तो वास्तविकता अगर हम देखें तो जो इंसान वास्तव में बहुत ऊंचे पोस्ट पर है और काबिल है, उस इंसान को हमने अक्सर विनम्र पाया।
1: जी सर, ये बात आपने सही कही है। और जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, आपने वो भी देखा होगा, जो टहनियाँ थोड़ी हल्की होती हैं वो हवाओं में बच जाती हैं,
0: हाँ,
1: और जो बहुत सख्त होती हैं वो टूट जाती हैं।
0: हाँ, जिनमें लचक होती है वो
1: बच जाती हैं। तो आपके व्यवहार में इतनी नम्रता होनी चाहिए, आप चाहे जिस मुकाम पे हों।
0: हाँ, और इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है तो हमारे यहाँ तो हम सभी के प्रेरणा स्रोत जो इसके डायरेक्टर सर हैं वो सबसे अच्छे एग्जांपल हैं।
1: जी सर बिल्कुल, आप उन्हें देख सकते हैं। आरती मैम का भी स्वभाव थोड़ा सा ऐसा ही, अदनान सर भी हैं, उनका भी स्वभाव थोड़ा, मतलब जो जो आपको ऐसे पोस्ट पे दिखेंगे वो आपको बहुत ऐसे ही दिखेंगे।
0: हाँ, मतलब विनम्रता, मतलब वो पंक्ति ना संस्कृत में कहते हैं विद्या ददाति विनयम।
1: जी सर,
0: तो अगर आपके पास ज्ञान है तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि आपके पास विनम्रता आएगी।
1: जी,
0: और एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ निधि जी।
1: जी बिल्कुल, सुनाइए आप मुझे।
0: एक घड़ा, पानी का घड़ा देखा होगा ना।
1: जी बिल्कुल।
0: उस घड़े के ऊपर एक प्लेट रखी हुई थी, अक्सर रखी जाती है ना।
1: यस यस।
0: हाँ, तो जब वो प्लेट रखी गई तो बहुत दिन तक उन दोनों का साथ रहा। तो एक दिन जो है वो प्लेट ने घड़े से शिकायत की कि आप जो है वो सबको ठंडा करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहती हूँ और आप मुझे ठंडा नहीं करते। बस उत्तर तो सही था भाई, जो भी आता है वो ठंडा हो जाता है, विनम्रता उसके अंदर शीतलता आती है, और उसके ऊपर जो प्लेट रखी है उसमें शीतलता नहीं आती। तो घड़े ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा कि बहन देखो, जो हमारे सामने आता है वो खुद को झुकाता है मेरे सामने
1: जी।
0: तो जब वो मेरे सामने झुक जाता है तो मैं उसे शीतलता प्रदान कर देती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे सिर पर सवार रहती हो, मैं चाहकर भी तुम्हें शीतलता नहीं दे सकती।
1: जी सर।
0: तो मतलब अगर आपको शीतलता प्रदान, शीतलता पानी हो, तो कहीं ना कहीं आपको विनम्र होना पड़ता है।
1: जी सर बिल्कुल।
0: और जो लोग विनम्र हुए उन लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत अचीवमेंट की उन्होंने।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: जी हाँ, मेरे साथ भाई सबलू सांता क्रूज मुंबई से भी जुड़ चुके हैं, शुभ संध्या मनु जी। जी हाँ, आपको शुभ संध्या। और आज तो हमारी को होस्ट निधि जी भी हमारे साथ हैं। चलिए तो फिर बरसात की तरफ फिर चलते हैं।
1: जी बिल्कुल, बरसात का मौसम है, हम उसी तरफ हैं।
0: जी हाँ, और बरसात, आज की बारिश तो मतलब यादगार बारिश है।
1: जी बिल्कुल।
0: सोचिए, मैं अपने घर से जब निकला हूँ तो पानी तेजी के साथ बरस रहा था और स्टूडियो पहुँचना था, तो मतलब आज की बारिश तो याद रहेगी,
1: बहुत लोग को याद रही होगी। हो सकता है उस बारिश में उनको कुछ नया मिला हो। मैं आपकी को होस्ट आपको मिल गई,
0: सोचिए। हाँ, मतलब
1: ऐसे ही बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया हो।
0: बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया हो। जी हाँ बिल्कुल। तो भाई हमको तो बारिश ये थोड़ी सी याद रहेगी, भीगना भी याद रहेगा। निधि जी ने हमारी प्रतीक्षा की 10 मिनट, हाँ वो भी उनको याद रहेगा कि हाँ पहली बारिश हुई थी और हमने गोंडा मैसेज मसाला को पहली बार होस्ट किया था जब हमारे साथ आए थे। तो ये इंतज़ार की घड़ियाँ इंसान को अक्सर इंतज़ार की घड़ियाँ याद रहती हैं।
1: जी
0: तो आइए इस लम्हे को और खूबसूरत बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, और आपसे मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, क्योंकि ये है
1: गोंडा शहर की धड़कन।
0: और अब तो ये गोंडा ही नहीं बल्कि हमारे भी दिल की धड़कन बन चुकी है। आते हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: जी हाँ, तो भाई थम के बरस, और इसलिए भी थम के बरस क्योंकि मुझे महबूब के पास जाना है। बारिश को लेकर लोगों का अपना एक अलग अलग नज़रिया होता है। एक बहुत ही महान कॉमेडियन हुए, आपने उनका नाम सुना होगा निधि जी, चार्ली चैपलिन।
1: जी सर, नाम
0: सुना है ना
1: जी।
0: और उनको कॉपी करते थे राज कपूर साहब थोड़ा बहुत। और आपने याद कभी वो जो बूट पॉलिश करने वाला एक प्रचार आता था, याद है आपको?
1: जी सर।
0: जिसमें वो एडोल्फ हिटलर की जैसी आधी मूछ रख करके,
1: जी, जी,
0: याद है?
1: याद है।
0: तो वो मतलब कहा जाता है कि वो विश्व के सबसे मशहूर कॉमेडियन थे। मतलब लोग उनकी कॉमेडी की बहुत प्रशंसा करते थे। तो उनसे एक बार पूछा गया था कि आपको क्या पसंद है
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा था कि मुझको बारिश में भीगते हुए चलना बहुत पसंद है।
1: बारिश में भीगते हुए चलना बहुत
0: बहुत पसंद है
1: जी।
0: अगला उत्तर, अगला प्रश्न आया कि क्यों। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके।
1: जी, बारिश में आंसू छुप जाती हैं।
0: हाँ, मतलब वो अक्सर जो इंसान बाहर से बहुत खुश दिखाई देता है ना
1: जी,
0: वो अंदर से बहुत टूटा हुआ इंसान होता है।
1: जी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है।
0: हाँ, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा लिखा कि जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो।
1: जी सर, आगे।
0: जी हाँ, आगे, मतलब आपकी इच्छा है आगे सुनने की?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जी हाँ, तो जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, आंसू को धुन बनाते हुए देख रहे हो, जो चाहता है चीखना, जो लेना सिसकना, महफिल में उसे गाते हुए देख रहे हो।
1: वाह वाह, क्या बात है।
0: तो मतलब जो दुनिया को हंसाता है ना, वो अंदर से उसको ये पता होता है कि ये दुनिया कितनी खोखली है।
1: जी सर,
0: अंदर से वो इंसान बहुत टूटा होता है।
1: हमारे लिसनर्स भी इसे रिलेट कर पा रहे होंगे।
0: हाँ, मतलब वास्तव में जो अंदर से जब इंसान टूट जाता है, तो वो जो टूटता है वो टूटने का दर्द जानता है।
1: फिर टूटने के बाद जो संवरता है सर, वो कितना खूबसूरत लगता है, ये भी आप जानते ही होंगे।
0: हाँ, मतलब और वो ये चाहता है कि नहीं, जैसे मैं टूटा हूँ, इस तरह से कोई और न टूटे।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जो दुनिया का सबसे कठिन काम है ना, वो काम है हंसाना
1: जी।
0: और अगर आप ध्यान से देखें तो विधाता ने, जिसको हम ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, एक चीज ऐसी दी उसने इंसान को जो केवल इंसानों को, 84 लाख प्रकार की के योनियां इस धरती पर है
1: जी।
0: और उनमें से केवल मनुष्य दो काम कर सकता है। पहला काम तो वो अपनी तर्जनी उंगली से अपने अंगूठे को मिला सकता है
1: जी सर।
0: वनमानुष सर वो काम कर सकता है जो मनुष्य कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। उसकी जो तर्जनी उंगली होगी वो अंगूठे से मिला नहीं पाएगा। अर्थात जब इंसान के पास कलम पकड़ने की, पेंसिल पकड़ने की, कूची पकड़ने की कला आई, तो वास्तव में

0: लगता है उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो समझिए कि वो मनुष्य फिर ईश्वर ने उनको इतना अच्छा शरीर दिया, इतना बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य होता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है, तो उस पर भी हम हंसे तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और अगर आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है।
1: जी ऐसा भी होता है, आप हंसिए हंसाइए पर किसी पे मत हंसिए,
0: स्वयं पे हंसिए।
1: जी बिल्कुल,
0: मतलब जोकर किस पर हंसता है, खुद पर हंसता है
1: बिल्कुल,
0: और उसको देखकर लोग तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, जबकि वो जोकर जो है वो जानता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और लोगों की खुशियों की वजह हूँ। तो मुझे लगता है कि भी बारिश के मौसम में चार्ली चैपलिन ने अपने बारे में कुछ बताया, अगर आपको कुछ कहना हो बारिश के ऊपर तो क्या कहेंगे आप?
1: मैं यही कहूँगी दोस्तों, बाहर हो रही बारिश को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी बारिश सिर्फ मौसम नहीं होता, ये दिल के कुछ अनकही बातें होती हैं जो शायद आप किसी से नहीं कह पाते, पर उस बारिश को देख के आपको वो बातें याद आ जाती हैं। कभी कुछ अनकही बातें सबके मन की होती हैं सर, आपके भी मन की होंगी, शायद आप किसी को कह नहीं पाए होंगे, आपने डायरी बनाई होगी या आप कभी बारिश हुई होगी तो वो बातें आपको याद आ गई होंगी,
0: याद आ गई
1: कि ऐसी बारिश थी। आपके बचपन की भी कुछ कहानी हो सकती है, आपके कॉलेज की कहानी हो सकती है, कहीं की भी कहानी हो सकती है जो बारिश से जुड़ी हो सकती है।
0: हाँ, मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे याद आ गया कि बारिश हो रही थी और मैं ऊपर बैठा हुआ था
1: जी,
0: और पता नहीं क्यों कुछ ऐसी कुछ बात थी उन दिनों की, फंसा यार, तो नहीं हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस, वो दौर चल रहा था
1: जी।
0: तो पंक्ति निकली कि भीग जाती हैं जो पलके कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं पलके कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देखकर पहचान न ले।
1: वाह वाह क्या बात है सर,
0: मतलब वो किसकी वजह से आंसू हैं वो लोग जान जाते हैं।
1: जी बिल्कुल सर, ऐसा होता है,
0: मतलब जब दुल्हन विदा होती है तो दुल्हन विदा होती है लेकिन उसके साथ हो सकता है, आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा
1: जी।
0: विदा हो रहा है, और जो जीत फिल्म देखी है आप तो उसमें सनी देओल की स्थिति क्या है, या मिलन फिल्म में चली हो तो गोरी सुनो भूल जाओ।
1: सर वैसे विदाई से मुझे याद आया, मुझे वैसे जल्दी रोना नहीं आता विदाई उदाई पे, ये होता है सबके साथ होता है, रोज़ रोज़ रोना अच्छी बात नहीं, एक बार रो लिए दो बार रो लिए, पर जब बहन अपने भाई से गले मिलके रो देती है तब फिर मुझे बहुत रोना आता है। आपका भी आपके बहनों के साथ ऐसा ही लगाव रहा होगा, या ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम रिलेट कर लेते हैं खुद से ही कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है।
0: बिल्कुल निधि जी, बिल्कुल सही कहा आपने, वास्तव में मतलब जो लिपट के रोने वाला प्यार होता है ना, इंसान हर कंधे पर सर रख कर रो नहीं सकता।
1: जी बिल्कुल, और रोना भी नहीं चाहिए।
0: हाँ, और लेकिन इंसान अगर अंदर से दुखी है तो जो उसके आंसू है अगर वो रुदन रोएगा नहीं तो इंसान पागल हो जाएगा।
1: रोना भी जरूरी है पर हर किसी के सामने रोना जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं है, और ऐसे लोग हजार लोग आपके फेसबुक पर फ्रेंड हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही रिश्ते एकाध व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके कंधे पर सर रख कर आप रो सकते हैं बिना डरे हुए, यहाँ हमारे आंसुओं का मजाक नहीं उड़ेगा।
1: और एक रिश्ता ऐसा जीवन में होना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है, मतलब वो इस दुनिया का जानती है सबसे महंगा लिक्विड कौन सा है?
1: जी सर, आंसू।
0: जी, इसमें 99% दर्द होता है, गम होता है, और 1% पानी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो गमों को बाहर कर देने की प्रक्रिया हमारे आंसू करते हैं। सब लोग लिखते हैं, बादलों से कह दो जरा सोच समझ कर बरसें, अगर मुझे उनकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, किसकी याद आएगी तो मुकाबला।
1: लिसनर कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं।
0: जी बहुत प्यारे हैं। और नाजिया जी लिखती हैं, भाई आ गई हूँ, शमा जी लखनऊ से आ गई हूँ, जी आपका स्वागत है, आ गई हैं तो जरा ठहरो, बारिश थम जाए तो फिर चले जाना, किसी का तुझको छू लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है।

0: मतलब बारिश भी ना छुए
1: छुए ना हर तो हवा भी ना छूने पाए। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो है मगर बचपन गायब है, क्या हो गई है तासीर जमाने की यारों, अपने तो है मगर अपनापन गायब है।
0: ये बात क्या, सच कही
1: क्या
0: है आपने?
1: बात कही आपने, लेकिन कुछ लोग अपने हैं अभी भी।
0: जी बिल्कुल।
1: और बिनी जी हमारे साथ हैं भाई, पहली बार देख रहे हैं। राहुल कुमार गौतम जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई आप लोगों के साथ। ताश का जोकर अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं, क्या बात है। जी जी बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है बहुत खूबसूरत है। देखिए हमने अभी जोकर की बात की थी
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा था कि जो ताश का जोकर होता है और अपनों की ठोकर होती है वो इंसान को अक्सर संभलना सिखा देती है
0: जी।
1: तो लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि बिछड़ जाऊँ तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, कोई चला भी गया तो क्या हुआ। बिछड़ जाऊँ तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, मुझे जिद है मैं जीने का कोई मौका न छोड़ूंगा। मोहब्बत में तलब कैसी वफादारी की शर्तें क्या, मोहब्बत में तलब कैसी वफादारी की शर्तें क्या, वो मेरा हो न हो मैं तो उसी का होकर छोड़ूंगा।
0: ये बात सच कहीं सर, जीने के लिए कोई शर्त कोई वादा हाँ। कुछ ऐसा नहीं चाहिए, बस मैं जी रहा हूँ और अपने एक उस पर जीऊँगा, वसूल है मेरा। जैसे अभी आपने शायरी कहा वो चली भी गई
1: हाँ,
0: तो जो लाइन थी उसके, तो उसको सुन के ऐसा लगा कि आप गई तो गई पर मैं जैसे आपके साथ जी रहा था आपके जाने के बाद भी वैसे ही जीऊंगा।
1: हाँ, वो मेरा हो ना हो
0: जी
1: मैं तो उसी का होके छोड़ूंगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ, और इतना ही नहीं, ताल्लुक टूट जाने पर जो मुश्किल में तुझे डाले
0: जी,
1: ताल्लुक टूट जाने पर जो मुश्किल में तुझे डाले, मैं अपनी आँख में ऐसा कोई आंसू न छोड़ूंगा। मतलब अगर आप, एक बार की बात है कि कहीं जिनसे अफेयर था तो
0: उनका आपका
1: मतलब इंसान मतलब
0: जी जी बिल्कुल,
1: जीवन में अगर आपने प्रेम नहीं किया
0: तो फिर क्या किया,
1: तो फिर दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया।
0: यस
1: सर, आके दुनिया में भी अगर
0: प्यार ना किया
1: तो क्या किया। तो आवश्यक है, और मेरी तो गाड़ी के पीछे मोहब्बतें लिखा है, तो उसमें एक मोहब्बती फिल्म का एक डायलॉग है कि प्यार में शर्तें नहीं होती,
0: बिल्कुल नहीं होती,
1: तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए।
0: अफसोस तो बिल्कुल नहीं होना
1: भाई
0: चाहिए
1: भाई, हमने मोहब्बत की और ये शर्त नहीं रखी थी कि हम मिलेंगे ही मिलेंगे
0: जी बिल्कुल,
1: तो अफसोस भी नहीं। तो वो मोहतरमा दिखाई पड़ी
0: हाँ।
1: तो बेकर्स की दुकान के सामने कार पर, तो पंक्ति आई कि छोटी सी कायनात पर पर्दा चढ़ा लिया।
0: अरे वाह,
1: कायनात कहते हैं दुनिया को।
0: जी जी बिल्कुल सर।
1: कैसे चढ़ाया, छोटी सी कायनात पर पर्दा चढ़ा लिया, उसने हसीन आंख पर चश्मा चढ़ा लिया। मेरे भी कदम रुक गए, मेरे भी कदम रुक गए उसके मांग का सिंदूर देखकर, उसने भी अपने कार का शीशा चढ़ा लिया। तो ये सिचुएशन कभी कभी ऐसी बनती है
0: जी सर, बिल्कुल हो सकता है, जिसके साथ आप आज हैं कल ना हो
1: हाँ।
0: तो ऐसा नहीं है आज आप हैं कल नहीं हैं, तो कल ना होने के बाद आप उनके दुख में दुख ही हों। कुछ बातें ऐसी होंगी जिसमें आप बहुत खुश रही हैं, तो खुश रहिए मुस्कुराइए और ऐसे जीवन जीते रहिए, और किसी के आँखों में आपकी वजह से आंसू आए ये भी अच्छी बात नहीं है, जैसा अभी सर ने बताया।
1: हाँ, मतलब आपके लिए किसी की आंख में आंसू हो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता
0: जी बिल्कुल,
1: और आपके कारण किसी की आंख में आंसू हो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।
0: ये आपने बिल्कुल सही बात कही सर, तो आपकी वजह से किसी के आंख में आंसू कभी नहीं आना चाहिए।
1: हाँ, आपके लिए आंसू आए तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है।
0: ये बात आपने,
1: और आपकी वजह से आंसू आ गए तो मैंने पंक्ति लिखी है कि गिरे निर्दोष के आंसू स्वयं भगवान रोता है, मगर इंसान इस युग का सदा कांटे ही बोता है। तो कभी किसी निर्दोष को ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि आपके कारण उसकी आंख में आंसू आ जाए, नहीं तो कहा जाता है कि ईश्वर क्षमा नहीं करता।
0: जी सर, आपने ये बिल्कुल सही बात कही, हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी वजह से कभी कहीं कोई आस पास दूर या कहीं कोई भी दुखी ना हो।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। और अब जानती हैं निधि जी, 7:44 हो गया है
0: जी, बिल्कुल सर।
1: और जानती हैं आप 7:45 से क्या होता है
0: जी? क्या होता है ये बात मैं नहीं जानती।
1: जी 7:45 से फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होता है प्रारंभ। हाँ, तो एकदम देखिए, एकदम घड़ी की सुइयों ने 45 बजाए नहीं, आपके पास लिंक कितनी सारी आ गई। और आज संडे है, तो आज हम जो हमारे पास ऐसे श्रोता हैं जो हमको रेडियो से सुनते हैं, तो उनका फ़ोन भी लेते हैं हम, लिंक यहाँ से भी गीत बजते हैं और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फ़ोन से भी होता है। तो इस मौके पर पंक्तियाँ हैं कि अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मचली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन
0: जी सर, देखिए किसी का फोन आ भी गया है
1: जी। हाँ, तो फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के बाद साथ करते हैं आरम्भ। और जी हाँ निधि जी, जाते जाते अगर आप कुछ अपने प्यारे से दर्शकों को, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, अगर आप उनको कुछ कहना चाहें तो बोल दीजिए।
0: सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सुन के, और आपके साथ बोल के तो थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे लिसनर हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जिन्होंने मुझे इतने ध्यान से सुना।
1: क्या बात है जी। हाँ, और मतलब आपको पूछा भी गया है कि भाई निधि जी कैसी हैं आप, तो आप बता दीजिए कि कैसी हैं
0: जी। बिल्कुल, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं, जिसने भी मुझसे पूछी है ये बात,
1: तो
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
1: हाँ, फिलहाल ये बताइए निधि जी, पहला एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ गोंडा मैसेज मसाला में, तो क्या यादें आप लेकर इस स्टूडियो से जाएंगे?
0: बारिश सर, बारिश, जब भी बारिश होगी मुझे याद आएगा ज्ञानस्थली में मेरा आपके साथ ये पहला शो था, उस दिन बारिश हुई थी और हमने बारिश पे बहुत सारी चर्चा की थी।
1: क्या बात है, और इत्तेफाक ये था कि मतलब हम मिले और पहली बार शो हुआ और बारिश हुई। चलिए अब आपको एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं और गीत के पश्चात फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं आरंभ। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, क्योंकि ये है
0: गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, और अब फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ। और पहली फरमाइश मेरे पास है भाई धर्मेश जी की, तू बुला ले बुला ले बुला ले। और बहुत ही प्यारा गीत सावन फिल्म का, और गाया है इसको जी हाँ सोनू निगम की प्यारी सी आवाज में। चलते हैं आपकी फरमाइश को करते हैं पूरा। जी हाँ, अपनी फरमाइश भेजते रहिए और आपकी मांग हम यहाँ से पूरी करते रहेंगे।

चलते हैं भाई, हमारे पास बहुत ही प्यारे श्रोता श्री महेंद्र दीपेन जी हैं जो हमको सुनते हैं राजस्थान से। दिल को जरा सा आराम देंगे, बिल्कुल आराम दीजिए और इस गीत के साथ आराम दीजिए।

चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे से श्रोता की ओर, जिनके चेहरे पर हमेशा रहती है बहुत ही प्यारी मुस्कान। श्री के गुप्ता जी जो हमको सुनते हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, और क्या गीत भेजा उन्होंने इस खूबसूरत से मौसम में, जहाँ पर कई रंग के फूल खिले हैं लेकिन फूल गुलाब का पसंद आया है। तो भाई गुलाब का फूल है, फूल गुलाब का, लाखों में हज़ारों में एक चेहरा जनाब का। जी हाँ, और हम ये जानना भी चाहेंगे कि आखिर में वो चेहरा है कौन सा।

बहुत ही प्यारा सा गीत है मोहम्मद अजीज और उनके साथ अनुराधा पौडवाल। जी हाँ, और अनुराधा पौडवाल जी ने गीत गाया है तो अब अनु जी की फरमाइश भी पूरी कर देते हैं भाई। अनुराधा और अनु जी हमको सुनती हैं बेलसर से और गीत है आज उनका किशोर कुमार का बहुत ही प्यारा गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो जी हाँ, पहले सुपरस्टार भारत की फिल्मों के राजेश खन्ना पर्दे पर, फरमाइश अनु जी की, गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी।

फूलों की रानी तो आ गई है, अब चलते हैं भाई, फरमाइश पूरी करते हैं। अगली फरमाइश लेते हैं हम चैट बॉक्स से, और फरमाइश है सोनिया तिवारी जी की, दीवानी में दीवानी।

हाँ दीवानी, मैं दीवानी और जी हाँ ये दीवाना अपन रंग लाता है। और अब चलते हैं श्रीमती शशि सिंह जी की तरफ, जिनके हाथ में जादू है ओ मेरे शाहे कुर्बान। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत, ये श्रीमती शशि सिंह जी की फरमाइश, जो धर्म पत्नी है श्रीमान राजेश सिंह जी, जो हमको सुनते हैं मालवीय नगर से।

0: नहीं हो।
1: जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत हमने सुना। अब चलते हैं सबलू जी, जो हमको सुनते हैं मुंबई से, और फरमाइश है मेघारे मेघारे।

क्या बात है भाई, मेघ छाए भी है और मेघारे मेघारे, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है। अब चलते हैं मोहम्मद रकीब जी और उनको भाई नौलखा हाल चाहिए। जी हाँ, चलते हैं फिल्म शराबी की तरफ। अमिताभ बच्चन और जयप्रकाश जी एकदम एक मंच पर हैं, आवाज़ आप बताइए कि किसकी है। फिलहाल मोहम्मद रकीब जी की प्यारी सी फरमाइश, मुझे नौलखा मंगा दे रहे हो सैया दीवाना।

जी हाँ, और जहाँ पर ये संगीत उगता है उसी के पश्चात जयप्रदा एक प्यारा सुरमाल बांधती हैं, और उस रुमाल के बाद का जो सीन है, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो अमिताभ बच्चन का बहुत प्यारा सा डायलॉग सभी लोग जानते हैं, एक आप लोग हैं और एक वो साले थे, और उसके बाद दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे। जी हाँ, बहुत ही प्यारी फिल्म, बहुत ही प्यारा गीत, और फरमाइश की थी भाई मोहम्मद रकीब ने, तो उनको तो भाई हम दुआएं देंगे कि बहुत ही प्यारा गीत लेकर आए। और चलते हैं अपने बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता की तरफ, श्री राजेश सिंह जी, जो हमको सुनते हैं मालवीय नगर से। गीत है ये झुकी झुकी निगाहें।

यहाँ बहुत ही प्यारा सा गीत ये भाई श्री राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं भाइयों का भाई निब्बल भाई। तो भाइयों के भाई निब्बल भाई की फरमाइश है दिल ले गया वो दिल का जानी। बहुत ही प्यारा सा गीत भाई निब्बल भाई की फरमाइश पर पूरा करते हैं ये गीत।

जी हाँ, जिंद ले गया वो दिल का जानी फिल्म आपके साथ, क्या बात है। लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये गीत, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और जिसने लिखा भाई उसका नाम हम सभी जानते हैं, आनंद बख्शी जी के द्वारा लिखा गया ये गीत। और जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये दिल बेजान रह गया। और अब चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। जी हाँ, और अब चलते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ। हमारे नवीन राजपूत जी ने भेजा है, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।

0: वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1 करोड़ 19 लाख किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
7: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक। तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
11: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, ये बहुत ही प्यारी सी फरमाइश हमने सुनी श्री आनंद प्रताप सिंह जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं भाई सविता जी की फरमाइश, तू कातिल तेरा दिल कातिल। जी हाँ, तो अब चलिए आपको ले चलते हैं कातिलों की दुनिया में, और फिलहाल चलते हैं तू कातिल तेरा दिल कातिल, और ये फरमाइश है सविता दुबे जी की।

जी हाँ, कातिलों की बात कर रहे भाई, तू कातिल तेरा दिल कातिल। अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता, जो हमको भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ से सुना जाता है, और गीत उन्होंने भेजा है आशु मिश्रा जी का, बहुत ही प्यारा सा गीत, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सौतन की बेटी और आवाज़ वाह स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की, तो आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर हम भूल गए रे हर बात।

जी हाँ, मोहब्बत भूलने वाली भी नहीं होती, और वास्तव में इंसान सब कुछ भुला देता है लेकिन मोहब्बत नहीं भुला पाता। और अब चलते हैं अरविंद जी की तरफ, जो हमको सुनते हैं मन का पुल से गीत भेजा है उन्होंने। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है, बहुत ही प्यारा सा गीत, ये अरविंद जी की फरमाइश पर जो हमको सुनते हैं मन का पुल से।

जी हाँ, हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ अवश्य होता है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। और अब चलते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता विजय पाल यादव जी हैं, उनकी बहुत ही प्यारी सी फरमाइश आ जाई है हमारे पास और फिल्म का नाम बेटी बेटे, गीत है रफ़ी साहब की आवाज़ में, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती। जी हाँ, विजय पाल यादव जी जो हमको सुनते हैं लखीमपुर खीरी से, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत ही हमने सुना श्री विजय पाल यादव जी, जो हमको सुनते हैं लखीमपुर खीरी से। और अब चलते हैं भाई, बहुत ही प्यारा सा गीत प्रतीक्षा कर रहा है हमारी, मेरे महबूब कयामत होगी, और फरमाइश की है इसकी आकाश कुमार जी ने। जी हाँ, तो मेरे महबूब कयामत होगी।

जी हाँ, और अगली फरमाइश हमारे पास है श्री धर्मेंद्र मोहन जी की, और फरमाइश है कभी हुआ नहीं कभी देखा नहीं। जी हाँ, तो चलते हैं जरा देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो कभी नहीं हुआ और कभी देखा नहीं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं इस गीत के साथ श्री धर्मेंद्र मोहन जी के साथ।

ये बात हो रही थी मोहब्बत की, कभी हुआ नहीं कभी देखा नहीं, लेकिन अब चलिए हो चुका है और भी देख भी चुके हैं। और अब चलते हैं भाई, हमारी अगली फरमाइश निधि कश्यप जी की है, जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना। जी हाँ, परवरिश फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गीत निधि कश्यप जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। अब चलते हैं भाई गोरखपुर की तरफ। मेरे दादा की बहुत ही प्यारी सी फरमाइश, श्री अनिल शास्त्री जी की फरमाइश है, अजहू ना आए बालुमा सावन बीता जाए। सावन बीत चुका है, भादो आ चुका है, लेकिन फिलहाल ये प्यारी सी फरमाइश अजहू ना आए बालुमा, श्री अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9186 9260 9186। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं बल्कि अब बन चुकी है हमारे आपके दिल की धड़कन। कहा जाता है कि खामोश

मुशायरों में महबूब से गुफ्तगू की बातें करते थे, कभी कुदरत की बात कर ली, प्रेमिका की, प्रेम की बात की, परिस्थितियों की बात की, संघर्ष की बात की। लेकिन जो घर के अंदर है उस पर शायद ही कभी बात की। जो परिवार है, परिवार का हिस्सा है और जिससे हमने जन्म लिया, अर्थात माँ, जो इस दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत शब्द है, इससे प्यारा शब्द शायद हिंदी की डिक्शनरी में, हिंदी के शब्दकोश में नहीं है। उनको लेकर के आए गजलों की दुनिया में मुनव्वर राना साहब, और ये दिखाया कि जो घर की चौखट होती है उसके अंदर जो बहन है, बेटी है, माँ है, उनके भी अपने दर्द हैं, उनकी भी अपनी तकलीफें हैं, और उनसे भी हमारा कितना गहरा रिश्ता है। इस बात को उन्होंने मंच से कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। उन्होंने ये कहा कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी कोशिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। जिंदगी के जो अनुभव थे वो अनुभव उन्होंने साझा किए, जिंदगी के गम, जिंदगी के दर्द, और बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक की स्थिति। कुछ समस्या रही जिसके कारण से उनके पैर का ऑपरेशन 2-3 बार हुआ। गोंडा में जब गोंडा महोत्सव हुआ था तो वो आए थे, तो जब हम लोगों ने उनको सीधे देखा तो उन्होंने कहा कि अपने बचपन की बात की कि जब हम लोग बचपन में थे तो मम्मी सामान लाने भेजती थी, दुकानदार के यहाँ जाते थे, ये सामान निकाल दो। जब तक वो सामान निकालते थे तो वो कहते थे हमको मीठा बहुत पसंद था, तो वो मुट्ठी में चीनी भर लेते थे। जब सारा सामान पैक हो गया तो चलने को हुए तो एक हाथ में झोला लिया जिसमें सामान था और दूसरे हाथ में दुकानदार के बोरे में से एक मुट्ठा चीनी निकाल लिया और भागे। दुकानदार दौड़ाता था लेकिन चूंकि मीठा पसंद था उसके लिए अगर डांट भी पड़ जाए, मार भी पड़ जाए तो कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके पश्चात जब वो बीमार पड़े तो उन्होंने कहा देखो हमारे हाथों की, जो मेरे हाथों की हथेलियां हैं, वो बीमार पड़ गए तो बहुत ज्यादा दवाइयां खानी पड़ी उनको। तो उन्होंने कहा कि तब भी ये हथेली छोटी थी, तब भी ये हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है, तब इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। मतलब हाथ छोटा था, बचपन में चीनी गिर जाती थी और आज वृद्धावस्था है, दवा चल रही है तो दवाइयां गिर जाती हैं, इतनी ज्यादा दवाइयां हैं कि हथेली में नहीं आती। आम से बहुत लगाओ। उन्होंने कहा कि इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। जी हाँ, कई सारे पहलू हैं मुनव्वर राना के, आपको हर एक पहलू से परिचित करवाएंगे, कुछ एक पहलू से, और फिलहाल आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में। और आज गजल की शुरुआत करेंगे कायनाती गले के मालिक
मोहम्मद।

बहुत ही खूबसूरत तीसरी गजल के साथ सुनते रहिए और रेडियो 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप

तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। कुमार शानू की आवाज में ये प्यारी सी गजल फिल्म दीवाना, आहा क्या बात। और ये नगमा सुनाया क्यों, उसके पीछे की वजह बताता हूं। चलते हैं मुनव्वर राना साहब की तरफ। एक ऐसे कलमकार जिन्होंने घर आंगन का दर्द भी लिखा और इंसान के अपनी जिंदगी के कई सारे मौजूआत को छुआ। उन्होंने कहा कि भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है। भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है। मोहब्बत करने वाला इसलिए बर्बाद रहता है। अगर सोने के पिंजरे में भी रहता है तो कैदी है। अगर सोने के पिंजरे में भी रहता है तो कैदी है। अरे परिंदा तो वही होता है जो आजाद होता है। अब सोने के पिंजरे में रख दीजिए लेकिन परिंदा नहीं था। परिंदा तो वही जो आजाद घूम रहा है, मस्त हवा में है। चमन में घूमने फिरने के कुछ आदाब होते हैं, तरीके। चमन में घूमने फिरने के कुछ आदाब होते हैं। उधर हरगिज नहीं जाना, उधर सयाद रहता है। सयाद मतलब शिकारी। अगर आप घूम रहे हैं बगीचे में जंगलों में तो शिकारियों से बच के रहिए। इस दुनिया को एक जंगल कहा कवि ने, शायर ने, और कहा कुछ लोगों से जरा बच कर रहिएगा, वो छुपे हुए शिकारी होते हैं। लिपट जाती है सारे रास्तों की याद बचपन में। देखिए उन्हें कहा था कि उनकी गजलों में उनका बचपन, उनका यौवन, उनकी वृद्धावस्था और उनकी बीमारी, इन सब का जिक्र है। उन्होंने जो महसूस किया वो लिख दिया। कहा कि लिपट जाती है सारे रास्ते की याद बचपन में, जिधर से भी गुजरता हूँ मैं रास्ता याद रहता है। हमें भी अपने अच्छे दिन अभी तक याद है राना, हमें भी अपने अच्छे दिन अभी तक याद है राना। हर एक इंसान को अपना जमाना याद रहता है। जी हाँ, हम में से सभी लोग अपने जमाने को याद रखते हैं। और बच्चे जब आते हैं तो उनसे कहते हैं कि अरे हमने भी अपने जमाने में जो जिंदगी जी है उसके लिए तरस जाएंगे आप। माँ पर कितनी अच्छी बात कही कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। यहां से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, यहां से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया। मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जाके माँ आई। अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता, अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता। बुलावे के लिए दुनिया भी आई तो कहाँ आई। अरे किसी को गांव से परदेश ले जाएगी फिर शायद। गांव के बड़े पक्षधर हैं वो, गांव में इंसानियत है, परदेश में रुपया है, रिश्ते कम है। किसी को गांव से परदेश ले जाएगी फिर शायद। उड़ाती रेलगाड़ी ढेर सारा फिर धुआं आई। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर इस बदनसीबों को न क्यों उर्दू जुबां आई। उन्होंने कहा बच्चे सब कुछ जानते हैं लेकिन शायर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उर्दू क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। कफस में मौसमों का कोई अंदाजा नहीं होता, मतलब कफस बोलते हैं मिट्टी का शरीर जो है।
कफस में मौसमों का कोई अंदाजा नहीं होता, खुदा जाने बहार आई चमन में या खिजा आई। घरौंदे तो घरौंदे हैं, चट्टाने टूट जाती हैं, चट्टाने। घरौंदा मतलब मिट्टी का जो घर आपने बनाया होगा, दीपावली में बचपन में खेला होगा, कि घरौंदे तो घरौंदे हैं, चट्टाने टूट जाती हैं, उड़ाने के लिए आंधी अगर नामो निशा आई। देखिए भी नेपाल का हश्र, कुदरत ठान ले उसकी एक झटकी। मतलब जब भूकंप आया था तो वसीम बरेली साहब ने एक शेर कहा था कि नाजा थे अपनी तरक्की पे बहुत लोग, कुदरत की एक झपकी ने औकात दिखा दी। मतलब जो 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार पूरे घर में टाइल संगमरमर चंदन के पेड़ की सब लकड़ियां, कुदरत क्या साहब किस बात का गुरूर करे इंसान। कभी ऐ खुश नसीबी मेरे घर का रुख भी कर लेती, इधर पहुंची उधर पहुंची यहां आई वहां आई। हमारी तरफ खुशी नहीं है, उन्होंने कहा कभी इधर भी रुख कर लीजिए। जी हाँ, अब भाई हमने शुरुआत की थी, बहुत ही प्यारी सी गजल सुनाई थी आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की। भाई की बात हो और बहन की बात ना हो तो कहाँ संभव है। जी मैं बात कर रहा हूँ जिनको राखी बंधवाते थे मोहम्मद रफ़ी, उनका नाम है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उन्होंने गज़लें बहुत कम गाईं लेकिन जो गाईं वो बहुत अच्छी गाईं। आइए अब आपको स्वर कोकिला लता जी की एक प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं।

जी हाँ, दर्द का दूसरा ही नाम तो अताउल्लाह खान, मतलब गजलें। क्या गजलें, अश्कों के लेके धारे। पढ़ते हैं मुनव्वर अना साहब की तरफ, जिनके बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो कम होगा। उन्होंने कहा कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। यहां तो जो भी है आबे रवा से आशिक है, अबे मतलब यहां पानी बहुत होता है, यहां तो जो भी है आबे रवा का आशिक है, सभी लोग पानियों के आदि हैं, किसी ने खुश्क नदी की तरफ नहीं देखा। जो नदियां गर्मियों में एकदम से सूखी पड़ जाती हैं, उसकी तरफ निगाह नहीं गई। मतलब कहने का तात्पर्य कवि करना चाहता है कि हमारी प्रसन्नता में लोग शरीक होते हैं, गम हमें अकेले उठाना पड़ता है। वो जिसके वास्ते परदेश जा रहा हूं मैं, वो जिसके वास्ते परदेश जा रहा हूं मैं, बिछड़ते वक्त उसी की तरफ नहीं देखा। अब सोचिए, इंसान अपना घर छोड़ता है और परदेश जाता है, किसके लिए? परिवार के लिए। वो जिसके वास्ते परदेश जा रहा हूं मैं, बिछड़ते वक्त उसी की तरफ नहीं देखा, न रोक ले हमें रोता हुआ कोई चेहरा। हाय हाय, जिसने विदाई देखी होगी वो समझने वालों के लिए मौत है पंक्ति। न रोक ले हमें रोता हुआ कोई चेहरा, चले तो मुड़ के गली की तरफ नहीं देखा। जब चले तो ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि किसी को रोते हुए देख लें और फिर पाँव वहीं पर रुक जाए, पीछे देखा ही नहीं। न रोक ले हमें रोता हुआ कोई चेहरा, चले तो मुड़ के गली की तरफ नहीं देखा, बिछड़ते वक्त बहुत मुतमईन थे हम दोनों। मुतमईन मतलब निश्चिंत होना। बिछड़ते वक्त बहुत मुतमईन थे हम दोनों, किसी ने मुड़ के किसी की तरफ नहीं देखा। जब अलग हो रहे थे तो न उसने मुझे देखा न मैंने उसे देखा। रविश मतलब संस्कार। रविश बुजुर्गों की शामिल है मेरी घुट्टी में, जरूरतन भी सखी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। यह है मुनव्वर राना, जो बात घर आंगन की करते हैं, दीवार की करते हैं, इंसान के जरूरतों की करते हैं। वो कहते हैं कि जिम्मेदारियां भी उड़ा देती हैं नींदों को, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। मतलब जिम्मेदारियां हैं परिवार की तो इंसान की नींदें भी उड़ा सकती हैं। घर आंगन की बात करने वाले, प्यार की बात करने वाले, वतन की बात करने वाले मुनव्वर राना। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल पंकज उदास की आवाज़ में ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

Gone is over. Gone, I need to move.

0: आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। फिल्म डैडी की ये प्यारी सी गजल तलत अजीज ने गाई है और फिल्माया गया है इसे अनुपम खेर पर। और यकीन मानिए, कभी मौका मिलेगा तो इस मूवी को देखिएगा। और इसके पश्चात जिस समय ये गजल होती है, उस गजल को सुनने के पश्चात शायद आपकी आंखें हल्की सी नम हो जाए। बहुत ही प्यारी गजल, इतना दर्द की, मतलब मैंने जब इस मूवी को देखा था और अनुपम खेर के ऊपर ही फिल्म आई गई थी, और जब अपनी बेटी को इशारा करके कहता है कि आओ अब चलें यहां से, आवाज रुक जाती है, बीच में पानी मांगते हैं। आइए अब वक्त उजला है आपसे अनुमत लेने का। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
1: और शनिवार आपके लिए लेकर आती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर इस समय आपके कमरे में कोई आईना है तो उसे ढकने की जरूरत नहीं, बस अभी एक बार उसे देखकर मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि कहानी खत्म होने तक शायद आपकी हिम्मत दोबारा उसकी तरफ देखने की ना हो। आज की कहानी का नाम है लाल धुंध। ये कहानी कभी किसी अखबार में नहीं छपी, किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन सैनिकों की दुनिया में इसे आज भी धीमी आवाज में याद किया जाता है, क्योंकि कुछ मिशन नाकाम नहीं होते, उन्हें बस भुला दिया जाता है। अक्टूबर 2008 की बात है, दक्षिणी अफगानिस्तान, दिन में तपती हुई चट्टानें और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। वहीं पहाड़ों के बीच एक छोटा सा सैन्य बल, जहां हर सुबह किसी के लौटने की उम्मीद नहीं होती थी और हर रात किसी के ना लौटने का डर। उस बेस पर सिर्फ 19 साल का एक जवान तैनात था, नाम एडम मिलर। नई पोस्टिंग, नई यूनिफॉर्म, नई उम्मीदें और एक ऐसा मिशन जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो कैंटीन में जाता है, बेहद हलचल है, कोई कॉफी ले रहा है, कोई खाना ऑर्डर कर रहा है। एडम अपनी ट्रे लेकर के एक टेबल पर बैठ जाता है। सामने तीन सीनियर सैनिक बैठे थे, माइक, जैक और लुइस। एडम मुस्कुराते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून सर, पहला हफ्ता है मेरा, कोई सलाह मेरे लिए? तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माइक धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तीन बातें यहाँ हमेशा याद रखना। पहली, सूरज डूबने के बाद पहाड़ी के तरफ कभी मत जाना। दूसरी, अगर रेडियो अपने आप चालू हो जाए तो जवाब मत देना। और तीसरी, वो एडम की आंखों में देखता है, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नाम बुला रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है, लेकिन एडम हंसते हुए कहता है, अरे ये सीनियर सर लोगों का रैगिंग का तरीका है क्या? मगर कोई नहीं हंसता। एकाएक बेस कैंप का गेट खुलता है, तीन काली गाड़ियां अंदर आती हैं, उन पर कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई निशान नहीं। 6 लोग उतरते हैं, सब ने काले कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे पूरी तरह ढके हुए। एक सैनिक फौरन सलामी देता है, लेकिन उनमें से कोई सलामी का जवाब नहीं देता, वो सीधे कमांडर के रूम में चले जाते हैं। एडम पूछता है, ये कौन है? माइक ने कहा, जिस दिन पता चल गया उस दिन या तो हमें प्रमोशन मिलेगा या तुम्हारा नाम इस रिकॉर्ड से गायब ही हो जाएगा। एडम धीरे से पूछता है, क्या ये CIA है? माइक धीरे धीरे सिर हिलाता है, लोग उन्हें यही कहते हैं, लेकिन मैंने आज तक उनकी आंखें नहीं देखी। एडम की पहली रात थी, हवा चल रही थी। रात के करीब 2 बजे एडम की आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके टेंट के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। वो घड़ी की तरफ फिर देखता है, 2:17 हो चुके थे। कदमों की आवाज रुक जाती है, फिर किसी के सांस लेने की आवाज बिल्कुल टेंट के बाहर। एडम धीरे से टेंट का जिप खोलता है, बाहर कोई नहीं, लेकिन रेत पर तो जूते के ताजा निशान थे, सिर्फ एक जोड़ी। वो निशान टेंट तक आए थे लेकिन वापस नहीं गए, जैसे जो भी आया था वो अंदर आ चुका हो। एडम घबरा कर पीछे मुड़ता है, टेंट खाली था लेकिन उसके तकिए पर लाल धूल का एक छोटा सा निशान था। अगली सुबह रेडियो पे मैसेज आती है, ऑपरेटर कहता है, सर पास की पहाड़ी से फिर से संदेश आया है। कमांडर रेडियो उठाता है, पूछता है क्या हुआ। कुछ सेकंड सब कुछ स्टैटिक, फिर एक बुजुर्ग आदमी कांपती हुई आवाज में कहता है, उसे फिर देखा गया है। कमांडर एकदम गंभीर हो जाता है, किसे। रेडियो फिर शांत। कुछ देर बाद एक वाक्य सुनाई देता है, लाल धुंध फिर उतर आई है और सिग्नल अपने आप कट जाता है। पूरा कंट्रोल रूम एकदम खामोश। एडम ने तो पहली बार ये नाम सुना था, लाल धुंध। कमांडर धीरे से रेडियो नीचे रखता है, फिर सिर्फ इतना कहता है, सभी लोग 10 मिनट में ब्रीफिंग रूम में पहुंचे। कोई भी कोई सवाल नहीं पूछता। ब्रीफिंग रूम में टेबल पर एक पुरानी फाइल रखी है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों

धुंध, लेकिन नाम सुनना और उसे अपने आंखों से देखना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अगले भाग में सात सैनिक उस गांव की तरफ निकलेंगे जहां लोग दरवाजे बंद करके नहीं आईने ढककर सोते हैं और जहां बच्चों को रात में अपना नाम लेने की भी मनाही है। क्यों, यही जानेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए क्योंकि डर अब धीरे धीरे आपके और करीब आने वाला है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक। रात जितनी खामोश होती जा रही है, लाल धुंध का रहस्य उतना ही गहरा होता जा रहा है। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM का सबसे पसंदीदा लेट नाइट हॉरर शो। दोस्तों, अभी तक आपने सुना एक सैन्य बेस, एक रहस्यमय फाइल और एक ऐसा नाम जिसका जिक्र होते ही अनुभवी सैनिकों की आंखों में भी डर उतर आया था। लेकिन अब वो सात सैनिक उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद कोई खिड़की से बाहर भी नहीं देखता। सुबह के 9 बजे थे।

लेकिन जैसे जैसे सैन्य गाड़ी पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी, धूप कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज जानबूझकर उस इलाके से दूर रहना चाहता हो। ड्राइवर कहता है, सर ये देखिए, सबकी नज़र जीप के डिजिटल तापमान के मीटर पे जाती है। कुछ सेकंड पहले 18 डिग्री था और अब सिर्फ 1 डिग्री। माइक कहता है, ये मशीन खराब है क्या? ड्राइवर ने कहा, मशीन नहीं सर, ये इलाका ही खराब है। सभी हल्की सी हंसी हंसते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं टिकती। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, ऑपरेटर फौरन उसे बंद कर देता है, लेकिन आवाज बंद नहीं होती। अब हर जीप के स्पीकर से आने लगती है, फिर उस शोर के बीच एक छोटी सी बच्चे की आवाज आती है, मम्मा मम्मा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एडम कहता है, किसने सुना? माइक ने पूछा, क्या अभी किसी बच्चे ने कुछ कहा? बाकी सैनिक सर हिलाते हैं, नहीं नहीं, हमें तो शोर सुनाई दे रहा था, नहीं हमें तो कोई कुछ बुला रहा था। एडम चुप हो जाता है। श्रोतागण, डर यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि उस जीप में हर इंसान कुछ अलग सुन रहा था। गांव पहुंचते हैं, दूर बकरियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज आ रही है, ठंडी हवा बह रही है, लकड़ी के दरवाजे चरमरा रहे हैं। करीब आधे घंटे के बाद वो गांव पहुंचते हैं, लेकिन गांव वैसा नहीं था जैसा उन्हें बताया गया था। न बच्चे, न जानवर, न कोई चूल्हा जल रहा था। हर घर का दरवाजा बंद था, हर खिड़की मोटे कपड़े से ढकी हुई थी, और सबसे अजीब बात, अगर घर के अंदर जाओ तो एक भी आईना कहीं नहीं दिख रहा था। एडम ने कहा, इतने बड़े गांव में एक भी शीशा नहीं। तभी एक छोटी सी लड़की ने दरवाजे के पीछे से झांका, वो एडम को देखती रही, फिर अपने होठों पर उंगली रख देती है और दरवाजा तुरंत बंद कर देती है। गांव के बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उसकी उम्र शायद 80 से भी ज्यादा थी, लेकिन उसकी आंखें किसी जवान इंसान से भी ज्यादा बेचैन थी। वो कोई और भाषा में बात कर रही थी, इसलिए इंटरप्रेटर ने उससे बात करनी शुरू की। कुछ देर बाद वो सैनिकों की तरफ मुड़ता है, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। कमांडर ने पूछा, क्या कहा उसने? इंटरप्रेटर धीरे से वो पूछ रही है, तुम लोगों में से किसी ने रास्ते में अपना नाम सुना था? एडम एकदम चौंक जाता है और धीरे से अपना हाथ उठा देता है। बूढ़ी औरत उसे देखती है, रोने लगती है और कांपते हुए उसके माथे को छूती है और फिर अपनी भाषा में एक ही बात बार बार दोहराती है। इंटरप्रेटर सुनकर जड़ हो जाता है। माइक ने पूछा, क्या कह रही है वो? इंटरप्रेटर धीरे धीरे एडम की तरफ देखता है। वो कह रही है, इसने एडम को चुन लिया है। अचानक हवा बहुत तेज हो जाती है। बूढ़ी औरत अब उनकी ही जबान में धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। वो कभी पहले हमला नहीं करता, वो सिर्फ देखता है, फिर तुम्हारा नाम सीखता है, फिर तुम्हारी आवाज और आखिर में तुम्हारा चेहरा। पूरा गांव सन्नाटा हो जाता है। एडम पूछता है, अगर कोई उसे देख ले तो? औरत कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, उस दिन से उसे आईनों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर एडम के हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। एडम पानी की बोतल निकालता है, ढक्कन खोल

करते समय पानी जमीन पर गिर जाता है। गीली पट्टी में उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, लेकिन कुछ बेहद अजीब था। बाकी सैनिक चल रहे थे, उनकी परछाइयां चल रही थी। एडम स्थिर खड़ा था, लेकिन गीली मिट्टी में उसकी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। एडम एकदम घबरा जाता है, वो नीचे छुप कर हाथ से पानी फैला देता है। परछाई गायब। माइक पूछता है क्या हुआ। एडम कुछ नहीं कहता। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर है, बाकी घरों से एकदम अलग। उसके दरवाजे पर कीलों से दर्जनों लकड़ी के तख्ते जड़े हुए थे और उन तख्तों पर एक ही निशान बार बार उकेरा गया था, एक गोल घेरा जिसके बीच एक आंख बनी हुई थी। कमांडर पूछता है ये किसका घर है। बूढ़ी औरत धीरे धीरे सिर झुका लेती है। यहाँ कोई नहीं रहता। फिर दरवाजा किसने बंद किया है, वो कांपती आवाज में बोली, ताकि वो अंदर ही रहे। सैनिक एक दूसरे को देखते हैं। कमांडर आदेश देता है, दरवाजा खोलो। दो सैनिक लकड़ी के तख्ते हटाने लगते हैं। जैसे ही आखिरी तख्ता हटता है, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन अंदर एकदम घना अंधेरा था कि दिन के उजाले में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और तभी उस अंधेरे में बहुत धीरे से किसी बच्ची के हंसी की आवाज सुनाई देती है। सातों सैनिक अपनी राइफलें एक साथ अंदर की ओर तान देते हैं। दोस्तों, उस कमरे के भीतर उन्हें क्या मिला? क्या सचमुच कोई बच्चा था या कुछ और जिसने एडम का नाम पहले से ही सीख लिया था? कहते हैं उस दरवाजे के खुलने के बाद उन सात सैनिकों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि अगले भाग में पहली बार लाल धुंध किसी के सामने अपना खेल शुरू करेगी। और यकीन मानिए, उसके बाद वापसी आसान नहीं होगी।

समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर तेरे इशारे झुका दे सितारे मैं ही आत्मा मैं परमात्मा अंबर सात समंदर सारी

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर लेट नाइट हॉरर शो। दोस्तों, अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो आपको याद होगा इस कहानी की शुरुआत में तीन चेतावनियां दी गई थी। सूरज ढलने के बाद पहाड़ की तरफ मत जाना, रेडियो अपने आप चालू हो तो जवाब मत देना, और अगर कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन सवाल था, क्यों पूरे गांव के आईने ढके हुए थे? क्यों उस बुरी औरत ने एडम को देखते ही कहा था, इसने तुम्हें चुन लिया है? और आखिर उस बंद कमरे के अंदर क्या था जिसके दरवाजे को गांव वालों ने सालों से कीलों और तख्तों से बंद कर रखा था? दरवाजा अब खुल चुका था और अंदर से एक बच्ची के हंसने की आवाज आ रही थी। चलिए वहीं लौटते हैं। कमांडर ने अंदर टॉर्च डाली, रोशनी कुछ फीट आगे जाकर अंधेरे में खो गई। कमांडर ने कहा, माइक मेरे साथ चलो, बाकी सब लोग पीछे पीछे आओ। एडम ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, उसके बूट के नीचे कुछ टूटा। वो नीचे झुका, शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन उसमें एडम का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें। एडम ने टुकड़ा उलट दिया। माइक ने पूछा, क्या हुआ? एडम ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन श्रोतागण, एडम जानता था जरूर कुछ है, क्योंकि उसकी छोटे से शीशे में उसकी आंखें पलक झपका रही थी, जबकि एडम अपनी आंखों को नहीं झपका रहा था। कमरे के अंदर एक दीवार पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें लगी थी। धीरे धीरे अंदर रोशनी अपने आप आने लगी। गांव के लोग, परिवार, बच्चे, पहाड़, लेकिन हर तस्वीर में एक ही चीज अजीब थी। सभी लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे सिवाय एक छोटी सी बच्ची के। जहां उसका चेहरा था वो तस्वीर धुंधली सी थी। जैक कहता है, सर इसे देखिए। एडम रोशनी होने के बावजूद टॉर्च भी तस्वीर पे डालता है और जैसे ही वो बच्ची के कपड़ों को देखता है उसकी सांसें रुक जाती है। वो कहता है, ये तो वही बच्ची है। माइक पूछता है, कौन? वही जिसने मुझे बाहर देखकर चुप रहने का इशारा किया था। सब एक दूसरे को देखते हैं। कमांडर तस्वीर उतारता है। पीछे अंग्रेजी में कुछ लिखा था जो बिल्कुल मिट चुका था, लेकिन तारीख बिल्कुल साफ, 17th October 2003, और उसके नीचे सब्जेक्ट 4 फीमेल सर्वाइव्ड। पूरा कमरा शांत हो जाता है। इसका क्या मतलब है? गांव की बच्ची को सब्जेक्ट किसने लिखा? कमांडर कुछ जवाब नहीं देता। तभी एडम की नजर तस्वीर के पीछे बने एक चिन्ह पर जाती है, गोल घेरा और उसके बीच एक आंख, वही निशान जो इस घर के दरवाजे पर था। एडम को अचानक कुछ याद आता है। एडम कहता है, सर मैंने ये निशान पहले देखा है। कहाँ देखा तुमने? एडम धीरे से जवाब देता है, कल जो काले कपड़े वाले लोग बेस में आए थे उनके एक ब्रीफकेस पे। सभी लोग चुप हो जाते हैं। अब पहली बार कमांडर के चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगता है। अचानक पीछे से आवाज आती है, आपको

0: यहाँ नहीं आना चाहिए था। सातों सैनिक एक साथ हथियार तान कर मुड़ते हैं। दरवाजे पे वही छोटी लड़की थी। एडम कहता है, तुम? लड़की तस्वीर की तरफ देखती है, फिर कहती है, ये मेरी माँ है। एडम ने कहा, लेकिन इस तस्वीर में तो तुम हो। लड़की सिर हिलाती है, नहीं, वो मेरी माँ है, जब वो मेरी उम्र की थी। सैनिक एकदम चुप हो जाता है। कमांडर तुरंत तस्वीर के पीछे लिखी तारीख दोबारा देखता है, 2003। कमांडर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की कमरे की ओर देखती है और फिर कहती है, वो लाल धुंध में कहीं चली गई थी। लड़की बताने लगी, 5 साल पहले हमारे पहाड़ पर लाल धुंध नहीं आती थी। फिर एक रात कुछ गाड़ियां आई, काले कपड़े पहने लोग थे, उन्होंने पहाड़ के अंदर कुछ किया। कमांडर ने पूछा, क्या किया?
1: पता नहीं अंकल, लेकिन 3 रात तक पहाड़ के अंदर से सिर्फ आवाजें आती रहीं, वो लोग बाहर नहीं निकले।
0: 4th सुबह धुंध नीचे आई, लाल, बहुत लाल। जो भी उसमें गया वो वापस तो आया, लेकिन कुछ बदल गया था। एडम ने पूछा, क्या? लड़की उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है, पहले वो आपका नाम सीखती है। एडम का चेहरा बदल जाता है, फिर वो आपकी आवाज, फिर आपका चेहरा। कमरे में एकदम सन्नाटा, और फिर लड़की धीरे से आखिरी बात कहती है, और जब वो आपका चेहरा पूरी तरह सीख जाती है, तब किसी को पता नहीं चलता कि असली कौन है और नकली कौन। माइक अचानक पूछता है, इसीलिए तुम लोग सारे आईने ढक कर रखते हो? लड़की हाँ में सिर फिलाती है, आईना उसे सीखने में मदद करता है। एडम फिर पूछता है, और तुम्हारी माँ? लड़की चुप हो जाती है, उसके साथ क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद वो कहती है, एक सुबह माँ ने आईने में देखा, और आईने वाली माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरी माँ नहीं मुस्कुरा रही थी। माँ डर गई, माँ ने आईना तोड़ दिया, पर उस रात वो गायब हो गई। एडम लड़की के पास बैठ जाता है, और तो लड़की बेहद डरी हुई लगने लगती है। मैं उसे ढूंढने धुंध के अंदर चली गई। माइक पूछता है, तुम वापस कैसे आई? लड़की धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता। फिर एक पल रुककर बताती है, लेकिन जब मैं वापस आई, तब से आईना मुझे नहीं दिखाता। कमरे के कोने में एक पुराना आईना कपड़े से ढका था। लड़की धीरे से उसके पीछे खड़ी होती है, कपड़ा हटाती है, कमरा दिखाई देता है, एडम दिखाई देता है, माइक दिखाई देता है, कमांडर दिखाई देता है, बाकी सब सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन उन सब के बीच खड़ी वो लड़की आईने में थी ही नहीं। जैक कहता है, हे भगवान। एडम डर के कदम पीछे हट जाता है, और तभी उसे आईने में कुछ और दिखाई देता है। वो अपना हाथ नीचे किए खड़ा था, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे अपना हाथ उठा रहा था। एडम चिल्लाता है, नहीं। आईने वाला एडम उंगली होठों पर रखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गांव में उस बच्ची ने किया था। फिर आईने वाला एडम धीरे धीरे मुस्कुराता है, असली एडम मुस्कुरा नहीं रहा था। एडम चीखता है, आईना ढको। माइक कपड़ा फेंक कर आईना ढक देता है। उसी क्षण कमरे के बाहर हवा का भयानक झोंका आता है, और दरवाजे खिड़कियां सब हिलने लगते हैं। लड़की का चेहरा सफेद पड़ जाता है, कहती है, बहुत देर हो गई है। कमांडर ने पूछा, क्या? वो लड़की धीरे से कहती है, वो आ गई। सब बाहर देखते हैं, पहाड़ गायब हो चुके थे, गांव गायब, रास्ता गायब, चारों तरफ गाड़ी लाल।
1: रही थी। गांव वाले चीखते हुए अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। बूढ़ी औरत दूर से चिल्ला रही थी, अपना नाम मत बोलना, कोई बुलाए तो जवाब मत देना और किसी भी चीज में अपना चेहरा मत देखना। लाल धुंध धीरे धीरे सब घरों के अंदर आने लगती है, पहले सिर्फ फर्श पर, फिर घुटनों तक और उसके साथ आवाजें। माय, हर चौंकता है कि आवाज उसकी पत्नी की थी। जैक, जैक की आंखों में आंसू आ जाता है, ये उसके पिता की आवाज थी। फिर एडम सुनता है, एडम, एडम भैया। एक छोटी सी बच्ची, एडम की सांस रुक जाती है। एमा, मेरी बहन। लड़की तुरंत उसके मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है, जवाब मत दीजिए। खुद के अंदर से फिर से वही आवाजें आती है, भैया मैं यहीं रहती हूँ। एडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो चुप रहता है। फिर आवाजें बदलती है, अब वो एडम की अपनी आवाज थी। एडम पीछे देखो, मैं तुम हो। कमांडर चिल्लाता है, सब बाहर भागो, गाड़ियों तक पहुंचो। सातों सैनिक, लड़की भी साथ घर से बाहर भागती है। लाल धुंध इतनी गहरी कि सामने वाला इंसान भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो, एडम चिल्लाता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। एडम लड़की का भी हाथ पकड़ लेता है, तभी धुंध के भीतर उसे अपने ठीक सामने खुद का चेहरा दिखाई देता है। बस एक पल के लिए, वही यूनिफॉर्म, वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। एडम रुक जाता है, माइक कहता है रुको नहीं, चलते रहो, वहाँ कोई नहीं है। कुछ देर के बाद धुंध से बाहर निकल आते हैं। गाड़ियों के पास पहुंचकर कमांडर चिल्लाता है, हेड काउंट। सब अपने अपने नाम बोलने ही वाले थे, लड़की चिल्लाई नहीं, नाम मत बोलना। कमांडर धीरे धीरे काउंट करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सांस। वो सब राहत की सांस लेते हैं, सब है, लेकिन लड़की पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो एडम ने अभी तक नहीं देखा था। एडम ने पूछा क्या हुआ, लड़की कुछ नहीं बोलती है, बस एक एक सैनिकों को फिर से गिनती है और इस बार 1 से लेकर 8 तक। सन्नाटा, कमांडर फिर गिनता है, इस बार उसका चेहरा भी बदल जाता है। वास्तव में उनके सामने 8 सैनिक खड़े थे। घबरा कर लड़की पूछती है ये कैसे हो सकता है। घबरा कर एडम लड़की से पूछता है ये कैसे हो सकता है। लड़की पीछे हटते हुए कहती है आप लोग 7 अंदर गए थे, बाहर 8 आए हैं। प्यारे दोस्तों, 7 अंदर गए थे और 8 बाहर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि 8वां कौन था। सबसे बड़ा सवाल था क्या उन 7ों में से किसी को पता था कि वो असली है। अब इस कहानी में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, एडम पर भी नहीं, क्योंकि जिस लाल धुंध ने उसका नाम सीख लिया था, उसकी आवाज सीख ली थी और आईने में उसका चेहरा पहनना शुरू कर दिया था, हो सकता है वो अब भी उस घर के अंदर ही हो। हो सकता है उन 8 लोगों में से किसी एक के रूप में बाहर आ चुका हो। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कुछ कहानियाँ सुनाई देती हैं और कुछ आपके साथ घर लौटती है। जल्दी ही मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरी 89.6 FM पर। दोस्तों, अब तक शायद आपके मन में भी वही सवाल गूंज रहा होगा जो उस रात अफगानिस्तान की उस वीरान पहाड़ी पर वे सात लोग अंदर गए थे लेकिन लाल धुन से बाहर निकले आठ, एक चेहरा, एक आवाज, एक शरीर ऐसा था जो उनमें से किसी का नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसे देखकर कोई ये नहीं बता पा रहा था कि वो कौन है। और अब उन्हें उसी के साथ बेस तक वापस जाना था या यही पता लगाना था कि आठवां कौन है। तो आइए आज की कहानी के आखिरी सफर पे चलते हैं। कमांडर कहता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आठों सैनिक एक दूसरे को देखने लगते हैं। एडम था, माइक था, जैक था, लुइस था, रेडियो ऑपरेटर था, ड्राइवर था, कमांडर और एक और सैनिक। सभी ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी, सभी के पास बेस कैंप का सही हथियार था, सही बैच था। और माइक तभी आठवें आदमी को घूरते हुए देखता है। तुम कौन हो? वह आदमी हैरान होके बोलता है, क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। कहता है, मैं डैनियल हूँ। कमांडर जैसे जब सा किया, डैनियल? हाँ सर। डैनियल ने अपनी जेब से टैग निकाला। उस पे साफ साफ लिखा था, डैनियल रीव्स। वो गुस्से में बोला, सर आपको क्या हो गया है? मैं सुबह से आपके साथ हूँ। कुछ सेकेंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर जैक ने कहा, हाँ डैनियल तो हमारे साथ ही था। माइक ने जैक की तरफ देखा, नहीं डैनियल नाम का कोई आदमी था ही नहीं। जैक चिल्लाया, था। लुइस बोला, हाँ मुझे भी याद है। अब डर सिर्फ आठवें आदमी से नहीं था, डर अपनी याददाश्त से था। छोटी लड़की फिर से धीमे धीमे बोलने लगती है, मैंने कहा था ना वो पहले नाम सीखती है, फिर आवाज, फिर चेहरा, फिर। लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं बताई। लड़की के आंख में आंसू आ गए क्योंकि मुझे डर था। किस बात का डर था तुम्हें? वो डैनियल की तरफ देखते हुए बोली, जब वो चेहरा पूरा सीख जाते हैं तो वो आपकी यादों में अपनी जगह बनाने लगती है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब सब समझ चुके थे इसलिए कुछ सैनिकों को डैनियल याद आ रहा था और कुछ को नहीं। माइक ने कहा, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये असली कौन है? लड़की ने कहा, आईना। एडम एकदम चौंक जाता है, तुमने कहा था आईने में मत देखना। लड़की बोली, अपने आप को मत देखो, उसे देखो। ड्राइवर धीरे से जीप का साइड मिरर निकालता है। कमांडर डैनियल को उसके सामने खड़ा होता है। डैनियल घबरा के चिल्लाता है, सर ये पागलपन है। कमांडर ने कहा, आईने में देखो। मैं क्यों देखूं? देखो। डैनियल आईने की तरफ नजर करता है, कुछ नहीं। उसका चेहरा सामान सब राहत की सांस लेने ही वाले थे कि तभी लड़की अचानक चिल्लाई, नहीं उसका चेहरा मत देखो, उसके पीछे देखो। एडम आईने में ध्यान से देखता है, डैनियल का चेहरा था लेकिन उसकी परछाई के पीछे सिर्फ लाल धुंध खड़ी थी। और सबसे अजीब बात, डैनियल सांस ले रहा था लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब बिल्कुल स्थिर था। फिर प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। कमांडर आईना नीचे कर देता है और उसी क्षण डैनियल की हंसने की आवाजें आने लगती है, लेकिन हंसी उसकी नहीं थी, पहले एक बच्ची की, फिर एक बूढ़ी औरत की, फिर माइक की और फिर कमांडर की और अंत में एडम की अपनी आवाज़। डैनियल की आवाज आती है, मैं तुमको सबको जानता हूँ। कमांडर हथियार उठाता है लेकिन लड़की चिल्लाती है, गोली मत चलाना, तुम उसको नहीं मार सकते। डैनियल धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लाल धुंध फिर उसके पैरों के आस पास जमा होने लगती है और वो सभी की तरफ देखकर एक आखिरी बात कहता है, तुमने सिर्फ उसके चेहरे को पहचान लिया जिसे मैंने तुम्हें पहचानने दिया। और अगले पल धुंध उसके चारों तरफ भर जाती है। कुछ सेकंड बाद धुंध हटती है, डैनियल गायब, सात सैनिक फिर से सिर्फ साथ। माइक राहत की सांस लेता है लेकिन लड़की तुरंत उसकी तरफ देखती है और कहती है, उसने कहा जिस चेहरे को उसने पहचानने दिया, इसका मतलब समझते हो? एडम धीरे से समझता है, मतलब डैनियल सिर्फ हटकाने के लिए था। लड़की कोई जवाब नहीं देती और यही सबसे डरावना जवाब था। एडम उसके पास बैठता है फिर पूछने लगता है, तुम्हारे माँ के साथ भी यही हुआ था? लड़की सिर हिलाती है, माँ धुंध से वापस आई थी। एडम चौंकता है, तुमने तो कहा था वो गायब हो गई थी। हाँ वो बाद में गायब हुई, पहले वो घर वापस आई, मुझे खाना दिया, मुझे सुलाया, मेरे बाल बनाए, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। उसकी आवाज कांपने लगती है, लेकिन अगली सुबह मैंने देखा माँ आईने के सामने खड़ी थी, वो मुझे देख रही थी, लेकिन आईने में माँ का चेहरा मेरी तरफ नहीं किसी और की तरफ देख रहा था। तभी मुझे समझ में आया, जो वापस आई थी वो मेरी माँ नहीं थी, तो फिर असली माँ कहाँ गई? लड़की पहाड़ की तरफ देखती है और कहती है, शायद आज भी वो वही है। सैनिक जब जीप से अपने बेस कैंप पहुंचे तो वो काले कपड़े वाले लोग फिर से आए हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। उनका मुखिया कमांडर के पास आया, उसने न गांव के बारे में पूछा न डैनियल के बारे में, उसने सिर्फ एडम की तरफ देखा और पूछा, रेडियो पर किसका नाम आया था? पूरा कमरा खामोश। कमांडर ने कहा, एडम। वो आदमी कुछ सेकंड एडम को देखता रहा, फिर टीम से बोला, फेस

3। एडम ने पूछा, ये फेस 3 क्या है? कोई जवाब नहीं मिलता। बस उस आदमी ने एडम से कहा, आज रात किसी आईने में मत देखना। एडम पूछता है, आप लोग सब जानते हैं क्या? बताते क्यों नहीं? आदमी रुका, फिर बिना मुड़े बोला, हम जानते हैं कि 5 साल पहले हमने पहाड़ के अंदर कुछ खोजने की कोशिश की थी। क्या? एक लंबा विराम। फिर वो काली ड्रेस वाला आदमी बताने लगता है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में हमें लगा कि वो इंसानी दिमागों की यादों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमने कुछ बनाया नहीं था। वो पहली बार एडम की तरफ मुड़ा, हमने सिर्फ उसे जगा दिया। उस रात एडम अपने कमरे में अकेला था, हर आईना ढक दिया, खिड़की के शीशे पे कंबल डाल दिया, स्टील का ग्लास तक उल्टा रख दिया। रात के 2:17, वही समय जब पहली रात उसके टेंट के बाहर कदम रुके थे, एडम बिस्तर पे बैठ गया। फिर रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसको अपनी आवाज आई, एडम एडम। वो जवाब नहीं देता है, एडम आईना मत देखना। फिर भी वो चुप रहता है और फिर हंसी की आवाज आती है, क्योंकि मैं पहले इस तरफ हूँ। उस क्षण कमरे के कोने में ढके हुए आईने पर पड़ा कपड़ा धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। एडम अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे आईने में अपनी ही आवाज सुनाई देती है, एडम आंखें खोलो। इस पोस्टिंग के बाद एडम के 12 साल बीत गए। उस रात एडम के कमरे में क्या हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अगली सुबह वो जिंदा मिला, बिल्कुल सामान। कुछ महीने बाद उसने सेना छोड़ दी, शादी की, एक बेटी हुई, और उसने उस घटना के बारे में कभी किसी को बताया नहीं, बस अपने घर से सारे आईने हटवा दिए। एक रात उसकी छोटी बेटी उसके पास आई, बोली, पापा। हाँ बेटा, आप आईने से इतना डरते क्यों हैं? एडम मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी आईना वो दिखाता है जो हमें नहीं देखना चाहिए। बेटी बात नहीं समझ पाती और हंस देती है, लेकिन पापा आज मैंने आपको आईने में देखा। एडम का चेहरा बिल्कुल जम गया, कहाँ? स्कूल से जो छोटा आईना लाई हूँ उसमें? लेकिन आप तो बहुत अजीब लग रहे थे। एडम की सांस धीमी हो गई। कैसे? लड़की ने बहुत मासूमियत से कहा, आप कमरे में मेरे पीछे खड़े थे पापा, लेकिन आईने वाले पापा तो नहीं खड़े थे, वो मेरे सामने खड़े थे। एडम दौड़ कर छोटे आईने के पास पहुंचा, आईना टेबल पर पड़ा था। वो उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी नजर पड़ गई, आईने में एडम था, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें। एडम ने अपना हाथ उठाया, प्रतिबिंब ने भी हाथ उठाया। एडम ने हाथ नीचे किया, प्रतिबिंब ने भी हाथ नीचे किया, कुछ नहीं हुआ। एडम ने राहत की सांस ली और आईने से दूर जाने के लिए पीछे मुड़ गया। जैसे ही असल एडम ने आईने की तरफ पीठ की, आईने वाला एडम वहीं खड़ा रहा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। उस रात अफगानिस्तान के उस गांव में 7 सैनिक अंदर गए, 8 बाहर आए। उन्होंने 8वें को पहचान भी लिया और लाल धुंध उसे वापस ले गई, लेकिन जाने से पहले उसने एक बात कही थी, तुमने सिर्फ उस चेहरे को पहचाना है जिसे मैंने तुम्हें पहचानने दिया। तो क्या डैनियल ही 8वां था, या वो सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला चेहरा था? और अगर असली चीज पहले ही एडम का नाम, उसकी आवाज और उसका चेहरा सीख चुकी थी, तो उस सुबह बेस पर जो एडम मिला था वो क्या

सचमुच एडम था। आज रात जब आप अपने कमरे में की लाइट बंद करें और किसी आईने के सामने से गुजरे तो अपना चेहरा देखकर कुछ मत कीजिएगा, बस एक कदम आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए और आपका प्रतिबिंब वहीं रुक गया तो पीछे मत रुकिएगा। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे थे 89.6 एफएम पर लाल धुंध। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए खौफ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगर आज रात कोई आपकी आवाज में आपका नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत दीजिएगा। शुभ रात्रि अगर नींद आ जाए।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कहीं दोस्ती की वफा है तो कहीं सत्यम शिवम का शोर, इनके बिना हर महफिल अधूरी, हर साज लगता है बेनूर।
2: मेलोडीन की वो प्यारी तान और वायलिन का वो मीठा शोर खींच ले जाता है हमें फिर से बीते सुनहरे दौर की ओर। एक लक्ष्मी की धुन तो दूजे प्यारे का सांझ निराला था, इन्होंने तो हर टूटते दिल को अपने संगीत से सवारा था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: तो चलते हैं रात के सफर में आज बहुत ही दो प्यारे से हमारे अनमोल सितारों को लेकर के, जिनके सफर में आज हम बताने वाले हैं उनके कुछ बीते लम्हों को और कुछ गानों के पीछे की कहानियों को। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफर भूले बिसरे गीत जो रात के सफर में है।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती की मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि दोस्ती अगर किसी से हो जाती है तो वो इस जन्म की मुझे लगता है कि नहीं होती है, वो दोस्ती होती है हमारे काफी पुराने जन्मों की। कुछ ऐसी ही मिसाल इन दोनों की दोस्ती ने करी, कुछ ऐसी मिसाल जो कि हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। हम सब बताएंगे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कैसे बनी। बिल्कुल, इन दोनों की मुलाकात किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि एक मैच के फील्ड में हुई थी। प्यारेलाल जी अपने दोस्तों के साथ मैच देखने गए थे। लक्ष्मीकांत जी ने आकर उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। बस फिर क्या था, वहीं उनकी दोनों की शुरुआत हुई और मुलाकात। कह सकते हैं कि दोस्ती की मुलाकात या शुरुआत उसी समय, लक्ष्मीकांत जी करीब 15 साल के थे और प्यारेलाल जी मात्र 12 साल के। ये दोस्ती महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये दोस्ती की मिसाल बनने के लिए ही इन दोनों को ईश्वर ने मिलवाया था। और शायद आज उनकी जोड़ी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कि कोई न भूलने वाला कुछ ऐसा फूल हो। जैसे हम कई बार कभी बगीचे में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पड़ती है, गुलाब के फूल पे, है ना। तो ठीक वैसे ही इन दोनों जोड़ियों के लिए हम गुलाब की दोस्ती को कायम कर सकते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा

0: अभी आपने सुना आरजे ख्वाहिश की पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा गाना। क्यों आरजे ख्वाहिश?
1: बिल्कुल आरजे गुमसुम। और ये गाना आज बड़ा ही बेहद सुरीला सा लगा। वैसे कभी कभी हम लोग कभी जाते हैं ना तो सफर के दौरान सुनते हैं, लेकिन आज जब हम लोगों ने सुना तो बड़ा ही मजा आ गया।
0: यही तो बातें होती है पुराने गानों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लिसनर्स, कि हम सभी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है कि हमारे स्ट्रगल में कोई ना कोई हमारा साथ दे, हमें आगे बढ़ाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जीवन में इस रोल को अदा किया हमारी हम सभी की प्यारी लता मंगेशकर जी ने। लता जी ने इन्हें आगे बढ़ाया, बहुत साथ दिया इनका। लता जी ने ही कोलाबा के रेडियो क्लब में लक्ष्मीकांत जी को मेडोलिन बजाना सिखाया। उनके हुनर से वो बहुत ही प्रभावित थी। लता जी को उनका मेडोलिन बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने ही इन दोनों को संगीत अकादमी सुरील कला केंद्र में दाखिला भी दिलाया। इतना ही नहीं, लता जी उस वक्त बड़े संगीतकारों से इनकी सिफारिश भी करती थी ताकि इन्हें काम मिल सके और इनके हुनर को पहचान मिल सके।
1: बिल्कुल, तो आपने सुना ना कि किसी न किसी एक मेंटोर को होना जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जो कि दोनों ने फिल्माया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और जिनका साथ दिया था हम सबकी स्वर कोकिला लता जी ने।

कहते हैं कि हर किसी के नाम के आगे कोई न कोई ऐसी पहचान जुड़ी हुई होती है, और ये भी कहा जाता है कि हर किसी के नाम का एक अर्थ होता है। नाम का अर्थ अगर हम जान लें तो उसके बारे में पूरी ही पूरी उनके जीवन की विस्तृत जानकारी हमें मिल सकती है। और बिल्कुल हर किसी के नाम का कोई ना कोई अर्थ भी होता है। लक्ष्मीकांत जी के नाम का भी एक बहुत बड़ा अर्थ है। आइए हम आपको बताते हैं। लक्ष्मीकांत जी का जन्म दिवाली के दिन हुआ था, जब लक्ष्मी पूजन हो रहा था, इसलिए उनका नाम लक्ष्मीकांत रखा गया। साथ ही साथ प्यारे लाल जी के नाम के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि हमें जब सबसे प्यारी कोई चीज लगती है तब हम उनके घर में निक नेम रख देते हैं, यानी कि उनके घर का नाम। आजकल सभी के घर का नाम कुछ न कुछ है। निक नेम मतलब छोटा किसी का नाम का स्वरूप। ऐसे ही प्यारे लाल जी का जब नाम पड़ा तो वो घर में सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे, इसीलिए आज तक उनके नाम के आगे प्यारे लाल फेमस हो गया। एक बार प्यारे लाल जी विदेश जाकर म्यूजिक सिखाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने उन्हें बड़े भाई की तरह समझाया कि हम एक साथ कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे, और प्यारे लाल जी रुक गए। और फिर क्या था वो तो आप सभी को पता ही है। इनकी जोड़ी के तौर पर पहली रिलीज फिल्म पारसमणि, जो कि 1963 में आई थी। इनके गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा आज भी वो सबके दिलों में छाया हुआ है। और एक गीत और भी था जो वो जब याद आए, ये जबरदस्त हिट हुए थे दोनों सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

जोड़ी ने 1963 से 1998 के बीच करीब 635 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, हम सबका फेवरेट 1 2 3 तेजाब मूवी का ये गाना, जिसमें की धुन जो दी थी वो दी थी लक्ष्मीकांत जी ने। और ये गाना उन्होंने कहाँ सुना आपको पता है? ये गाना उन्होंने गणेश पंडाल में बजते हुए सुना था और फिर उन्होंने इसे डमी लिरिक्स में लिखा और जावेद अख्तर जी को सुनाया। जावेद अख्तर जी को ये बहुत ही पसंद आया और उसके बाद उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड भी किया। 1964 की फिल्म दोस्ती ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे के लिए इन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

0: है किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलपी, ये नाम भी उनकी जोड़ी की बहुत बड़ी उपलब्धि के बाद ही उन्हें मिले। ये जोड़ी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लंबे समय तक चलने वाली संगीतकार जोड़ियों में से एक है। इनके बनने और सफलता इन दोनों की कहानियों में किसी एक पट कथा से कम नहीं है। मोहम्मद रफी के साथ इनका रिश्ता सबसे ज्यादा और सबसे अहम जोड़ी के नाम पर माना जाता है। 1998 में लक्ष्मीकांत जी के निधन के बाद ये ऐतिहासिक सफर खत्म हुआ, लेकिन प्यारे लाल जी ने आज भी उनकी यादों को संजो कर रखा हुआ है। दोनों ही बेहद करीब परिवारों में से एक और संगीत के जरिए अपनी किस्मत को संवारने वाले थे। कहा जाता है कि जब लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे तो प्यारे लाल जी की धुन अपने आप बन जाया करती थी। बस तब क्या था, आप उनकी जोड़ी के संगीत और उनके गानों को आज भी दिल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके प्यारे से एक और गीत को।

लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की जुगलबंदी का तो क्या ही कहना। जहाँ लक्ष्मीकांत जी गानों की धुन बनाते थे और गायकों के साथ काम करते थे, वहीं पर प्यारे लाल जी को इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का और उन्हें अरेंज करने का बहुत शौक था और वो इसमें बहुत माहिर भी थे। वे लगभग अपने सभी गानों में वायलिन जरूर बजाते थे और इसी के लिए बहुत मशहूर भी थे। आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

स्वतंत्र संगीतकार बनने से पहले उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ सहायक यानी असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने आरडी बर्मन और एसडी बर्मन के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट भी करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना कि जब बड़ी सफलता सामने हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। उनकी और एक बड़ी सफलता 1964 की फिल्म दोस्ती ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन जय किशन जी के जाने के बाद राज कपूर ने एलपी को चुना और उन्होंने बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसा कालजयी संगीत भी दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत जी का पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडालकर और प्यारे लाल जी का पूरा नाम प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा है। तो आइए उन्हीं की संगीत से ये जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर जी ने जब लक्ष्मीकांत जी को मैंडोलिन बजाते हुए देखा तो वो बहुत ही खुश हुई और उन्हें उनका मैंडोलिन बजाना बहुत पसंद भी आया, जिसके बाद उन्होंने सुरील कला केंद्र में उन दोनों का दाखिला भी करवा दिया। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस दौर में लता मंगेशकर जी ने उनकी बहुत मदद की। शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे बड़े बड़े सिंगर्स से उनकी सिफारिश भी की ताकि उन्हें काम मिल सके और वो आगे बढ़ सके। कहते हैं ना कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक बन जाते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जहां लक्ष्मीकांत जी बहुत मिलनसार प्रोड्यूसर थे और सिंगर्स के साथ बहुत ही प्यार से डील करते थे। वहीं प्यारेलाल जी थोड़े शांत स्वभाव के थे और जल्दी किसी से बात करना या घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं था। वो हमेशा सबको गाइड तो करते थे पर खुलकर कभी किसी से बात नहीं किया करते थे। आज भी जब आप पुराने गानों में मैडोलिन की प्यारी सी आवाज़ सुनते हैं तो समझ जाइए कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ही कोई गाना है। जहां बड़ा सा वायलिन सुनाई दे वहां प्यारेलाल जी का जादू, तो लक्ष्मीकांत जी की धुन होना तो लाजमी ही है। तो आइए चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

0: महफिल आज की यही थमती है, पर यादें यही रहेंगी। उनकी हर एक सरगम कानों में मधुर बन कर बहेगी। एलपी के सुरों के साथ विदा लेते हैं आज हम।
1: वक्त के पन्नों से यादों का वो दौर नहीं मिटता, संगीत का ये बहता हुआ दरिया कभी नहीं रुकता। लक्ष्मीकांत की धुन और प्यारे लाल का वो जादू आज भी कर देता है हर धड़कन को बेकाबू। फिर मिलेंगे भूले बिसरे के बहुत सारे सुरीले गीतों के साथ, मिटाने हर गम को। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश और आपसे लेती हूँ विदा। रात के सफर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
0: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।